जा सकता है। हर एक आत्मा अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, तो चाहे आत्माओं के बारे में, चाहे किसी घटना के बारे में, चाहे यज्ञ की किसी स्थिति के बारे में, आश्चर्यवत स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। हमें वंडर भी नहीं लगना चाहिए कि ऐसा भी होता है क्या, या ये इतने पुराने ज्ञान में चलने वाले भी ऐसा करते हैं क्या, क्योंकि कल पहले जो कुछ हुआ था वही तो हो रहा है, वही तो होना है। ऐसी निरसंकल्प और साक्षी स्थिति अपनाने वाले सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ज्ञान चिंतन का बल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जो भी बात हमारे सामने आए उसमें हमारे क्वेश्चंस न उठते रहें और फटाफट हम फुल स्टॉप लगा सकें। जो फुल स्टॉप लगाएंगे, बाबा ने उनके लिए बहुत गुह्य बात कही है कि फुल स्टॉप लगाने वालों को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा और फुल स्टॉप लगाकर प्रकृति को ऑर्डर देना पड़ेगा, स्टॉप अर्थात शांत हो जाओ। तो प्रकृति जब हाहाकार करेगी, जब ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकृति सब कुछ नष्ट कर डालेगी, शायद कुछ भी शेष न बचे, तब हमें अपनी शेषवमान की सीट पर बैठकर प्रकृति को ऑर्डर देकर शांत करना होगा। तो इसके लिए ही स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत जरूरत है, और जरूरत है कि संकल्पों में हमारा समय नष्ट न हो, तब प्रकृति भी हमारे आदेश का पालन करेगी, और जैसे ही हम उसको आदेश देंगे शांत हो जाओ, तो प्रकृति शांत होगी, उसके तूफान शीतल हो जाएंगे। हम ये जानते हैं कि प्रकृति को संहार करना ही है, पर कभी कभी ऐसी आवश्यकता होगी कि कुछ समय के लिए स्टॉप। तो ये बहुत बड़ा कार्य हम सबको करना है। आज सारा दिन हम इन दो स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं और प्रकृति का मालिक हूं। प्रकृति का मालिक और बाबा परमधाम में हैं, उनसे पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं, और मुझसे ये पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व इन्हें रिसीव कर रहे हैं। कभी सामने ग्लोब देखकर सकास देंगे, तो कभी सागर के जल को सकास देंगे, ताकि सभी तत्व पुनः सतो प्रधान हो जाएं और आज्ञाकारी बन जाएं, क्योंकि अग्नि और पानी से ही बहुत ज्यादा महाविनाश होगा, और दोनों पर हमारा कंट्रोल हो, और कंट्रोल तब होगा जब हम प्रकृति के मालिक बनेंगे, स्वमान की सीट पर रहेंगे। ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। कोई भी इंसान अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति अपने साथ नहीं ले जाता है। कोई भी स्थूल संपत्ति उसके साथ नहीं जा सकती। उसके साथ जा सकती है तो वह है उसकी सूक्ष्म संपत्ति, जो है उसके पुण्य कर्म, अच्छे संस्कार या श्रेष्ठ कर्मों का फल। आज तक हमने किसी गाड़ी को दाह संस्कार के लिए अर्थी के पीछे जाते नहीं देखा है। अपने जीवन के आखिरी क्षणों में हम अपने साथ सिर्फ उन यादों को ले जा सकते हैं जो हमारे अनुभव थे और जिन्होंने हमारे जीवन को और अर्थपूर्ण बना दिया था। इसके अनुसार आप अपने दिन ऐसे कार्य करने में बिताएं जो आपको प्रसन्नता की यादें देगा, न कि भौतिक संपत्ति की। आप यह पाएंगे कि आपके सबसे यादगार क्षण जीवन की साधारण बातों ने दिए हैं आपको। वह साधारण से कर्म जिस कर्मों से आपने किसी को सुख दिया है, किसी को कुछ अच्छी प्राप्ति कराई हो, कहीं पर आपने पुण्य का काम किया हो, यही सब चीजें, यही सूक्ष्म संपत्ति आपके साथ चलती है। अपने जीवन को ऐसे पत्ते की तरह जीना जो हवा के झोंके की दिशा में उड़ जाता है बहुत आसान है। अपने जीवन को उत्तम तरीके से जीने के लिए आवश्यक है कि हम अपना जीवन अधिक सोच विचार करके अभिप्राय और चाहत के साथ जी, जिससे हम उसे दूसरों की नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जी सकें। सबसे असली चुनौती यह है कि हमारे पास इतना कुछ करने के लिए है कि हमारे लिए यह आसान होगा अगर हम अपने जीवन को अपना नियंत्रण लेने दें और सिर्फ देखते रहें कि किस प्रकार हमारे दिन हफ्तों में और महीनों में फिर अंतिम रूप से सालों में बीत जाते हैं। हमें अपने व्यवहार की दिनचर्या बनानी चाहिए। अगले 24 घंटों में आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, उस 24 घंटों में आप कुछ ऐसे बातें कर सकते हैं जैसे कि आप किसी की सराहना करें, किसी के गुणों की महिमा करें, किसी की प्रशंसा करें, किसी को धन्यवाद दें। इस प्रकार अच्छे व्यवहार की दिनचर्या बनाएं। आप अपनी दिनचर्या में अपने व्यवहार के ऊपर ध्यान दें तो इस प्रकार अगर आप अपने व्यवहार को सही बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी उत्तम तरीके से जीने का आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। और जिस प्रकार आपका व्यवहार श्रेष्ठ होगा उसी प्रकार आपका जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा और आपको सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। और अंत में यही दुआएं

कई लोगों को शिकायत करने की बुरी आदत होती है। उसी प्रकार कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को अपराधी ठहराने की आदत से पीड़ित हैं। इस आदत के भी लोग आसानी से शिकार बन जाते हैं और अधिकतर उन लोगों के साथ हम बहुत प्यार करते हैं। हम इस बात की आलोचना करते हैं कि कौन कैसे खा रहा है और कौन किस प्रकार बात कर रहा है। हम अत्यंत तुच्छ बातों पर ध्यान देते हैं और असार्थक चीज़ों में गलतियां निकालते हैं, परंतु हम जिस पर ध्यान देते हैं वह बढ़ती है। और अगर हम दूसरों की छोटी छोटी कमियों पर ध्यान देते रहेंगे जो हमारे दिमाग में पनपती रहती हैं और जल्द ही एक बड़ी चिंता का कारण बन जाती है। क्या आप वास्तव में ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां पर हर कोई वैसा दिखे, कार्य करे और सोचे जैसा कि आप चाहते हैं? फिर यह बहुत ही अरुचिकर होगा। एक खुश और शांत जीवन जीने के लिए आप समाज की उस समृद्धता को देखना शुरू करें जो उसकी भिन्नता से आती है। जीवन में आपके रिश्ते, समाज और देश को महान आपकी समानता नहीं बल्कि विभिन्नता बनाती है, जो अपने आप में विशिष्ट होती है। अपने आसपास के लोगों की आलोचना करने के बजाय क्यों न हम उस असमानताओं का आदर करना सीखें? प्रायः हम दूसरों में उन कमियों को देखते हैं जो हमें खुद में सुधारनी होती है। दूसरों को अपराधी ठहराना और उनकी भर्त्सना करना छोड़िए। पूरी जिम्मेदारी के साथ चीजों को जैसी हैं वैसे ही स्वीकार करना सीखिए और यह निश्चय लीजिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र में दूसरों में बदलाव लाने के बजाय पहले अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। यह उच्च चरित्र के इंसान का सबसे वास्तविक मूल्यांकन है। जैसा कि एरिका जोंग ने कहा है, अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथ में लीजिए और देखिए क्या होता है। परिणाम यह होगा कि आप किसी पर अभियोग नहीं लगा सकते हैं। कहने का भाव यही है कि दुनिया की वास्तविकता को स्वीकार करें, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीख लीजिए, तो आपकी सारी समस्याओं का हल आपको तुरंत

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज़, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज़ को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज़ है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज़ उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज़ या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज़ वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूँ, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूँ, या वेट करती रहूँ, एक साल सेव करती रहूँ कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूँ। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज़ होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयरएवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई

हमारे दिन एक पर्दानशीन आकृतियों के समान हमारे सामने आते और जाते रहते हैं, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बिना कुछ बोले। परंतु जो भेंट लेकर आते हैं, अगर हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं तो वे उनको चुपचाप वापस लेकर चले जाते हैं। इमर्सन का यह कहना था कि जिस प्रकार आप अपने दिन जीते हैं, उसी प्रकार आप अपना जीवन भी जी लेंगे। यह सोचना बहुत आसान है और एक जंगल में फंसने के समान है। जब हम यह सोचते हैं कि इस दिन का ज्यादा महत्व नहीं है और हमारे आगे आने वाले दिन अधिक अर्थपूर्ण होंगे, परंतु एक महान जीवन एक श्रृंखला के समान है जो बेहतरीन और संतुष्ट जीवन के दिनों को आपस में पिरोकर एक खूबसूरत मोतियों की माला की तरह प्रतीत होता है। तो सिर्फ आज का दिन अंतिम परिणाम में गुणात्मक रूप में जुड़ता जाता है। अतीत जा चुका है, भविष्य एक कल्पना है, तो सिर्फ आज का दिन ही है जो आपका अपना है। इसका निवेश बुद्धिमत्ता से करिए। आपका जीवन एक पूर्वाभ्यास नहीं है। हाथ से निकले हुए अवसर मुश्किल से वापस आते हैं। आज आप अपने जीने की चाह को बढ़ाइए और अपने कर्तव्यों को आगे आने वाले दिनों के लिए दुगना करने का फैसला कीजिए। अनेक लोग सोचते हैं कि अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए महीनों और साल लग जाते हैं। ऐसी धारणा वाले लोगों से मैं असहमत हूँ। आप अपने जीवन को उसी समय बदल देते हैं जिस पल आप अपने दिन की गहराइयों से बेहतर और कर्तव्यनिष्ठ इंसान बनने का निर्णय लेते हैं। महीने और साल सिर्फ उन कोशिशों में लग जाते हैं जो आपको अपने निर्णय को बनाए रखने के लिए करनी पड़ती हैं। और जीवन को बदलने का सबसे अच्छा निर्णय जो आप ले सकते हैं वह यह है कि आप अपने दिन के हर पल को पूर्णता के साथ जिए। जैसा कि गोल्फ के ऐतिहासिक खिलाड़ी बेन होगन का कहना है, जैसे जैसे आप जीवन की राह में आगे बढ़ेंगे, आपको रास्ते के गुलाबों को जरूर सूंघना चाहिए, क्योंकि यह बाजी सिर्फ एक बार आपके हाथ आई।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

अल्बर्ट कैमस ने कहा था, शरद ऋतु के बीच मैंने पाया कि मेरे अंदर एक अजय ग्रीष्म ऋतु थी। हम लोग वास्तव में अपने भीतर

उसकी शक्ति और लचीलेपन को तब तक नहीं खोज पाते हैं जब तक हम कोई दुखदायी परिस्थिति का सामना नहीं करते हैं, जो हमारे दिमाग को चिंता से और दिल को दर्द से भर देती है। तब हमें यह समझ में आता है कि हम सब में अपने अंदर शक्ति और सामर्थ्य है, जिससे हम जीवन की असंगतियों का सामना कर सकते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाएं और सबसे पहले अपने विचारों को अच्छा करें। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, हम दुनिया को जैसा है वैसा नहीं देखते हैं, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसा देखते हैं। हमारी सबसे बड़ी महान मानवीय निधि हमारी योग्यता में है, जिसके बल पर हम किसी भी कठिन परिस्थिति की दोबारा संरचना करके उसको एक बेहतर और ज्ञानवर्धक तरीके से हल कर सकते हैं। कुत्ते यह नहीं कर सकते, बिल्लियां यह नहीं कर सकती, नहीं बंदर ऐसा कर सकते हैं। यह गुण सिर्फ इंसान के पास है और उन विशेषताओं में से एक है जो हमें इंसान बनाती है। अपनी परिस्थितियों को अपराधी ठहराना सिर्फ बहाना ढूंढना है। किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए हमें यह साहस होना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकें, फिर चाहे हम जिस भी परिस्थिति में हों। और हमें यह समझना चाहिए कि हम में वह योग्यता है कि इस कठिन या दुखद अवस्था को अपना लाभ समझकर प्रयुक्त कर सकें। हमेशा जीवन की सबसे दुखदायी परिस्थितियां हमारे लिए अत्यंत भाग्यशाली साबित होती हैं। तो कभी भी परिस्थितियों से घबराएं मत। हमेशा यही समझें कि यही परिस्थितियां हमें आगे बढ़ाने का एक मौका लेकर आई है, और उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाकर हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाइए। सफलता आपके इंतजार में है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: चक्र का पहिया एक बार फिर आप सभी के समक्ष हूं और आपको सुना रहा हूं परमात्मा शिव के प्रति अटूट निश्चय रखने वाले प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन कहानी। जिस प्रकार पारस पत्थर के संपर्क में आने से दूसरे पत्थर भी सोना हो जाते हैं, अथवा सच्चे चंदन के वृक्ष के निकट के वृक्ष भी अपने में सुगंध लेकर सुगंध देने लगते हैं, वैसे ही ब्रह्मा बाबा में चुंबकीय आकर्षण था। वे अपार गुणों के भंडार थे। उनका सबसे बड़ा गुण था आत्मिक दृष्टिकोण।
1: अब आप सुनेंगे नवसृष्टि के रचयिता युग प्रवर्तक ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा की जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण।

0: हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े होने पर कॉलेज जाते हैं। जो लोग प्रौढ़ आयु में शिक्षा हासिल करते हैं उनकी पढ़ाई अलग से होती है, परंतु बाबा की क्लास अर्थात ज्ञान सभा में छोटे बच्चे, युवा, महिला, पुरुष, बूढ़े, ग्रामीण, अमीर, गरीब, हर प्रकार के लोग होते थे। बाबा सभी को सरल, स्पष्ट, सुबोध तरीके से ज्ञान समझाते थे, उन्हें पितृव्रत स्नेह देते, उनके मन की उलझनों को दूर करते थे और उन्हें आदि मध्य अंत का राज समझाते थे। मन में प्रश्न उठ सकता है कि आखिर छोटे बच्चे कैसे गहरी बातों को समझते होंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके बुजुर्ग क्यों बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी उच्च एवं प्रभावशाली होती कि उनके पास बैठे लोग महसूस करते कि वे अपनी देह से न्यारे हो रहे हैं। वे भार शून्यता अथवा हल्कापन अनुभव करते, मन के अशुद्ध संकल्प समाप्त हो जाते, उनका मन शुद्ध पुरुषार्थ एवं आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित होता। असल में यह सब बाबा की आत्मिक दृष्टि का कमाल था, जो उनके व्यक्तित्व में सदा झलकता रहता, उनके चारों ओर पवित्रता बिखेरता रहता, वायुमंडल को शुद्ध करता रहता और लोगों के जीवन को परिवर्तित कर देता। बाबा सदा आत्मिक स्थिति में रहते हुए सब देहों में आत्मा को देखते, इसलिए उनके सामने छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था।
1: आज जब मैं बाबा के सामने बैठी तो लगा कि उड़ रही हूँ, इतना हल्का महसूस हो रहा था।
2: मैंने बाबा के मस्तिष्क के बीच ब्रिकुटी में एक दिव्य ज्योति एवं प्रकाश देखा। लग रहा था कि बस देखती ही रहूं।
3: क्लास में बैठे कुछ समय के लिए लगा कि मैं संसार में ही नहीं हूँ। बाबा के चारों ओर दिव्य आभा अथवा श्वेत प्रकाश दिखाई दे रहा था।

0: बाबा की आत्मिक स्थिति का इतना प्रभाव होता था कि लोगों को वातावरण में एक अभूतपूर्व मौन एवं पवित्रता का प्रकंपन अनुभव होने लगता था। वे भी आत्मिक सुख एवं सच्ची शांति का अनुभव करते। बाबा उन्हें कहते,
1: बच्चों, आप आत्मा हो, ये शरीर तो पांच तत्वों का नश्वर पुतला है जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है।
0: बाबा जिस तरह अपने लौकिक संबंधियों को आत्मिक संबंध से देखते थे, उसी प्रकार उन्होंने सभी धर्म के लोगों को समान दृष्टि से देखा। कभी धर्म के आधार पर भेद नहीं किया। वे आत्मिक नाते से ही सबको देखते थे, आत्मा मानकर उनसे व्यवहार करते थे। एक बार की बात है, बाबा के पास उत्तर प्रदेश के सेवा केंद्र से आए हुए ग्रुप में मुसलमान व्यक्ति भी आया था। उस दिन यज्ञ भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी उस ग्रुप ने ली थी, परंतु वह ब्रह्मचारी मुस्लिम युवक संकोचवश भंडारे के बाहर ही खड़ा रहा और सोचता रहा। तभी अचानक वहां ब्रह्मा बाबा भी आ गए।
1: मीठे बच्चे, आप बाहर क्यों खड़े हो?
2: मेरा मन भी यज्ञ भोजन बनाने का करता है, लेकिन यहाँ जिस तरह पवित्रता के नियम का पालन किया जाता है, पठान होने के कारण शायद मुझे भोजन बनाने के कार्य में सम्मिलित होने की इजाजत न मिले।
1: तुम ब्रह्मचारी तो हो ही, चलो शिव बाबा को याद करके आटा गूंथो।
2: क्या मैं सच में यह कर सकता हूँ? मेरी कितनी बड़ी खुशनसीबी है।
1: यहाँ दैहिक जन्म पर आधारित धर्मों को लेकर कोई भेद नहीं किया जाता, बल्कि बाबा सबको आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। मन में प्रभु प्रेम एवं आचरण में ब्रह्मचर्य आदि की धारणा हो तो वो भोजन बना सकता है।
0: ब्रह्मा बाबा का कोई हाव भाव, शब्द, उनकी मुस्कान दिव्य चरित्र की परिगणना से बाहर नहीं होते थे, बल्कि वे किसी न किसी ईश्वरीय कर्तव्य की पूर्ति या किसी न किसी सेवा के निमित्त ही होते थे। जब वे नेत्रों से निहारते थे तो आत्माओं को कल्याण की दृष्टि से देखते हुए उन्हें ईश्वरीय प्यार से सींच देते। जिस पर भी बाबा की दृष्टि पड़ती वह उनकी नजर से निहाल हो जाता, उसकी सुषुप्त आत्मा जाग उठती। बाबा की दृष्टि ऐसी होती थी जैसे वे आत्मा को साथ लेकर योग के अनुभव की गहराइयों में डुबकी लगवाकर उसे अभूतपूर्ण शांति, आनंद एवं प्रकाश का अनुभव करा रहे हों। लोगों के शरीर का भान मिट जाता।
3: मैं जब भी बाबा के साथ आत्मिक स्थिति में बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि प्रकाश के समंदर में हिलोरे ले रही हूँ।
4: मुझे ऐसा अनुभव होता है कि सारे मोह नष्ट हो गए हैं, सब कुछ मिल गया है, जो पाना था सब पा लिया है।

0: बाबा की दृष्टि एवं प्यार में एक जादू था। उनका प्यार केवल प्यार नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान, योग और सेवा को साथ लिए होता। जैसे ज्ञान मनुष्य के मोह को नष्ट करता है, योग मनुष्य को देह से न्यारा बनाता है, सेवा करने वाले के प्रति किसी का स्नेह जगाता है, वैसे ही बाबा के प्यार की एक नजर भी सभी काम एक साथ कर देती थी। बाबा जब प्यार करते तो वे केवल प्रेम मूर्त नहीं, बल्कि उसके साथ ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति, सेवा मूर्ति एवं कल्याण मूर्ति भी होते। वे अपनी सूरत से मनुष्यों की सीरत बनाने का कमाल करते। जब कभी वे इशारे से किसी को बुलाते तो वह व्यक्ति इस खुशी के साथ उनके पास भागता, जैसे कि देर होने पर कोई खजाना न लूट जाए।
1: आपने देखा होगा, सुराई मिट्टी की बनी होती है, परंतु फिर भी सुराई की नक्काशी, उस पर बने हुए फूल बेल कमरे की शोभा को बढ़ाते हैं। वह सुराई गर्मी से तपे हुए दिन में प्यासे की प्यास बुझाती है, शीतलता लाती है। वैसे ही बाबा का शरीर भी पांच तत्वों से ही गढ़ा हुआ था, लेकिन वह एक चुंबकीय प्रभाव से आत्मा को अपनी ओर खींचता था और अपने स्पर्श से उनके अंगों में शीतलता भर देता था, उनके अंग अंग में जैसे मुस्कान पैदा कर देता था।
0: बाबा में ज्ञान की अथाह गहराई थी, इसलिए उनके जीवन में एक अजीब सी मस्ती झलकती थी। वे ज्ञान को अनमोल मानते थे, उसे अविनाशी रत्नों का खजाना मानते थे। उनका ज्ञान प्रेम पूर्ण ज्ञान था और उस प्रेम का झरना सदा उनके जीवन में बहता रहता। ज्ञान और प्रेम का उनके जीवन में ऐसा तालमेल था कि दोनों को अलग अलग बताना असंभव था। वास्तव में बाबा के ज्ञान के बोल प्रेम के बिना होते ही नहीं थे और उनके प्रेम के बोलों में सदा ज्ञान भरा होता था। प्रेम तथा ज्ञान दोनों का लक्ष्य था मनुष्यात्मा को पवित्र और योगी बनाना। वे कहते थे,
2: ईश्वरीय ज्ञान मूल्यवान है, ज्ञान के साहित्य को बेचा न जाए, क्योंकि बेचने का अर्थ इसका मूल्य चुकाना है, जबकि वास्तव में यह अनमोल है, इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता है।
0: बाबा सादगी के एक उत्तम उदाहरण थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे, उसकी छत भी पक्की नहीं थी, टिन की चादरों से बनी हुई थी। उसी कमरे में वे आगंतुकों से मिलते थे और पत्र भी लिखते थे। लोग अपने मन का हाल वहीं आकर सुनाते थे, बाबा से परामर्श लेते थे। वही कमरा उनका शयन कक्ष भी था। जब कोई श्वेत वस्त्रधारी बाबा के सामने बैठता और उनकी पावनकारी वार्ता सुनता तो उसके मन की कालिमा मिट जाती, वह निर्मल एवं उज्जवल हो जाता। उन दिनों पांडव भवन में एक नया भवन भी बना था, जिसमें अनेक कमरे थे। यज्ञवत्स बाबा से पूछते कि वे किसी दूसरे कमरे में क्यों नहीं चले जाते, तब बाबा का उत्तर था,
2: बच्चों, इस ईश्वरीय सेवा में जिस किसी ने एक पैसा भी अर्पित किया है, उसका वो पैसा 1,00,000 रुपए से अधिक मूल्यवान है। वो मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने तथा उनको शांति देने की सेवा के लिए है। उसे हम अपने सुख भोग के लिए खर्च नहीं कर सकते, वरना वो अमानत में खयानत होगी। अब तो वैसे भी इस दुनिया को छोड़ना है, इस कमरे की क्या बात करते हो? अब फर्श से अर्श में जाना है, इस दुनिया में कुछ नया नहीं, नया अब सतयुग में जाकर बनाएंगे। शिव बाबा ने भी पुराना तन लिया है, अपना योग भी पुरातन से है तो कमरा भी पुराना ही ठीक है।

सोचता हूं कि ब्रह्मा बाबा जैसा प्रेम एवं स्नेहमय व्यक्तित्व चिराग लेकर ढूंढे भी न मिले। उन्हें अपने सुख की तनिक भी परवाह नहीं थी, फिक्र थी तो सिर्फ यज्ञ वत्सों की, जिन्हें वे मीठे बच्चे कहकर ही पुकारा करते थे। उन्हें सदा यही स्मृति दिलाते रहते कि सुख का सागर, प्यार का सागर, परम पिता परमात्मा शिव जब उनके साथ है, सेवाधारी बनकर उनकी सेवा कर रहा है, उन्हें सुख दे रहा है, दैवीय गुण धारण करा रहा है, तो उसकी श्रेष्ठ मत पर क्यों न चले, क्यों न ज्ञान योग धारणा एवं सेवा का पाठ पक्का करें। कहानी की अगली कड़ी में सुनेंगे ब्रह्मा बाबा के जीवन से जुड़ी कुछ और रोचक बातें।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे थे सेल्फ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के कई कोर्सेज हम करते आ रहे हैं और अगर करियर में है तो बहुत सी बातें जहां स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है, एंगर मैनेजमेंट की, लेकिन अभी तक हम ये समझ नहीं पाए थे कि सेल्फ को भी मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ को ही नहीं पहचानते थे। खुद की पहचान के साथ साथ जहाँ मैनेज करने की बात आई, वहाँ पहली बात जो आई थी वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मेरी एबिलिटी क्या है किसी भी सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करने की, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अपने प्रति सबसे पहले जिम्मेवार हूँ और उसके बाद बाकी जिम्मेवारियाँ मेरे सामने आती हैं। अगर पिछली कड़ी को एक बार थोड़ा सा और देखें तो हमने बात की थी कि अगर मैं अपनी खुशी और अपने दुख की जिम्मेवार हूँ तो फिर मैं किसी और की खुशी या दुख की जिम्मेवार नहीं हो सकती। आज थोड़ा सा और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जिस तरह से पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि मेरे साथ मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जो भी इमोशन क्रिएट करती हूँ, जो भी थॉट फीलिंग क्रिएट करती हूँ, उसकी जिम्मेवारी मेरी हो जाती है। तो अगर मैं खुश हूँ अपनी वजह से हूँ, मैंने क्रिएट किया, और अगर मैं दुखी हूँ तब भी मैंने क्रिएट किया है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जहाँ हमने ये बात की थी, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स भी आया है, बहुत से लोगों के मन में ये बात उठ रही है कि जब दूसरा दुखी होता है और वो वजह मैं बन रहा होता हूँ कि मेरी वजह से हुआ, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई या कुछ हुआ, तो वो दुखी और वो बार बार मुझे कह रहा है आई एम यू नो सैड बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूँ, तो वो मुझे कैसे इफेक्ट नहीं करेगी। और दूसरी तरफ अगर मैं या कोई और किसी और के दुख के लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता, तो फिर तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी तरह से करता जाऊँ। तो ये दो बातों को थोड़ा हम और चाहेंगे कि अगर हम खुले
1: से पहली बात तो अपने को समझ लें। जब ये फिट एकदम क्लियर हो जाता है कि आई एम द क्रिएटर, तो जैसे आई एम द क्रिएटर, एवरीवन इज़ द क्रिएटर ना। इफ़ आई एम द क्रिएटर, यू आर योर क्रिएटर, तो हर एक अपना अपना क्रिएटर हो गया ना। हम संकल्प हमारी रचना है। जब सबसे पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि मैं अपने संकल्पों का रचयिता हूँ, सो आई एम द क्रिएटर, तो जैसे आई एम द क्रिएटर इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन आई एम द क्रिएटर ना। यस, सिचुएशन ट्रिगर तो होती ही है, डेफिनेटली है, कि जब तक परिस्थिति आती नहीं, इट्स लाइक दिस स्टिम्यूलस रिस्पॉन्स। तो स्टिम्यूलस तो आएगा, वो व्यक्ति है, परिस्थिति है, वट एवर, स्टिम्यूलस रिस्पॉन्स, बिटवीन द टू फ्रीडम टू चूज द रिस्पॉन्स, ये बॉक्स तो आ रहा है ना बीच में। और इसीलिए देखा जाता है एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग हैं, लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। एक ही ट्रेजेडी में अलग अलग लोग हैं, रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक कपल है जिनसे मिलना हुआ कुछ समय पहले, उनके 2 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ा, 2-year-old child died, stimulus, the death of a child, young baby, बड़ी बात है ना। इससे बड़ी बात कहेंगे तो क्या हो सकती किसी के लिए। लेकिन अब दो लोग हैं, दोनों के सामने सेम स्टिम्यूलस। अब दोनों कौन है, पेरेंट्स है, तो दोनों के लिए स्टिम्यूलस जो आया है वो इक्वली हैवी है, इक्वली चैलेंजिंग है। दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा होना चाहिए। अगर स्टिम्यूलस रिस्पॉन्सिबल है तो दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा होना चाहिए। अब इसमें हमने देखा कि एक जो वाइफ है उसने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए लॉस बड़ा नहीं है या उसको कुछ लग नहीं रहा कि मेरा बच्चा चला गया। ऑफ कोर्स द लॉस इज देयर, लेकिन फिर सिचुएशन को तो एक्सेप्ट करना ही होगा। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आप फिर आगे मूव ऑन करेंगे। तो एक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड मूव्ड ऑन, यू नो, चाहे वो अपने जॉब में ऑक्यूपाइड है या लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है, स्वीकार कर लिया है कि यह मेरे साथ हुआ है। द फादर ऑफ द चाइल्ड एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे अब खुश रहने का कोई हक नहीं है। दैट इज द रिस्पॉन्स, सेम स्टिम्यूलस, दो रिस्पॉन्स। शी सेज आई हैव अंडरस्टूड, नॉट इन माई कंट्रोल, आई हैव टू मूव अहेड। ही सेज आई विल नेवर बी हैप्पी, आई हैव नो राइट टू बी हैप्पी। सेम सिचुएशन, डिफरेंट रिस्पॉन्स। और सिंपल लेवल पर ये तो फिर भी एक बहुत बड़ी बात है। आप एक ऑफिस में देख लो, हम सपोज 10 लोगों की एक टीम है, एक ही बॉस है। एक बॉस ने आज एक एक करके सबको बुलाया, सपोज हम सब ने एक गलती कर ली, एक एक को बुलाया, डांट दिया, एक ही रिस्पॉन्स होगा सबका. स्टिम्यूलस एक ही है, परिस्थिति एक ही है, रिस्पॉन्स हर एक का अलग अलग. तो जब हम हर सीन में ये देखते हैं कि सेम सिचुएशन अलग अलग लोग अलग अलग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्ड कौन क्रिएट करेगा?
0: हम खुद लोग. यस,
1: जितना भी हम दर्द में जाएंगे हम सब उस परिस्थिति को ब्लेम कर रहे हैं. लेट्स से बॉस से डांट पड़ी तो हम अपनी अपनी सीट पर चले गए. किसी को 5 मिनट लगा ठीक होने में, किसी को 5 घंटे लग गए, किसी को तो 5 दिन लग जाते हैं ठीक होने में कि क्यों मुझे डांटा. अलग अलग रिस्पॉन्स, राइट? लेकिन जो 5 मिनट भी अपसेट है या 5 दिन भी अपसेट है, दोनों ब्लेम किसको करते हैं?
0: बॉस को.
1: अब दर्द का लेवल तो अलग अलग है, लेकिन दोनों ब्लेम किसको कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ये सोच रहे हैं कि मेरे दर्द का कारण there. Now here I have to understand, I am the creator, not the boss. The boss is the stimulus which has come from outside. तो आप कोई भी परिस्थिति में देख लो.
0: अच्छा, तो मतलब बात ये आई कि किस बॉस ने डांटा. सपोज ये एग्जाम्पल लेते हैं, बॉस ने डांटा. जायज, मतलब ये बात ये कही जाती है कि वो इट विल हिट. ओके, जो जो
1: बॉस इज नॉट गोइंग टू हिट.
0: नो नो, व्हाटएवर इज गोइंग टू से कम्स टू मी, एंड ऑफ कोर्स आई विल नॉट लाइक दिस. इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स, इज माई रिस्पॉन्स ऑल्सो. बट हाउ डू आई शील्ड इट देन? सी, इफ हिज रिएक्शन, मतलब व्हाटएवर ही हैज रिएक्टेड, मैं उससे अफेक्ट ना हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: नहीं, ये बात नहीं है. आपने जो कहना है वो आपने किया. लेट्स से यू आर माय बॉस जस्ट नाउ. ओके, सो आपको जो कहना है आप कहेंगे. पहली बात, आप उस बेसिस पर कहेंगे जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है अभी. कभी कभी गलती तो इतनी होती है, लेकिन आपका ही मूड ठीक नहीं होगा, सो यू आर जस्ट गोइंग टू रिएक्ट. बट मुझे अब पहली बात ये समझना होगा कि आपका जो रिएक्शन है वो आपकी क्रिएशन है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जो इतना जोर जोर से शोर मचा दिया, दैट्स बिकॉज आप दर्द में हैं, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, नॉट बिकॉज यू हेट मी. द फर्स्ट थिंग वाई आई गो इन टू पेन इज इवन इन अ बॉस कोलीग, इवन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. अब सपोज हस्बैंड पूरा दिन ऑफिस से आए, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस, आके वाइफ को डांट दिया, जोर से कुछ कह दिया, तो वाइफ इफ शी अंडरस्टैंड्स कि ही रिएक्टेड लाइक दिस बिकॉज ऑफ हिज ओन पेन, बिकॉज वो दर्द में है. शोर कौन मचाता?
0: जो दर्द में
1: होता है. लेकिन बुरा उसको इसलिए लगता है, मुझे ऐसा कहा, मतलब वो मुझसे नाराज है, मतलब वो मुझसे नफरत करते हैं, मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते. कंक्लूजन हो गया. तो आई गो इन टू पेन. वंस आई गो इन टू पेन, आई कांट अंडरस्टैंड दैट यू आर इन पेन.
0: अच्छा, और ये जो सारे थॉट्स ही मैंने क्रिएट किए थे,
1: ऑफ कोर्स
0: उन्होंने जो कुछ किया वो तो किया है क्या?
1: Yeah.
0: उनके करने से, उनके क्रिएशन से मैंने क्रिएट किया.
1: तो फिर हम वही कह रहे हैं ना बार बार.
0: हाँ.
1: कि सिचुएशन, सी द हस्बैंड इज देयर, द बॉस इज देयर, व्हाटएवर समबडीज डेथ इज देयर, बट उसके सामने एक एक थॉट जो क्रिएट किया वो किसने क्रिएट किया?
0: बट अब वो सिचुएशन ही ऐसी है तो थॉट में दूसरा कैसे क्रिएट?
1: मैं ये थॉट क्रिएट कह रहे हैं ना कि वही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग थॉट्स क्रिएट करते हैं.
0: तो मैं बेस्ट रिस्पॉन्ड करूं.
1: दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सिचुएशंस अलग अलग आनी है. लाइफ इज दैट, अलग अलग सीन्स आने हैं हर परिस्थिति में. व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर मी?
0: एंड इफ दे स्टार्ट स्ट्रेट अवे ब्लेमिंग यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल.
1: हाँ, क्योंकि अगर मैं दर्द में चली गई, आपने मुझे गुस्सा किया, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास कोई चॉइस है, मैंने दर्द क्रिएट किया, तो मैं किसको जिम्मेवार ठहराऊंगी? तो आपको जिम्मेवार ठहराऊंगी, तो आपसे नफरत करूंगी. फिर चेंज किसको होना चाहिए?
0: मुझे.
1: सी, दैट्स हाउ द होल विशेस साइकिल अगेन गोज एंड अगेन. आई कीप टॉकिंग अबाउट यू हैव टू चेंज एंड डोंट बॉदर दैट आई हैव टू चेंज, बिकॉज आई थॉट मैं जो दर्द क्रिएट किया उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था?
0: वो व्यक्ति था.
1: इसीलिए हमने कहा बार बार भी ये सेंटेंस अगर ले लो ना, दैट यू आर द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर.
0: उन्होंने तो दे डिडंट बिहेव, ही डिडंट बिहेव राइटली विद मी.
1: या बट डिड आई रिस्पॉन्ड राइटली?
0: हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड? ओके,
1: यस, अग्रीड. वी आर नॉट सेइंग कि किसी का बहुत जोर जोर से चिल्लाना या बहुत वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन ठीक है, उन्होंने जो किया सो किया, अब मैंने क्या करना है? अटेंशन जब इस तरफ आएगी तभी तो.
0: तो उस तरफ तो आती नहीं है. यस,
1: एंड फिर मैंने सोचा कि मैंने जो थॉट्स क्रिएट किए वो सारे इसलिए क्रिएट हो रहे थे क्योंकि उन्होंने गुस्सा किया,
0: बिकॉज़ स्टिमुलेट कहीं हुए. ओह गॉड, यस.
1: तो फिर किसको चेंज होना चाहिए? उनको. इट्स वेरी डीप रूटेड. क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि ये मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ. इफ़ आई कैन से उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कैन आई ऑल्सो क्रिएट अ थॉट, वो इतने दर्द में है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वो मेरे से नाराज नहीं है, एक्चुअली वो कोई और पेन में है, लेट मी फाइंड आउट दैट. इट कुड बी अ डिफरेंट रिस्पॉन्स, इट कुड बी अ रिस्पॉन्स कि हाँ वो दर्द में है, लेकिन मैं अपना ध्यान रख लूँ ताकि अपना ध्यान रख के मैं उनका भी ध्यान रख सकती हूँ. डिफरेंट रिस्पॉन्स.
0: बट ही इज शाउटिंग एट मी, यू नो, ही इज अक्यूजिंग मी, ही इज सेइंग सो मेनी बैड थिंग्स टू मी, ही इज टेलिंग मी दैट यू आर नॉट गुड.
1: ही इज ओनली थ्रोइंग आउट हिज फ्रस्ट्रेशन एंड हिज पेन एंड आई कंज्यूम दैट पेन.
0: सो आई हैव टू, यू नो, प्रोटेक्ट माई सेल्फ. सी अगेन,
1: आई कंज्यूम एंड क्रिएट. एंड वी स्टार्ट विद इवन वॉचिंग द टेलीविजन, वॉचिंग अ मूवी. आप देखो, ये तो फिर भी हमारे रिश्तेदार है ना, वॉट अबाउट वो जो एक्टर्स जो टीवी पर है या जो आप मूवी में है, वहाँ वो गुस्सा करते हैं बुरा हमें लगता है यहाँ बैठकर, वहाँ कोई शरीर छोड़ता है रोते हम हैं यहाँ बैठकर, क्या कर रहे हैं. हाउ मेनी पीपल सिट एंड क्राई विद द मूवी?
0: आई डू दैट.
1: यू डू दैट? सो सी, दैट्स फ्रॉम वेयर द हैबिट इज गोइंग वेरी डीप, कि कैसे हमारी इमोशंस जो हैं वो हम दर्द को कैसे कंज्यूम कर लेते हैं, कि वो दर्द में है लेकिन उन्होंने हमें वो दर्द नहीं दिया, वो उनका अपना दर्द था जो उन्होंने बाहर निकाला. जब मूवी भी है, चलो अब तो सामने तो कोई नहीं है ना, वो तो स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ हम क्यों रो रहे हैं, ये किसने क्रिएट किया, वो एक्टर ने थोड़ी क्रिएट किया आके,
0: वो तो हमें आके कुछ भी नहीं कह रहा.
1: अब उसी सिनेमा थिएटर के अंदर सब लोग तो नहीं रो रहे ना. सो एवरीवन इज क्रिएटिंग देयर ओन थॉट्स. इसको आप जितना हर सीन में देखते जाओगे ना, यू विल एंजॉय द डे, यू विल एंजॉय, क्योंकि आप देखते जाओगे, आई एम क्रिएटिंग, आई एम क्रिएटिंग,
0: मैंने क्या क्रिएट किया
1: अभी. यस, इट्स वेरी नाइस एंड दिस इज सेल्फ अवेयरनेस. इट डजंट मीन कि हम फर्स्ट डे में परफेक्ट हो जाएंगे, बट देन द जर्नी बिगिंस, कि ये जो अभी अभी मैंने जेलसी का थॉट क्रिएट किया, ये किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया. नहीं, ये उसकी वजह से. ना ना ना, मैंने क्रिएट किया,
0: मैंने किया था,
1: मैंने क्रिएट किया. ये अभी जो
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी. ओह यस,
1: ये अभी अभी जो हर्ट हुआ, कौन हर्ट हुआ? मैं हर्ट हुई. किसने क्रिएट किया? लेकिन उन्होंने बोला, हाँ उन्होंने बोला, हर्ट किसने क्रिएट किया? दिस इज टॉकिंग टू माई सेल्फ. एंड जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे, हमारा रिश्ता अपने आप से
0: वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा.
1: I start looking after myself. It doesn't mean that day one I will become pain free. No, it's not going to happen.
0: No, yes, I continue to react, actually.
1: But the journey has begun. The journey has begun ke hum apne saath apne upar dekhna shuru kar dete hain. Abhi bhi hurt honge kabhi kabhi, abhi bhi gussa aayega, lekin blame band ho jayega. उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से. ना ना, मेरे रिस्पॉन्स, मेरा रिस्पॉन्स. डू आई हैव अ चॉइस? येस. व्हेन डू आई वांट टू चेंज? नाउ. कम ऑन, यू नो. सो यू स्टार्ट वर्किंग, आप अपने कोच बन जाते हैं. जैसे गिरा, कौन गिरा? मैं गिरी. किसकी वजह से गिरी? अपनी वजह से. उठो फिर, चलो मूव दिस. सो कॉन्स्टेंटली फिर आपका अटेंशन किस पर होने लग जाता है?
0: अपने ऊपर.
1: ये मेडिटेशन है ना. दिस इज वॉट इट इज. अभी तो अपने लिए टाइम नहीं था ना, क्योंकि सारा ध्यान तो इसको इसको इसको सबको चेंज होना था. तो इतने लोगों की तरफ ध्यान था, तो अपने ऊपर नंबर ही नहीं आया मेरा, अपने ऊपर ध्यान रखने का. अब मुझे जब समझ में आया कि और कोई नहीं क्रिएट कर रहा है.
0: ओह वेरी गुड. यू नो, सो सिचुएशंस को लेके जो टेंशन होती है, जो इनसिक्योरिटी है, वो सब आई कैन स्टॉप डूइंग दैट एक्चुअली.
1: ऑफ कोर्स,
0: यू नो, बिकॉज़ आई एम क्रिएटिंग इट. आई एम सो इनसिक्योर, आई एम फीलिंग सो टेंस, आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट. So it's like I can do it, I can stop it now, right now. Because I am creating it.
1: Every time. This is very deep. Isko practice karna hai, ye ek bahut badi, jisko kahe na, liberation ho jati hai. Blame culture se ki dusre zimmewar hain, dusre. I can never be happy then. I can never be happy. Now when I start looking at myself, I am creating. Hoga dard kabhi kabhi, lekin theek hone mein kitna time lagega?
0: Haan, because the moment this thought, but it has to rub in actually.
1: इसलिए एवरी डे, एवरी डे आई एम द क्रिएटर. सम पीपल से, लेकिन आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं. यस, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स, क्योंकि अपनी जीवन का जिम्मेवार मैं हूँ, वो अपनी जीवन के जिम्मेवार हैं. तो वो जो क्रिएट कर रहे हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मैं जो क्रिएट करूँगा
0: मैं अपने लिए. मेरे, लेकिन अगर वो गलत करते जाए, सपोज हमारे बच्चा है या कोई भी है, वो गलत पे गलत गलत पे गलत करता जा रहा है, तो At least I, but I don't have to take, create the pain. But I have to create this thought that this is wrong.
1: Yeah, I can.
0: This action is wrong.
1: I can tell him what is right to do, but that doesn't mean I have to go in pain. You know, for example, bachcha ulta jawab de diya, thoda sa rudely baat kar diya. I even just recently at a program, we had 2 days program. So ek din humne ye topic discuss kiya ki aaj sara din stable rehna hai. Or next day we were going to ask ki what is the result. So ek young mother, she came and she said ki main jaise hi program ke baad ghar paunchi, to meko lagta 3 ya 4 saal ki daughter uski. To wo mere saath bahut gussa thi ki main usko program mein nahi leke gayi, main ghar chhod gayi thi usko itne ghante ke liye. To main jaise hi paunchi wo mujhse bahut rudely baat karne lagi, kyunki aajkal chote chote bachche bhi. To she said wo itna rudely baat kiya. She said, मैंने एक बार उससे प्यार से बात किया कि बच्चे मैं तुमको शाम को ले जाऊंगी. उसने फिर से किया. She said, क्योंकि मुझे याद था कि आज मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है. She said, उसने 3 बार ऐसा किया और मैंने 3 बार अपने ऊपर ध्यान रखा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है. एंड she said, the magic was, वो ठीक हो गई. She said, that was like a realization
0: miracle.
1: Hit me. She said, क्योंकि पहले अगर वो मेरे साथ इस तरह से rudely बात करती, तो I would have shouted back at her कि ये कोई बात करने का तरीका नहीं है, या कभी तो जोर से उसको एक मैं लगाई देती उस टाइम. She said, वो ठीक हो गई. She said, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बच्चों को ठीक करना. लेकिन हम ठीक कैसे करते हैं? जैसे एक बच्चा रूडली बात कर रहा है, हम उससे और रूडली बात करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. हम उसको डांट कर बताते हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? रूडली बोलकर उसको बोल रहे हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए. हाउ विल इट वर्क? सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय रिस्पॉन्स. अब वो बच्चा रूडली बात कर रहा है, वो राइट कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, इज नॉट द क्वेश्चन एट ऑल. वो स्टिम्यूलस है. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई रिस्पॉन्स.
0: इन फैक्ट सो राइटली सेड दैट हम रूडली बोल के उनको बोलते हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए.
1: वो गुस्सा कर रहे हैं, हम गुस्सा करके उनको बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, हम आउट ऑफ कंट्रोल जाकर उनको बोलते हैं डिसिप्लिन्ड होना चाहिए. हाउ विल इट वर्क? How will it work? लेकिन हम उस टाइम क्यों आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं? क्योंकि हम कहते हैं वो स्टिम्यूलस ऐसा है कि मुझे इस तरह से डिस्टर्ब तो होना ही चाहिए. अगर मेरा बच्चा रूडली बात करे तो मैं क्या डिस्टर्ब नहीं हूँ? सो मेरे डिस्टर्बेंस का कारण कौन? आप. द डे दिस थिंग स्टार्ट सिंकिंग इन कि आसपास मेरे चाहे कोई कुछ भी करे, फिर भी रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है.

0: हमारा ध्यान किस पर आ जाएगा?
1: अपने ऊपर.
0: माय रिस्पांस एंड दैट फॉर दैट लेडी दैट डे इट वाज लाइक शी सेड दिस इज द वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन आई हैव अंडरस्टूड एंड इट वाज हर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इट वाज नॉट थ्योरी शी सेड इस तरह से तो बड़ा करना है इनको हमें सिर्फ अपना ध्यान रखना है वो तो अपने आप ठीक हो गई शी सेइंग और यही मैं अगर उसको बोल के ठीक करने की कोशिश करती तो ध्यान किस पर रखना था रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की नहीं लेनी है हमने क्या सोचा बच्चे को ठीक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने को ठीक रखना दूसरों को सुधारना हमारी जिम्मेवारी हो चुकी है विदाउट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ
1: माई रिस्पॉन्स ओह वेरी ट्रू दैट इज व्हाट स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट
0: दैट इज व्हाट स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट
1: एक और बात जो सामने आती है कि जहाँ हमने ये कहा था कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ उसके क्रिएटर मैं हूँ वैसे ही दूसरा जैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसकी क्रिएटर मैं नहीं हूँ अगर वो पेन में है तो चाहे वो बार बार ये कह रहा है कि आपके कारण आपने ऐसे किया था आप लेट आए हैं या आप कहीं और थे या आप जो भी थे आपके कारण मुझे दर्द हो रहा है तो फिर तो मैं अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ
0: या दैट्स ट्रू ना उसको हमें राइट पर्सपेक्टिव में लेना है लेट्स से कि मेरा एक पर्टिकुलर व्यवहार करने का तरीका आपको पसंद नहीं लेकिन दर्द आप क्रिएट करते हैं आई एम गोइंग टू रिमेंबर दैट अब आप अगर मुझे बार बार ये बोलने वाले हैं कि आपके दर्द का कारण मैं हूँ आई एम नॉट टेकिंग इट क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आपके दर्द का कारण आप हो मैं स्टिम्युलस हूँ डेफिनेटली मेरे वर्ड्स मेरे बिहेवियर वो आपके लिए स्टिम्युलस हैं लेकिन रिस्पॉन्स आप क्रिएट कर रहे हो अब आई हैव टू चेक माई सेल्फ जैसे आपको अपने को चेक करना है मुझे अपने को चेक करना है लेकिन वो मैं तब कर पाऊंगी जब मैं स्टेबल हो अगर मैं गिल्ट में चली गई तो फिर मैं भी क्या रिस्पॉन्स क्रिएट किया
1: पेन का
0: अब पेन में जाने के बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही खत्म हो गई एंड देन आई विल नॉट लाइक यू विल नॉट लाइक मी आई विल नॉट लाइक यू एंड देन वी स्टार्ट थ्रोइंग दैट नेगेटिव एनर्जी एट ईच अदर तो अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आ रही है एंड यू आर वेरी वोकल अबाउट इट आप मुझे सीधा बताते हैं कि आपकी वजह से ये सब तो मैं सिर्फ आपकी बात सुन सकती हूँ नॉट गेट डिस्टर्ब्ड ध्यान सिर्फ ये रखो कि सपोज मैंने कुछ आपको सेंटेंस कहा आपने दर्द क्रिएट किया उसके बाद आपने कहा कि मैं उसकी जिम्मेवार हूं तो अब ये मेरी परिस्थिति हो गई नाउ दिस इज माई स्टिम्युलस कि यू आर
1: मैंने अपना दर्द फेंका ना आपको
0: सो नाउ दिस इज माई स्टिम्युलस अब इस स्टिम्युलस में मुझे क्या रिस्पॉन्स करना है पहली चीज मुझे अपना ध्यान रखना है कि मुझे दर्द में नहीं चले जाना
1: है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है
0: दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो मैं तब निभा पाऊंगी वेन आई अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट गिल्टी ऑफ योर पेन इज योर क्रिएशन वो स्टेबिलिटी क्रिएट करके अब मैं अपने आप को चेक कर लेती हूँ कि वॉट कैन आई चेंज अबाउट माई सेल्फ जिससे आपके लिए वो स्टिम्युलस चेंज हो जाए आपका रिस्पॉन्स नहीं
1: क्योंकि आप अभी भी उतनी हिम्मत आप में उतनी ताकत नहीं है या आप समझ नहीं पा रहे कि आप जिम्मेदार हो आप जिम्मेवार हो अपने जो आपने दर्द क्रिएट
0: नहीं लेकिन ये हो सकता है ना कि जब आपका क्योंकि वी नो वन थिंग कि परिस्थिति आएगी तभी तो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा लेट्स से मेरा बात करने का तरीका ठीक नहीं है मैं जरा जोर जोर से चिल्ला कर आपसे बात करती हूँ तो ये स्टिम्युलस आपको आता है तभी तो आप दर्द क्रिएट करते हो अब आपके अंदर ताकत नहीं है कि आप इस स्टिम्युलस को फेस करो तो आप स्टिम्युलस को बोलते रहते हो चेंज यू आर द कॉज ऑफ माई पेन तो आपकी ये सेंटेंस को मैं लेती हूँ और अब मैं अपने ऊपर वर्क करती हूँ कि एज अ सिचुएशन मैं अपने आप को कितना चेंज करने के लिए रेडी हूँ लेकिन मैं ये जिम्मेवारी नहीं लेती कि आपके दर्द का कारण मैं हूँ दर्द तो फिर भी आपने क्रिएट किया जब मुझे ये ध्यान में रहेगा तो मैं पहले खुद दर्द में नहीं जाती और जब मैं दर्द में नहीं जाती तभी मैं अपने को देख पाती हूँ और तब चेंज करने का कोई मार्जिन है जैसे रिलेशनशिप्स में दो लोग एक दूसरे को कहते रहते हैं आप मेरे दर्द का कारण हो द अदर पर्सन डजंट एक्सेप्ट बिकॉज वो जैसे ही हर्ट हो जाता है So he doesn't accept that I am the cause of anything and then he doesn't change. So basically, mujhe guilt mein nahi jana hai. Na, ya na koi mujhe apne emotion se mujhe, you know, baha kar lekar ja sakta hai. Aajkal hota kya hai zyadatar? Ke hum stable na hone ke karan, dusron ki is tarah ki statements ki wajah se hum beh jate hai. You know, or fir that is also not stability. Parivartan, yes, I am ready to change, but with stability. कि क्या परिवर्तन करना है मुझे
1: एंड आई वांट टू चेंज
0: आई वांट टू चेंज एंड आई हैव टू बी कंफर्टेबल विद दैट चेंज ये नहीं कि मैंने चेंज किया और फिर मैंने दर्द क्रिएट कर दिया. आई मीट सम सिस्टर्स, उनके हस्बैंड्स कहते हैं आफ्टर मैरिज डोंट वर्क एनी मोर, आपको जॉब नहीं करना है, आपको घर पे रहना है. और जब तक वो पत्नी नहीं मानती है, पूरा घर दर्द में है, इन लॉज हस्बैंड, हमारी खुशी के लिए आपको जॉब छोड़नी है. चलो अब आपके पास चॉइस है कि या आपको जॉब करनी है या आपको जॉब छोड़नी है. आप ये समझकर कि आप उनको खुशी देंगे, आप जॉब छोड़ते हैं. लेकिन आपने क्रिएट क्या किया वो जॉब छोड़ने के टाइम? अगर आपने ही दर्द क्रिएट कर दिया तो आप घर पर रहकर खुशी कैसे देंगे किसी को?
1: Never, because you'll never be happy.
0: You will never be happy. So important first is that in order to give any energy out, I will have to create it. And then you have to see these sisters, 20 years they have been sitting at home, और 20 साल के बाद भी ये regret कर रहे हैं अपना वो decision.
1: इनकी वजह से मैंने छोड़ा.
0: Yes. तो फिर वो घर रहकर भी खुशी कहाँ हुई? फिर हम कहते हैं हमने उनके लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया, वो अभी भी खुश नहीं है. वो क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हमने किया किया किया बहुत कुछ, लेकिन हम खुश नहीं थे. तो हम जब खुश नहीं थे तो वो खुश कैसे होंगे?
1: बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी ट्रू शिवानी, कि जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं वही दूसरों के प्रति भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं
0: विद स्टेबिलिटी,
1: हाँ, विद हैप्पीनेस, यू नो, अगेन
0: दैट इज स्टेबिलिटी. हम डूइंग लेवल पर निभा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं. कहेंगे मैं अपने इन लॉज का ध्यान रखती हूँ, मैं हस्बैंड, मैं तो सारा दिन घूमती रहती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, फीलिंग क्या है? कहते फिर भी कोई खुश नहीं होता. कैसे होगा अगर मैं दर्द में हूँ वो सब करने के टाइम? तो इसलिए डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुश रह कर सब कुछ करना है, फिर आप कोई खुश हो सकता है. नहीं तो आप दर्द में तो सब लोग दर्द.
1: और सबसे बड़ी बात जो हमें ताकत मिल जाती है वो ये कि खुश रहना मेरा अपने हाथ में है. आई कैन क्रिएट इट एनी टाइम आई वॉन्ट. इनफैक्ट आप सबसे हम यही कहेंगे कि वो हैप्पीनेस के मोमेंट्स को खुद क्रिएट करें, हैप्पीनेस के थॉट्स को खुद क्रिएट करें, और फिर हम काम, इनफैक्ट कोई भी काम शुरू करने से पहले, इनफैक्ट आई थिंक समवेयर वी शुड स्टार्ट विद दैट
0: थॉट, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद 1 मिनट साइलेंस. आप दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें, बीच बीच में रुक कर हमारा है कोई कार्य शुरू करने लगे हैं, पॉजिटिव थॉट. You know, happiness is not excitement, jump kar rahe hain sara din. Happiness is positive thought, stable thought. I can do this, I will do this with stability. No, taki beech mein wo negative thought nahi aaye. Hoga ya nahi hoga, mere se hoga, pata nahi kya.
1: वो पता नहीं वो कैसा फील करेंगे, उनको क्या फीलिंग होगी. वेरी ट्रू शिवानी, आज की इस बात ने कहीं ना कहीं हमें एम्पावर किया है और एक क्लैरिटी के साथ बात सामने आई है कि वेयर वी स्टैंड. थैंक यू सो मच
0: शांति.
1: इस पूरी श्रृंखला के दौरान, पूरी बातचीत में कहीं कोई ऐसी बात लगती है जिसको आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आपके लिए ये स्टिमुलस है, और अगर आपका कुछ रिस्पॉन्स है आपका हम स्वागत करते हैं. आप इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हों, चाहे फ़ोन द्वारा या फिर ईमेल पर संपर्क करें. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999 3445, 9999 3446, 9873 666 555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. आने वाली कड़ियों में और बातें करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट से जुड़े हुए. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं खेलों के विषय में। तो इस विषय को सुनकर आपके मनोमस्तिष्क में न जाने कितने विचार कौंध रहे होंगे। और कहा जाता है, जैसे कि आपने भी सुना होगा, कि खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब।
1: मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है, ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूँ आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है नई किरण इस कार्यक्रम में, और आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और आज सदगुरुवार का दिन है, तो सदगुरु की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ मंगल कामनाएं करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। 2 जुलाई 2026 आज का तारीख है। राष्ट्रीय शके 1948, शके 11, गते 18, आषाढ़ गुरुवार आज है। विक्रम संवत 2083, आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीय गुरुवार आषाढ़ा आज है। इस्लामी हिजरी 1448, 16 मुरहम जुमेरात बल्दा आज है। इसके साथ ही सुहास एलवाई आज है, और असीद भट्टाचार्य आज उनका बलिदान दिवस है, और मोहम्मद अजीज इनका जन्मदिन है, जिनकी बातें हम लोग आज सुनेंगे। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार भाई जी, नमस्कार। जब आप आ जाते हैं हमारे सारे गुरु जी आगे हैं।
0: हाँ जी,
1: गुरु जी का दिन भी हो जाएगा, जब रहेगा
0: क्या अच्छा रहेगा।
1: गुरुदेव जाए जागो,
0: गुरुदेव
1: जाए जागो।
0: आपकी आवाज डबल डबल आ रही है मेरे पास। नमस्कार नमस्कार।

भागो राम जी रा भजना सो कई भागो है जी। संत महात्मा लिखो है कि भगवान इन धरती पर आपने किन वात्र भेजिया और जीव किन प्रकार

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बड़ा प्यारा सा गुरु भजन आप सुन रहे थे और आशा करूंगा कि आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है। जब सुबह सुबह हम लोग गुरु भजन सुनते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और हम सभी जो है इस आनंद में खो जाते हैं कि गुरु की बातें सुनते, गुरु की बातें याद करते। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आज आप सभी को ले चलता हूँ मोहम्मद अजीज़ के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्ते,
0: ओम शांति। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बस एकदम बढ़िया है, बैठा है काम पर। पिंजरे से उड़े पंछी इन जगन में आए, तेरे करता है बाबा हम पास तेरे उड़ जाए, पास तेरे उड़ जाए। हमारे गुरुलाल जी है, कंचन भाई है, हमारे गुराराम जी को भी हमारा राम राम है। शायद गुराराम जी सुन रहे हैं, अभी थोड़ी देर में शायद आ ही जाएंगे।
0: आके गए गुरुलाल जी। ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रिन्यूमान 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, सुरेश जी ने भी काफ़ी बढ़िया गीत याद किया है तो कोशिश करते हैं हम लोग सुनाए आपको। और बात कर रहे थे सैयद मोहम्मद अजीज़ अन्नबी। जी हाँ, भारत के बहुत ही पॉपुलर पार्श्व गायकों में से एक थे, जिन्होंने मुख्यतः बंगाली, उड़ीसा और हिंदी फिल्मों में गाने गाए। कोलकाता के गालिब रेस्टोरेंट में एक गायक के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। साल 1984 में वे मुंबई आ गए और उनकी पहली हिंदी फिल्म अंबर थी, जो 1984 में रिलीज हुई। मोहम्मद अजीज़ के पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के लिए मर्द टांगे वाला गीत गाया। उन्हें 80 और 90 के समय में मोहम्मद रफ़ी का उत्तराधिकारी कहा जाता था। मोहम्मद अजीज़ ने अलग अलग भाषाओं में 20,000 से अधिक गाने गाए। खुदगर्ज फिल्म का मशहूर गाना आपके आ जाने से अजीज साहब ने ही गाया था, और जिसे अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री नीलम पर फिल्माया गया था। मोहम्मद अजीज़ ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति जैसे मशहूर गायकों को साथ युगल गीतों में भी अपनी आवाज़ दी है। तो आइए इनके बारे में अधिक जानकारी हासिल करते हैं कुछ ही पल में, लेकिन उसके पहले आइए एक बहुत ही प्यारा सा गीत है।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए, बहुत ही प्यारा सा बच्चू बाबा का गीत आपने सुना। आइए बात कर रहे थे हम लोग मोहम्मद अजीज़ के बारे में। इनका जन्म आज ही के दिन 1954 को पश्चिम बंगाल में हुआ और उनका वास्तविक नाम सैयद मोहम्मद अजब नबी था। हिंदी फिल्मों में उन्होंने बड़ा ब्रेक तब मिला जब संगीतकार अनु मलिक ने अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म मर्द में मर्द तांगे वाला गाना उनको गाने को दिया। ये गीत वहाँ सुपरहिट हुआ और फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। मोहम्मद अजीज़ ने हर सफल कंपोज़र के लिए प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मी

0: श्रीकांत प्यारेलाल ने भी उनके अपने कई फिल्मों में मौका दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए चलता हूँ मैं आज के इस। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ बुराराम जी बोलिए, कैसे हैं आप?
1: कंचन भाई बोल।
0: कंचन भाई बोलिए, कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद याद किया आपने। अच्छा ठीक है, बढ़िया। तबीयत का ख्याल रखिए और अच्छा लगा आपने फोन किया। जी जी
1: लग्न तो
0: अच्छा अच्छा
1: थोड़ा
0: ठीक है। जी जी जी
1: क्या है आज के?
0: आज तो गुरुवार है, बाबा का दिन है, बढ़िया दिन है। जी जी जी
1: गुरु भी जो शिष्य गुरु के पास जाए तो किसी की परीक्षा भी करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: चोली भर के लाना, चोली भर के लाना गुरु ने गुरु ने नदी सरोवर पास जाना, कुबाब को छोड़ किसीला तुम्बा भर के लाना ओ चेला, गुरु ने मंगाई भिक्षा, गुरु ने मंगाई। वजन बहुत लंबा है, क्या है कविता का वजन है, पर लेकिन क्या है भाई टाइम पढ़ते हैं तो
0: जी जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलिए मोहम्मद अजीज का एक खूबसूरत गीत आपके लिए अभी

0: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सीमित रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और बड़ा प्यारा सा जो है गीत आप सुन रहे थे, आध्यात्मिक गीत। और हम लोग बात कर रहे थे मोहम्मद अज़ीज़ के बारे में। जी हाँ, इनकी जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, उदित नारायण के साथ, कुमार शानू के जैसे गायकों के साथ उनका नाम आने लगा। और फिर धीरे धीरे मोहम्मद अज़ीज़ अपने समय के बेहद पॉपुलर गायक बन गए और मोहम्मद रफ़ी के गानों के बहुत बड़े फ़ैन थे वे। उन्होंने उनको मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे। हालांकि मोहम्मद अज़ीज़ ने रफ़ी से कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, लेकिन सुन सुनकर सीखा। और करियर में एक समय ऐसा भी आया था जब लोग उनको मोहम्मद रफ़ी का उत्तराधिकारी कहने लगे थे। एक बार मोहम्मद अज़ीज़ ने कहा भी था, मुझे लगता है कि अगर कोई मोहम्मद रफ़ी का 5% भी गाने के लायक हो जाता है तो उसे देश का बेस्ट सिंगर माना जा सकता है। मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी उनकी कितनी बड़ी प्रेरणा थे, इसे लेकर मोहम्मद अज़ीज़ ने कहा था, उन्होंने मुझे इस हद तक प्रेरित किया था कि मैं अपनी पूरी आत्मा लगाकर उन्हें आत्मसात कर सकता हूँ। हालांकि मैंने अपनी फार्मूला ट्रेनिंग एक टीचर से ले ली, लेकिन मैं रफ़ी साहब को अपना गुरु मानता हूँ। मैंने आज कई भाषाओं में और दुनिया भर में परफॉर्मेंस किया है और मैं अपनी इस सक्सेस का श्रेय उनको देता हूँ। मोहम्मद अज़ीज़ ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ये अफवाह हुआ करती थी कि मैं रफ़ी साहब का शिष्य था और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक बार रफ़ी साहब ने मोहम्मद अज़ीज़ के गाने सुने तो कह उठे, अरे ये तो मेरे जैसा गाता है। माना जाता है कि अलग अलग भाषाओं में मोहम्मद रफ़ी साहब मोहम्मद अज़ीज़ ने करीब 20,000 से अधिक गाने गाए थे। इनमें से आपके आ जाने से जो हमने सुनाया, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, कागज कलम दवाकला, दिल दिया है जहाँ भी देंगे वतन, मेरे दो अनमोल रतन, माई नेम इज़ लखन, तुझे रब ने बनाया होगा, ऐसे सुपर हिट यादगार गीत इन्होंने गाए। तो कहते हैं कि हिंदी फिल्मों को कई बेहतरीन सुपर डुपर हिट गाने अब मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने दिए हैं। तो आइए एक और सुंदर गीत मैं आपको सुनाता हूँ अभी, और ये गीत भी मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा मोहम्मद अज़ीज़ का। आप सुनाए हैं रिडिमाद 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं।

नमस्कार, आप सुंदर रेडियो 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, मोहम्मद अजीज के बारे में बातें कर रहे थे और उनके खूबसूरत गाने भी आपको सुना रहे थे। अब इसके साथ ही आइए, जैसे कि हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, सावन के झूलों ने, इस तरह के बहुत सारे जो खूबसूरत गाने हैं वो गाए हुए हैं। और हिंदी फिल्मों को कई बेहतरीन और सुपरहिट गाने देने वाले गायक मोहम्मद अजीज का निधन 27 नवंबर 2018 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उस समय वे 64 वर्ष के थे और कोलकाता से एक कार्यक्रम खत्म कर मुंबई लौट रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर ही उनकी तबीयत खराब हो गई और मोहम्मद अजीज सोमवार की रात कोलकाता में एक कार्यक्रम के लिए गए थे। जब वे दोपहर को लौटे तो उनकी एयरपोर्ट पर तबीयत खराब होने लगी और उन्हें नानावटी हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहीं पर उन्होंने अपना अंतिम सांस ली। तो ये थी कुछ खास बातें मोहम्मद अजीज़ के बारे में। 2 जुलाई 1954 को इनका जन्म हुआ और 27 नवंबर 2018 को इनका मृत्यु हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें मोहम्मद अजीज़, जो खूबसूरत गानों के मालिक, आवाज़ के मालिक थे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। एक गाना इनका जो शुरू में जो गाना इनको, जहाँ से इनको ब्रेक मिला वही गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और ये गाने से इनको जो है हिंदी फिल्मों में अच्छा सा ब्रेक मिल गया और फिर कहानी इनकी जो करियर की, घाड़ी घोड़े की तरह दौड़ने लगी।

वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

चले ये तम तम। अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं तो कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा।

0: शिमारू फिल्मी गाने के सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।
1: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना और ये मोहम्मद अवीज़ जिनके बारे में हमने बातें की, उनको पहला ब्रेक यहाँ से मिला और इसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। तो आइए बात करते हैं हम लोग एक और व्यक्तित्व के बारे में, आलोक दंदवा इनके बारे में, और ये भी एक हिंदी साहित्य के विशेष कवि रहे। आलोक जी हिंदी के उन बड़े कवियों में से आते हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। उनकी गोली दागो पोस्टर, जनता का आदमी, कपड़े के जूते और ब्रूनों की बेटियां जैसी कविताएं बहुत चर्चित रही। दुनिया रोज बनती है उनका बहुत चर्चित कविता संग्रह है। इनके कविताओं ने अंग्रेज और रूसी भाषा में अनुवाद हुए हैं। वो बहुत ही पॉपुलर रहे हैं इनके टाइटल्स, जिसके लिए उनको काफ़ी सम्मान और तवज्जो मिला। एक अरसे के बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका बहुवचन में उनकी 4 नई कविताएं सामने आई थी। इन कविताओं के छपने के बाद हिंदी जगत में उनका व्यापक स्वागत हुआ। इन 4 कविताओं में पर्यावरण दिवस जून 5 के अवसर पर दैनिक अमर उजाला ने एक कविता नहीं बुलबुल के तराने अपने रविवारीय संस्करण में भी प्रकाशित किया था। तो जन कवि होने के नाते आलोक जी को काफ़ी सम्मान प्राप्त हुआ और नई पीढ़ी के लिए एक हस्ताक्षर बने। जन कवि के जनता की आवाज़ में जनता के लिए सृजन कार्य किया। भीगी हुई लड़कियां, जिला दिश, गोली दागो पोस्टर्स जैसे कई प्रासंगिक रचनाओं को लोगों ने काफ़ी जो है तवज्जो दी और सहज और सुलभ 2 शब्द इनके व्यक्तित्व की पहचान बनी। हर नुक्कड़ नाटक में धनवा उपस्थित होते थे और केवल उपस्थित नहीं, उसे बल भी देते थे। इस जन कवि के लिए कई ऐसे बड़े मंचों पर दोनों हाथ खोलकर स्वागत करते हैं। हालांकि बाखल धनवा उन्हें जनता के मंच पर रहना ही बेहतर लगता है। सलीके के जो पकड़ता जो है उनके अपने साथ रखने वाले आलोक जी बेहद संवेदनशील भी रहे। इनकी व्यक्तित्व, इनकी संवेदना व्यक्तित्व कतई नहीं रहा, लेकिन रचनाओं में सार्वजनिक संवेदना, सार्वजनिक मानव पीड़ा, पीड़ा का विरोध, मर्म और सब कुछ गहराई तक उतरता है, जो हमें स्पंदित भी नहीं आंदोलित भी करता है। तो पहला इनको जो सम्मान मिला इनके हिंदी जगत के काव्यों के लिए, पहला सम्मान नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान नई दिल्ली में इनको प्राप्त हुआ और भवानी प्रसाद मिश्रा स्मृति सम्मान भी इनको प्राप्त है। तो ये पटना निवासी आलोक दंदवा इन दिनों महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत भी है। तो ये थी कुछ खास बातें आलोक जी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, अवतार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे 1983 का, राजेश खन्ना शबाना आजमी पर पिक्चराइज किया गया था। किशोर दा का गाया, लक्ष्मीकांत पैरेलल का संगीत, बदगीत आनंद बख्शी साहब का लिखा ये गाना अभी आप सुन रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं आज, विशेष रूप से विद्या बिंदु सिंह। जी हाँ, ये लोक साहित्य के क्षेत्र में इनका नाम खास याद किया जाता है। ये भी कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, लोकगीत, हर विषय पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है, पर सबसे ज़्यादा उनको अवधी लोक साहित्य के लिए याद किया जाता है। विद्या बिंदु सिंह को सबसे ज़्यादा ख्याति लोक साहित्य में मिली। इसमें अवधी भाषा के लोकगीत, मुहावरे, राम से जुड़े कई ऐसे प्रासंग भी हैं जिनको सिर्फ कहा और सुना जाता है। साहित्य में उनका योगदान हेतु उन्हें पद्मश्री 2022 में मिला था। तो ये थी कुछ खास बातें विद्या बिंदु सिंह के बारे में। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो उनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार रमेश जी, और दर्शकों को नमस्कार। आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया बढ़िया
1: जी। जैसे अभी आपने गाना सुनवाया और जिन लेखकों के बारे में आपने बताया, तो यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगी कि सफलता के पीछे संघर्ष जरूर रहता है, ये तो आप मानते हैं ना, और हमारे श्रोता हैं ये भी इस बात को जरूर मानते होंगे। तो जो असफलता का मौसम होता है, तो सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है ये। अंडरस्टैंड? जब आप असफल होते हैं तो अपनी सफलता के लिए उस समय जो आपके थॉट्स होते हैं, जो आपके एक्शंस होते हैं, वो आगे आने वाली सफलता को जन्म देते हैं।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: जितने भी लोग हैं तलत, ये आपने जिनके गाने सुनवाए और ये आपके, ये अभी आपने विद्या बिंदु सिंह का बताया,
0: जी,
1: तो जितने भी हैं तो ऐसे नहीं तुरंत सफल हो गए। असफलता से कई लोग गुजरते हैं, कुछ के असफलता लंबी होती है, कुछ ही कम होती है। सफलता तभी मिलती है, एकदम कभी सफलता किसी को नहीं मिलती है। तो हम सफलता के बीज होते हैं, जब असफलता हम देखते हैं तो असफलता देख के निराश ना हो, बल्कि ये समझें कि इस समय जो भी हम करेंगे निश्चित रूप से आगे हमें सफल करेगा।
0: हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
0: फिरोज भाई, स्वागत है, ओम शांति, कैसे हैं आप?
2: जी जी जी, और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आपने जो पुराने पुराने गीत सुनाए, बहुत मजा आया ये।
0: हाँ हाँ, मोहम्मद अजीज जी के। जी,
2: तो इसका एक गीत सुनेगा, ये सुना सको तो सुना था आप
0: जी।
2: ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।
0: जी जी जी,
1: ये गीत आपको जरूर सुनवाएंगे, क्योंकि ये गीत मेरी बहुत पसंद का है।
0: ओम शांति,
1: ओम शांति,
0: ओम शांति। आप सुना है रेडियो 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। तो आइए एक 2 जुलाई के महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं थोड़ी देर में। और फिरोज जी ने बड़े प्यार से याद किया है गीत को, तो आइए सुनते हैं उनके गीत को। लेकिन उसके पहले आइए एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी,
3: नमस्कार सर। नमस्कार,
0: नमस्कार, बोलिए, कैसे हैं आप?
3: जी आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, गुरुवार भी है और गाने
0: जी
3: अच्छा
0: जी, जी।
3: और रोज भी अच्छा ही लगता है, और आज मोहम्मद अजीज को याद कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है। उनका भी एक गाना है, चलो तो मैं सबको जिनका भी जन्मदिन है इन सभी को नमस्कार, और आपके मेहमान बैठे हैं उनको भी नमस्कार है, और इनका भी जन्मदिन है सभी को नमस्कार।
0: बिल्कुल,
3: और
0: बिल्कुल।
3: गाने बड़े अच्छे सुना है और गाना थोड़ा है। मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। ये गाना मोहम्मद अजीज का है, मोहम्मद रफी के ऊपर है
0: जी, जी, जी।
3: ये गाना भी अच्छा, तो बहुत गाने हैं। कल तू चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, और बहुत सारे गाने हैं वगैरह।
0: ठीक है, ठीक है।
3: नमस्कार, ओम शांति,
0: ओम शांति, ओम शांति।
3: नवी किरण को और सभी को।
0: चलिए, तो मदन जी और उसके पहले फिरोज जी थे, तो उन्होंने बड़े प्यार से याद किया है। तो मोहम्मद रफ़ी का ये खूबसूरत गीत आप

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। जी हाँ, बड़े प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा करूँगा आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है। और मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत आपने सुना, लोफर इस एल्बम का ये गीत था जो अभी आप सुन रहे थे। और लक्ष्मीकांत पैरेलल का संगीत और इसे खास ए बीम सिंह ने डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के दिन की विशेष महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना पर जब 2 जुलाई 1306 में आक्रमण किया, तब वह दुर्ग कन्नड़ देव के भतीजे चौहान सरदार शीतल देव के अधिकार में था। 1985 में आज के दिन अंद्रोई ग्रोमिको सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1940 में आज के दिन ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1940 को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। और 2004 में आज के दिन भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के ने जाकर्ता में आपसी बातचीत की। और 2006 में आज के दिन इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान डेविड बेकम ने अपना पद छोड़ा था। तो ये थी कुछ खास बातें आज के दिन इतिहास के पन्नों से आपके लिए। आइए अब आगे बढ़ते हुए आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। और चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, 1893 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। किलिंदी चरण पानीग्रह बहुत ही पॉपुलर उड़ीसा कवि, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे। 1901 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय योगाचार्य थे स्वामी राम, इनका भी जन्मदिन आज है। 1925 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक आशा लता वाबंगावकर, 1941 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और लोक साहित्य के क्षेत्र में जाना माना नाम है विद्या बिंदु सिंह, 1945 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और प्रसिद्ध जानकी का जन कवि आलोक धनवा, 1948 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारत के बहुत ही पॉपुलर पार्श्व गायकों में से एक मोहम्मद अजीज़ का जन्मदिन भी आज है, 1954 में इनका जन्म हुआ था। तूफ़ानी सरोज 13वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे, तूफ़ानी सरोज, इनका भी जन्मदिन आज है। 1956 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और भारत के प्यारा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल वाई, 1983 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए आज के दिन जन्मे उन सारे लोगों को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

शेरी मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा। और सद गुरुवार का दिन है तो गुरु की आशीर्वाद आप पर बनी रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ। धन्यवाद।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? लाइक यस। तो मम्मा को बिल देता है तो मम्मा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मम्मा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मम्मा आपने वो छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मम्मा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देख कर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। तो मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इनडेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा।
0: अभी बजे हैं सुबह के 10। स्वयं को दें अभी 1 मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घनी सा। माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। सोचिए जरा सा, अचानक मूत्र रुक जाता है या कम आता है तो सोचिए क्या करेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे। और जी हाँ, तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन छोड़ता है। आज बनाएंगे आशियाना के किचन में, अभी आपको बता दूंगी तो सस्पेंस कुछ रहेगा ही नहीं, बहुत ही सुंदर रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ आलू की। अब आलू की इसके आगे क्या सिखाऊंगी वो जरा अनुमान लगा करके आप जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। और प्रश्न भी बहुत ही सुंदर पूछने वाली हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: ब्रह्माकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे, एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक पापी इंसान मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था। लोग वहां काफी संख्या में इकट्ठे हो गए। वहीं पर एक महापुरुष आ गए। पास खड़े लोगों ने महापुरुष से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बताइए जिससे ये पीड़ा से मुक्त होकर के प्राण त्याग दे और ज्यादा पीड़ा नहीं भोगनी पड़े। महापुरुष ने बताया कि अगर जन्नत की मिट्टी लाकर इसको तिलक किया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर सभी चुप हो गए। अब जन्नत की मिट्टी भला कहां से आए और कैसे लाए? महापुरुष की बात सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और थोड़ी देर में लौट आया जन्नत की मिट्टी लेकर के मुट्ठी के अंदर और बोला, ये लो जन्नत की मिट्टी, इसे तिलक कर दो। बच्चे की बात सुनकर के एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस आदमी को जैसे ही तिलक किया, कुछ ही क्षण में वो आदमी पीड़ा से एकदम मुक्त हो गया। ये चमत्कार देख करके सब हैरान थे क्योंकि जन्नत की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है भला, और वो भी एक छोटा सा बच्चा, हो ही नहीं सकता। महापुरुष ने बच्चे से पूछा, बेटा ये मिट्टी तुम कहाँ से लेकर आए हो? पृथ्वी लोक पे कौन सा जन्नत है जहां से तुम कुछ ही पल में ये मिट्टी ले आए? लड़का बोला, बाबा जी एक दिन हमारे स्कूल की टीचर ने बताया था कि माँ के चरणों में सबसे बड़ा जन्नत है, उसके चरणों की धूल से बढ़कर दूसरा कोई जन्नत नहीं, इसलिए मैं ये मिट्टी अपनी माँ के चरणों के नीचे से लेकर के आया हूँ। बच्चे के मुंह से जब ये बात सुनी तो महापुरुष बोले, बिल्कुल बेटे, माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत हो ही नहीं सकता, और जिस औलाद की वजह से माँ की आंखों में आंसू आए ऐसी औलाद को नरक इस जहां में ही भोगना पड़ता है। प्यारे श्रोता बंधु, अब आप समझ गए होंगे कि माँ की जन्नत से बढ़कर दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी रुपया पैसा जमा कर ले, आसमां की ऊंचाइयों को क्यों ना छू ले, जब तक आपकी वजह से माँ खुश नहीं है तब तक वो भगवान भी आपसे खुश नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, तीर्थ यात्रा कर लीजिए, तभी माँ की महिमा इतनी गाई जाती है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे, और आइए सुनेंगे बहुत ही सुंदर गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

ओम शांति। मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे। अगर किसी भी कारण से मूत्र रुक गया हो या फिर रह रह करके आता हो तो आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे दे रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। रात में तांबे के बर्तन में पानी भर करके रखिए और इसको सुबह पीजिए, इससे लाभ मिलेगा। लगभग ऐसा सभी करते होंगे क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं इस पानी के। फिर भी ये मूत्र में भी फायदा करता है कि रात को आप तांबे के लोटे में पानी भर के रख दीजिए और इसको सुबह पीजिए नन्हे कोटे, तो फिर इससे मूत्र खुल करके आएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा नुस्खा भी आपको बहुत ही अच्छा दे रही हूँ कि भोजन के साथ छाछ को जरूर शामिल करिए। छाछ में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिए, ठीक है, गाढ़ी गाढ़ी छाछ मत पीजिए। थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल करके इसको पतली कर दीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया मिला दीजिए, फिर पीजिएगा इसको, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अगला नुस्खा भी बहुत ही सुंदर है कि 2 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री दोनों को पीस करके ठंडे जल के साथ फाकी लीजिए। इससे रुका हुआ मूत्र खुल जाएगा और अगर मूत्र की वजह से जलन भी आती हो तो मिट जाएगी। कितनी बार जलन होती है ना, तो जलन भी ठीक हो जाएगी। ऐसी मात्रा दिन में 3 बार लेनी है, ठीक है। 2 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री दोनों को पीसिए। पीस करके आप, मतलब इकट्ठा पीस करके भी आप रख सकते हैं इस तरह, जो मैंने मात्रा बताई ना, तो इसको बढ़ा दीजिए और एक कांच की बोतल में भर दीजिए। फिर इस तरह की समस्या हो ना तो फिर आप थोड़ा सा ले लीजिए। मात्रा यही है 2 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री। ज़्यादा पीस रहे हैं तो भी इस अंदाज से पीसना। फिर इतना सा ले करके आप जल के साथ, नॉर्मल सादा पानी के साथ आप फाकी ले लीजिए। इससे रुका हुआ मूत्र आ जाएगा खुल करके और अगर मूत्र की वजह से जलन हो रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी। और लास्ट नुस्खा ध्यान से सुनेंगे। एरंडी का तेल 25 से 50 ग्राम तक गर्म पानी में मिला करके पीजिए। 15-20 मिनट में ही मूत्र खुल करके आ जाएगा। जब हर प्रकार से हार जाओ ना और कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है तो ये उपाय ज़रूर काम करेगा और 15-20 मिनट में ही खुल करके बाथरूम आ जाएगा। फिर से दोहरा रही हूँ, एरंडी के तेल आप लीजिए, जिसको हम कस्टर ऑयल भी कहते हैं, 25 से 50 ग्राम तक गर्म पानी में मिलाकर पीजिए, ठीक है। 25 से 50 ग्राम की मात्रा में एरंडी का तेल लेकर के गर्म पानी में मिला दीजिए और इसको आप पी जाइए। 15-20 मिनट में देखिए आप, आराम मिल जाएगा, मूत्र खुल करके आएगा और ये नुस्खा बहुत ही सटीक है। तो ये जो नुस्खे आपको सुनाए हैं ज़रूर आप आजमा सकते हो। अगर मूत्र होता है कभी कभी अचानक कि मूत्र या तो कम आना शुरू हो जाता है या फिर एकदम बंद हो जाता है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप हॉस्पिटल मत जाइए, वहाँ पर ज़रूर जाइए, लेकिन शुरुआत में सभी घर के नुस्खे ही आजमाने की कोशिश करते हैं। फिर हॉस्पिटल जाते तो जो भी है खैर, पर इन नुस्खों को आप फॉलो कर सकते हो। और आज का प्रश्न पूछ रही हूँ, बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए अकेली महिला की सुरक्षा के लिए आपके आसपास वृद्धा आश्रम या फिर नारी निकेतन है तो हाँ करिए, नहीं है तो ना करिए, ठीक है। अकेली महिला है, असुरक्षित है, उसकी सुरक्षा के लिए आपके आसपास वृद्धा आश्रम है, आपके गाँव के आसपास या फिर नारी निकेतन है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर। पुनः सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं, नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना मेरे प्यारे श्रोता बंधु।

0: रुक, ओए रुक, ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो है?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आज किसी ने अनुमान नहीं लगाया कि मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा हिंट तो मैंने दिया ही था कि भाई आलू की। अब आलू की के इसके आगे क्या है वो आपने जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, आलू की पेटीज बना देते हैं फटाफट, ठीक है ना? पसंद है सभी को? चलिए, क्यों नहीं पसंद आएगी भाई, वैरायटी खाना बनना चाहिए ना। एक जैसा खाना रोज बनाएंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे, बड़े बोर हो जाएंगे, फिर परिवार के अन्य सदस्य भी कहेंगे अरे क्या रोज रोज ये का ये। तो फिर आपको थोड़ा सा वैरायटी प्रकार के सिखाते हैं। तो आलू की पेटीज के लिए पहले मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, उसके बाद बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी। तो आधा किलो ले लीजिए आलू, आधा किलो बोले तो 500 ग्राम, ठीक है। फिर आप लीजिए 15-20 काजू, और हरा धनिया आवश्यकता के अनुसार लेना है, खसखस 2 छोटे चम्मच, और थोड़े से लीजिएगा ब्रेड क्रम, थोड़ी सी अदरक लेनी है, फिर 2 ब्रेड की स्लाइस ले लीजिए, 20 या फिर 10-15 किशमिश ले लीजिए। देखिए आपको लेने कहीं जाना नहीं है, घर में है तो काजू और किशमिश लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं चला लीजिए, ठीक है। फिर 2 चम्मच सौंफ, कटी हुई हरी मिर्च ले सकते हैं आप आवश्यकता के अनुसार, मतलब 2-1 ले लीजिए, नमक स्वाद के अनुसार लीजिए, 150 ग्राम मटर लेना है, और आधा लीजिए नारियल, आधा चम्मच गरम मसाला, चुटकी भर शक्कर। ये हो गई आलू की पेटीज की सामग्री, जिसको फिर से दोहरा रही हूँ। 500 ग्राम आलू ले लीजिए, 500 ग्राम बोले तो आधा किलो, 10-15 काजू अगर घर में है तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, नहीं तो 10-15 हो तो 10-15, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर वो कहते हैं ना कि जितना डालो उतना ही टेस्ट बढ़ता है, ड्राई फ्रूट्स हो मसाले हो। हरा धनिया आवश्यकता के अनुसार लीजिए, हरी मिर्च ले लीजिए 2-3, 2 चम्मच खसखस लेना है, थोड़ा सा ब्रेड क्रम ले लीजिए, और थोड़ी सी अदरक लेनी है, फिर 2 ब्रेड की स्लाइस लेनी है, 10-15 किशमिश ले लीजिए, 2 चम्मच सौंफ लेनी है, और नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, 150 ग्राम मटर लेना है, आधा नारियल ले लीजिए, आधा चम्मच ही गरम मसाला लेना है, और चुटकी भर लेने हैं आपको शक्कर, ठीक है। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए हम गीत सुनाएंगे। परंतु आज के प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो। देखिए प्रश्न सिंपल सा है कि महिला की सुरक्षा के लिए आपके गांव के आसपास कहीं पर वृद्धा आश्रम है, नारी निकेतन है तो हाँ कर दीजिए फोन करके, और नहीं है तो भी आप ना कर सकते हो फोन करके, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका रेडियो से जुड़ाव रहेगा, रेडियो से जुड़ते रहेंगे तो हमको भी लगेगा कि हमारे कौन कौन श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक तो है ठीक नहीं है। हम भी चाहते हैं ना कि हमारे सभी श्रोता बंधु स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो कभी कभी फोन करके अपनी आवाज़ सुना दीजिएगा। बहुत लंबा समय निकल जाता है तो लगता है कि अरे क्या हुआ होगा, उनका फ़ोन क्यों नहीं आया। परिवार में भी ऐसा ही होता है ना, अपने रिश्तेदारों का फ़ोन नहीं आता है, बहुत समय बीत जाता है, तो हम क्या करते हैं, खुद करते हैं ना। अब यहाँ पर तो देखिए हम खुद तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये रूल्स नहीं है, रूल्स बोले तो हमारे पास नंबर भी नहीं होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि अरे हमारे श्रोता बंधु सभी स्वस्थ और अच्छे हैं। तो ठीक है, चलिए अभी तो सुनेंगे एक गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो, और आशियाना के किचन में बन रहा है ताजा ताजा आलू की पैटीज। तो सामग्री आप सभी लिख चुके होंगे, फिर भी एक नज़र डाल दीजिएगा अपनी डायरी में। आलू, काजू, हरा धनिया, खसखस, ब्रेड क्रम। अब ब्रेड क्रम किसको कहते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, कि जो सूखे ब्रेड होते हैं ना, उसका पाउडर कर दीजिए, उसको ब्रेड क्रम कहते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी सी अदरक, ब्रेड की स्लाइस, किशमिश, सौंफ, हरी मिर्च, नमक, मटर, नारियल, गरम मसाला और शक्कर। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ब्रेड को पानी में भिगो करके निचोड़ लीजिए और नमक आलू के साथ मिक्स कर दीजिए। फिर भरने के लिए थोड़ा सा मटर को दरदरा कर लीजिए, काजू को तल लेना है, मटर को मिला करके धीमी आँच में तलिए, और फिर सौंफ, मिर्च, अदरक, किशमिश, खसखस, इन सब को मिला लेना है। फिर गैस से नीचे उतार दीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़िए। ठीक है, इसमें चीनी भी डाल दीजिए, गरम मसाला भी मिला दीजिए। फिर इस मसाले को ठंडा होने दीजिए। अब आप आलू की छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लीजिए। आलू मैंने शायद सामग्री में बोला था ना, सबसे पहले आधा किलो आलू जिसको उबाल लेना है, उबाल करके उसके छिलके निकाल देने, हरा धनिया साफ करके रख देना है, हरी मिर्च को भी कतर देना है। ठीक है, अब आप गैस से नीचे उतार दीजिए, आलू की छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लीजिए, फिर मसाला भर करके चपटी कर लीजिए। ठीक है, और ब्रेड क्रम से लगा करके दोनों तरफ से तवे पर घी डाल करके फ्राई करिए, फिर इसको चटनी के साथ पिरसिए। तो ये बन गए आलू की पेटीज। फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बनाने का तरीका मुश्किल नहीं है, बस खाली ध्यान से सुनिएगा कि ब्रेड को पानी में भिगो करके निचोड़ लीजिए। ठीक है, फिर नमक, उबले हुए आलू, इन सभी को अच्छी तरह मैश कर दीजिए और मिक्स करना है ब्रेड के साथ। भरने के लिए थोड़ा सा मटर को भी आप दरदरा कर लीजिए। अगर सूखे मटर को भिगा रहे हो तो आप सुबह बनाते हो तो रात को भिगोइए, शाम को बनाते हो तो सुबह भिगोइए, फिर इसको दरदरा करिए। ठीक है, और काजू को तल लीजिए। फिर मटर अलग ही रखना है आपको दरदरा करके, और धीमी आंच पर इसको फ्राई करना है। फिर इसमें ही, जब मटर फ्राई हो जाए तो फिर इसमें ही सौंफ, हरी मिर्च, अदरक, किशमिश, खसखस, इन सब को मिला देना है और गैस बंद कर देना है। फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ दीजिए, फिर हरा धनिया डाल दीजिए, चीनी भी डाल दीजिए और गरम मसाला भी मिला दीजिए, अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें ये अपने आलू और ब्रेड का जो मिक्स कर रखा है ना, दोनों को इसमें ये सारा मसाला मिक्स करिए, अच्छी तरह मिक्स करके इनकी टिक्कियाँ बना लीजिए। बना करके अब आप मसाला इसमें भर दिया आपने, आलू की जो मतलब छोटी टिक्कियाँ बना लीजिए और मसाला भर करके चपटा करिए इसको, और इसके ऊपर आपको ब्रेड क्रम लगाना है। आप दोनों स्थिति में बना सकते हो, या तो सारे मसाले मिक्स करके फिर ब्रेड क्रम में आपको टिक्कियाँ बना करके चारों तरफ से लपेटना है, उसके बाद आपको सेकना है घी में, फिर चटनी के साथ खा सकते हो, या फिर मसाले को आप एक तरफ रहने दो और आलू बॉईल किए हुए जिनके हमने ब्रेड और आलू को मिक्स कर रखा है हल्का सा नमक डाल करके, इनको चौड़ा करिए, इसमें मसाला भरिए, फिर इसको एक टिक्किया की तरह बनाइए और चपटा करके, और फिर ब्रेड क्रम में आप मिक्स करिए, मतलब चारों तरफ से लपेटिए, उसके बाद तलिए, जैसा आपको भावे वैसा करिए। ठीक है, तो इस तरह आलू की पेटीज बनाई जाती है। अब ये चटनी के साथ आप पिरस सकते हो। तो चलिए, चटनी तैयार है, आपने जरूर करी होगी ना, चटनी आपने बना ली होगी, आलू की पेटीज हमने तैयार कर ली है। तो लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप ये सभी सामग्री रखिए, और भी आपने कुछ बनाया हो तो वो भी रख दीजिएगा, और तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए। ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगा सकते हो। उसके बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा आलू की पेटीज का। हेलो
2: हेलो बहन जी।
1: हाँ जी कंचन भाई, नमस्कार जी, बोलिए।
2: नमस्कार। आपने जो आचार बनाना सिखाया था ना आगे
1: जी,
2: कैरी का आचार जो बनाना सिखाया था, तो मेरी बेटी ने, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था
1: जी,
2: और मेरी बेटी ने इस साल बनाया, तो थोड़ी गलती रहती थी, हर साल बनाते थे
1: जी,
2: लेकिन इसमें तेल आपने बोला था ना
1: जी,
2: सरसों का तेल बोला
1: हाँ
2: था
1: जी, हाँ जी, हाँ जी,
2: हाँ, वो इस साल डाला है। हर साल सिंह तेल और तिरुपति का तेल ऐसा डालते थे
1: जी, तो जी जी,
2: इस साल आपने बोला था कि सरसों का तेल में
1: जी जी जी जी,
2: तो ये किया है इसने और बहुत अच्छा बना है।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। अचार बनाना हो तो सरसों के तेल में ही बनाइएगा, इसका टेस्ट एक अलग ही प्रकार से बहुत ही अच्छा आता है।
2: तो हाँ जी, बहन जी,
1: अच्छा बनाना अचार।
2: हाँ बहुत अच्छा बना है बहन जी।
1: पहला
2: क्या रहता था, तो थोड़ा दूसरा तेल था तो थोड़ा नहीं रहता था
1: जी जी, वो अचार का वो जो स्वाद, जो सुगंध, जो टेस्ट, वो नहीं बैठता दूसरे तेल से जी,
2: वो नहीं रहता
1: जी। चलिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जरूर आपकी बेटी को भी याद करिएगा, मुबारक दीजिएगा कि चलो रेसिपी को फॉलो किया उन्होंने।
2: हाँ इसको मैं जुड़ता हूँ बहन जी, लेकिन कोई काम में बिजी रहती है ना
1: जी जी,
2: तो वो बोलती थी कि हम आने वाले हैं वहाँ।
1: जरूर पधारिए, स्वागत आपका।
2: माउंट आबू जाना है तो हम जरूर आए थे।
1: जरूर जरूर,
2: मेरे जमाई बेटी को लेके आऊंगा मैं साथ में।
1: क्या बात है, स्वागत आपका। जी जी, बहुत बहुत आभार। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज का कार्यक्रम तो काफ़ी अच्छा रहा है। आपको विचार भी, हमारे श्रोता बंधुओं के फ़ोन भी आए थे, विचार बहुत पसंद आया है कि वे माँ के चरणों में जन्नत होती है। कहीं पर भी ढूंढ लो, भले चारों धाम कर लो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। और आपको नुस्खे भी बहुत अच्छे दिए हैं, तो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। खुशनुमा जीवन की भी बातें अच्छी हुई है, तो रेसिपी में भी आपको आलू की पेटीज बनाना सिखाया है, आप बना सकते हो। अगर कभी गेस्ट घर पर आ गए तो एक अच्छा आइटम है, बना करके उनको खिला सकते हो। और आज का प्रश्न था कि महिलाओं की, मतलब अकेली महिला की सुरक्षा के लिए आपके गाँव के आसपास कहीं पर नारी निकेतन है या फिर वृद्धाश्रम है, तो जवाब दिया है बहुत सारा। जैसे कि विषय भी बहुत अच्छा था ना, कि भाई जीवन में तूफान आना भी ज़रूरी है ताकि पता चले कि कौन अपना और कौन पराया, तो इसमें भी चर्चा में भाग लिया है। नाम बताना चाहूँगी सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, उन्होंने कहा कि हमारे पिंडवाड़ा में नहीं है वृद्धाश्रम और नारी निकेतन, लेकिन उन्होंने खुशनुमा जीवन में बहुत ही अच्छी अपनी राय व्यक्त की है। फिर मोहन जी कुमावत आबू रोड से, उन्होंने कहा है कि आबू में है वृद्धाश्रम, लेकिन महिलाओं को नहीं रखा जाता है, पुरुषों को रखा जाता है। अभी ये वापस खुल गया हो तो पता नहीं, पहले हम एक बार जा करके आए थे तब वहाँ पर कोई नहीं थे। और पीयूष भाई ठाकुर भगवानपुरा से, आपने भी फ़ोन करके कुछ जानकारियाँ ली थी। और सुरेश भाई झोटाना से, आपने कहा कि हमारे गांव के आसपास तो नहीं है, लेकिन मेहसाना में है वृद्धाश्रम है, वहाँ पर स्त्री और पुरुष मतलब दोनों के लिए है, तो अच्छी बात है। और कंचन भाई मंडाली से आपका भी फोन आया है, आपने कहा हमारे गांव के आसपास नहीं है, और विषय में अच्छी आपने अपनी राय व्यक्त की है। और अभी उनका फ़ोन फिर से आया कि भाई उनकी बेटी ने जो अचार आशियाना में सिखाया, बना कर सभी को खिलाया, बहुत ही स्वादिष्ट बना। तो चलिए इसके ऊपर तो वही तालियां बजनी ही चाहिए कि रेडियो मधुबन को फॉलो किया है। और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के लिए भी तालियां की प्रश्न का जवाब, भाई है तो है वृद्धाश्रम और नारी निकेतन, नहीं है तो नहीं है, विषय में भी भाग लिया, इसके लिए भी शुक्रिया। और अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे किसमें, अंताक्षरी कार्यक्रम में। शनिवार है ना, तैयार रहिएगा अंताक्षरी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। किसी के काम जो आए उसे इंसान

सूजन है कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।

उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यो भरने

इंसान का दिल है वे नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752 ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहाँ हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में जागृति इस कार्यक्रम में, जिसमें हम महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें कैसे मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक विषय है लव मैरिज,

0: सही भी होता है, कई बार गलत भी हो जाता है। लड़कियां कई बार गलत डिसीज़न ले लेती है तो उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, और उसके बाद वह अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में बताना चाहती हैं, पर उन्हें पता भी होता है कि हमने ये गलत किया है, हम कैसे बताएं। उन्हें ना तो अपने पार्टनर का सहयोग मिलता है ना परिवार का, तो कई बार वह इससे भी गलत डिसीज़न ले लेती है, जैसे कि आत्महत्या करने का। तो ऐसे में हम परिवार में एक दूसरे का सहयोग कैसे करें, हम अपने बच्चों को कैसे सही राह दिखाएं, हम उनको कैसे सही गलत की पहचान कराएं, तो आज ऐसी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंजलि जी, आप एक काउंसलर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिलेशनशिप कोच भी है। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन जागृति इस कार्यक्रम में।
1: जी थैंक यू, थैंक यू
0: जी। अंजलि जी, तो इस बार इन्हीं सवालों के साथ मैं एक और सवाल करना चाहूंगी अंजलि जी आपसे, इसी विषय पर कि बच्चों के मन में जो प्यार फीलिंग्स होते हैं, और इसमें पेरेंट्स को जब पता चलता है कि हमारे बच्चे इस लड़के को पसंद करते हैं और ऐसा हमारे घर का माहौल हो रहा है, तो वैसे में पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे समझाए और कैसे उनका दिल ना टूटे, तो उसमें पेरेंट्स की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो इस बारे में अंजलि जी आप थोड़ा बताइए।
1: जी पवन जी, बहुत कि ऐसा आपने प्रश्न पूछा है जो प्रश्न बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे दोनों के बीच में दूरियां लाने का कारण बनता है। यही एक समय होता है जहां बच्चों को अपने माता पिता के साथ का सपोर्ट का, इमोशनल बॉन्डिंग का, साथ ही साथ एक फ्रेंडलीनेस का उन्हें अपेक्षा होती है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझ पाएंगे और हमारी मदद कर पाएंगे। और जबकि वो ऐसी स्थिति में होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट में होते हैं, फिजिकल इमोशनल चेंजेस के स्टेट में होते हैं, जहाँ अट्रैक्शन की शुरुआत होती है, और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये हार्मोनल चेंजेस इतने पीक लेवल पे होते हैं कि उनको रोक पाना उनके लिए मुश्किल होता है, और वो ले जाता है अपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन की ओर, और वो रोक मानते हैं गॉड की तरफ से ही है कि गर्ल्स फॉर लाइक टुवर्ड्स बॉयज एंड बॉयज टुवर्ड्स गर्ल्स। तो ऐसी स्थितियां आने पर पेरेंट्स का समझदारी से काम लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो पेरेंट्स को उस समय एकदम से इतना रिएक्ट ना करके तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं। जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है अच्छा मेरी बेटी एक मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है या उसे प्यार कर रही है, कैसे हो सकता है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुस्लिम कैसे हो सकता है, पता चलते ही वो तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं, और रिएक्ट करने के साथ साथ कहने को या करने को तैयार हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उन्हें अपने जो एक बाउंड्री लाइन है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि बच्चे को हो सकता है मारपीट करना शुरू कर दें, अब्यूज करना शुरू कर दें, और बुरी तरह से इंसल्ट करना शुरू कर दें, और क्रिटिसाइज हॉस्टाइल होकर के बच्चे को एक तरह से अपने ये जो बिहेवियर कर रहे हैं वो सोचते हैं कि ये हमने इनको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है या हम इतना पैसा इस पर खर्च कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कहते हैं समझदारी की आवश्यकता होती है पेरेंट्स को कि जो चीजें हो रही है वो हो रही है ये और होती भी रहेंगी, ये एकदम से रिएक्ट करने से खत्म नहीं हो जाएंगी, और हो सकता है हम एकदम से रिएक्ट करते हैं तो वो हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो बहुत समझदारी की आवश्यकता होती है, बात पता चली है हमें समझ लेना है कि मेरा बच्चा जो है डाइवर्ट हो गया है, ये उसकी एज का कह लीजिए या जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं एक दूसरे को किस तरह से अट्रैक्ट करके अपने उसमें चक्रव्यूह में कैसे ले आते हैं, डाइवर्ट करा देते हैं, फ्रेंड सर्कल का पीयर्स का क्या असर हो रहा है, किस प्रकार से हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पवन जी, लेकिन रीजंस जो भी हो रहे हैं यहाँ पर मेन यहाँ पर है कि हमें अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने देना है, और कैसे उस तक ये बात पहुंचानी है कि जो वो कर रहे हैं वो उनके लिए कितना ये फ्रूटफुल है और कितना ये फ्रूटफुल नहीं है, जो चीजें उनके साथ कर रहे हैं उनके भविष्य के लिए कितना बेहतर है और कितना बेहतर नहीं रहेगा। तो ये पेरेंट्स को समझने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी रिएक्ट ना करें और उसे सोच समझ के

0: एक्टिव रिस्पॉन्स के लिए अपने आप को पेरेंट्स के साथ आपस में डिस्कस करके कि हमें बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, उस तरह से चीजें ना होने दें, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये मैं पहले नंबर पे ये बोलना चाहूंगी, और दूसरे नंबर पे ये बोलना चाहूंगी कि बच्चा जो है वो कुछ सुनना नहीं चाहता, वो ये समझता है कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ मैं सही हूँ। वो प्रैक्टिकल चीजों पर जो है वो विश्वास करता है। जैसा कि मैं अभी आपको बताना चाह रही थी कि बच्चे के साथ कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का होना, अब पेरेंट्स का बच्चे के साथ एक रैपो एस्टैब्लिश करना, हर समय बच्चे की कमियां ना ढूंढना, क्रिटिसाइज ना करना, और समझ में आ भी रहा है ये बच्चा जो है ये रात भर फोन में बातें करता है छुपा छुपा के रजाई में, एक बिल्लिया है समझ भी आ रहा है, तो उसको अपने साथ बिठाना कि आओ चलो मेरे पास बैठो आ करके, हमें हम अपने बारे में बताते हैं कि हम जब पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, हम जब पढ़ते तो हमारे साथ क्या होता था, हमारे साथ भी यही चीजें चेंजेस हमारी लाइफ में भी होते थे, हमारे साथ भी फ्रेंड्स का इफेक्ट आता था, सारी चीजों का हमारे साथ भी ऐसा होता था, यानी कि जस्ट शेयर योर ओन स्टोरी। और जैसे ही आप अपनी स्टोरी आप शेयर करना शुरू करते हैं बच्चे के साथ, तो बच्चा अपने आप को रिलेट करना शुरू कर देता है, और रिलेट करते करते वो किस होश में कह जाता है कि पापा मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है या मम्मी मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो वो ओपन अप हो पाता है। लेकिन हम ओपन अप होने ही नहीं देते हैं, हमें पता चला और हमने सीधा उस पे चिल्लाना शुरू कर दिया, बरसना शुरू कर दिया, उसको डांटना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया, ये हमारा रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो पवन जी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मैं कहने के लिए, लेकिन शायद मुझे लगता है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा।
1: बच्चे जब भी अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि उनके मन में ये चीज हो रही है, तो आपने बताया कि वो रिएक्ट ऐसा करते हैं, वो अपने बच्चों पे चिल्लाते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं। इन कारणों में बच्चे कई बार ऐसी चीजें बताते भी नहीं अपने पेरेंट्स को,
0: बिल्कुल
1: छुपा कर रखते हैं। छुपाने के कारण उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है अपने पेरेंट्स को ना बताने के कारण।
0: बहुत कुछ बहुत कुछ।
1: तो अगर पेरेंट्स उनका सपोर्ट करे, उनको समझाए,
0: समझे,
1: उनको
0: उनको समझे, उनको
1: समझे,
0: समझे
1: तो
0: इमोशनल।
1: हाँ, तो शायद बच्चे समझ सकते हैं। अब यही चीज है कि बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना, उनको सही राह दिखाना, वो पेरेंट्स का फर्ज होता है। और पेरेंट्स उनको डरा धमका, पहले से ही बच्चों के साथ वो रिएक्ट ऐसा करते हैं कि बच्चे डरते हैं कि हम अगर ये चीज बताएंगे तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ कैसा बिहेव करेंगे। तो वो
0: जी
1: चीज बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते नहीं है।
0: जी
1: जी अंजलि जी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत डिसीजन लेने के बाद जब अपने पेरेंट्स को बताते हैं तो पेरेंट्स मना कर देते हैं कि हम नहीं जानते, तुम तुम्हारा जानो, अब तुमने जो भी कर लिया है, परिवार में नाक कटा ली है, जो भी मतलब बच्चों पर जो भी इल्जाम लगाते, एक तो जहां उन्होंने गलती करी है वो भुगत रहे, उसके बाद उन्हें
0: बोलो
1: जो पेरेंट्स से सुनना पड़ता है वो अलग होता है। तो ऐसे में अगर बच्चे गलती कर भी लेते हैं तो पेरेंट्स उनको सही राह कैसे बतावे, उनकी सहायता कैसे करे, तो ऐसे पेरेंट्स या बच्चों को आप कुछ बताना या कुछ राय देना चाहेगी?
0: तो बहुत जरूरी है बच्चों को ऐसे समय पे, इमोशनल क्राइसिस के समय पे बच्चों को डील करना, क्योंकि बच्चे जो है ये एक्सप्लोर करना, इनके अंदर एक बहुत बड़ा जुनून आ जाता है हर चीज का एक्सप्लोरेशन। तो नशा हो तो भी उसका एक्सप्लोर करना है कि नशा कैसे लेना है, कैसे लिया जाता है, उसका क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले ये कि वो एक्सप्लोर करते हैं, फिर इसी प्रकार से जो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, रेजिस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन, तो सेक्स हार्मोन्स का, तो उसका भी वो एक्सप्लोरेशन होता है कि क्या होता है, बच्चे कहाँ से होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, क्या तरीका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या तरीका है, फिर लव एंड किस, जैसे फर्स्ट, जैसे इन्फेचुएशन, फैचुएशन क्या है, पेरेंट्स की चीजों को भी वो कभी कभी ऐसी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं जो उसका भी उनके ऊपर ऐसा इफेक्ट आता है। तो इसमें पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं तो पेरेंट्स को अपने बिहेवियर पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनका बिहेवियर कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोवोकेटिव हो जाए बच्चों के लिए और उस पर गलत असर डालता हो, नंबर एक। नंबर दो है कि जो है पेरेंट बच्चे जो हैं अगर इस तरीके की चीजें इनके साथ हो रही हैं और ये अगर अपने चीजों को बता नहीं रहे हैं तो मिसगाइडेड हो सकते हैं और इनकी लाइफ कहीं भी किसी भी रिस्क में पहुंच सकती है। तो अपने परिवार में जरूरी नहीं है माँ हो पिता हो, अपने परिवार में कजन्स होते हैं, अपने परिवार में अपने अंकल्स होते हैं, बुआ होती हैं या मामा मासी होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो उनके साथ अपनी बात को कि मम्मी या मुझे डर लग रहा है मम्मी को बताना, आप ऐसे शेयर कर दो ऐसा ऐसा होता है। और माँ बाप को भी इस चीज को समझना चाहिए कि ये एज है, कुछ भी ऐसा हो होने के चांसेस बच्चे के साथ हैं, तो हम पहले से ही बच्चे को इस कुछ जानकारी दे करके हमें रखनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, छोटा बच्चा है 6 साल का 5 साल का, अभी तो जो ये हमारे अर्बन सिटीज में वहां पे गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी जाती है, स्कूल
1: जी
0: कॉलेजेस में भी दी
1: जी
0: जाती है
1: हाँ
0: और
1: जी
0: पेरेंट्स भी
1: जी
0: देते हैं, है
1: जी
0: ना। लेकिन जो तो रूरल एरियाज हैं, सेमी अर्बन एरियाज हैं, अभी भी माँ बाप जानते नहीं गुड टच बैड टच बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए पेरेंट
1: जी
0: बच्चों को। तो अपने ही घर के लोग हैं वो बैड टच कर रहे हैं, अब बच्चा दब रहा है डर रहा है और जाना नहीं चाह रहा है उसके पास, लेकिन माँ बाप समझ नहीं रहे और माँ बाप उसी के पास बार बार भेज रहे हैं, जाओ चाचा के ये दे कर आओ, जाओ मामा को ये दे कर आओ, जाओ ये करके आओ। एंड बच्चा वो जाना नहीं चाह रहा बट आप उसको जाने दे रहे हो एंड नहीं समझ पा रहे हो कि बच्चा मना क्यों कर रहा है, जाने से मना क्यों कर रहा है ऊपर से, और उसको डांट रहे हो। तुम हमेशा ऐसे ही करते रहते हो, मना करते हो, तुम बात नहीं सुनते हो, तुम ये नहीं करते हो या करती हो। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर ऐसा बच्चा कर रहा है तो इसका रीजन समझने की कोशिश करनी चाहिए, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, इसका क्या रीजन है। और नहीं भी रीजन आप समझ रहे हैं तो भी बच्चा जैसे ही बड़ा होना शुरू हो जाता है 4 साल 5 साल, समझदार जैसे ही आना होना शुरू हो जाता है, तो उसको ये एजुकेशन देनी आवश्यक है कि आप बच्चे आना शुरू कर दें कि क्या ये टच किस प्रकार के टच होते हैं जो अच्छे टच माने जाते हैं, किस प्रकार के टच होते हैं जो बुरे टच माने जाते हैं। तो इन टचेस का बताना ये बहुत जरूरी है। दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताना ये बहुत जरूरी है। तीसरा अट्रैक्शन के बारे में धीमे धीमे, कहते हैं धीमे धीमे नॉलेज को इम्पार्ट करना, एकदम से बम्बार्डम करके भी नहीं कि एक साथ सारी चीजों की जानकारी देना, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी बच्चे को देते रहने से क्या होता है, बच्चे को समझ में आता है कि मेरे माँ है जो मेरी पिता है ये कितना हमें समझ रहे हैं।
1: जी
0: हाँ, और जो भी कुछ वो करेंगे वो अपने मम्मी पापा को जरूर बताएंगे, देखो पापा मेरे साथ ऐसा है भैया, मैं इस लड़के जैसे मैं बहुत बातें करती हूँ, इस लड़की से मैं बहुत बातें करता हूँ। तो इस तरीके की चीजें, इतना तक छूट मिलनी चाहिए कि बच्चा अपनी बातों को पेरेंट्स को शेयर कर सके।
1: जब बच्चे डिसीजन ले लेते हैं, गलत कदम उठा भी लेते हैं और अपने पेरेंट्स को इस चीज के बारे में बताते हैं कि हमने ऐसा कर लिया है, हमने शादी कर ली या लव मैरिज जो भी, उसके बाद भी पेरेंट्स जब वो मना करते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते थे, मना किया था, उसके बाद भी तुमने ऐसा कदम उठाया, तो इस चीज में पेरेंट्स को उनको कैसे समझाना चाहिए और कैसे उनको अपनापन दिखाना चाहिए?
0: सही बात है कि बच्चे घर वालों से छुपा के शादी करने का स्टेप उठा लेते हैं और ये बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि वो स्टेप उनका कितना समझदारी वाला है ये उस बात को नहीं समझते, क्योंकि वो इमोशनली डिसीजन लेते हैं, एक
1: और
0: तरफा
1: उसके बाद
0: डिसीजन
1: उन्हें
0: लेते हैं।
1: एहसास होता है कि हमने गलती करी, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि हमने जिसे शादी करी वो लड़का प्रेम करता था या क्या करता, उसके बाद उनको एहसास होता है कि हमने जो भी किया गलत किया। पेरेंट्स भी मना कर देते हैं, हम नहीं जानते, अब तुम्हारा है तुम भुगतो, फिर वो लड़कियां मानसिक हिंसा का शिकार हो जाती है, अब वो कहाँ जाए क्या करे, तो गलत कदम उठाए, इससे अच्छा पेरेंट्स उनका साथ दे सपोर्ट करे, तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
0: पेरेंट्स को सपोर्ट, दो चीजों का व्यवहार कहते हैं, दोनों बैलेंस करना जरूरी है।
1: जी
0: बच्चे को ये शीशा दिखाना तो जरूरी है ही, लेकिन सपोर्ट करना भी जरूरी है।
1: जी
0: सपोर्ट करना इसलिए जरूरी है कि अगर बच्चा जो है, अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं और उसने वो ले ही लिया है निर्णय और शादी कर ही ली है, तो इससे
1: जी
0: बेहतर है कि पूरा समाज और पूरा परिवार आप पर हंसे और आपकी बेटी और या आपके बेटे पर हंसे। तो आप कहो कि ठीक है, तुमने जो डिसीजन ले लिया है तो उस डिसीजन तुम्हारा मेरे से ज्यादा अच्छा होगा, तुमने अपनी भविष्य का चुनाव कर लिया है तो शायद तुम ज्यादा अच्छा सोच पाती होगी या हो पाते होगे, तो क्यों
1: जी
0: ना हम तुम्हारे डिसीजन पे ही फिर काम करें। हाँ, बेहतर हम तुम्हारे डिसीजन पे ही काम करें और फिर जो भी तुम्हारे भविष्य लिखा होगा वो तुम्हारे सामने ही आएगा। तो हम इन सारी बातों को सामने रखते हुए और हमें उनकी शादी खुशी खुशी कर देनी चाहिए।
1: जी
0: शादी क्योंकि हो चुकी है, कोर्ट मैरिज कर ली है, जो भी काम है ना कोर्ट मैरिज से ही पहले किया जाता है, कि अगर
1: जी
0: नहीं किया तो हमें समझाना है, बताना है उसका अच्छा क्या है, उसका बुरा क्या है, उसके प्रॉन्स एंड क्या है, वो जॉब करता है, कहाँ जॉब करता है, कितनी इनकम है, कितनी इनकम में वो रह पाएगा या तुम्हें रख पाएगा, कितनी इनकम से तुम लोग की जिंदगी अच्छी चल पाएगी, कैसा परिवार है, तुम उस परिवार में समायोजित हो पाओगी कि नहीं हो पाओगी, तुम्हारे छोटा घर है यानी ऊंचा घर है, कैसा घर है, जिस हिसाब से चीजें सामने आ रही है उस हिसाब से उनको नॉलेज तो इम्पार्ट करनी होती ही होती है पेरेंट्स को।
1: जी
0: लेकिन इन सारे चीजों के बावजूद भी अगर वो कहती है कि नहीं मुझे इससे ही करनी है, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगी या तो मैं मर जाऊंगी,
1: जी
0: है ना, तो कुछ लोग तो वाकई ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि वो घर भी छोड़ देते हैं और मर भी जाते हैं। तो
1: जी
0: बेहतर है कि वो, है ना, होता है ऐसा,
1: जी जी
0: तो बेहतर है कि आप अपने परिवार में आप अपने सदस्य को खो दो, तो बेहतर है कि आप उसकी शादी कर दो। यही सोच लो कि ये डेस्टिनी में लिखा है और वो उसकी डेस्टिनी उसके सामने खड़ा हुआ है और उसको उसके डेस्टिनी के साथ बांधना है, एंड दिस इज द पेरेंट्स रोल इज नाउ गोइंग टू ओवर। और हाँ, कभी जरूरत होगी अगर तुम खुशनुमा जिंदगी बिताती हो तो ठीक है, तुम अपने परिवार में जाओ, खुश रहो, अगर तुम्हें जरूरत होती है कभी लाइफ में तो गुस्सा तो आता ही आता है पेरेंट्स को, नेचुरल है
1: जी
0: गुस्सा आना, तो नेचुरल है भाई, पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए अभी तक सब कुछ अच्छा अच्छा सोचा है तो आगे के लिए भी अच्छा ही सोचेगा। लेकिन इससे अच्छा तुम्हें लगता है कि नहीं मैं ज्यादा अच्छा सोच सकती हूँ, तो पेरेंट्स का गुस्सा आना लाजवाब है और वो कहना भी लाजवाब है कि मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो जाकर, ये कहना भी होता ही पेरेंट्स का है। लेकिन ऐसा भी होता है जब बच्ची पे या बेटे पे कोई परेशानी आती है तो पेरेंट्स कितने भी नाराज हो, कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, लेकिन वो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं कुछ परसेंटेज में, 10% to 20% लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी फादर जो कहते हैं मेल जो फिगर है वो बिल्कुल चलाना नहीं चाहता, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा करके बच्चा अगेंस्ट में मैरिज कर लेता है। तो फिर मैंने ये देखा कि पेरेंट्स में जो मदर है, कुछ ऐसे केसेस मेरे सामने आए कि मदर फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए चुपके चुपके अपनी बेटी को पैसा भेजती थी और मिलना भी चाहती थी, लेकिन फादर के डर की वजह से वो मिलने बेटी के पास तो नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन कहती थी जब भी बेटा तुम्हें कोई परेशानी या कुछ हो तो माँ जो है पैसा मंथली, जैसे हस्बैंड देता था तो मंथली कुछ 5,000 भेज दिया कि लो तुम अपना खर्चा चलाना, लेकिन फादर ने कभी नहीं उसको कहा कि तुम मेरे घर वापस लौट के आना, और मदर भी कभी नहीं उसके बेटी के पास जा पाई, सालों सालों ऐसे केसेस भी आए थे। तो यानी कि मदर का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिल होता है और मदद करने की कोशिश करती है
1: जी
0: और फादर बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि आप रिजिड अगर होते हैं तो आप अपने ही बच्चे का प्यार, अपने ही बच्चे के बच्चे का प्यार लेने से वंचित हो जाते हैं, जस्ट एक कि वो आपकी इच्छा के विपरीत उसने काम कर लिया। तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपकी इच्छा के विपरीत काम कर लिया लेकिन वो अपने उस परिवार में खुश है, अपने पति से खुश है, अपनी बहू से, अपनी पत्नी से खुश है, हमें और क्या चाहिए, हम यही तो चाहते हैं मेरा बच्चा खुश रहे, है
1: जी
0: ना,
1: और
0: शादी।
1: अगर पति लव मैरिज लड़कियां कर लेती है उसके बाद भी, कई बार मैंने एक केस में आपको बताऊंगी अंजलि जी, ड्रिंक करता था उनके फादर, तो रोज पीकर वो उनकी मम्मी को मारते थे, मतलब उनकी वाइफ को मारते थे। तो उस बच्ची ने ऐसा सोचा कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, तो उनके पापा ने उस बच्ची को ऐसे बोला कि तू घर से निकल और जो लड़का मिले उससे शादी कर लेना।
0: हाँ,
1: तो उस लड़की को रात को घर से बाहर निकाल दिया नशे में। तो उस
0: अच्छा,
1: लड़की ने 10-5 दिन बाहर घूमी, फ्रेंडों के घर घूमी वगैरह, तो कॉलेज फ्रेंड कोई होगा इसका, तो
0: हाँ,
1: उसने उसके साथ शादी कर ली। शादी के बाद उसकी जो सास थी वो कोई जादू तंत्र क्या बोलते हैं वो करती थी, तो उसको वो पसंद नहीं थी लड़की, तो उस लड़की के ऊपर पता नहीं क्या करवा दिया, वो पागल सी हो गई लड़की। तब उसकी माँ को पता चला कि मेरी बेटी ने लव मैरिज कर, उसकी माँ, आपने बताया ना जैसा कि माँ को लगाव होता है बच्चों से, पर पिता को भले ही पीता है करता है फिर भी यूं होता है कि नहीं, मेरा पहले तो बोला कि शादी कर ले, उसके बाद बोला मेरी इज्जत खराब कर दी। उसके दो भाई थे, उसको भी बोला कॉन्टेक्ट में रहेगा नहीं, वहां जो उसके घर जो जाएगा वो मेरे घर वापस नहीं आएगा। वो बच्ची इतनी परेशान हुई, इतनी परेशान हुई, उसने शादी तो कर ली और उसको पता नहीं था कि वो लड़का कैसा निकलेगा, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा नहीं था, बाप ने भी घर से निकाल दिया था। कि तू चली जा, शादी कर लेना, जो भी, और फ्रेंडों के घर पे रही, फ्रेंडों ने बोला कि

0: जा घर जा, बाप है बोलता है, पर उसको भी थोड़ा ईगो था, मेरे बाप ने मेरे को घर से बाहर निकाला, मैं अब नहीं जाऊंगी वहां पर। वो रही 5 6 दिन, शादी कर ली, शादी के बाद 2 साल 3 साल तक रही, बच्ची थी छोटी सी उसके, तो उसका दिमाग पागल सी हो गई उसको। तो उसकी मम्मी उससे बात करती थी, तो उसकी एक फ्रेंड थी जो पालमपुर रहती थी, तो उसको पालमपुर, उसकी फ्रेंड ने बोला तू आ मैं तेरा इलाज करवाती हूँ। तो उसको पालमपुर लेके गए, पालमपुर लेके जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि भाई खर्चा होगा, तो खर्चा तो उसकी फ्रेंड कहाँ से देगी, तो बोला कि तेरे हस्बैंड को फोन कर, तो पैसे तो मंगवा, इलाज मैं करवा दूंगी जो भी होगा। तो उसके पति ने फोन उठाना ही बंद कर दिया, बोले तू जाने तेरा काम जाने, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो उसको वो सदमा लग गया लड़की को कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, ना परिवार है ना ससुराल है, सास तो वैसे भी थी नहीं उसकी, और छोटी सी बच्ची थी जो उसके पास थी। फिर उसने क्या करा, उसकी फ्रेंड जो किराए के मकान में रहती, वो केरोसिन उसकी सांस लेकर आई होगी, केरोसिन रखा होगा कि बेटा ये केरोसिन आज मिला है मेरे को, ये मैं यहाँ रख रही हूँ, मैं घर जाऊंगी तब लेके जाऊंगी। तो उसने बोला कि तुझे क्या खाना है, तो उसने बोला मेरे को आज ये सब्जी बना के दे दे, मेरे खाने की इच्छा है। तो उसकी फ्रेंड ने बोला मैं लेके आती हूँ सब्जी, बस सब्जी लाने तक की देर थी, उसने केरोसिन ऊपर डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, और जो उसके दो बच्चे थे ना जिसकी फ्रेंड के, वो घर में ही थे, उन बच्चों ने उसको जलता हुआ देखा।
1: ओ माय
0: कि हाँ उसको जलता हुआ देखा, और वो खुद भी बच्चे 2 महीने तक सदमे में रहे, एक बॉडी को खुद जलता हुआ देखना। उस जो उसकी फ्रेंड थी वो किराए के मकान में थी, उसको इमरजेंसी वहां से खाली करवाया गया, उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसको खुद को एडमिट करा। फिर उनके ससुराल से, उस लड़की थी इलाज के लिए,
1: हाँ
0: उसके ससुराल से कोई नहीं आया, पर जो जिसकी फ्रेंड थी उसके पियर से सारे घर आए, और डेड बॉडी ससुराल भेजी, और 1 महीने बाद उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली।
1: और ये लव मैरिज सी
0: ये लव मैरिज थी, और ये परिवार का ना सपोर्ट करने का तरीका, सपोर्ट ना करा। अगर उसकी माँ ने हिम्मत कर कर एक बार सपोर्ट किया होता, एक बार उस बच्ची को घर लाया होता, तो शायद उसकी कंडीशन ये नहीं होती। पर वो भी उसके बाप से डरती थी, क्योंकि वो पीता था, पीकर उसकी माँ को मारता था, वो डरती थी कि कहीं मैं बेटी को वापस घर में लाऊंगी तो ये मेरे को मारपीट करेगा। लड़के भी उसी चीज से डरते थे, पर वो लड़की, उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि
1: तो मैं यही
0: उसे
1: सबसे
0: लगा
1: बड़े
0: मेरा
1: जी
0: डिसीजन।
1: बिल्कुल की बात सही है कि जो इमोशनली इतना डिपेंडेंट और इतने वीक हो जाते हैं, उनको लगता है कि बस दुनिया हमारी यहीं आकर रुक गई। तो उस
0: जी
1: नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं कि आदमी ने छोड़ दिया, परिवार वालों ने छोड़ दिया, तो अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन
0: जी
1: नहीं, जहाँ आपने जितनी हिम्मत जुटोई थी, आपने अपने माँ बाप के अगेंस्ट में जा करके मैरिज की थी,
0: जी
1: आपने ये तो सोच ही लिया था कि हम माँ बाप के अगेंस्ट में जाएंगे तो सपोर्ट हमारा बंद हो जाएगा। ये तो
0: जी
1: सोच के ही हमने ये निर्णय लिया था। जब
0: जी
1: आपने ये सोच के निर्णय लिया, तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी समय आपके ससुराल, आपके पति का भी सपोर्ट बंद हो सकता है। तो तीसरा भी दरवाजा हमारे लिए है, दरवाजा है वो हमारा अपना स्वयं का आत्मसम्मान का और स्वयं के आत्मनिर्भर का। हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। शादी तो आपकी हो ही जाएगी, लेकिन आत्मनिर्भर यानी स्वयं पर निर्भर आप इस लायक हो जाओ कि आप बिना पति बिना माँ बाप के भी आप अपने जीवन का जीवन यापन कर सको, आप पैसा कमा सको और आप अपने जिंदगी आपके आधार से जिंदगी आप जी सको। ये ज्यादा प्रायोरिटाइज, इसकी प्राथमिकता ज्यादा होनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि शादी तो हो ही जाएगी आपकी, लेकिन शादी से पहले जरूरी है कि आप अपने पैरों खड़े हो जाएं, ताकि अगर कहीं से धोखा मिलता है तो आपके सामने रोजी रोटी का सवाल ना आए कि आपको अपनी जान गंवानी पड़े। यहाँ पे जान गंवाने का कारण तो पहला यही हुआ कि हम किसके पास जाएं, कहाँ से हम अपने बच्चे को पालें, कैसे हम अपने बच्चे को पालें, किस छत के नीचे हम रहें जाकर, कौन हमें छत देने वाला है। ये इतने सारे क्वेश्चन जब उठ खड़े होते हैं तो सारी दुनिया बंद सी लगती है। तो ये ऐसी सोच से भी अपने आप को बाहर निकालें कि अगर हमारी सकारात्मक सोच होगी और रहेगी कि पति नहीं तो क्या हुआ, माँ बाप नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास इतनी काबिलियत है, हम कहीं भी कुछ भी करके हम रह सकते हैं, कुछ दिन का आसरा हमें कहीं से मिल जाए। जैसे देखिए उसको कितना अच्छा आसरा मिला था, उसको सहेली मिली थी,
0: जी
1: उस अपने दो बच्चों के साथ उसने ये ने अपनी सहेली को पनाह दी थी, कितना अच्छा
0: जी
1: आसरा मिला था, लेकिन उस आश्रय को उसने ठुकरा दिया
0: जी
1: और अपनी एक गलत धारणा और गलत सोच की शिकार हो गई और
0: जी
1: अपनी गिल्ट फीलिंग का भी शिकार हो गई। इतनी ज्यादा गिल्ट आ गई, इतनी ज्यादा गिल्ट

0: आ गई कि देखो हमने हमारा निर्णय कितना गलत रहा, हम अपने माँ बाप को क्या चेहरा दिखाएं जाके, कैसे चेहरा दिखाएं जाकर, क्या मुंह लेकर के। तो वही कह रहे कि अपने आप को कंपेरिजन करना, फिर कंपेरिजन करके अपने आप को शर्मिंदगी फील करना या अपने आप को हीन भीन महसूस करना। हाँ, तो ये जो कंपेरिजन वाली कॉम्पिटिटिव फीलिंग आने की वजह से हम जब ऐसा कदम उठाने से अपने आप को बचा सकते हैं कि ये दिन भी नहीं रहेगा, आज ये जो दिन बुरा दिन आया है ये बुरा दिन भी चला जाएगा। हाँ, ईश्वर की हमारे ऊपर कहते हैं ईश्वर का हाथ और साथ, उसका सहयोग, उसका सानिध्य, उसका हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक ऐसी ताकत देता है, ऐसी शक्ति देते हैं, कहते हैं ऐसी संकटों से बचाते हैं, मदद करते हैं, और कोई ना कोई ऐसा जरिया बना देते हैं उनके मदद से हमें कहीं ना कोई ऐसी रोशनी, कहते हैं अंधेरे में भी एक बहुत उजाला हो उसमें दीपक जलाएं तो रोशनी नहीं मालूम देगी, लेकिन एकदम अंधेरे में एक सीधा एक छोटा सा दीपक जला दें तो कितनी रोशनी आपको शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारी अंधेरी पूर्ण जिंदगी में एक भी व्यक्ति अगर सहारा देने वाला हो गया तो आपकी जिंदगी में रोशनी आने का यानी कि रास्ता आपको मिल गया, और फिर उसके बाद आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी तपस्या से और अपने एक लक्ष्य से जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और आप देखेंगे जरूर जरूर सफल होंगे। और अगर आपको एक पति अच्छा नहीं मिला है तो दूसरी जिंदगी में ऐसा नहीं कि दूसरा हमसफर आपको नहीं मिल सकता, आपको राह चलते हुए कोई ना कोई ऐसा साथी अगर मिलता है तो ये भी आपको नहीं रहना है कि हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। आजकल तो दूसरी शादी करने में भी कोई रोक टोक नहीं है, इवन सास ससुर अगर उनका बेटा एक्सपायर हो जाता है तो अपनी बहू की दूसरी शादी बड़े धूमधाम से करते हैं, कहते हैं ये मेरी बेटी है और मैं इस बेटी की दूसरी शादी करूंगा, करते हैं नहीं करते हैं बताइए,
1: जी जी
0: है ना। आजकल इतनी धारणाएं लोगों के अंदर बदल गई हैं। तो आपकी जिंदगी में बच्चा है, छोटा है, आप अपने आप को संभालिए, अपने बच्चे को संभालिए, कहीं नौकरी पे जाइए और देखिए आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, चलते फिरते आपकी हो सकता है जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाए, बहुत मदद करने वाला आपकी सहयोगी मिल जाए, आप उससे शादी करिए, अपनी जिंदगी को फिर आगे बढ़ाइए। और ये भी नहीं आप करते हैं तो एक आध्यात्मिक एक रास्ता बन जाता है जो आध्यात्मिकता की ओर जाता है, तो प्रभु का साथ है, समाज सेवा है और आध्यात्मिक सेवा है, और अपने उस आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं के साथ अपने जीवन को आप जीना सीख सकती हैं और अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। तो कई रास्ते हैं, उन रास्तों पर चलना ज्यादा सही है बजाय कि अपने जीवन दान दे देना। आपने मौका ही नहीं दिया अपने आप को, माता पिता के अंदर रियलाइजेशन को, और वो आपके सामने घुटना टेक कर खड़े हो जाएंगे, बेटा तो मुझे माफ कर दो, बेटी मुझे तो माफ कर दो, हमने तुम्हारे को सहयोग नहीं आ दिया। आपने मौका ही नहीं दिया पति को, आपने मौका ही नहीं दिया उसको अपनी गलती सुधारने का कि देखो तुमने मेरे घर को छोड़ा, मेरा घर कितना बर्बाद हो रहा है, तुम वापस आ जाओ, आपने ये कहने का मौका ही नहीं दिया। तो ट्रेन
1: जी
0: खड़ी हो जाती है, अब ट्रेन खड़ी हो जाती है तो सारे क्या होते हैं रास्ते में, सारे क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए तो उतरते हैं यात्री, लेकिन जैसे ही लगता है कि हाँ ट्रेन चलने वाली है तुरंत उस पर सब यात्री आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जर्नी छोड़ के चले जाते हैं।
1: जी
0: कभी कभी ट्रेन एक एक घंटे, दो दो घंटे, चार चार घंटे खड़ी हो जाती है, स्टॉपेज ले लेती है आकर के कहीं भी किसी जंगल में, तो यात्री तो नहीं छोड़ के चले जाते हैं, निराश होकर तो नहीं चले जाते हैं, पूरी ट्रेन में बैठ करके पूरी यात्रा को तय करते हैं, चाहे वो 2 दिन में पहुंचाए चाहे 3 दिन में पहुंचाए। ऐसी हमारी ये जीवन यात्रा है, तो जीवन यात्रा में हार खा करके अपनी जिंदगी को खो देना ये सबसे बड़ा, कहते हैं कि एक तरीके से अपनी बुद्धि और दिल और दिमाग तीनों के बीच में समन्वय ना करके अपने आप को हार खा लेना है और जिंदगी को खो देना है।
1: जी अंजलि जी, सही कहा आपने। कई बार माता पिता और समाज में बड़े बुजुर्ग बच्चों को घर में गुस्सा करना, उनके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे बच्चों को डर रहता है कि हम अपने माता पिता को बताएंगे तो ये कैसा बिहेवियर करेंगे, हमें हमारे साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो हर माता पिता को मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को दोस्त की तरह बात करे, उनसे अपनी परेशानियाँ पूछे, उनका विश्वास जीते, उनसे हर तरह के सवाल जवाब करे, उन्होंने क्या किया पूरे दिन, क्या नहीं किया, जैसे बैठकर बातें करे, ताकि उनको विश्वास रहे कि हम अगर कुछ भी होगा अपने माता पिता को बताएंगे तो वो उनका सहयोग करेंगे। अगर बच्चे आपसे कोई बात करे या कोई ऐसी चीज़ आपको बता दे जिस पर आपको गुस्सा भी आए, पर उस समय आप रिएक्ट ना करें, सही समय आने पर उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाले और कभी उनके साथ गुस्से से बात ना करें ताकि उन्हें दूसरी बार विश्वास ना रहे और वो आपसे कोई बात शेयर ना करें। तो बच्चों से प्रेम से बात करें और ज़्यादा प्रेम अंधविश्वास भी बच्चों के साथ ना रखें। उनका ज़्यादा गलतियों पर भी पर्दा ना डालें। सही और गलत की समझ उन्हें बताएं ताकि आने वाला भविष्य उनका खराब ना हो। अंजलि जी, अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का और उम्मीद है हमें और पूरा विश्वास है कि हमारे जो भी श्रोता बंधु और जो भी माता पिता आपकी इस मार्गदर्शन को सुन रहे थे उन्हें सही पहचान भी मिल गई होगी कि हमें अगर हमारे बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं और गलत डिसीजन ले भी लिया है तो उनका कैसे सहयोग करना है, उन्हें कैसे अपनापन दिखाना है और उन्हें कैसे गलत राह पर नहीं जाने देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी आपका।
0: जी शुक्रिया बहुत बहुत पवन जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसी प्रकार से हमारे नौ युवा वर्ग और उनके पेरेंट्स और साथ ही साथ जो बच्चियां जो जान देने वाली हैं और देना सोच रही हैं तो अपनी जिंदगी को मौका दें और सकारात्मक सोच रखें। अपने आपको इमोशंस और बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस और एकेडमिक इंटेलिजेंस दोनों के बीच का समन्वय रखते हुए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपसे विदाई लेती हूँ। नमस्कार।
1: थैंक यू अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे और हमारी युवा पीढ़ी को बचाएंगे। हम इसी के साथ हम अलविदा करते हैं। अगले हफ्ते अगली कड़ी में फिर जुड़ेंगे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM जागृति इस कार्यक्रम।
2: गोरा गोरा गाल तारा वाकड़िया वाड़ तारी लटक।

0: नमस्कार साथियों, हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और आज है आपके होस्ट आपके साथ अपने फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मैं मन की आंखों में से आज है एक शानदार आवाज जो अपने गिटार के माध्यम से आपके बीच लाती है जिंदगी की मुस्कुराहट और एक जिंदगी की सुंदर आवाज जो भर देती है हमारे जीवन में मधुर संगीत। लेकिन कहते हैं ना कि मन की आंखों से में हम हर बार टटोलने की कोशिश करते हैं मन की आंखों को, कि मन की आंखें कैसे जीवन को आगे ले जाती हैं, चाहे आपकी जिंदगी में अंधेरा हो या प्रकाश। और रियली में आज हमारे साथ हैं प्रकाश। प्रकाश डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम जयपुर, पिंक सिटी ऑफ राजस्थान एंड पैलेस ऑफ इंडिया। सो वेलकम प्रकाश इन अवर शो मन की आंखों से विद दिस
1: हेलो
0: ऑन
1: शरद।
0: फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। वेलकम प्रकाश।
1: हेलो फ्रेंड्स और हेलो शरद, कैसे हैं आप? और थैंक्स फॉर
0: मैं
1: वेलकमिंग मी।
0: अच्छा हूं प्रकाश, और आपकी आवाज सुन के और अच्छा हो गया हूं। श्रोताओं, जो भी माउंट आबू से हमें सुन रहे हैं हमारे रेडियो वेव पे 107.8 FM पे, वो हमारे सुन सकते हैं हमारे ऐप पर भी, रेडियो मधुबन पर। डाउनलोड करें अपने फोन में और सुनते रहें जीवन की आवाज, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी प्रकाश,
1: हेलो
0: प्रकाश
1: सर।
0: हम लोग जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी बचपन की यादों के बारे में। उस पर तो आएंगे ही, और रंगों की इस दुनिया में प्रोमिनेंट कलर ब्लैक के बारे में भी। तो हालांकि मैं ब्लैक की बात कर रहा हूं, एक फिल्म भी थी
1: इट्स
0: ब्लैक,
1: माय फेवरेट कलर मैन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कलर है वो यूनिवर्स का। यूनिवर्स का कलर ही ब्लैक है।
0: लेकिन यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, दैट्स ट्रू। तो आप प्रकाश जो है एक बिजली चैलेंज साथी हैं और FCI में अफसर हैं, इसके साथ साथ एक म्यूजिक के लर्नर हैं, स्टूडेंट हैं, और रॉक स्कूल से गिटार में भी एक अच्छी क्वालिफिकेशंस के साथ अपने संगीत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपकी शुरुआत की स्कूलिंग के बारे में जानना चाहूंगा प्रकाश।
1: स्कूलिंग एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि डैड आर्मी में थे तो हर 3 साल मेरा चेंज होता था। जैसे मेरा होम टाउन जयपुर है, बट मेरा मेरा बॉर्न गुवाहाटी में हुआ, तो
0: जी
1: 2 साल बाद फिर मैं उत्तराखंड चला गया। तो मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई उत्तराखंड रानीखेत में, बहुत खूबसूरत जगह है वो
0: जी जी
1: इतनी खूबसूरत जगह है। वहाँ पे वन एट अ टाइम 7 रेनबो एक साथ दिखते थे, बहुत खूबसूरत जगह है वो।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: तो
0: बहुत
1: वो उसकी यादें अभी भी ब्रेन में है, बर्फ पड़ना, वो कलर दिखना, फिर केदारनाथ बद्रीनाथ जाना। तो वो 3 साल मेरे लाइफ के सबसे खूबसूरत थे। सीढ़ी नुमा खेत देखना, तो रानीखेत बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम जयपुर, फिर इंदौर, फिर बॉम्बे, फिर लास्ट में जयपुर। ऐसे मतलब सारी डिफरेंट जगह देखने का मौका मिला था बचपन में, थैंक्स टू मॉम माई डैड।
0: अपने पेरेंट्स के साथ आपने पूरे देश की यात्रा की, और इस हमारे देश के एक वृहद इलाके को आपने देखा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की यादें हों या चाहे हमारे नॉर्थ के एक्सट्रीम हिमालय के पहाड़ हों
1: और सबसे
0: या
1: खूबसूरत तो केदारनाथ था। जब मैं 4 साल का था तो मैं केदारनाथ गया था, मुझे अब भी याद है, इतना खूबसूरत था। पर और उसमें मेरे को अभी भी याद है, मैं खाई में गिरते गिरते बचा था। घोड़ा जब उतर रहा था तो ऑलमोस्ट ही कॉलैप्स, बट बच गया।
0: हाँ, कुछ ऐसी ही घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी जो है वो कांची है, कुछ पल में भी रह सकती है और जा भी सकती है
1: हाँ,
0: ना।
1: उस दिन रियलाइज हुआ था कि हाँ भगवान होते हैं, भोलेनाथ हैं। जब
0: क्या बात।
1: बचा, कि मुसीबत में ही तो पता चलता है भगवान का।
0: बहुत बढ़िया। तो स्कूलिंग करने के बाद आपने इंजीनियरिंग किया, दैट इज कंप्यूटर साइंस,
1: हाँ
0: और
1: सर।
0: कंप्यूटर साइंस की ब्रांच का सिलेक्शन कैसे किया आपने?
1: एक्चुअली वो मेरे को बचपन से सॉफ्टवेयर पसंद थे, और मेरे बड़े भैया हैं, ही इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मुझे बचपन से कंप्यूटर गेम्स खेलना, कंप्यूटर पे काम करना बहुत पसंद था, तो सॉफ्टवेयर बहुत पसंद थे। मेरे भैया ने भी किया, तो वही जो होता है ना कि पसंद भैया मेरी एक जैसी थी, तो वही मेरे को भी प्रोग्रामिंग करना पसंद था कि कंप्यूटर के गेम्स बनाऊं और इंटरेक्ट करूँ, कंप्यूटर को और एक्सप्लोर करूँ। तो इसके लिए मैंने फिर मुझे यही ब्रांच अच्छी लगी, कि जिससे मैं जो मेरे सवाल हैं, जवाब हैं, वो मिले मुझे, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस करी थी कि
0: क्या
1: प्रोग्रामिंग कर
0: बात है,
1: सकूं, गेम
0: क्या बात है, बिल्कुल
1: बना सकूं। मुझे गेम बनाने का बहुत शौक था कि खुद का गेम हो।
0: अपने खुद के एप्लीकेशन हो, अपनी दुनिया हो ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: लेकिन इन इस कंप्यूटर साइंस की दुनिया नहीं, जो आपने चुनाव तो किसी और कारण से किया था आपकी जिंदगी में, तो आप गेम बनाना चाहते थे, लेकिन जिंदगी के इस खेल में आपको एक गोल किस्मत ने किया,
1: हाँ सही
0: और
1: कह रहे हैं आप।
0: वो गोल ऐसा था जिसने आपको सामने वाली जिंदगी के खेल में डी में जाके खेलने के लिए मजबूर किया, और बताने का चैलेंज दिया आपको, डेयर दिया कि जी ले तेरी जिंदगी। तो फिर कैसे ये घटना हुई और आप कैसे मैदान में पहुंच गए इस खेल के?
1: वो एक्चुअली जो जिस सिचुएशन में है वो कभी पता था नहीं। स्कूल टाइम से था गेम्स खेलना है, गेम्स में खेलता था, एक्सप्लोर ट्रैवल करना मुझे पसंद था, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस करी। यही चलता रहा, जब इंजीनियरिंग खत्म हो गई तब भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अच्छी जॉब लग गई मल्टीनेशनल कंपनी में, और तब भी कुछ नहीं पता था हो रहा क्या है। तब भी ये सोचता था कि जो प्लान कर रहा हूँ वही लाइफ में चल रहा है। और एक होता है ना, आप अपना स्केल बना देते हैं कि मेरे को ये करना है ये करना है, तो जो जो मैं सोच रहा था वही हो रहा था। और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, और फिर दुबई की एक कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मेरे को जाने था, बट तभी सडनली पता चला कि आई हैड अ ब्रेन ट्यूमर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रेन ट्यूमर आई हैव लॉस्ट माय आईसाइट। तो फिर इतना आगे जाने के बाद लाइफ वापस जीरो से स्टार्ट करनी पड़ी। तो फिर जब जीरो से करी तो लाइफ चेंज, तो उसके हिसाब से फिर नई लाइफ बनाई है, अभी भी चली रही है।
0: और उस लाइफ में लगा कि जो डगर को आपने चुना था, जो ब्रांच आपने इंजीनियरिंग की चुनी थी, कभी नहीं सोचा होगा कि ये विजुअली चैलेंज लोगों के लिए फेवरेबल ब्रांच है, और
1: है
0: ये ऐसी
1: बिल्कुल सही
0: ब्रांच
1: कह रहे
0: है,
1: हैं आप।
0: और ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में एक विजुअली चैलेंज सामान्य व्यक्ति को भी कॉम्पीट कर सकता है, बराबरी के साथ खेल सकता है।
1: श्योर, बिल्कुल सही है सर, कोई इशू ही नहीं है। ये मैं फील कर रहा हूँ ना सर, मैंने तो दोनों लाइफ जी है, तो थैंक गॉड मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच करी, तो वो मुझे फिर, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं जब अब अगर मैं कंपेयर करूँ कि अगर मेरी ये ना होता तो मैं अपनी इंजीनियरिंग को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाता जितना अब मैं कर पा रहा हूँ उसको, जो अपनी क्वालिफिकेशन को, क्योंकि उसकी वो जो मैंने क्वालिफिकेशन ली वो अब मैं ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि थैंक गॉड मैं ये कर पाया, वरना एहसास मुझे कभी नहीं होता कि मैंने ये क्यों किया वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से एजुकेशन।
0: साथियों, सर, श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जयपुर से प्रकाश चौधरी को। प्रकाश फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आईटी डिपार्टमेंट में मैनेजर की पोस्ट पे काम करते हैं, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स, पोर्टल्स या व्हाट्स एवर, हम जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग उनके ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में कार्यरत हैं। तो वो भूमिका क्या है प्रकाश, जो
1: हाँ
0: आपको FCI के लिए उपयोगी बनाती है दिव्यांग होने के बावजूद?
1: एक्चुअली मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखो ऑनेस्टली, अब जैसे पहले मेरी आईसेट है तभी मैं आईफोन यूज करता था, बट मुझे वो पता नहीं था उसके अंदर वॉइस ओवर नाम की कोई चीज है जिससे लाइफ इतनी अच्छी चीज है। बट जब मेरी ये हुआ और जब मेरे को पता चला, डॉक्टर ने बताया कि टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर होता है, तो तब पता चला कि मैं कितना चीजें यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई इशू नहीं आता सिर्फ, अब मैंने जैसे टेक्स्ट टू स्पीच का है तो हम इंडिपेंडेंटली मोबाइल लैपटॉप ये सब यूज कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। बाकी जो नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं हम भी कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ एडवांस नहीं हो पा रहा, कोई इशू नहीं आ रहा।
0: जी, ये बात तो है कि आप किसी तरह की बाधा महसूस नहीं कर रहे हैं अपने काम में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस या वो या कहें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा दखल उतना ही महत्वपूर्ण और इतना ही शानदार है जितना कि एक सामान्य व्यक्ति का, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इसकी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स। इसकी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स ने, टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बदला है, और
1: बिल्कुल सर,
0: आप जैसे डेवलपर्स दुनिया की जिंदगी को आसान बना रहे हैं। तो हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि यह जो घटना आपके साथ हुई, ये कॉलेज के दौरान हुई, लेकिन वो झटका कितना बड़ा झटका था, कैसे आपने इसका ओवरकम किया, क्या मानसिक प्रभाव आपके मानसिक मानस पटल पर रहे?
1: ऑफिस है सर, वो तो रहता ही है कि आपकी इंजीनियरिंग हो गई, आप बस अपनी ड्रीम जॉब के पास जा रहे हो, सब कुछ होने वाला है और एकदम से पता चला कि अब आप कर ही नहीं सकते। आप जितना आपने किया वापस जीरो पे आ गए, तो ऑफिस है सर उस वक्त लगता है, बट एक वो होता है सर जीने की चाह और थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है, तो इसलिए सर फिर उसके
0: जी
1: बाद धीरे धीरे किया। लगा तो था सर, बट अब सोचता हूँ कि हाँ लगा था, बट थैंक्स टू गॉड मैं आगे मैंने कोशिश करी तो आगे मैं चल पाया और अभी सीख रहे हैं सर। शौक तो लगा था सर, बट
0: ये
1: दैट्स
0: कुछ वैसा
1: लाइफ।
0: ही शौक है, यह कुछ वैसा ही शौक है जो आपको संगीत के शौक की तरफ ले गया। इस शौक ने आपको संगीत का शौक दे दिया। तो ये
1: श्योर
0: संगीत
1: सर।
0: का शौक कैसे मिला आपको?
1: एक्चुअली क्या, म्यूजिक मुझे बचपन से बहुत पसंद था सर, बट वही ना, हम लाइफ में इतने बिजी रहते हैं। जैसे मुझे गिटार बचपन से सीखना था, बट वही पढ़ाई, एजुकेशन, आपके और हॉबीज की वजह से कभी मौका नहीं मिल पाता था। तो जब ये हुआ तब लाइफ में वापस सोचने का मौका मिला कि अब मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, कि तो लाइफ ने मौका दिया, तो मैंने सोचा कि जो मुझे पसंद है मुझे वो भी करना चाहिए। तो फ्री टाइम मिला, वापस से जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिला, तो मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया। और ऑनेस्टली मैं स्टार्टिंग में मेरा बस यही सीन था कि ऑब्वियसली बहुत सी चीजें आप नहीं कर पाते स्टार्टिंग में, यू कॉन्ट ट्रेवल, यू कॉन्ट राइड अ बाइक, तो वो जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कहाँ मैं डाइवर्ट करूँ,
0: जी
1: तब तो वो फ्री स्पेस में मैं क्या करूँ। क्योंकि एक होती है ना सर कि जब आप पहले थे तो आप डे टू डे लाइफ में इतना अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करते थे, तो एकदम से आप स्टॉप हो जाए तो यू फील ना कि आपकी वो एनर्जी एग्जॉस्ट कहाँ करें, कि वही जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कुछ करने का वो मैं कहाँ से लूँ। तो फिर तो मैंने सोचा कि गिटार सीखते हैं, बट मगर फर्स्ट टाइम उस दिन मेरे को शॉक लगा कि स्टेट ऑफ माइंड लोगों का क्या होता है। जो मेरा पहला टीचर आया, उसने जब मैं उसके सामने बैठा और उसको जैसे ही पता चला आई एम अ VI, अगले दिन गायब। उस दिन
0: जी
1: एहसास हुआ कि देखो आई एम नॉट ब्लेमिंग द कंट्री, बट उस वक्त पता चला कि डिफिकल्टी क्या होती है। मतलब उस वक्त महसूस हुआ कि परसेप्शन कई कुछ लोगों का कितना आसानी से बदल जाता है। वो ना ऑनेस्टली मेरा उस टाइम में ये नहीं था, बस मेरा ये था कि कुछ गाने कर लूँ, फिंगर कर लूँ, टाइम पास हो जाए। फिर जब उन्होंने वो ऐसा किया, फिर एक और टीचर ढूंढा, उनका भी यही बिहेवियर, तब मेरा था कि अब प्ले करूंगा तो एक प्रो लेवल का ही मतलब प्ले करूंगा तो एक प्रोफेशनल लेवल की डिग्री करके ही रहूंगा। बस ये मैंने एक मन में था करने का, कि मैंने
0: जी
1: गॉड से कहा था कि यार गॉड इतना हो रहा है, इतना मेरे को तो बस सीखना है, फिर भी ऐसा परसेप्शन मिला है तो कुछ करके ही दिखाना है। और फिर मैं वही थैंक्स टू गॉड मेरे पापा की मेहनत से, और जो मेरे बाद में मुझे टीचर मिले, लकीली मेरे पापा ने ढूंढा और लकीली वो टीचर मिले। मैं ये नहीं करके मैंने कुछ किया, मैं उन्होंने एफर्ट
0: जी
1: डाला। जो मुझे देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लोग बुरे हैं, बट वो जो स्टार्टिंग के दो जो मिले उनका जो मैंने परसेप्शन देखा तो थोड़ा फील हुआ, बट थर्ड अटेम्प्ट में मुझे फिर जो टीचर मिले उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, हेल्प मी, मतलब उन्होंने मुझे सिखाया। फिर उन्होंने कहा कि तुम अच्छा करना चाहते हो तो प्रो लेवल की डिग्री लो, जैसे आपने उस वक्त कुछ नहीं पता था, बस ये था कि अच्छा करना है, बस चाह थी, पता नहीं था कैसे करना है। वो मौका मेरे पेरेंट्स और गॉड ने दिया मुझे। तो मेरे टीचर ने बताया कि देखिए VI भी ये गिटार की डिग्री ले सकता है, और मुझे पहले कुछ आइडिया नहीं था, तो पता
0: जी
1: चला कि जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं उसके सेमेस्टर होते हैं, तो म्यूजिक की भी डिग्री होती है, उसके सेमेस्टर होते हैं, एग्जाम होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होते हैं। तो जो मैंने डिग्री ली रॉक स्कूल लंदन से इलेक्ट्रिक गिटार रॉक एंड पॉप जेनर में है, तो इसके भी 8 सेमेस्टर होते हैं। तो फिर
0: जी
1: मैंने फिर वन बाय वन सीखना स्टार्ट किया, उन्होंने हेल्प करी, तो थैंक्स टू गॉड कि फिर वो फिर एक अच्छा सफर स्टार्ट हुआ, और भी वन बाय वन सेमेस्टर क्लियर होते रहे। और लकीली मैं कह सकता हूँ कि थैंक्स टू गॉड कि उस वक्त जो मुझे बुरा फील हुआ था कि मैं क्या कर पाऊंगा अगर ऐसा रहा तो, बट अगेन समय बीतने के बाद थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माई पेरेंट्स, कि अब मैं कह सकता हूँ यार थैंक गॉड मैं कम से कम एक डिग्री तो कर पाया गिटार की और मैं सीख पाया।
0: जी कितने साल का समय लगा आपको 8वें ग्रेड का सेमेस्टर का?
1: एक्चुअली सर ये साल में दो बार एग्जाम होते हैं, तो हर सेमेस्टर का होता है वन बाय वन, तो मेरे को 4 साल लगे सर 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने में। मैंने 2016 से स्टार्ट किया था सर, तो 2020 में मेरा कंप्लीट हो गया। और किस्मत देखिए, जैसी मेरा जिस ईयर 2020 में मेरा ये डिग्री कंप्लीट हो गई, उसी साल मेरी ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया मेरी FCI के लिए। तो मतलब एक जैसी कंप्लीट हुई, एक नई जर्नी वापस स्टार्ट हो गई प्रोफेशनल लाइफ की। तो वो कोइंसिडेंस इतना अच्छा था सर।
0: बहुत बढ़िया।

0: तो पहले तो आपकी जिंदगी कुछ मेटालिक सी हुई और फिर बाद में एकदम से रॉक आ गया
1: हाँ सर, वो तो
0: कुछ।
1: चल, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, ऐसा ही रहा है। और एक्चुअली मेरे को जैनर भी ये पसंद है, मेटल, रॉक, सूफी, जो मैंने वहाँ पे रॉक एंड पॉप में सीखा भी है, तो अलग अलग जैनर के मेरे को सीखने का मौका मिला।
0: तो आप, मुझे मालूम है कि आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग करते समय आपका, आप क्या जिंदगी ब्लूज में ले जाते हैं?
1: नहीं सर, उस टाइम आपको मेटल चाहिए सर, यू हैव टू फील ना पम्प्ड अप, तो उस वक्त
0: अच्छा,
1: मेटल, उसमें आप ब्लूज में सुकून में नहीं जा सकते, अगर आप सुकून में जाएंगे तो यू कांट लिफ्ट ना,
0: राइट।
1: तो उस टाइम यू हैव टू लिसन रॉक म्यूजिक, में हैवी मेटल, जो रश ऑफ ब्लड हो, तब आपको
0: जी
1: एनर्जेटिक फील हो।
0: जी तो कुछ मेटल सुना दें आप हमारे श्रोताओं को।
1: श्योर सर, जैसे मेरे ग्रेड 8 के जो एग्जाम के थे पीसेस, वो मैंने किए थे, जैसे मेरा ये मेटल सॉन्ग है मीट डार्क ईयर, ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव मेटल है, आप सुनेंगे तो यू फील ना रश ऑफ ब्लड, ये
0: जी
1: ई माइनर स्केल का है, और प्रोग्रेसिव मेटल, जैसे मेटल के बहुत डिफरेंट होते हैं, डेफ मेटल, हैवी मेटल, तो ये प्रोग्रेसिव मेटल है अल्टरनेट पिकिंग का, तो अभी आप
0: जी
1: ये सुन रहे होंगे। और इनमें एक सबसे खासियत क्या है, अभी इसमें एग्जाम में खुद की कंपोजिशन भी आप करते हैं, गिटार सोलो होता है, तो इसमें मैंने खुद की कंपोजिशन भी ऐड करी है, जो गिटार सोलो होता है, आप इम्प्रोवाइज करते हैं म्यूजिक के साथ,
0: जी बहुत
1: तो
0: बढ़िया श्रोताओं।
1: हाँ
0: तो मैं श्रोताओं को पेश करता हूं हमारे आज के प्रकाश, मन की आंखों के प्रकाश का यह मेटल म्यूजिक।

0: जी प्रकाश, श्रोताओं मजा आ गया ना कि प्रकाश की आवाज में ही नहीं उंगलियां भी मेटल के हैं,
1: थैंक
0: और
1: यू।
0: इस मेटल के साथ इस डायमंड के पास क्या है और जानते हैं ये। प्रकाश, आपकी जिंदगी में एक अंधेरा है जो शायद कलर्स से आपका रास्ता
1: ऐसा
0: मालूम नहीं
1: कुछ,
0: कैसे कैसे होता है।
1: अरे
0: आपकी मन
1: मैं
0: की
1: ऐसे
0: आंखें क्या
1: देखिए
0: देखती
1: ये
0: है
1: नहीं
0: बताइए ना।
1: कह सकते सर। देखिए सर, ब्लैक इज ऑल्सो कलर, तो आप ये हम ये कह सोच ही मैं ये नहीं सोच ही नहीं सकता कि आई डोंट हैव कलर सर। ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर, इज ऑल्सो वन कलर, तो मैं ये
0: जी
1: नहीं कह सकता ना कि मेरी बकेट एम्प्टी है,
0: जी
1: तो स्टिल आई हैव वन कलर ब्लैक। एंड और आप देखिए ये यूनिवर्स का कलर ब्लैक है, और ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर। आप ये सोचिए ना सर, हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे पास नहीं। आप ये सोचिए, ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर, जिस कलर से लोग भागते हैं उस कलर के साथ हम जी रहे हैं, तो हम कितने वो हैं। हमें भगवान ने कितना मौका दिया है कि यू कैन ना
0: हम
1: लिव
0: कितने
1: दैट वे।
0: स्ट्रांग
1: हाँ
0: हैं ना।
1: भगवान, क्योंकि ऊपर वाला मुसीबत उसी को देता है ना, कि उसके वो पहले उसको तैयार करता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। जैसे मैं अपने बारे में बताऊंगा, जैसे बचपन से मुझे भागवत गीता, महाभारत, स्पिरिचुअल चीजें ये सब सुनने का बहुत शौक था, बट मुझे पता नहीं था कि मैं बचपन से मुझे मोटिवेशन बातें क्यों अट्रैक्ट करती हैं। वो मुझे पता नहीं, एक होती है ना अपनी पसंद, आप दौड़े जाते हैं उसके पास, तो ये मैं सुनता रहता था, मुझे फील नहीं होता था कि मैं क्यों सुन रहा हूँ, ये मुझे क्यों पसंद है। बट जब ये हादसा हुआ तब थोड़ा रियलाइज हुआ कि आई थिंक गॉड इज प्रिपेयरिंग मी फॉर दिस मोमेंट। तो जो मैंने पहले ये स्पिरिचुअल चीजें, मोटिवेशन चीजें सुनी, वो मैं अब उस चीज को मैं इम्प्लीमेंट यहाँ कर पा रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है, मैं किसी और को कहूंगा नहीं, मेरी लाइफ का तो यही एक्सपीरियंस है कि जो भी सिचुएशन आती है उससे पहले गॉड हमें प्रिपेयर करता है। तो मे बी मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है और ये स्पिरिचुअल चीज है, तो हमें प्रिपेयर किया सर।
0: बेहतरीन। श्रोताओं, हमारे साथी प्रकाश का कहना है कि उनके पास एक कलर है, चाहे वो काला ही क्यों नहीं। तो प्रकाश, और
1: द
0: भी बहुत
1: स्ट्रॉन्गेस्ट
0: सारे,
1: कलर है सर, चाहे नहीं, ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर।
0: यस, मैं कह सकता हूं कि आप काले में भी कूल लगते हैं, राइट? तो
1: थैंक यू सर।
0: मैं
1: काले
0: आपसे
1: हुए तो
0: कुछ,
1: क्या हुआ, दिल वाले हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। श्रोताओं, मजा आ गया ना, तो आइए ना इस बात पे हो जाए गीत।
1: हाँ सर, ये सेकेंड सॉन्ग है जो मेरा लीड सी थी, रॉक फ्लेवर का है सर, इसमें रॉक जेनर है। यू आप इसकी बीट्स फील करेंगे तो इट्स ना, आप वर्कआउट करते हैं यू फील पम्प्ड अप, तो ये रॉक जेनर का है प्रॉपर लीड शीट। आई होप आप लोगों को पसंद आए।

0: कि इस पूरी बातचीत के बीच आपका क्या रास्ता कुछ और कलर से भी है, कुछ यादें हैं आपकी पुरानी बचपन की कलर्सफुल,
1: ऑफिस ऐसे कलर तो है सर, बहुत अच्छी यादें हैं सर।
0: और आपका तो मानना है कि कलर्स हमारे दिमाग में होते हैं आंखों में नहीं, राइट?
1: सर आप जैसे, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, अब बहुत लोग सोचते हैं कि हम देखते हैं, एक्चुअली ये हम देखते नहीं है। साइंस के हिसाब से जैसे बॉडी वर्क करती है, ये आंख आंख इज जस्ट लाइक अ मिरर, जो हमारे ब्रेन में फोटो बनती है ना वो हमें दिखता है, ये एक मिरर है। अब जिसी ने मेरे को अब जैसे पहले मेरा ये मिरर काम कर रहा था तो मैंने देख लिया, तो ब्रेन में जो फोटो बनती है वो कलर हमें पता चलता है। अब जैसे पहले मेरी जो लाइफ थी वो मेरे को सारे कलर पता है, तो इस समझ से ना दिस इज रेड, तो वो रेड कलर मेरे ब्रेन में दिख जाएगा एंड आई कैन ना वो एक पता चल जाएगा हाँ रेड ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और इस चीज में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब मेरा ये हादसा हुआ तो मैंने पहले एक चीज पढ़ी थी, जैसे चमगादड़ होते हैं, देखा वो अपनी आंखों का यूज नहीं करते हैं बिकॉज दे कांट, वो फिर भी जब वो उड़ते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट उड़ते हैं। आप पता है वो कैसे उड़ पाते हैं सर? वो जब उड़ते हैं तो वो, जब मैं पहले सोचता था कि ये आवाज इतना क्यों करते हैं, बट सर वो आवाज करते हैं अपने, वो एक वेव्स बनाते हैं, और जैसे वेव्स होती हैं, वो वेव्स अगर सामने पहाड़ है वो आवाज करते करते आगे जाते रहते हैं, फिर वो वेव्स वापस जब पलट के आती है तो कान से सुनते हैं, और कान अपने कान से सुन के ये फोटो बनाते हैं कि सामने है क्या क्या नहीं। तो दे विल गेट, वो देखिए आईसेट ये वो नेविगेशन करने का यूज करते हैं, दे कांट सी बट वो इतने एक्यूरेट होते हैं। ये तो एक बस ये पैरामीटर है कि हमने मिरर के थ्रू ऐसा कर लिया, बाकी हम सुन के और इसके थ्रू भी नेविगेशन आराम से कर सकते हैं सर।
0: हाँ, हमारी जिंदगी ने या हमारी प्रकृति ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, और हर इंद्री अपने आप में विशेष है, और किसी इंद्री में कुछ कमी भी है तो बाकी 4 तो आपको सपोर्ट करने के लिए है ना। तो प्रकाश, अपने थोड़े ठोकरों के ढाबों के बारे में बताइए ना, आपने ठोकरों के ढाबों में भूखे रहे या मस्त होके खाया?
1: क्या किसमें सर?
0: आपकी जिंदगी में कुछ, आपको कुछ ठोकरों के ढाबों से भी मुलाकात हुई होगी
1: अरे
0: आपसे?
1: सर वो तो सर, ये तो ठोकर तो सर वो है, बेस्ट फ्रेंड है सर, आज नहीं तो कल आएगी आएगी।
0: हाँ, तो ऐसे ढाबे जहां पर आपको ठोकरों का खाना मिला है तो बताइए ना, वो कैसी ठोकरें थी? या
1: वो ठोकरी तो सर ऑब्वियस है, ठोकर तो हमें सिखाती है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। जब जब हमें ठोकर मिलती है हमें अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलता है सर। तो जो जो ठोकरें आई, जैसे फर्स्ट टाइम जब कोई मैंने गिटार का था तो ठोकर आई, तो वो जब वो मुझको ठोकर फील हुई तो मुझे मौका अच्छा सीखने को मिलता। अगर मुझे वो ठोकर नहीं मिलती तो मैं सिर्फ 2 या 3 गाने करके लाइफ में आगे बढ़ जाता।
0: जहां पर आपको आपके विजुअल चैलेंज ने उनको चैलेंज दे दिया और वो
1: तो
0: डेयर नहीं ले पाए।
1: वही सर, वही ठोकरें आई हैं, वो से हमें सीखने को मिलता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग सर। जिस इंसान को जितनी ठोकर मिलती है ना सर वो उतना तरक्की करता है, और मैं भी उतना ही कर पाया, यानी मेरी लाइफ में मेरे को कम ठोकर मिली है। अगर मेरे को और ज्यादा मिलती तो शायद मैं और अच्छा कर पाता जीवन।
0: जी, बहुत बढ़िया। हमारे एक शानदार क्रांतिकारी लाला हरदयाल, उन्होंने भी युवाओं के लिए बहुत शानदार किताब लिखी है, हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, सेल्फ डेवलपमेंट बाय योर स्ट्रगल एंड सक्सेस। आप सभी युवाओं को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने यही बताया है कि अपने हम कैसे आप की संघर्षों और सफलताओं से सीख सकते हैं। इसका मतलब संघर्ष भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी सफलताओं की सीख। तो खैर, हम श्रोताओं इस मोमेंट पे प्रकाश से कहेंगे कि वो कुछ और भी सुनाए हमारे श्रोताओं को।
1: सर अब सर ये जो सॉन्ग है इसका नाम है डार्क मैटर, इट्स अ प्रॉपर जैज म्यूजिक। इसमें आपको डिफरेंट बीट्स दिखेंगी, डिफरेंट फ्लेवर दिखेगा, क्योंकि ये जैज है, तो इसको आपको गिटार के साथ साथ बैकिंग ट्रैक में भी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, तो इट्स ऑसम सॉन्ग। आई होप आपको ये जैज फ्लेवर मेरा पसंद आएगा।

0: क्या बात है प्रकाश, आप तो छा गए हैं और हमारे माउंट आबू की वादियों में आपकी गिटार की आवाज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गूंज रही है, और इस वादी को आपके संगीत ने और खूबसूरत बना दिया है।
1: थैंक यू सर।
0: प्रकाश, हम हमारे श्रोताओं से बात कर रहे हैं हमारे मन की आंखों से शो में, और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं एज अ विजुअली चैलेंज पर्सन कि क्या मन की आंखें होती हैं। आपका क्या मानना है प्रकाश जी,
1: बिल्कुल होती हैं सर। सर
0: और ये कैसे काम करती हैं, कहाँ होती हैं
1: ये
0: आप?
1: मन की आंखें, आप देखिए, अकॉर्डिंग टू, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं थोड़ा इसमें, मन की आंखें सर ब्रेन होता है, लाइफ क्या है, जैसे मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, जैसे आप मेरे लिए लाइफ क्या है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो जो हमारे ब्रेन में चल रहा है वही सब कुछ है सर, वही सच है। तो हमारे ब्रेन में, अगर हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन के थॉट्स अच्छे हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं तो हमारी लाइफ वैसी ही पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं तो हमारे ब्रेन में फिर वो नेगेटिव ही चलता रहता है सर। तो वही, जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसे चमगादड़ है, वो नेविगेशन कैसे करता है, वो फोटो अपनी साउंड वेव सुन के सामने फोटो बना लेता है कि ये पहाड़ है क्या है। तो वही है कि हमने एक चीज चली गई तो बाकी की चीजों से कैसे नेविगेशन करके हम अपने ब्रेन में इमेज बना रहे हैं।
0: जी
1: हाँ तो भी सर, बाकी ये सब इंद्रियां हैं, इन सब इंद्रियों का काम है इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में देना। तो सब कुछ है सर, कुछ चेंज नहीं होता, एक चीज हो जाती है, बट वही है, जैसे बाकी जो लोग हैं उनके जो थॉट प्रोसेस है वही हमारा रहता है, बट हमें थोड़ा सा नेविगेशन अलग करना पड़ता है, बाकी खुशी सुकून सब ऐसा ही होता है सर।
0: क्या बात, बिल्कुल खुशी और सुकून बना रहे इसलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए हमारा फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और इस रेडियो स्टेशन यानी कि हमारे रेडियो मधुबन पर हम हमेशा ही कहते हैं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 107.8 FM। और मेरे साथ हैं प्रकाश, वो रियली एक प्रकाश हैं, उनका फेवरेट कलर ब्लैक है, और वो रॉक स्कूल से गिटार में, खास तौर पे रॉक एंड पॉप जॉनर में ग्रेजुएट हैं, और हम चाहते हैं कि वे अपने इस फन का फिर से हमारे सामने एक गीत के साथ पेश करें, अपने फन को फिर से एक गीत के साथ हमारे सामने पेश करें।
1: श्योर सर। अब ये जो मेरा अगला सॉन्ग है, इस सॉन्ग का नाम है क्राइमिया रिवर। इसमें एक प्रॉपर रॉक म्यूजिक है जिसमें थोड़ा आपको पेन, हार्ट ब्रोकन जैसा फील होगा, क्योंकि इसमें सिंगर भी है, और इस सॉन्ग में मैंने अपना गिटार सोलो भी ऐड किया है। आई होप आपको ये थोड़ा ना हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग पसंद आएगा।

0: लेकिन आज तो हम बात कर रहे थे दिल से दिल जोड़ने की, लेकिन प्रकाश ने गीत दिया है ब्रेकिंग, बट
1: हाँ
0: डेफिनेटली ये ब्रेकिंग तो नहीं था, ये शेकिंग था हमारे लिए। और हमने जैसे प्रकाश के गीत की बात की कि प्रकाश ने किस प्रकार से जिंदगी में अंधेरा आने के बाद गिटार उठाया, और मुझे तो मालूम चला है कि प्रकाश डंबल्स के साथ क्या कभी फंबल भी करते हैं।
1: बिल्कुल सर, वो तो मेरा सबसे
0: बोलो।
1: पहले उठता हूं तो यही है सर, मेरा फ्रेंड। मैं तो एक्टिविटी मॉर्निंग में डंबल से ही स्टार्ट होती है सर। आई डू वर्कआउट अर्ली इन द मॉर्निंग पहले, बट हाँ ये है कि पहले आई कैन गो जिम, बट अब मैंने अपने पूरे जिम का सेटअप घर पे ही कर लिया है, तो मॉर्निंग में उठ के मैं घर पे करता हूँ सर वर्कआउट, और योगा भी करता हूँ सर, अष्टांगा योगा के कुछ। मैंने पहले मुझे योगा जब ये हुआ तो मैंने एक टीचर से सीखा था प्रॉपर योगा, अष्टांगा योगा की प्राइमरी सीरीज, तो उसके भी सर कुछ पोजेस करता हूँ, जैसे हेड स्टैंड हो गया सर, उत्थिता पद्मोत्तानासन हो गया, ये मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी करता हूँ एंडिंग में, और स्टार्टिंग में मेरा वही प्रॉपर हैवी वेट लिफ्टिंग होता है, चेस्ट बैक वर्कआउट वो मैं करता हूँ सर।
0: जी, बहुत बढ़िया। और देखिए ना, प्रकाश एक चैलेंज के साथ हैं, पर जिंदगी के सारे कलर्स हैं। मॉर्निंग में योगा से लेकर अपने कार्यालय में अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट को मैनेज करना, हैंडल करना, और लोगों तक या सरकार की खाद्य सुरक्षा के संबंध में या सरकार की फूड मैनेजमेंट के संबंध में सही जानकारी अपने निगम की वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। देखिए ना, कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं और पे बैक कर रहे हैं सोसाइटी को। तो क्या ये जज्बा हम में भी नहीं रह सकता? और क्या हम अपने देश को विकसित भारत बनाने की यात्रा में प्रकाश की तरह आगे नहीं बढ़ सकते हैं? प्रकाश पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, पर अपने जज्बे के साथ, अपने जज्बातों के साथ देश की जमीन को उर्वरा बना रहे हैं। प्रकाश, हम ऐसे ही आपसे जुड़े रहेंगे, लेकिन एक गीत हो जाए ना, और इस मोमेंट पे मुझे लगता है कि ब्लूज कैसा रहेगा।
1: बिल्कुल सर, ब्लूज, आप ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है ये स्पेनिश जॉइंट है, इसमें आपको जैज और ब्लूज दोनों का फ्लेवर आएगा, और इसमें आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटल फ्लेवर आएगा जिसमें सूदिंग साउंड होता है ना, जैसे हम सूदिंग साउंड जिसे हम कहते हैं, वो साउंड आपको इसमें मिलेगा सर।

0: निश्चित रूप से इस गीत के बाद तो पूरा माहौल ही खुशनुमा हो चुका है। इस बातचीत का अंदाज ही बदल गया है और मुझे तो लगता है कि आपसे बातें करता रहूं और ऐसे ही एक
1: सेम ये
0: संगीत
1: सर।
0: रहे और जिंदगी का जो संगीत है वो ऐसे ही बसता रहे। संगीत देखिए ना कितना शानदार माध्यम है कि कितनी भी बड़ी समस्या हमारी जिंदगी में आ जाए हम संगीत के माध्यम से एक शक्ति पाते हैं और संगीत ही वो माध्यम है जो शायद हमें ईश्वर से सीधे जोड़ने की ताकत रखता है और वो फन आपको ईश्वर ने दिया है। प्रकाश
1: ये
0: हम
1: सर
0: और भी कुछ चीजें जानना चाहेंगे कि कैसा कभी ऐसा कभी होता है कि आपको लो फील होता हो या कुछ लोगों के व्यवहार से या लोगों के स्मार्ट प्ले की हरकतों की वजह से कभी ऐसा आपको लगता हो कि ये क्या दुनिया है, हम कहाँ आ गए, हम कौन सी गाड़ी में चढ़ गए।
1: सर, वो तो होता है सर, ह्यूमन बीइंग है, हार्ट ब्रेक होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि हमारा दिल है हर इमोशन से भरा होता है। मेरे साथ भी होता है सर, बहुत बार होता है। और बट मेरा हार्ट ब्रेक हमेशा तभी होता है जब कोई चीज़ अटकती है ना, और फिर वो फील होता है कि हाँ थोड़ा ये काम अटका है, तो फील होता है। बट सर हर चीज़ की खूबसूरत चीज़ होती है कि हम जिस चीज़ में अटके हैं, यानी हम उस चीज के लिए कैपेबल नहीं हुए हैं। जैसे मोबाइल होता है ना सर, मोबाइल क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है? क्योंकि हर टाइम एक नया फर्मवेयर आता है। अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो कोई वायरस आ जाएगा। तो हमें, जी मैं मानता हूँ कि हमें उस चीज में ही दर्द होता है असलियत में, क्योंकि हम उस चीज से लड़ने के लिए कैपेबल नहीं हो पाए हैं अभी। हमें उसको अपग्रेड करना है। तो जब भी फील होता है तो यही एहसास होता है कि मैं उस चीज के लिए अपग्रेड नहीं हुआ हूँ, मुझे अपग्रेड होना है और उस चीज को डील करना है। यही तो लाइफ है सर, सबके साथ होता है। इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा नहीं है। कईयों को, जो बहुत से लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ ज्यादा पेन है, ऐसा नहीं है सर। सबकी लाइफ में वही धूप छांव है, वही पेन है। पेन का पैरामीटर अलग है। मैं ये नहीं कह रहा, अब जैसे कोई और सक्सेसफुल है, कोई भी एक्साइटेड है, जॉब कर रहा है, उसकी लाइफ में भी सर पेन है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में पेन नहीं है, सबकी लाइफ में पेन है। बट बॉटम लाइन ये होती है कि मैं अपने, अगर मुझे अपने आप को सुकून पाना है तो मुझे अपने पेन पे ध्यान देना है, एज कंपेयर टू किसी और से मुझे कंपेयर करना। तो ये सर जो मेरे पाती में पेन आया है उसको कैसे डील करना है, उस पर ध्यान दे तो सॉल्यूशन निकलता है सर। बाकी तो सर फील होता ही है।
0: प्रकाश हम कार्यक्रम के लास्ट में आपके पेन को कम करने के लिए क्यों नहीं एक जैज पंख गीत ले आए आपके गिटार से आपकी उंगलियों के माध्यम से।
1: सर ये सॉन्ग है स्पेनिश जॉइंट सर, इसमें आपको वो रिदम फील होगी, फील पम्प्ड अप सर।
0: श्रोताओं हमें इसका आभास है कि समय भी गुजर रहा है और बातचीत भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बातचीत के इस पड़ाव पर हम प्रकाश के शौक और प्रकाश के जीवन में रही कुछ हॉबीज के बारे में बात करना चाहेंगे कि वो अपने इस व्यस्त समय में से अपने शेड्यूल में से क्या वो खास चीजें हैं जो करना पसंद करते हैं और अपनी दोस्ती यारी और अपने उस समय के बारे में बताएं जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं।
1: बिफोर या अभी का सर?
0: हाँ हम एक कंपैरिजन तो चाहेंगे ही आपकी जिंदगी में कि पहले कैसा था और अब कैसा है।
1: हाँ,
0: दोस्तों में क्या बदलाव है यार।
1: पहले तो सर इतना रश ऑफ ब्लड होता था कॉलेज टाइम में। हम दोस्त होते थे कि चलो दिल्ली चलते हैं, हम बाइक से दिल्ली चले जाते हैं। मतलब मेरे को ड्राइव करना, बाइक राइड करना, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। तो हम जैसे बैठे हैं कॉलेज में, होता है यार दिल्ली चलते, दिल्ली के दोस्त से मिलना है, तो बस बाइक में बैठे और चले जाते थे हम। रोड ट्रिप करना मुझे बहुत पसंद था। जैसे हम लद्दाख गए बाइक से, आई लव रॉयल इनफील्ड जो बाइक थी, तो वो पहले हम बहुत ट्रैवल करते थे। बट अब इसके बाद भी चेंज नहीं आया सर। आई लव, जैसे अभी आप कहेंगे तो आई लव ट्रैवलिंग, पहले मैं खुद चलाता था, अब किसी और को कहता हूँ। जैसे मुझे अभी ट्रैवल करना सर बहुत पसंद है। अभी भी जैसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गुवाहाटी हुई थी, तो मेरा लाइफ में नॉर्थ ईस्ट मुझे कभी जाने का मौका नहीं मिला था, बट थैंक्स टू माय जॉब मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई, तो मैं शिलोंग ये सब अभी ट्रैवल कर पाया। तो आई लव ट्रैवलिंग, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, और सर आई लव शॉपिंग। एक्सप्लोरिंग न्यू फूड, मुझे आई एम अ फूडी पर्सन, तो मुझे फूड एक्सप्लोर करना, और मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है सर।
0: आपके सबसे फेवरेट टेस्ट कौन सा है? आप क्या पसंद करते हैं? थाई, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज?
1: सर मुझे तो प्रॉपर इंडियन फूड, भले ही वो साउथ इंडियन हो, होम मेड होना चाहिए। जैसे साउथ का अगर इडली डोसा अगर किसी ने घर में बनाया तो ऑसम है सर। मैं तो पूरे इंडिया का फूड मुझे बहुत पसंद है सर। जैसे साउथ का अगर घर में होम मेड है इडली डोसा, भले ही साउथ का राइस हो, बिरयानी हो, आई लव। नॉर्थ जोन का पराठा हो, आई लव। बस वो होम मेड हो, बस मुझे वो अच्छा लगता है सर। होम मेड होना चाहिए।

0: जी, बिल्कुल। तो कहें कि केरल से लेकर कश्मीर तक के सभी टेस्ट आपके करीब हैं।
1: बिल्कुल सर, मुझे कुकिंग करना ही बहुत पसंद है, तो कभी टाइम मिलता तो आई ऑल्सो कुक सर।
0: ग्रेट। तो ये तो बातें हैं, अब आप एनफील्ड पे तो अभी भी जा सकते हैं, बस बात
1: बिल्कुल
0: है
1: सर,
0: ये
1: बिल्कुल
0: आपको
1: वही है,
0: केरल
1: बस
0: के करीब
1: पैरामीटर
0: है।
1: चेंज हुआ। अभी भी जाता हूँ सर, बाइक राइड पे जाते हैं हमारे फ्रेंड्स हैं, तो अभी भी सर वो मैं जाता हूँ।
0: क्या बात है। तो आपने अपने रोड्स के प्यार को रॉक पे आप ले आए हैं, तो दिस इज द जर्नी ऑफ रोड टू द रॉक, राइट।
1: बिल्कुल
0: और हमने एक रॉक में एक कहें कि हमने पॉप में भी कुछ नया करने का प्रयास किया है। और डेफिनेटली मुझे लगता है आज आपके इंस्टीट्यूट को भी आप पे गर्व है कि जिस तरीके से आपने अपने आप को संभाला है और एक जिंदगी में कमबैक किया है। और जो बिजली चैलेंज बचपन से बिजली चैलेंज होते हैं उनको शायद वो समस्या नहीं रहती है, लेकिन आपके साथ एक चैलेंज रहा है और हम तो यही चाहेंगे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।
1: थैंक यू
0: लेकिन
1: सर।
0: इस पूरी जर्नी में आप क्या ऐसे मकाम हैं या ऐसे कहें कि टारगेट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं?
1: टारगेट तो सर वो ही है सर, एक हम वो मॉरली देखें तो सर एक्चुअली खाली आता है खाली आ जाएंगे, बट मेरा तो हमेशा सर यही रहा है कि कोई भी सिचुएशन हो उसको मैं कितना काम और कंपोज तरीके से टैकल करूं सर, और एक वैल्यूएबल इंसान बनूं सर, मेरी तो यही चाहते हैं।
0: जी, बेहतरीन। और इस पूरी बातचीत की जर्नी में आपके कुछ कॉलेज डेज भी रहे, वो भी हमने आपने बीच बीच में बताए हैं,
1: हाँ सर, रोड
0: परंतु
1: ट्रिप हम
0: आपके
1: बहुत
0: कॉलेज
1: करते थे
0: की कोई
1: कॉलेज टाइम
0: ऐसी
1: में सर।
0: बात जो हमारे यूथ लिसनर्स को आप शेयर करना चाहें?
1: सर कॉलेज ट्रिप का तो सबसे एक ऑसम होता है सर, जैसे हम स्कूल में होते हैं तो कॉलेज में एकदम से फ्रीडम फील सा होता है, क्योंकि हम इतना एक्सप्लोर नहीं करते, तो ही सर कॉलेज में तो सर वो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, मैं बताऊँ हमारे 25 जनों का ग्रुप था, तो आप इमेजिन करें कि 25 जने अजमेर हाईवे से अजमेर जा रहे हैं, तो कितना ऑसम फील होगा, 25 जने 25 बाइक सर, हम ऐसे इतने एक साथ जाते, तो बहुत मतलब हमने इतना ट्रैवल किया है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि कॉलेज में सर वही सर रोड ट्रिप्स बहुत पसंद थी मुझे, तो हमारा ग्रुप पहले भी वो था और अभी भी मेरा है सर, ऐसा नहीं है कि दे हैव चेंज्ड, अभी भी मेरे वो सारे फ्रेंड्स हैं, जब रोड ट्रिप होती है। हाँ अब हम थोड़े वो जॉब वॉब ये सब कर रहे हैं, तो बाइक इट्स डजंट शूट अस, तो वही सर हम अपना व्हीकल करके वैसे जाते हैं सर।
0: क्या बात है। तो आप तो रोड्स पे भी रॉक कर चुके हैं और अब तो गिटार पे कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप ऐसे ही कुछ नए मकाम भी करें। आप ये अभी क्या विशेष हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे कुछ नए टारगेट्स जो आप सोचते हैं कि मुझे करना बाकी है?
1: अभी सर जैसे अभी जैसे म्यूजिक है गिटार है, क्योंकि म्यूजिक सर इज जस्ट लाइक अ सर सागर, मैंने देखी सर मैंने अभी ये कर लिया, इट डजेंट मीन कि आई एम द लेजेंड, तो मेरे को अपने म्यूजिक में और इम्प्रूव करना है कि जितना मतलब लाइफ ने मुझे टाइम दिया है जीने का, उसमें मैं कितना म्यूजिक ग्रहण कर सकूँ, क्योंकि म्यूजिक इज नेवर एंडिंग ना सर, कोई नहीं कह सकता कि यू आर द परफेक्ट, तो अभी एक ये जर्नी है कि म्यूजिक को मैं कितना समझ सकता हूँ, अभी मैंने बस एक समुद्र का एक बूंद को महसूस किया है, मतलब मैं कैपेबल हो पाया कि इस बूंद को समझ पाऊँ, तो अभी सर म्यूजिक में मैं कितना समझ सकता हूँ, आई लाइक वर्कआउट तो बॉडी को हम आई डू मेडिटेशन तो उसको मैं कितना समझ सकता हूँ, तो यही टारगेट है सर। और अभी जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है टेक्स्ट टू स्पीच में, इट डजेंट मीन सर मैं आपको कह रहा हूँ कि स्क्रीन रीडर अच्छा है, बट अभी भी बहुत से वेबसाइट हैं उसमें फिर अपग्रेड नहीं हुए, तो उस चीज पे काम करना है हमें कि हम चीजों को और कितना एक्सेसिबल बना पाए, क्योंकि एज अ वीआई बंदा इज कैपेबल इनफ सर, कमी उसमें नहीं है, बंदा अटकता तब है जब स्क्रीन रीडर अटक गया है, अटक जाता है, इट मींस कि जो जो प्रेजेंट हो रही है वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर है वो उसके लिए प्रोग्रामिंग नहीं हुई है स्क्रीन रीडर के लिए, तो बस तो सर अब मेरी तो बस यही चाहत है कि जितनी भी हमारे एप्स हैं सॉफ्टवेयर हैं वो सारे सब में प्रोग्रामिंग हो स्क्रीन रीडर रीडर के लिए, ताकि हमारा काम अटके ना सर, बस यही चाहत है कि इसमें मैं और काम कर सकूं सर, और बस यही
0: जी
1: ख्वाहिश है कि जितने भी अभी फ्यूचर में और जितने भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं सर, ये तो आपको भी बहुत पहले से अभी भी पता होगा कि बहुत कम है अभी भी एप्लीकेशन जो एक्सेसिबल हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, वेबसाइट हैं जो अभी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है और हो नहीं रही है। बस सर मैं ये तो यही चाहता है कि जितने भी अभी फ्यूचर में सॉफ्टवेयर आए, वेबसाइट हो, वो सारी एक्सेसिबल हो, और उसमें मैं कितना कर सकता हूँ सर। बस यही चाहते हैं सर कि ये काम हो जाए, जो भी आए एक्सेसिबल हो गया है।
0: एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है और हमारे देश का कानून भी इस बारे में बात करता है कि एक्सेसिबिलिटी 100% होनी चाहिए, जहां पर भी संभव हो फिजिकल वर्चुअल टोटल एक्सेसिबिलिटी की बात करता है। और आप जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उस एक्सेसिबिलिटी के को आसान बनाते हैं, तो शायद हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को भी सलाम करते हैं कि वे हमारी जिंदगी को आसान बनाने में लगे हुए हैं और
1: बिल्कुल
0: इस
1: सर,
0: पूरे पूरे हालात को बेहतर बनाने की, या क्या कहें, बेहतर दुनिया हमारे लिए बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं। इस प्रोग्राम में श्रोताओं, हमने प्रकाश के जीवन पर प्रकाश डाला और आशा है कि आपको इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से, इस पूरे आज मन की आंखों के शो ने अपने मन के में जाने का मौका दिया होगा। और मन के अंदर जब जो हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप भी, चाहे जैसा भी चुनौती आपकी जिंदगी में हो, आप लगे रहें, आगे बढ़ते रहें, जीत आपकी ही होगी। प्रकाश, आप हमारे शो में आए और आपने हमें समय दिया, हम
1: अरे
0: उसके
1: सर थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और आपसे बात करने का मौका मिला, थैंक यू सो मच सर। और कुछ नया आपसे सीखने को मिला सर, और आपसे तो सीखने का मौका मिलता ही रहता है सर, तो थैंक यू सो मच सर।
0: जी थैंक यू प्रकाश, हम आपके आभारी हैं। और ऐसे ही श्रोताओं, हम लाते रहेंगे किसी न किसी नई शख्सियत को आपके बीच। और आज की शख्सियत ने बताया कि रुके नहीं, लड़ते रहें। और इस जद्दोजहद के बीच ही ना हमारा शो आपके लिए लेकर आता है ऐसे ही किसी सितारे को। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 107.8 FM आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन। हियर इज योर आरजे शरद साइनिंग आउट। थैंक यू कृष्णा बहन, मुझे लगता है कि अभी एडिटिंग के बाद अच्छा हो जाएगा।
1: हाँ कुछ अपन पुराने वाले से भी ले सकते हैं, वो बस आपने जो आखिरी वाला बोला था ना ब्लूज का, वो शायद हटा देना, क्योंकि अपन 5 पहले डिस्कस कर चुके हैं।
0: ठीक है,
1: बाकी मैं वो 5 के लिंक आपको भेज दूंगा, जो जिन जिनके, एक तो मैंने आपको भेज दिया लीड शीट का, बाकी वो पहला मीडा किया, स्पेनिश जॉइंट, डार्क मैटर और क्राइमिया रिवर, ये 4 के हैं। मैं आपको यूट्यूब के लिंक भेज दूंगा, आप वो MP3 में कर लीजिए कन्वर्ट।
0: जी
1: बाकी और भी आपको करना हो तो मेरे YouTube में और भी वीडियोस हैं, अगर
0: कृष्णा
1: आपको
0: बहन,
1: लगे तो आप देख लीजिएगा।
2: अभी बचे हैं दोपहर के 1।

0: शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ आज के इस बातें मुलाकातें प्रोग्राम में विशेष राजवी जान हमारे साथ उपस्थित हैं। आप विशेष जो है स्नैक शॉप चलाते हैं अलाजन में, और आप किन्नर समाज की सेवाएं भी करते हैं और एक मोटिवेशन है सबके लिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है जब आपके बारे में सुना और बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में बताया कि आप बहुत ही अच्छा एक यूनिक काम कर रहे हैं, समाज के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप इन चीजों को जो है समाज में एक अपना उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। तो आइए आपसे बातें करेंगे। तो राजवी जान जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आपका, तहे दिल से नमस्कार, स्वागत है जी। कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ रमेश जी, और आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छा हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और ये और शॉप जो आपका है उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें हमें बताइए
1: जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जय माता दी और जय श्री राम। मैं राजवी जानी कर्दनारी, मैं सूरत में गुजरात में फर्स्ट ऐसी ट्रांसजेंडर हूँ जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, और वो बिजनेस वुमन है फर्स्ट ट्रांसजेंडर। और अगर दूसरी बारे में बताऊँ तो आपने तो सक्सेस ऑफ द नमकीन शॉप, मैंने बिजनेस चलाती हूँ और नमकीन शॉप है मेरी, तो आपने तो सक्सेस ऑफ द नमकीन शॉप मुझे एक ब्रांड मिली फुटवेयर कंपनी की, तो आई एम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर फुटवेयर कंपनी की बनी, मैं मॉडल बनी फुटवेयर कंपनी की, तो गुजरात की फर्स्ट ऐसी ब्रांड एम्बेसडर मॉडल बनी। सो अचीवमेंट्स मेरे आगे बढ़ते गए बिकॉज ऑफ माई स्ट्रगल। मैंने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया है। जब घर में अगर मेरे जैसा कोई बच्चा पैदा होता है तो मैं समाज को ये बोलती हूँ कि प्लीज उसको मत निकालिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए और बहुत अच्छे से, मीन्स टैलेंटेड वो बच्चे होते हैं तो उनको आगे कोई मौका दीजिए, और समाज को वही बताती हूँ कि आप उसको मौका दीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज मत जाइए।
0: जी रजवी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपने एक ऐसा काम किया जो यूनिक है और बिजनेस शुरू किया, जैसे ही आपको बिजनेस में सफलता मिला फिर आगे बढ़े और फिर इस तरह से आपको जो है अलग अलग अचीवमेंट्स मिलने का मौका मिलते गए और आप इन सभी चीजों को करते गए। और बहुत ही अच्छा मैसेज आपने को किया यहाँ पर कि जो बच्चे इस तरह से आते हैं ट्रांसजेंडर अगर जन्म लेता है तो माता पिता को जो है उन्हें अपने जैसे हम लोग बच्चा बच्ची को पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाए, उसको आगे बढ़ाए, उसको अलग ना समझे, अलग समझने से फिर सारा चीज जो है गड़बड़ हो। तो मैं चाहूंगा कि आपकी बचपन की कुछ बातें बताइए, मना आप जहाँ पर जन्म लिया उस समय की क्या सिचुएशन थी और फिर बिजनेस का आइडिया कैसे आया, आप कैसे अलग करने की सोचा, ये सारी बातें हम चाहेंगे आप सुना।
1: जी मैं अगर मेरे बारे में बचपन से बताऊं तो मेरा जन्म हुआ 5 मई को, और मेरा जन्म बर्थ जो प्लेस है वो मुंबई में हुआ, दहीसर में। मेरी मॉम मुंबई की है, पापा सूरत के है, ठीक है। तो बचपन में मीन्स लाइक मुझे लड़कियों जैसे मीन्स लाइक पहले से थोड़ा सा पता होता है कि मदर फादर की हमारा बच्चा ऐसा है, तो समाज में लोग उनकी इज्जत बचाने के लिए वो लोग है ना छुपाते हैं कि भाई हमारे घर पे ये मीन्स ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ है ऐसा, क्योंकि उनको एक डर रहता है समाज का कि हमारा समाज में लोग बोलेंगे कि भाई हमारा बच्चा ऐसे मीन्स लाइक किन्नर जन्म पैदा हुआ है या फिर बच्चा हमारा ऐसा पैदा हुआ है। क्योंकि बचपन से मॉम ने मुझे लड़कियों की तरह मीन्स लाइक पाला बड़ा, मैं फ्रॉक पहनती थी, गुड़ियों के साथ खेलती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट कहीं ना कहीं एक मैन ईगो कहते हैं, मैन ईगो उसे कहते हैं कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज में ऐसा होता है कि पुरुष की मीन्स लाइक जो बोलते हैं ना आदमी लोग जो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं पापा को ऐसे ऐसा लगा कि मेरी इंसल्ट होगी, समाज में मेरी बदनामी होगी। तो उसकी वजह से फिर डैड ने मुझे, मैं बड़ी हुई तब तक मुझे उन्होंने एक लड़के की तरफ पाला, कि मैं जब तक 30 ईयर्स की हुई तब तक मैं एक लड़के के भेस में रही, पर वो बहुत संघर्षमय जीवन था क्योंकि हमारे जो जैसे ही बड़े होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं हमारे में, कुछ बदलाव आने लगते हैं, ना लड़कों जैसे ना लड़कियों जैसे। तो अगर हम लोग अगर जेंट्स के कपड़े पहन के बाहर घूमते हैं तो लोग खराब नजर से या तो फिर ऐसी नजरों से देखते हैं कि कोई अजीब सी चीज जा रही है, ठीक है। तो हमारा जो भेस है ना नर ना नारी का, हमारा जो भेस है वही भेस में अगर आएंगे तो लोग हमें इज्जत भी देंगे और लोग समझेंगे भी सही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं बाहर जाती थी, मुझे बहुत तकलीफें होती थी कि देखो यहाँ पे ये गुड़ चला, ये छक्का चला, ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो मुझे सहन करनी पड़ती थी बाहर जाओ तो, क्योंकि एक पुरुष के भेस में पुरुष था ही नहीं, क्योंकि पता चल जाता है कि यार ये कुछ अजीब सी चीज होती है, ठीक है। तो बहुत दिक्कतें होती थी बाहर जाती थी, तो बहुत प्रॉब्लम्स भी होती थी, ग्रुप ऑफ पीपल लाइक अराउंड मी मीन्स लाइक कुछ ट्रांसजेंडर्स के लिए सेफ नहीं है, कहीं निकलो तो ग्रुप ऑफ बॉयज घेर लेते हैं, कुछ कुछ टॉन्ट मारते हैं, कुछ गालियां बकते हैं, तो मुझे बहुत फील खराब होता था। तो एक दिन मुझे ऐसा था, आई कम्प्लीटेड MCA, मैंने MCA कम्प्लीट किया है, और वो भी मेरी मॉम ने मुझे पढ़ाया लिखाया, क्योंकि बचपन से डैड कहीं ना कहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे समाज की वजह से, पर मॉम ने मुझे ट्यूशन क्लासेस चलाते थे तो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और MCA कंप्लीट करवाया। तो जैसे ही बढ़ती गई मैंने कंप्लीट स्टडी की, तो उसके बाद मैंने बोला कि मुझे मेरा हक चाहिए, मैं जैसी हूँ वैसे मुझे रहने दो, क्योंकि आपकी वजह से मुझे कितना सहन करना पड़ता है, बाहर समाज हमें एक जीने नहीं देता है, क्योंकि एक अगर लड़के की तरह मैं रहूं और मेरी आइडेंटिटी छुपा के तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं आ रहे हो कहीं पे, कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है हर जगह पे, और वैसे भी सिर्फ 10% पीपल होते हैं कि वो अच्छे में मैं समझ सकती हूँ, नहीं तो हर हमें कहीं पे भी जाती थी लाइक लोग स्टेयर एट मी, लोग मुझे देखते थे कि यार ये क्या चीज है, फिर हंसी मजाक उड़ाते थे, तो वो सब मुझे हर्ट हुई। तो फिर मैंने ठान लिया कि मुझे कहीं ना कहीं मैं मेरी आइडेंटिटी में आ जाऊंगी तो ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं जब बेटर मेरी आइडेंटिटी है, मैंने खुल के बताई कि मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ और ऐसे ही रहूंगी, तो मुझे पापा ने घर से निकाल दिया कि अगर तुझे ऐसे रहना है तो एक काम कर, तू ऐसा कुछ काम कर या फिर तू पूरे जगत में पूरी दुनिया में नाम करके दिखा, तब जाके मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो ये घर पे दहलीज पे कदम मत रखना, ठीक है। पापा ने मुझे गला भी दबा दिया था मुझे मारने के लिए, ठीक है, पर मैं हार नहीं मानी थी, क्योंकि मैं ऐसा बच्चा था ना इस वजह से कि लोग बोलते कि ये देखो छक्का, ये देखो बाइला, ये देखो गुड़ किन्नर, तो ये सब चीजों से लाइक बहुत ही मुझे डिप्रेस हो गई थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, तो मैंने स्टैंड लिया, और वो भी मॉम की वजह से, मॉम के सपोर्ट से ही मैंने स्टैंड लिया वो चीज को, क्योंकि मॉम मुझे बहुत सपोर्टिव, क्योंकि मैं जैसी भी थी कैसी भी थी मेरी मॉम ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो मैंने सोचा कि आज मुझे कुछ अलग करना है, मैं घर देने गई, मुझे घर नहीं मिल रहा था, क्यों, हम इंसान नहीं है, लोग बोल रहे थे यार तुम बस्ती में क्यों नहीं रह रहे आपकी, मैंने बोला मुझे नहीं रहना है, मुझे आपके जैसे नॉर्मल इंसान की तरह रहना है और मुझे नॉर्मल इंसान की तरह कमा के खाना है, तो व्हाई शुडंट आई, मैं क्यों नहीं कर सकती वो चीज। मुझे घर नहीं मिल रहा था, घर देने गई रेंट पे, तो बोला कि पहले मैंने बुक किया घर को, मुझे दलाली भी देनी, ब्रोकरेज भी देना था, सब कुछ देना था। बाद में फोन आया मकान मालिक का, बोले कि यार तुम्हें माताजी छो, आप माताजी है तो हम लोग लाइक माताजी घर नहीं दे सकते। तो बोला कैसे, क्यों नहीं दे सकते, हम लोग कोई अच्छे घर में नहीं रह सकते, कोई आपके साथ इंसान में समाज में नहीं रह सकते, एक बार जो आप बोल रहे हो माताजी माँ और दूसरी बार आपको बोल रहे हो कि हम लोग उसको घर नहीं दे सकते, ये कैसा न्याय है, ये समाज की कैसी लीला है, कैसी सोच है कि एक बार जो आपको आशीर्वाद देने आते हैं और दूसरी बार जो बोलते हैं कि भाई हम लोग उसको घर नहीं दे सकते, तो आप जबको आशीर्वाद लेने आते हो, ठीक है, तो तब मुझे मतलब मेरे बच्चे को आशीर्वाद तो हमारा अच्छा हो जाए, हमारे बरकत है तो वो अच्छा लगता है, पर वही माताजी वही माँ आपके दहलीज पे आके हेल्प मांगती है तो आप उस पर घर भी नहीं देते हो, तो ये है समाज की सोच। तो मैंने एक मुहिम चेड़ी, मीन्स मुझे क्रांति अपने आप में थी, क्योंकि गांधी जी ने अगर लड़क नहीं लड़ी होती ना, क्रांति नहीं लड़ी, आज अपना देश आजाद नहीं होता, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बनना था और कुछ करना था कि मेरे बाद की जनरेशन ऐसे फील ना करे, क्योंकि हमारे में सबसे ज्यादा सुसाइड नोट्स होती है, सुसाइड रेस हो जाते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा ऐसा नहीं फील करता भाई मुझे ये करना है वो करना है, नहीं, किसी को नहीं होना, नहीं किसी को ऐसे नहीं करना है, नहीं नहीं रहना है, उसको ऐसा लगता है भाई जॉब चाहिए, जॉब मुझे कमा के खाना है लोगों की तरह, तो लोग नौकरियां नहीं देते क्यों, बॉडी लैंग्वेज की वजह से। हाँ, आप हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज की वजह से आप प्लीज हमें जज मत करिए, आप हमें हमेशा हमारी टैलेंट के ऊपर जज करिए, हमारा वॉइस ऐसा है थोड़ा भारी है, हम चलते थोड़े डिफरेंट है, हमारी मुस्कुराहट थोड़ी डिफरेंट है, हमारा चेहरा ना नर जैसा है ना नारी जैसा है, तो हम लोग एलियंस नहीं है, हम भी आपके जैसे ही है, ये कुदरत का एक ही हम लोग पैदा हुए, भगवान ने अगर डिफरेंस नहीं किया है तो आप क्यों डिफरेंस कर रहे हो। तो ये सब चीजें चलती चलती चलती मैं मेरी लाइफ का स्ट्रगल था और मुझे घर नहीं मिला, फिर घर मुझे मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो छोड़ा था, मुझे टिकटॉक के वीडियो से इतना वायरल हुआ कि लोगों ने मुझे एक पॉजिटिविटी दे दी और वो मुझे घर मिल गया, मैंने रेंट भी भरा और सब कुछ किया, और तब मैं पेट शॉप चला रही थी, मैं 5 साल से बिजनेस कर रही हूँ, पेट शॉप चला रही थी मैं, तो पेट शॉप में थोड़ा घाटा हो गया, क्योंकि मेरा ऐसा था कि एक सेवा भाव, मैं जितना भी दुकान में था वो मैंने सब डॉग्स को कैट्स को सब मीन्स बांट दिया, मुझे मीन्स सहन नहीं हो रहा था, तो फिर पेट शॉप में लॉस हो गया, कोरोना आ गया, फुल कोरोना था, फुल कोरोना में मुझे शॉप में भी मुझे ऐसा हुआ कि शॉप भी मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुझे 3 महीने का रेंट बना है, मैं खुद अगर रेंट पे रह रही हूँ तो मैं 3 महीने का भाड़ा कैसे, क्योंकि हर एक इंसान की वहां पे तकलीफें बहुत थी और किसी की कमाई नहीं थी, तो जिस इंसान को जिस शॉप में मैंने 5 साल 2,000 रुपए ज्यादा दिए, उससे मुझे 3 महीने के भाड़े में, उससे मैंने बोला था मुझे भाड़ा, मैं ऐसा नहीं कि नहीं दूंगी, मुझे भाड़ा देना है पर मैं आधा दे सकती हूँ, जितना जितना होगा धीरे धीरे कंप्लीट करूंगी, तो बोला कि छोड़ दो आप, मैंने छोड़ दूंगी कोई बात नहीं, तो वहां से भी धक्का मिला मुझे, मेरे डिपोजिट चले गए, मेरे पास पैसे नहीं थे, रेंट में अच्छा था कि जो रेंट भरते थे तो उन्होंने जो मालिक थे जो ओनर थी लेडीज थी तो उन्होंने मुझे थोड़ी राहत कर दी, तो रेंट में राहत हो गई, फिर मुझे शॉप छोड़नी पड़ी, बिकॉज बस रेंट नहीं, बस छोड़ दो को छोड़ दी, मैं शॉप ढूंढते मुझे दूसरी शॉप मिली, और कोरोना में तो एकदम हिम्मत हार गई थी मैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था कैसे स्टार्ट करो, पर धीरे से एक मुझे सपोर्ट मिला, मैंने एक माना हुआ भाई है मेरा जेके सोनी करके 15 साल से है, उन्होंने मुझे थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट किया कि अगर तुझे कमाना है बिजनेस करना है ठीक है आई विल सपोर्ट यू, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भेज देता है हमें, यूनिवर्स से मैसेज जाता है भेज देता है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया बिजनेस में और मैं आज आपके सामने हो यहाँ पे सक्सेस बिजनेस वुमन की तरह।
0: चलिए राजू जी, बहुत अच्छी स्टोरी आपने अपना बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर रजवी जी से मैं आपसे रूबरू कराता हूं। और हमारे साथ आबरूर से ही विशेष राधा कृष्ण जी जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप शिक्षक भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और साथ ही साथ संगीत का बड़ा शौक है आपको, गाना भी गुनगुनाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक रजवी जान के लिए बहुत ही प्यारा सा गीत आप गुनगुनाइए।
2: रमेश भाई, पहले तो ओम शांति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अवसर प्रदान किया है मुझे छोटी सी फरमाइश करने का।
0: बिल्कुल
2: तो बहुत बहुत आभारी आपका।

0: बहुत
1: थैंक
0: बहुत
1: यू, बहुत
0: धन्यवाद।
1: शुक्रिया शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने गीत सुनाया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं।
0: बहुत बहुत आपका आभार, ओम शांति।
1: ओम शांति, थैंक यू सो मच। आइए फिर से मैं राजवी ज्ञान जी से जुड़ना चाहूंगा, और बहुत ही अच्छा जो है गीत आपने राधा किशन ने डेडिकेट किया, और मैं चाहूंगा कि अभी जैसे कि माता पिता का प्रॉब्लम है, समाज में लोग इसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप इसको कैसे मना लोगों को समझिए, आप उसी सिचुएशन में है और आप यहाँ से लोगों को बताना चाहते हैं कि ये चीजें जो है आप उसको नॉर्मल बच्चों की तरह पाले या बड़ा करें तो वो उसको रिसीव करें। और दूसरी एक अच्छी बात आपने बताया, माता जी कहते हैं आपको, मैंने भी देखा था बचपन में, एक बना हमारे यहाँ सोसाइटी में एक बंदा रहता आपकी तरह, लेकिन उनके पास ना हफ्ते में एक बार लोग जाया करते थे, मेरे को भी लेके जाया करते थे पूजा अर्चना करके, फिर उनसे प्रसाद वगैरह लेके नारियल वगैरह लेके जाते थे, वो देख आते। लेकिन आज वैसा कुछ सिचुएशन बना, शायद समय के साथ साथ चीजें बदलती गई हैं, तो आज काफी चेंजेस आए हैं, तो इन चेंजेस को आप कैसे देखते हैं वो भी थोड़ा सा बताइए, और पहले इन चीजों को लोगों में क्या था, किस तरह से लोग इसे मानते थे।
2: जी मैं ये बता रही थी कि घर मिलने से बहुत मुश्किलें हो रही थी और बहुत दिक्कतें हुई। अरे मुझे तब तक दिक्कत हुई थी कि मुझे 3 बार घर छोड़ना पड़ा था, 3 बार सोसाइटी की वजह से। और मैं सुबह 8 बजे निकल जाती थी शॉप के लिए और रात को 11 बजे आती थी। खाना पकाना तो भी सोसाइटी वाले बोलते थे कि यार ये सुबह 8 बजे निकल जाती है, 11 बजे तक आती है, 12 बजे तक आती है, तो ये क्या करती होगी, तो भी नेगेटिव सोच

0: की वजह से भी मुझे घर खाली करना पड़ा था। ये लोगों की सोच ऐसी, मेरे घर पे कोई मेहमान आ रहा है, मेरे जैसी कोई दूसरी मेरी फ्रेंड्स आ रही है तो भी दिक्कत, क्यों आपके घर पे आपके भाई बहन मामा चाचा नहीं आ रहे? मेरे तो कोई नहीं है, मैं तो मेरे मेरे समाज वाले ही आएंगे मुझे मिलने के लिए, ठीक है? तो वो भी दिक्कत थी, क्यों इसके घर आ रहे हैं? तो मुझे इसकी वजह से इतना टॉर्चरिंग था कि मुझे घर खाली करना पड़ा। मकान मालिक ने बोला घर खाली कर दो। क्यों? बस रात को 11 बजे। क्यों? मैं बिजनेस वूमन हूँ, मैं रात सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जॉब कमेंस बिजनेस करती हूँ, तो मुझे हक है इतना। तो मैं समाज को बस यही, एक टाइम मेरे पास ऐसा आ गया था रमेश जी कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, मुझे नहीं जिंदा रहना है, एक ऐसा पॉइंट आ गया। पर मैं जब पूरी रात रोई थी कि क्या, पर तब जाके मैंने एक सोचा कि अगर मैं अगर ये चीज कर दूंगी ना तो दूसरों में और मेरे में फर्क नहीं है, मुझे एक सिंबल बनना है, ठीक है? आज मुझे देखकर लाखों लोग जीते हैं, लाखों लोग मोटिवेट होते हैं, ठीक है, और लाखों लोग इंस्पायर होते हैं। कि मैं ये बताना चाहती हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अगर जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मुझे ये चीज तक पहुंचो ना, तब मुझे याद कर देना कि अगर मैंने किया है तो आप तो कर सकते हो। यू आर दी नॉर्मल पर्सन। आपका तो परिवार भी है, आपके तो भाई बहन भी है, सब कोई है, आपके पति है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, मेरे पास तो कोई नहीं था। तो मोटिवेट होना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। मुझे एक सिंबल खड़ा करना था, मैंने सिंबल खड़ा किया कि आज लाखों लगा अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो जो मेरे पास लगा के बैठे हैं कि यार हमें राजवी जान ने इतना किया, हम लोग मोटिवेट हो, तो उनका क्या जो मेरे से मोटिवेट होते हैं। तो मैं हार नहीं मानी और मैं बढ़ती गई, दिक्कतें होती है मेरे पास साथ, अभी बहुत सारा कर्ज भी है मेरे पे, पर मैं हिम्मत नहीं हारी। बस मुझे बिजनेस चलाना है, मुझे सिर्फ समाज को इतना कहना है कि अगर मेरे जैसा कोई बंदी हो, कोई अगर है, अगर वो बिजनेस करती है तो प्लीज उसको सपोर्ट करिए, उसके पास जाइए, उसके पास सामान खरीदिए, क्योंकि मुझे 5 रुपए मिलते हैं एक पैकेट के पीछे। तो अगर मेरे पास से खरीदेंगे तो मेरा घर चलेगा और मुझे हिम्मत आएगी, और समाज में अगर मुझे हम लोग जैसे कि मुझे दूध में शक्कर की तरह आप मुझे मीन्स प्लीज मिक्स करिए। तो समाज को इतना बताना चाहते हो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, सब कुछ पॉसिबल है, बस हौसला रखिए और हिम्मत रखिए और बस इतना कि स्ट्रांग रहिए। कोई भी हालात हो, वो भी वक्त निकल जाएगा। मैंने रोड पे 4-4 दिन सोके निकाले हैं रमेश जी, जब घर से निकली थी, जब कोई घर नहीं दे रहा था। पर कुछ कहते हैं ना, कुछ 10% लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। ऐसे कोई जेंडर नहीं है, ऐसा मेल भी है, फीमेल भी है, ट्रांसजेंडर कोई भी हो, 10% की वजह से पूरा समाज बदनाम हो जाता है। तो बस समाज में इतना कहना है कि प्लीज हमें, अगर आपके वहां हैंडीकैप बच्चा पैदा होता है या तो फिर कोई मेंटल डिस्टर्ब बच्चा पैदा होता है, तो आप उनको कितनी केयर करते हैं, पूरी जिंदगी पर उसका फ्यूचर सेव करते। तो अगर हमारा जैसा बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो प्लीज उसको केयर करिए और हमेशा बी स्ट्रॉन्ग लाइफ में। अगर मैं कर सकती तो आप तो बहुत इजीली कर सकते हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल राजवी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया आखिरी में कि भाई जो बच्चे मेंटली रिटायर्ड होते हैं, अपंग होते हैं या फिर दिव्यांग पैदा होते हैं, तो उनके लिए काफी केयर करते हैं, दूसरे लोग भी उसके प्रति जो है सहानुभूति का जो है भावना व्यक्त करते हैं। तो नेचुरली हमें सहानुभूति की जरूरत नहीं है, नेचुरली वो चीजें हुई है तो उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे मुझे लगता है कि हमें ट्रांसजेंडर को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि फिर वो दिक्कतें नहीं होंगी, वो मुश्किलें नहीं। आइए भाई, राधा किशन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप टीचर हैं तो मोस्टली बहुत सारे बच्चे आपके पास भी आते होंगे, तो क्या ऐसा भी कोई केस आता है आपके पास, बच्चे जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो पढ़ने के लिए आते, तो आप क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं, वो थोड़ा सा बताइए।
2: अभी सर ये अपने ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन जहां तक ये विकलांग बच्चों की बात होती है तो हम जैसे उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे उपचारात्मक शिक्षण है तो उस तरह का भी हम प्रयास करते हैं उनके लिए। और ये राजवी जान इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: क्योंकि हाँ मेरा जब पहला बच्चा हुआ था तब मैंने इस समाज के लोगों को बुलाया था अपने घर पर, मुख्यतः आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि समाज के अंदर ऐसा है कि बोले इनका आशीर्वाद मिलेगा तो इन्हें बच्चा जो है वो बहुत मतलब भविष्य के अंदर बहुत अच्छा उठेगा क्या। और आपकी जितने भी श्रद्धा है उनको दीजिए आप।
1: बिल्कुल
2: जब हम उनका आशीर्वाद लेने के लिए जब अपन उनको घर में बुलाते हैं या कोई शादी ब्याह के अंदर है तो हम उनको मोस्टली इनवाइट करते हैं कि इनके आने से बहुत अच्छा होगा, तो हमारे समाज को ये चाहिए कि इनको एक पॉजिटिव तरीके से देखें, इनके ऊपर कोई एहसान नहीं करे, इनका सहयोग करें, इनके
1: बिल्कुल
2: प्रति
1: बिल्कुल
2: अनुभूति रखने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये चाहूंगा कि ये हम सब मानव हैं और एक मानवता के नाते हमें इनको एक बराबर का अधिकार देना चाहिए। और समाज से भी मैं गुजारिश करता हूं कि इन्हें एक सामान्य प्राणी की तरह ही समझे, हमसे अलग नहीं है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चों को बहुत सपोर्ट किया और आगे भी आपसे आशा रखेंगे कि बिल्कुल आपको बिल्कुल निमंत्रित करेंगे हमारे स्कूल के फंक्शन के अंदर। और
1: बिल्कुल
2: आपकी तरफ से अभी बैग की व्यवस्था और हो रही है, जूतों की व्यवस्था भी हुई और तकियों की व्यवस्था भी हुई, इन गरीब बच्चों का जो आपने बहुत पॉजिटिवली सोचा है और आपकी तरफ से हमारे स्कूल के अंदर एक आरओ प्लांट का बहुत बड़ा मतलब वो मशीन लगी, करीब उसकी कीमत लाख रुपए के करीब है, तो इन गरीब बच्चों ने कभी देखा नहीं है ऐसी चीजें, तो आपके वजह से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और आशा करते हैं कि आगे भी हमें सपोर्ट मिलता रहे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद रमेश जी।
1: जी राधा कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने स्कूल के बारे में बताया जहाँ पर हम लोग संस्थान के माध्यम से हेल्प करते हैं, तो वो तो ठीक है। और मैं चाहूंगा कि राजवी जी हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपके हेल्थ को लेकर क्या आप सोचते हैं, फिर क्या डॉक्टर लोग कैसे बिहेव करते हैं, वो थोड़ा सा।
0: सी फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी बच्चा पैदा होता है, बहुत सारे जेंडर्स आइडेंटिटी है, मैं तो कहती हूँ LGBTQ+ जेंडर्स आइडेंटिटी है, नॉट ओनली मी बट जितने भी बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो LGBTQ+ कम्युनिटी में आते हैं, तो उसको सपोर्ट करिए। आगे की जनरेशन ऐसी होनी चाहिए जो वो है ना डेवलप माइंड होनी चाहिए। आप अपनी जो बच्चे पैदा होते हैं उनको ऐसी शिक्षा दीजिए कि अगर ऐसा बच्चा भी दिखे तो प्लीज उसको सपोर्ट करो, क्योंकि हम लोग है ना थोड़ा इमोशनल ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जनरेशन आगे हो तो जनरेशन के लिए मैंने ये किया है। और अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव है और सपोर्टिव है, अगर मेरी जैसी कोई भी अगर चीज मीन्स ट्रांसजेंडर जाती है तो डॉक्टर्स आर वेरी कोऑपरेटिव और बहुत मुझे सपोर्ट भी किया है, और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें मीन्स लाइक सिखाई है, बताई है, और मीन्स उन्होंने मैं हेल्थ की वजह से थोड़ा कॉन्शियस भी हूँ तो मैं ध्यान भी रखती हूँ अपना, तो डॉक्टर्स आर वेरी ग्रेट बिकॉज मैं उनको भगवान का दूसरा दर्जा मानती हूँ, तो कहीं ना कहीं तो उनको सपोर्ट होना ही चाहिए। उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, लाइक उनकी सोच टोटल इक्वल थी अब तक की मेरी लाइफ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ।
1: अच्छी बात आपने बताया, और क्योंकि एक मनुष्य के अंदर भी कुछ ही लोग होंगे जो आपको जो है उस तरह से देख रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बाकी सब लोग तो आपको सम्मानित नजरों से ही देखते हैं, जैसे आपने कहा 10% लोगों की वजह से वो मुश्किलें आ जाती हैं और वो दिक्कतें आती हैं। एक और बात, जैसे कि आपने एक बिजनेस किया फिर दूसरे, अभी ये सेकंड बिजनेस आप कर रहे हैं, तो पहले बिजनेस से आपने क्या सीखा और इसमें सफलता कैसे मिला, दो चीजें हो गई ना आपके पास, एक जगह नुकसान हो गया तो क्यों हुआ, और यहाँ अगर सफलता मिल रही तो कैसे मिल रही, दोनों चीजें मैं चाहूंगा कि बिजनेस टिप्स हमारे दूसरे साथियों को दे ताकि वो समझ जाए कि बिजनेस कैसे करना।
0: जी मैं तो ये सोचती हूँ कि पहला जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया जो नमकीन का शॉप था और पेट शॉप का, दोनों में ठीक है बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स, पहले पेट शॉप में तो अच्छा रिस्पॉन्स भी था थोड़ा बहुत, बट जब मैं मेरी आइडेंटिटी पूरी आ गई तब नमकीन का शॉप चालू था, मैंने कोरोना के बाद तुरंत चालू किया था 2020 में, मैंने तुरंत चालू कर दिया था मेरा बिजनेस। तो दिक्कतें होती है हमको बहुत सारी, जैसे नॉर्मल पर्सन को हो रही है ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत है पहले एक साल हुई मुझे, कोई आता नहीं था मेरी शॉप पे, मेरा चेहरा देख के मेरी आइडेंटिटी देख के कोई सपोर्ट नहीं करता था कि यार अभी इसका कुछ भी हो तो तुरंत ही ऐसे करेंगे कि जैसे किसी एक गाली दे दी, लोग घबरा जाते तो लोग शॉप पे नहीं आते थे, तो उसकी वजह से फिर मुझे बहुत ये हो रहा था कि यार बिजनेस कैसे करूं, मैंने स्टार्ट तो कर दिया ठीक है, तो फिर जैसे कि मेरा एक फाउंडेशन आई थी जिसने मेरा इंटरव्यू दिया था, तो मैं एक खुने में बैठी थी, उन्होंने देखा कि यार ये एक बंदी जो है जो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रगल के लिए बहुत फाइट कर रही है ठीक है, तो उन्होंने इंटरव्यू देके मींस लाइक मेरा इंटरव्यू दिया और मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया, तो वो इंटरव्यू बहुत सारा वायरल हो गया और लाखों लोगों ने देखा और करोड़ों लोगों ने मुझे लाइक किया और शेयर भी हुआ, तो तब जाके मेरी जो बातें थी मेरे दिल की बातें थी वो लोगों के सामने आई और लोगों ने उसे समझा ये जनरेशन में, और जो अभी अपकमिंग जनरेशन है उसने भी समझा, और जो पहली बूढ़ी जनरेशन है ओल्ड जनरेशन उसने ही मुझे समझा कि मुझे बहुत फायदा हुआ मेरी पॉजिटिविटी का, मैंने जो मेरी बातें पेश रखी थी कि मुझे सपोर्ट करो, मैं अगर मेहनत करना चाहती तो व्हाई शुडंट यू, उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो उसके बाद मुझे सपोर्ट मिलता रहा, लोग आते रहे मुझे देखने के लिए, लोग मुझे कश्मीर से भी मिलने आए हैं और तमिलनाडु से मिलने आए स्पेशली मुझे देखने के लिए कि कैसे बिजनेस करते हैं, और सरहद के सोल्जर्स भी आके मुझे कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तर प्रदेश, एमपी के सोल्जर्स भी मुझे आके मिलके गए हैं कि राजवी जान यू आर डूइंग ग्रेट, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई मोटिवेट करता है और कोई कोऑपरेट करता है, सपोर्ट करता है, लोग मुझे स्पेशल सपोर्ट करने हिम्मत देने के लिए आए, मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई, तो मुझे सपोर्ट मिलता गया, बिजनेस करती गई, और उसी दौरान मुझे एक फुटवेयर कंपनी जिसका नाम है द सिक्वेंस स्टोरी, तो उसने है ना मुझे अप्रोच किया कि हम लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, कि हम लोग अगर मेल और फीमेल को सब लोग देते हैं मॉडल में तो आपको क्यों ना दे, उन्होंने ऐसे किया तो मैं आई वॉज शॉक, मैं आई एम नॉट लुकिंग गुड, मैं थोड़ी फैटी हूँ, थोड़ी चब्बी हूँ, और बोले डजंट मैटर, लुक्स डजंट मैटर एट ऑल, अगर आपकी दिल से सुंदरता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, तो मैंने उनका अप्रोच है वो मैंने एक्सेप्ट किया, तो उनकी मैं फर्स्ट गुजरात ट्रांसजेंडर बनी ब्रांड एम्बेसडर मॉडल फुटवेयर कंपनी की, और उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और मैंने फिर एड की और वो बहुत ही चली और मुझे तब सक्सेस मिली एज अ ब्रांड एम्बेसडर। एम्बेसडर मॉडल की तरह। तो ये सब मेरी जो है

0: रिजल्ट्स के, वोटिंग के और स्कूल्स के और कॉलेजेस के सीट्स दी है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज अब सोसाइटी की बारी है कि हमें गवर्नमेंट ने अगर हर कॉलम में थर्ड जेंडर या तो फिर अदर्स का ऑप्शन डाला है तो क्यों सोसाइटी वाइज शुडंट एक्सेप्ट। तो हमारा अगर इंडिया सिंगापुर जैसा बन रहा है, ठीक है, ओके, तो मैं ये चाहती हूँ सोच भी उनकी ऐसी होनी चाहिए कि फ्री माइंड नहीं, आपकी सोच डेवलप माइंड करो, फ्री माइंड मत करिए, ठीक है। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और जेंडर इक्वालिटी बहुत बड़ी चीज है। कैसा भी हो कैसे भी हो आप उसको समझिए और देखिए और फिर आगे बढ़ाइए। हर एक तुलना हर एक किसी की हर एक जैसी मत करिए। 10% की वजह से पूरा 90% समाज बदनाम हो रहा है, तो वैसा मत सोचिए। पहले उसको व्यक्ति को जानिए, सोचिए अगर उसके पास टैलेंट है, अगर उसके पास कुछ करने की चाह है तो आप उसको जॉब दीजिए, बिजनेस दीजिए। और मैं तो चाहती हूँ कि अभी यूपी में भी या एमपी में 15 ट्रांसजेंडर्स को गवर्नमेंट ने हेड कॉन्स्टेबल्स बनाया, तो बहुत बड़ी चीज है। सो ऐसे ही एसटीडी एक्सेप्टर्स, अगर मेरी जैसी बंदी अगर बिजनेस करे तो प्लीज यहाँ पे आइए, नमकीन खरीदिए मेरी शॉप का, ठीक है, जिससे मेरा घर चले, गुजरान चले। और मेरे जैसे दूसरी 10 जो है ट्रांसजेंडर्स हो या फिर LGBTQ+ में से कोई भी कम्युनिटी से कोई भी बंदा या बंदी हो, वो मोटिवेट हो, इंस्पायर हो और आगे की जनरेशन एक इक्वालिटी में चले, कोई भी भीड़ में अलग ना आए, भीड़ में शामिल हो जाए और कोई हमें स्टेयर ना करके भी हम अलग है।
1: राजवी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आपका बिजनेस आपने सफल बनाया, इसके बारे में आपने बताया शुरू का बिजनेस और फिर बाद में आपने ये जो बिजनेस किया इसमें आपको सपोर्ट मिला और फिर एक कंपनी जो फुटवेयर कंपनी है उसने आपको एम्बेसडर के रूप में मौका दिया, एज ए मॉडल साइन किया और फिर इसके बाद आपको जो है काफी तरक्की या काफी नाम भी हुआ और साथ में लोगों का सपोर्ट भी मिलना। तो मैं भी चाहूंगा कि आपको इसी तरह सपोर्ट मिलता रहे और लोग आपके पास आए, रश करें आपके दुकान में ताकि सब लोग आपसे ही खरीदे ज्यादा से ज्यादा, ताकि दूसरे ट्रांसजेंडर को भी मोटिवेशन मिले आपसे और दूसरे लोग भी आपकी तरह मेन स्ट्रीम में आ जाए, इधर उधर न बटके और उनको एक सम्मान जो आपने कहा जैसे सरकार ने स्वीकार किया हर चीज को, वैसे हम सभी सोसाइटी का भी काम है कि हम सभी इसे स्वीकार करें और अपने तरीके से उन्हें जीने का हक दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि कुछ गाने वगैरह फिल्में सुनते होंगे तो थोड़ा सा बताइए आपके पसंदीदा गाने कौन कौन से हैं और एक आध गाना आपका गाना अगर राधा किशन जी को अच्छा लगता है तो मैं चाहूंगा कि आप हाथ ऊपर करिएगा और गुनगुनाइएगा।
0: मुझे ओल्ड सॉन्ग्स बहुत पसंद है और गुजराती सॉन्ग्स की मैं फैन हूँ, तो ओल्ड सॉन्ग्स में से आप कोई भी गाना गा सकते हैं राधा किशन जी, क्योंकि एक प्यार बहुत चीज बड़ी बात होती है, वो माँ का प्यार हो, भाई का प्यार हो, बहन का प्यार हो, ठीक है। तो मेरा एक फेवरेट गाना है वो जो है हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिसको मिली है ये बहार जिंदगी की, ये मेरी कड़ी है जो मैं हमेशा याद रखती हूँ। और मैं ये एक दूसरा गाना भी है जो है जब कोई बात बिगड़ जाए हमेशा तू मेरे साथ रहना, वो भी बहुत अच्छा गाना है, तो मैं ये गुनगुनाती रहती हूँ। और एक दूसरा गाना बहुत अच्छा है जो मैं हमेशा सुनती थी, वो है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, वो गाना बहुत अच्छा है, अगर आप गुनगुना सकते हैं तो गुनगुना दीजिए।
2: तुझसे नाराज जिंदगी हैरान परेशान, तेरे मासूम पे परेशान परेशान।
1: बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया राधा किशन जी, तुझसे नाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजीव जान को अच्छा लगा होगा कि एक अच्छा गीत जो है आपने उनको डेडिकेट किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं फिर से उनको जोड़ना चाहूंगा आप सभी के साथ में, और कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो जरूर आप कमेंट सेशन में अपना सवाल डाल सकते हैं राजवी जी से, अगर कुछ पूछना चाहे। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज कमेंट सेशन में आप अपना नाम और सवाल लिख के भेज दीजिए हमें, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप इसमें प्रोग्राम में जुड़कर उनके साथ बात करना चाहेंगे या सवाल पूछना चाहेंगे उनको, तो जरूर कमेंट सेशन में डालिए, हमें भी अच्छा लगेगा। तो कई बार हम लोग जो है आप खुद क्या सोचते हैं उन चीजों को वो पहले देखिए, और आपका क्या सोच है ट्रांसजेंडर के प्रति वो हमें बताइए, या आप अपने मन से क्या सोचते हैं, है ना। तो मेरी अपनी बात मैं अगर कहूँ तो बचपन में मैंने इन्हें एक माता जी के रूप में, देवी के रूप में हमने देखा था जो हमारे सोसाइटी में, मुझे खास ये चीजें मुझे पता चला। और दूसरा, जब मैं बड़ा हो गया, जवान हुआ, स्कूल कॉलेजेस में वगैरह घूमने लगा तो रास्ते में फिर इनको देख, तो वहां मुझे जो है मेरी पूरी जो आस्था थी वो खत्म हो, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा न्यूट्रल हो गया। तो ये मेरी अपनी ये है कि अपनी सोच है, लेकिन फिर आज मैं राजवी जान को देख रहा हूँ, उनको बातें सुन रहा हूँ, तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि एक इंसान अगर कोई उसमें चेंजेस है फिजिकली तो उसमें उनको कितना मुश्किलें हम डाल रहे हैं, अगर हम उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेल या फीमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम उनपे न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, या उनके ऊपर कुछ जबरदस्ती का जो है

0: जुल्म कर रहा है। अगर हम वो जैसा कुदरत ने दिया, ईश्वर ने दिया, वैसे अगर हम लोग रिसीव कर लेते हैं तो कितना आसान, उनको भी खुशी, हमें भी खुशी, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने विचारों में, अगर हम लोग इन चीजों को, जो चीजें हैं वो अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो बड़ी मुश्किल। तो मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को समझ के देखिए, आप उनके तरफ जाकर देखिए, उनके सोच के साथ अपने आप को रख के देखिए कि उन्हें कितना, अगर आप उस जगह पे होते तो कितना मुश्किलें होती है, क्या सोचते हैं आप, क्या करते हैं ना। तो लाइफ टाइम एक रैटनिंग हो जाती है अगर इस तरह का समाज हमें देखता है, इस कंफ्यूजन में अगर हमें डालकर देखता है। तो निश्चित तौर पे हमें वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें रिसीव करना है, स्वीकार करके आप चलिए आगे बढ़िए। उनको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, दो वक्त की रोटी चाहिए और खुशनुमा जिंदगी चाहिए, है ना। तो इस जेंडर के चक्कर में हमारे दिमाग ना चले और जैसा ईश्वर ने दिया है उसे स्वीकार करते जाए तो कितना खुशी होगा, है ना। तो ये चीजें आप जरा मैनिपुलेट करके अपने आप को देखिए और मुझे लगता है कि बहुत ही आपको जो है हर चीज में स्वीकार भाव होना चाहिए। नेचर ने जो दिया है उसे समझिए और उसका आनंद उठाइए। तो मैं चाहूंगा कि आपके पास अगर कोई सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं राजीव जान से ही कुछ बातें पूछ लेता हूँ। तो मैं चाहूंगा, सबसे पहला जो आपने दो बिजनेस कर दिया था, नमकीन और पेट वाला, उसको छोड़ के ये जो बिजनेस आपने शुरू किया स्नैक्स का, इसमें आपको सफलता कब मिली? क्योंकि एक तो कर्जा लिया आपने, किसी का सपोर्ट है, और चलो कोई भी हो, पैसा तो आपको एज ए क्रेडिट में मिला, पैसा मिला, हो सकता है कि कोई कम इंटरेस्ट में मिला हो, ठीक है, लेकिन पैसे लौटाने तो है, रिटर्न तो करने हैं, वो एक चीज रहती है। अब बिजनेस कर रहे हो, शुरुआत में तो बिजनेस में कैसा होता है कि भाई शुरुआत में दो कस्टमर आए, एक कस्टमर आए, उनका इंतजार करते रहो, दुकान के पास बैठे रहो, है ना। ज्यादा टाइम तक हम बैठते हैं ताकि बिजनेस अच्छा चले, या फिर लोगों के साथ मेरी रूबरू हो जाए, लोग पहचाने, यहाँ चीजें अच्छी मिलती हैं, तो वो बनाने में थोड़ा टाइम लग। तो कितने दिन में आपको एवरेज ऐसा लगा कि 6 महीना या 3 महीने में आपको लगा कि एवरेज आपका सब कुछ हो रहा है, आपका जो रेंट है, इंटरेस्ट है, घर का है, जो भी है वो निकल के कुछ बच रहा है?
1: ये मुश्किल और ये जो कंप्लेन्स है वो तो हमेशा रहेगी। मंथ एंड होता है तो रेंट पे आ जाता है, मंथ एंड होता है तो उनको पैसा देना होता है, मंथ एंड होता है, ये तो हर एक चीज, ये तो नॉर्मल, अगर अगर इंसान हो ना उसके लिए भी वो टेंशन की बात होती है, बिकॉज मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, ठीक है। हम जब जन्म लेते हैं तब भगवान ने कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि आप ये धर्म के हो, हमें इंसान बना के भेजा है। तो हर एक इंसान अगर वो कमाता है या बिजनेस करता है तो उसको कहते हैं ना कि टेंशन तो रहता ही है। अभी भी अगर मैं चाहूँ तो मैं, मेरा तो एक्चुअली 2 महीने का रेंट बाकी है अभी, ठीक है, क्योंकि तो मेरे मॉम का अभी जस्ट रिसेंटली हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो उनको प्लेट डलवाई, अभी मॉम रेस्ट कर रहे हैं घर पे, तो उनका 1 लाख जैसे खर्चा हो गया। बिकॉज ये इतनी महंगाई में अगर मैं, अगर ये 5-5 रुपए के पैकेट बेच के, अगर 10-10 रुपए के पैकेट बेच के मैं अगर ये कर रही हूँ तो मेरे भी दिखाई, मेरे कोई बैंक बैलेंस नहीं, मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है ऐसी, ठीक है। तो डॉक्टर्स भी इतना कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मुझे, मैंने बताया कि देखो सर मैं ऐसे ऐसे है ऐसे ऐसे, तो डॉक्टर बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने मुझे मेरी मॉम का ऑपरेशन इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिया, बताया कि राजवी जान कोई बात नहीं आप इंस्टॉलमेंट से भर देना। तो मुझे बहुत प्लस पॉइंट मिल गया, मैंने मेरी मॉम का ऑपरेशन, जो प्लेट डलवाया, अभी उनकी हड्डी जो है वो यहाँ की हड्डी टूट गई और नीचे आ गई, ठीक है। तो वो भी मिस्टेक से सिटी बस की प्रॉब्लम थी, वो सिटी बस वाले ने गाय को टक्कर मारी, गाय हमारे पे आ गई तो हम लोग गिर गए थे, तो उसकी वजह से मीन्स किसी, और हम लोग कितना भी धीरे चलाए, ड्राइव स्लो करें, मैं तो कहती हूँ ड्राइव स्लो करिए, हमेशा ड्राइव स्लो करते हैं, पर कहते हैं ना आफत आने वाली होती है, तो कहते हैं ना बैल मुझे मार तो हो जाता है ऐसा, तो ऐसे यहाँ पे लग गया तो प्लेट डलवाई, तो मॉम रेस्ट पे है, तो दिक्कत और प्रॉब्लम आती रहती है। पर हाँ, मेरा जो बिजनेस है, मुझे ग्रो करने में मुझे 6 से 8 महीने लगे थे, लोगों को समझाते समझाते, लोगों को दिमाग में बैठाते बैठाते, लोग इंटरव्यूज गए, लोगों ने मीन्स कॉपरेट किया, मैं सोशल मीडिया में आ गए, क्योंकि आज सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी हासिल करना है मीडिया में डाल दीजिए, लाखों लोग, करोड़ों लोगों के पब्लिक में, के बीच में आप हाईलाइट लाइमलाइट हो सकते हैं, तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो उसकी वजह से ही मैं आज इतने यहाँ पे आपके साथ बैठी हूँ और मैं यहाँ पे सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनी हूँ, ट्रांसजेंडर। और दूसरी एक बात कि सोशल मीडिया के द्वारा मेरा मैसेज अमेरिका, यूएसए भी गया, फॉरेन भी गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, हर जगह पे गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज। तो मैं ग्रो, कोई भी हो इंसान है उसको कोई भी बिजनेस है हार नहीं माननी चाहिए, 6-8 महीने लगते हैं, और मुझे थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो गई थी, बिकॉज आई वॉज नॉट, लोग सोचते कि आई वॉज नॉट नॉर्मल, बट मैं समझती हूँ कि मैं भी एक इंसान ही हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, 8 से 10 महीना आपको आपको लगे ग्रो करने में, और एक स्टेबिलिटी आती है बिजनेस में जब तक हम लोग 8-9-10 महीना हम लोग काम करते हैं, मेहनतते हैं, तो एक समय आता है जहां पर हमें एवरेज मिल जाता है कि भाई हाँ इसके बाद आगे हमें जो है ग्रो और कर सकते हैं, बाकी पीछे नहीं हट सकते, इतना तो हमारा एवरेज बिजनेस होता है। तो निश्चित तौर पर एक टाइम लगता है, और वैसे भी गुजराती में कहते हैं कि 1000 दिन आप जो है बिजनेस करिए, 1000 डेज का बिजनेस जब आपने अगर संभाल लिया तो फिर बाद में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता है, आप सक्सेसफुल हो। मतलब बिना कमाए भी अगर 1000 दिन आपने वेट किया है तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन ही जाते हैं। तो वो चीजें हैं, तो 1000 डेज कंप्लीट करो, बाकी सब कुछ ईश्वर आपको सेट कर देगा। तो निश्चित तौर पर ये चीजें है ही है। और चलिए मैं कहूंगा कि अभी हमारे साथ जो है समाज को, जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, आपको समाज में जेंडर को छोड़ के और क्या चीज जो अच्छी नहीं लगती और वो ऐसा होना चाहिए?
1: जेंडर को छोड़ के बात करूं तो मैं आम लेडी, मैं बिलीव करता हूं लेडी, मुझे बहुत शौक है कपड़े पहनने का, ठीक है, मैं जींस पैंट भी पहनती हूँ, शर्ट भी पहनती हूँ, साड़ी से पहनती हूँ, ड्रेस भी पहनती हूँ, मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। और मुझे घूमना, ट्रैवल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ट्रैवल करना, मैं आई लाइक ट्रैवलिंग, बट बिकॉज ऑफ बिजनेस थोड़ा नहीं हो पाता है, और मेरे बहुत सारे ड्रीम्स है जो अभी अचीव करने बाकी है, ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ से शॉप से लेके बड़ा मुझे मॉल खोलना है जिससे मैं दूसरे ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट कर सकूं और मैं मेरे मॉल के अंदर ट्रांसजेंडर्स को रख सकूं, ठीक है, जिससे उनकी रोजगारी बढ़े। गवर्नमेंट ने तो रखी है पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पहल करनी है, ठीक है, जो चाहते हैं उसको, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी चीजें मीन्स लाइक अच्छी लगती है, परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं, ट्रैवल करना अच्छा लगता है और घूमना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे हाई हील्स पहननी बहुत अच्छी लगती है, मैं कई बार साड़ी के ऊपर भी हाई हील्स पहनती हूँ तो ये सब चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मैं वो चीज हमेशा एक लिमिट और एक दायरे में बना के रखती हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या कब कहाँ पहनना है। अगर वही चीज अगर आप बेटियों को समझाएंगे तो बहुत अच्छी बातें होगी, और दूसरी एक बात, बेटों को भी समझाना है, ऐसा नहीं कि हमेशा बेटियां अगर शॉर्ट्स कपड़े पहन के निकलती है तो वो हमेशा मींस लाइक वो अच्छी नहीं है, ठीक है। आप अपने बेटे को समझाइए कि तेरी जो नजर है वो गलत है, ठीक है। तो हर एक इंसान को, हर एक फैमिली को उसके बच्चे को ट्रीट करना बहुत जरूरी, कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हो। मुझे ऐसे मींस बहुत लोगों ने बोला है, अभी रिसेंटली एक जन ने मुझे बोल दिया, बहुत बुरा लग गया मुझे, मुझे ऐसे बंदे ने बोल दिया कि कैसे कि भाई तुम लोगों की औकात क्या है, तुम लोगों की औकात कि तुम जैसो की वजह से ऐसा है। तो मुझे एक हर्ट हो गया, तू मेरा सब कुछ जानते हुए तूने ऐसा बोल दिया कि तेरी औकात क्या है, व्हाट इज मीन बाय औकात। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला ऐसा, मेरे से अगर नीचा मीन्स कितना लो लेवल का हो, मैंने हमेशा रिस्पेक्ट से बात की है, ठीक है। मेरे सब जानते हुए भी हमेशा उसने मुझे पूछे क्या बोला कि तेरी औकात क्या है, मुझे बहुत बुरा लगा कि यार तेरी औकात क्या है, मैंने नहीं बोला ऐसा, क्योंकि उसने अपने उसके परिवार के संस्कार बता दिए, मैंने मेरे परिवार के संस्कार नहीं बताए, ये औकात की बात करके उसने उसके परिवार के संस्कार बता दिया कि उसकी औकात क्या है, पर मैंने उसको हंसकर जवाब दिया कोई बात नहीं, तुम सब जानते हो। वो लाखों लोगों के बीच में स्टेज पे पहुंचना और स्टेज के सामने सम्मान मिलना, वो हर किसी का नॉट, तू अगर तू तो वहां पे एक नॉर्मल इंसान है, तुझे तो दुनिया में कोई नहीं जानता है, एक बार मेरे जैसा बन के तो दिखा, एक बार तू स्टेज पे चढ़ के दिखा, ऐसा कुछ काम कर जिससे लोग तुझे दुनिया पूछे, तूने मुझे औकात की बात कर दी। तो ऐसे ऐसे लोगों की सोच भी है कि वो जो कहीं पे कुछ भी करे वो बदलने वाली नहीं है, चाहे हम कुछ भी करें, ठीक है। तब मुझे ऐसा हर्ट थोड़ा हो गया था, इतना सारा करके वो कोई है नहीं इंसान, पर मैंने उसको मैंने बोला कि चलो वो उसके परिवार के संस्कार है, ठीक है। तो हर एक इंसान कभी भी डिप्रेस ना हो, नेगेटिविटी ना सोचे, कोई भी इंसान कुछ भी बोले, गालियां दे कोई बात नहीं, गालियां उसको ही देती है, पीछे पीछे उसके ही बोलते हैं, जब आप सक्सेस हो उसके पीछे ही लोग गालियां देते हैं और उसके पीछे ही लोग बुरा बोलते हैं, यानी आप अगर आपके पीछे कोई बुरा बोल रहा है मीन्स यू आर सक्सेस। मुझे बहुत हर्ट हो गया, तो वो चीज को मैं बहुत दिनों तक सोचती रही। इतने सारे अवार्ड्स, मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, तो इतना सारा होने के बाद भी हम लोगों की सोच बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो उनके परिवार, उनके संस्कार है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। गो ऑन, मूव ऑन, और ऐसे लोगों को बाय बाय, टाटा, अलविदा।
0: रंजीत जी बहुत अच्छी बात आपने बताया, कई बार होता है कि चीजें जो है हमें सुन के भी अनसुना कर देना है, देखते हुए नहीं देखना, क्योंकि ये हम सबको नहीं बदल सकते, सबकी सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। मेरे पास, मैं किसी के गाली को रिसीव करूं या नहीं करूं ये मेरे हाथ में है, देना किसको है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या दे रहा है, लेकिन लेना मुझे है तो मुझे लेना है या नहीं लेना ये मेरे ऊपर भी डिपेंड। तो निश्चित तौर पर हमें जो है इन सारी चीजों को थोड़ा सा मैनिपुलेट, कई बार हम लोग जो है आवेश या फिर इच्छाएं या हमारी जो बातें होती है जिसकी वजह से हम लोग ये चीजें करें, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में वो व्यक्ति भी समझ गया होगा कि मेरे से गलती हुआ होगा। तो निश्चित तौर पर हमें थोड़ी समय के लिए अपने आप को हटके सोचना है हमेशा, जो है एक समान इंसानियत के भाव को बना के रखना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, है ना, तो चीजें सब कुछ अच्छा हो जाए। तो चलिए राजीव जी, काफी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपको सुनने के बाद सभी ट्रांसजेंडर जितने भी लोग हैं उनके प्रति हमारा सम्मान और भावनाएं जो है शुद्ध हो गई है और उनके प्रति सम्मान बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा और भी। और चाहेंगे कि आप जो सपने देख रहे हैं, जैसे आपको एक मॉल बनाना है जिसमें सारे ट्रांसजेंडर को एक काम मिले और उनका भी लाइफ जो है नॉर्मल इंसान की तरह, वो भी अपना बिजनेस करते हुए, अपनी लाइफ को नौकरी करते हुए अपनी लाइफ को जिए और अच्छी तरह से जिए, ये आपका सपना है और हम चाहेंगे कि आपका ये सपना बहुत जल्दी पूरा हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, ढेर सारी खुशियां आप। और मुझे लगता है कि उनकी बातें सुनने के बाद आपको उनके जीवन की कुछ खास बातें आपने सुनी, हमारी तरह वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तो उन्हें भी जीने दें और आगे बढ़ने दें और कॉमन हमारी तरह समझे उन्हें, है ना, अलग ना समझे। इन शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी भी अपने अंदर से कमिटमेंट करें कि हम ट्रांसजेंडर या ऐसे लोगों को देखने के बाद हम उसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहें, है ना, कुदरत ने जो दिया है उसे स्वीकार करें। ये मेरा मैसेज है, ये मेरी दिली भावना है। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है नेगेटिव कुछ हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप अपने आप पर कंट्रोल करें और उन चीजों को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, है ना। तो हमेशा जो है सकारात्मक रहें और सबको स्वीकार करते हुए आपको अगर हेल्प करना है तो जरूर हेल्प कीजिए, क्योंकि इनको हेल्प करने से आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। और जैसे कि राधा किशन ने याद भी किया कि उनके बच्चे का जन्म होते हैं या शादी होती है तो हम इन्हें जरूर याद करते हैं आशीर्वाद, जब ये आशीर्वाद के लिए याद करते हैं तो निश्चित तौर पर हम इन्हें हमेशा के लिए याद रखें और सकारात्मक रहें उनके प्रति। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते खमा गनीसा, जय हिंद।

0: नमस्ते दोस्तों, चलो आज आपको एक गाने की धुन सुनाता हूँ। आप पहचानना कि ये किस गाने की धुन है। लो सुनो। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। क्या कहा, ये तो पहाड़े की धुन है। हाँ बिल्कुल ठीक। वो देखो, मीना भी अपने दोस्तों के साथ स्कूल में पहाड़ों का खेल खेल रही है।
1: 12 पंजे 60। बिल्कुल ठीक रानो। अब तुम बताओ मीना। 8 पंजे 40
2: और 19 पंजे।
3: 19 पंजे 95, 19 6 114, 19 7 133, 19 8 152, 19 9 171, 19 2 190।
1: अरे वाह दीदी, आपको तो 19 का पूरा पहाड़ा अच्छी तरह याद है, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: मेरा नाम शिखा है, हम कुछ दिन पहले ही इस गांव में आए हैं।
1: ओह, ये मेरी सहेली है रानो, ये मेरा छोटा भाई राजू और मैं मीना।
4: मीना, मिर्च खा के पानी पीना।
1: शिखा दीदी, हम सब रोज शाम को बड़े मैदान में पिट्ठू खेलते हैं, आप हमारे साथ खेलेंगी?
3: जरूर खेलूंगी मीना।
0: और उस दिन के बाद तो शिखा रोज मीना और उसके दोस्तों के साथ खेलती। फिर एक दिन मीना की क्लास में,
5: बच्चों पता है हर साल पूरे जिले में गणित की एक परीक्षा होती है जिसे कहते हैं ओलंपियाड। और इस साल के ओलंपियाड में हमारे स्कूल से जाएगी एक ऐसी लड़की जो कि गणित में बहुत होशियार है।
1: मैं समझ गई बहन जी, आप शिखा दीदी की बात कर रही हैं।
5: हाँ मीना, शिखा ही है वो लड़की, लेकिन वो 3-4 दिनों से स्कूल ही नहीं आ रही।
1: बहन जी, शिखा दीदी हमारे साथ रोज बड़े मैदान में खेलने आती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो खेलने भी नहीं आ रही है।
5: मीना, छुट्टी के बाद हम उसके घर चलेंगे।
0: और स्कूल की छुट्टी के बाद मीना, राजू और मीना की बहन जी पहुँचे शिखा के घर।
1: नमस्ते चाची जी।
6: अरे मीना, राजू, जीते रहो। शिखा भी स्कूल में है क्या?
5: नहीं शिखा की माँ, वो 3-4 दिनों से स्कूल आ ही नहीं रही है।
6: ये आप क्या कह रही हैं बहन जी, शिखा तो रोज सुबह घर से स्कूल के लिए ही निकलती है, आज सुबह भी वो। राजू, मीना, तुम भाग के नदी किनारे जाओ।
1: नदी किनारे?
6: हाँ, क्योंकि जब भी शिखा उदास होती है तो वो नदी के किनारे जाके बैठ जाती है।
1: ठीक है चाची जी। बहन जी आप यही रुकिए, राजू और मैं अभी आते हैं।
0: मीना और राजू भाग के नदी किनारे पहुँचे।
1: शिखा दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं?
3: मीना, राजू, मैं तो ऐसे ही स्कूल की छुट्टी के बाद यहाँ आ गई थी।
1: आप तो 3-4 दिनों से स्कूल आ ही नहीं रही, चाची जी भी परेशान हो रही हैं।
3: क्या तुम मेरे घर गए थे?
1: हाँ दीदी, बहन जी भी आपके घर पे ही है चाची जी के साथ।
4: चाची जी के साथ कर रही है बात।
3: बैठो चुप।
1: क्या हुआ शिखा दीदी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है ना?
3: कुछ नहीं, चलो चलते हैं।
1: शिखा दीदी, मुझे रास्ते में लाला जी की दुकान से घर का थोड़ा सामान भी खरीदना है।
3: ठीक है चलो।
0: और फिर लाला जी की दुकान पहुँच के जब मीना के कहने पे शिखा ने रुपयों का हिसाब लगाया,
3: 20 और 20 50 50 और 15 65 65 और 20 90, नहीं नहीं नहीं, 65 और 20 100, 65 और 20 कितने होते हैं?
1: 85। 65 और 20 85।
3: 65 और 20।
1: राजू, शिखा दीदी को हो क्या गया है, वो तो गणित में इतनी होशियार है।
7: हाँ मीना, और अब ये आसान सा हिसाब भी नहीं जोड़ पा रही।
8: शिखा दीदी, क्या हुआ, आप इतना आसान हिसाब भी नहीं जोड़ पा रही हैं?
3: राजू, तुम नहीं समझोगे।
1: क्या हुआ शिखा दीदी, क्या आप किसी बात से परेशान हैं?
3: छोड़ो मीना, घर चलते हैं।
0: और जब मीना और राजू के साथ शिखा अपने घर पहुंची।
6: कहां गई थी शिखा? बहन जी बता रही थी कि तू 3-4 दिनों से स्कूल जा ही नहीं रही।
3: मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी माँ।
6: ये क्या कह रही हो?
5: शिखा की माँ, एक मिनट मुझे बात करने दो। क्या बात है शिखा, स्कूल में तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या?
3: बहन जी, कुछ दिन पहले।
5: हाँ हाँ शिखा, क्या हुआ था कुछ दिन पहले?
3: बहन जी वो
5: कहो शिखा, घबराओ मत।
3: बहन जी कुछ दिन पहले गणित का सवाल करते हुए मुझसे जरा सी गलती हो गई थी और मास्टर जी ने
5: बताओ शिखा, क्या कहा मास्टर जी ने?
3: मास्टर जी ने मुझे सबके सामने बेवकूफ कहा और डेस्क के ऊपर खड़ा करा दिया। अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि अगर मुझसे दोबारा कोई गलती हुई तो मास्टर जी फिर से सबके सामने मुझे
5: शिखा रो मत। देखो मुश्किल से मुंह छिपा के भागने से मुश्किल हल तो नहीं होती ना, मुश्किल हल होती है उसका सामना, उसका मुकाबला करने से। और इस मुश्किल का मुकाबला करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कल से आओगी ना स्कूल? बोलो शिखा, आओगी ना स्कूल?
3: जी बहन जी।
0: और अगले दिन स्कूल में
5: शिखा तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारी क्लास में जाके मास्टर जी से बात करती हूँ।
3: बहन जी मुझे बहुत डर लग रहा है।
5: तुम चिंता मत करो शिखा, मैं हूँ ना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। मास्टर जी क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकती हूँ?
9: जी बहन जी कहिए।
5: आपने देखा कि शिखा पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही?
9: अजीब बुखार उखार हो गया होगा और क्या?
5: बुखार नहीं, बात कुछ और है।
9: मैं समझा नहीं बहन जी, और क्या बात हो?
5: मास्टर जी आपने उस दिन शिखा को डेस्क पे खड़ा कराया और सबके सामने उसे बेवकूफ कहा, इस बात से उसे बहुत दुख पहुंचा है और उसका आत्मविश्वास बिल्कुल डगमगा गया है। यहाँ तक कि गणित में इतनी होशियार होने के बावजूद वो कल लाला जी की दुकान पे एक आसान सा हिसाब भी नहीं जोड़ पाई और इसी डर की वजह से उसने स्कूल आना भी छोड़ दिया।
9: अब बच्चा गलती करेगा तो सजा तो मिलेगी।
5: लेकिन बच्चों को सजा देने से, उन पर हाथ उठाने से वो सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर हमारी छोटी सी गलती पे कोई हमें डांटे या हम पे हाथ उठाए तो हमें कैसा लगेगा?
9: अब आप ठीक कह रही बहन जी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए हम अभी शिखा के घर चलते हैं और अब...
5: शिखा बाहर ही है। शिखा अंदर आओ।
9: शिखा बेटी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी भी बच्चे को ना तो सजा दूंगा और ना ही उसका अपमान करूंगा।
4: अपमान नहीं करूंगा, अच्छा इंसान बनूंगा।
0: उस दिन के बाद से मास्टर जी ने किसी भी बच्चे को ना तो कभी डांटा और ना ही किसी बच्चे पे अपना हाथ उठाया। और फिर एक महीने बाद आया ओलंपियाड और पता है उसमें पहले नंबर पे कौन आया? अपनी शिखा। अब समय है मीना और मिट्टू की एक प्यारी सी कविता सुनने का।
7: करे जो बच्चा गलती उसको प्यार से ही समझाएं,
4: लेकिन टीचर बच्चों पे हाथ ना कभी उठाएं।
0: भाई वाह, कितनी गहरी बात कह गए इतनी छोटी सी कविता में अपनी मीना और मिट्टू। चलो अब सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना।

0: गाना तो सचमुच कमाल का था, अब कहाँ चलना है सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल ठीक, अब चलना है खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली। हाँ मैं तुम्हें तीन कड़ियाँ बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल। तो सुनो पहली कड़ी। पैर नहीं है मेरे फिर भी दूर दूर मैं जाती, बोल नहीं सकती मैं लेकिन बातें कई बताती। चलो चलो शाबाश, जल्दी से सोचो। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। लाल रंग के डब्बे में मैं अक्सर डाली जाती हूँ, कहीं भी जाने से पहले खुद पे मोहर लगवाती हूँ।
2: क्या हो सकता है? सोचो।
3: बहन जी ये पहली तो बहुत मुश्किल है, तीसरी कड़ी भी बता ही दीजिए।
1: ठीक है कृष्णा। बच्चों अब सुनो तीसरी कड़ी। च से मेरा नाम शुरू है, ठ पे आके खत्म हुआ, मुझको तुम तक जो पहुंचाता उसको कहते डाकिया। हाँ शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपने सुझाव, अपने विचार, अपने अनुभव अपनी प्यारी मीना को लिखते रहना, भूलना मत।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नटखट बंटी। बंटी अपने पापा के साथ सर्कस देखने गया।
2: वाह वाह, क्या करतब है, मजा आ गया।
1: सर्कस खत्म होने पर
2: पापा, सर्कस की तो अच्छा था ना, ये लोग यह बड़ी कुशलता से कर लेते हैं।
3: हाँ बेटा,
2: जब भी शहर में सर्कस आएगा हम इसे जरूर देखेंगे। इतने बढ़िया करतब बार बार देखने में मजा आएगा। मुझे सबसे ज्यादा जो करतब पसंद आया वो जोकर का छड़ी पर प्लेट घुमाना था। काश मैं उसकी तरह जगलिंग कर पाता। पापा देखना, एक दिन मैं भी अच्छी जगलिंग कर लूँगा।
1: पापा और बंटी दोनों घर आ गए।
3: बंटी, लगता है तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं है, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया था?
2: हाँ, वो मार्केट गई हैं।
1: बंटी जगलिंग करने की प्रैक्टिस में जुट गया।
2: मैं अच्छा कर रहा हूँ ना?
3: अरे वाह बंटी। हाँ सचमुच बेटे, तुम तो बिल्कुल सर्कस के जोकर की तरह करतब कर रहे हो। बड़े होने पर तुम जगलर ही क्यों नहीं बन जाते?
2: हाँ पापा, मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा जगलर बन सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो यह जरूर सच होगा।
4: उफ, बाजार में कितनी भीड़ थी, शॉपिंग करने में तो जान ही निकल गई।
2: मम्मी आ गई। बताओ ना मम्मी, मल्ली क्या लाई हो?
4: एक मिनट बेटा।
3: बंटी बंटी थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारी मम्मी थक गई होंगी। अरे उन्हें जरा सांस तो लेने दो।
4: बहुत अच्छे कुशन मिल रहे थे तो मैं ले आई।
3: बहुत अच्छा किया, घर में कुशन की जरूरत भी थी।
4: और हाँ बंटी बेटा, तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ क्रेयॉन्स, बहुत दिनों से तुम मांग रहे थे ना, अब तो खुश हो ना?
2: थैंक यू मम्मी।
3: तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई ना, अब अपनी मन पसंद के रंग भर कर पेंटिंग करो। और हाँ, पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि सभी का मन मोह ले।
2: पापा मैं कोशिश करूँगा।
4: ये देखो, मैं बहुत खूबसूरत क्रॉकरी भी लाई हूँ, कम दामों में मिल गई इसलिए ले आई।
2: क्रॉकरी क्या होती है, जरा मुझे भी तो दिखाइए।
3: अरे वाह।
4: अरे संभल कर बंटी, क्रॉकरी बहुत नाजुक होती है।
2: अरे ये क्रॉकरी तो वह जोकर उछाल रहा था, क्यों ना मैं भी इनसे प्रैक्टिस करूँ।
4: बंटी नहीं।
1: पर बंटी के हाथों से क्रॉकरी टूट जाती है।
2: ओ, ये क्या हो गया, अब मुझे यकीन नहीं है कि मैं अच्छा जगलर बन सकता हूँ।
1: और फिर मम्मी बंटी को समझाती है कि हर चीज अभ्यास से आती है और जगलर बनने के लिए क्रॉकरी से अभ्यास करने की जरूरत नहीं थी।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: फ्रेंड्स, आज फिर हम हाजिर हैं 10th लेसन फॉर क्लास 10th लेकर के। इसका नाम है द ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। तो डैश टेनवुड के राइटर थे, आप सबने पढ़ा है गोल्डन रेज बुक का नाम, तो भी आप सब जानते हैं, और आरबीएससी के लिए थे, ये सब भी आप जानते हैं। ओके, सीधे सीधे हम एक्टिविटी वन में आ जाते हैं और ए और बी को छोड़ करके सी में आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंप्लेंट ऑफ बाबुलीज मदर इन हर लेटर्स टू हिम। व्हाट वाज द कंप्लेंट, तो यहाँ पर क्या शिकायत थी ऑफ बाबुलीज मदर, बाबुली की माता जी की, इन हर लेटर्स टू हिम, जो पत्र उनको लिखा करती थी उसमें वो क्या शिकायत करती थी। तो द कंप्लेंट ऑफ बाबुलीज मदर इन हर लेटर्स टू हिम वास, क्योंकि हमें लिखना है शिकायत, कंप्लेंट, तो ये पूरा हिस्सा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और व्हाट हटा के हेल्पिंग वर्ब वास लगाएंगे हम, द कंप्लेंट ऑफ बाबुलीज मदर इन हर लेटर्स टू हिम वास। देखते हैं शुरू में लेसन के, जहां पे हमें आंसर मिलेगा इसका। यहाँ पर देखिए सेकेंड पैराग्राफ में अभी देख रहा हूँ, हाँ, वाज द नेग्लिजेंसी ऑफ द राइटर, द वाज कंप्लेंट वाज अबाउट हिज नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हिज मदर। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड बाबुलीज वाइफ रिएक्ट टू हियर अबाउट द पार्टीशन, बंटवारे की बात सुनकर के क्या कहा उसने, वो बहुत खुश हुई थी, उसने पूछा था ना कब होने वाला है बंटवारा। देखिए, हाउ डिड पास्ट सिंपल, बाबुलीज वाइफ रिएक्टेड टू हियर अबाउट द पार्टीशन बाय सेइंग दैट, इसको ऐसे करेंगे, ये कहते हुए उन्होंने क्या कहा था, when, what would be our share and how much would it fetch us on selling it, है ना, ये सब क्वेश्चन सुनने किए थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, टोटल चार क्वेश्चन है, इसमें फोर क्वेश्चन हैं। what was the attitude of Babuji's second brother regarding the partition, तो इसको भी पहले की तरह ही करेंगे। द एटीट्यूड ऑफ बाबुलीज सेकंड ब्रदर रिगार्डिंग द पार्टीशन वास, बंटवारे को लेकर के उसके जो दूसरा बीच का भाई था उसका क्या मानना था। ही वाज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इनटू हिज वाइफ्स ईयर एंड वास देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस, इट वाज लाइक द बूचर्स नाइफ गोइंग टू द Restored to sharpen itself. ये वाला आंसर इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डिड बाबुली फील व्हेन ही अकंपनीड हिज एल्डर ब्रदर टू द पेडी फील्ड, जब खेतों की तरफ जाता था तो वो

ऐसा महसूस करता था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन्होंने इन खेतों के ऊपर एक एक पसीने की बूंद उनकी मोतियों की तरह बिखर रही हो। आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन द हिंदी एंड आपको इंग्लिश में इसको लिखना आना चाहिए। बाबुली फेल्ट व्हेन ही कंपनीड हिज एल्डर ब्रदर टू द पेडी फील्ड्स। बाबुली फेल्ट, अब यहां से शुरू करेंगे हम, फील्ड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा फेल्ट। बाबुली फेल्ट दैट एवरीवेयर ही कुड फील दैट एवरीवेयर द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, हिज पाम एंड हिज फिंगर्स ऑन द बॉसम ऑफ द पेडी फील्ड्स स्पार्कल्ड द पर्ल्स ऑफ माई एल्डर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स स्वैट। यू आर शोइंग हिम द फील्ड्स एज अ फादर वुड इंट्रोड्यूस अ स्ट्रेंजर टू फैमिली मेंबर्स। ये फोर्थ क्वेश्चन, पांचवा भी है अभी इसमें, मैंने अभी देखा था। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई वाज बाबुलीज रिस्ट वॉच मॉर्गेज्ड, उसकी घड़ी को क्यों मॉर्गेज रखा गया था, ताकि बाबुली को 150 रुपीज भेजे जा सके। बाबुलीज रिस्ट वॉच वाज मॉर्गेज्ड टू बिकॉज ही नीडेड 150 रुपीज एंड हिज ओल्डर हिज एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू सेंड हिम फॉर हिज इंटरव्यू। ओके, तो डी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। टोटल देयर आर 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना पड़ेगा, ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, 60 वर्ड्स में आंसर देना। हाउ डिड बाबुली डिफरेंशिएट बिटवीन हिज स्टूडेंट लाइफ एंड द प्रेजेंट लाइफ। शुरू होता है उसने कि स्टूडेंट लाइफ में क्या करता था, अभी कैसी स्थिति है उसकी। सेकंड क्वेश्चन, हाउ वाज बाबुली फेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट होम व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। जब वो स्टूडेंट था, घर जाता था, तो कैसे उसकी देखभाल की जाती थी। हाउ डिड द फैमिली मेंबर्स बिहेव विद बाबुली व्हेन ही केम होम एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। बंटवारे के समय जब वो आया तो कैसा व्यवहार किया। विच childhood memories it come up in Babuli's mind when he was on the village road while returning from Bhubaneswar. Justify the title of the story, the tribute. Activity second may vocabulary, match the words in column A with the words of the their meanings in column B and also use them in your own word or sentence. Compassion, feeling of sympathy. Example hai, the younger brother had no compassion for the elder brother. इस तरह से कुछ words हैं, उनको आपको A और B को match करना है। देखिए हम देखते हैं कुछ words। A में है indispensable, abominable, adamant, soul, tattered, mortgaged, pathetic, coagulated, vicinity. अब इसको फर्स्ट वर्ड को लेते हैं, indispensable. पहले हम tattered को देख लेते हैं, tattered है फिफ्थ नंबर पे, इसका पहला ही पहला वर्ड है और इंडिस्पेंसिबल का वेरी अर्जेंट सेकेंड नंबर पे जो है, एबोमिनेबल का विसिनिटी का अनियर बाई प्लेस हो जाएगा, स्ट्रोल का रिलैक्स वॉक हो जाएगा, एडमेंट का देखते हैं हम फर्म, इसका सिक्स नंबर पे जो है वो फर्म। डी में फाइंड आउट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको याद होने चाहिए। सी में है राइट वन वर्ड फ्रॉम द लेसन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अ स्पून विद अ लॉन्ग हैंडल, स्पून, अ नियर बाय प्लेस विसिनिटी,
thanklessness in something small in quantity or sacred. ये सब है. तो डी में आ जाइए, कन्वर्ट द फॉलोइंग कंजंक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स एंड फ्रेम वन सेंटेंस ऑन ईच. तो भी छोड़ देते हैं. ई में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स. ये भी सिनोनिम एंटोनिम्स का है, उसको हम छोड़ करके आगे चलते हैं. एक्टिविटी थ्री, ग्रामर और रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज. क्लॉज पढ़ रहे हैं अभी, हमने नाउन क्लॉज पढ़ा था नाइन्थ लेसन में, आज रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज. एन एडजेक्टिव क्लॉज वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन द सेम वे एज अ नाउन क्लॉज वर्क्स एज अ नाउन इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं उसमें एडजेक्टिव क्लॉज भी जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे कि नाउन क्लॉज में नाउन करता है. एन एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज और टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. जो एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो मॉडिफाई करता है किसको, यानी कुछ बताता है अबाउट नाउन, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में. द नाउन, संज्ञा और प्रोनाउन और सर्वनाम दैट इज मॉडिफाइड इज नोन एज द एंटीसीडेंट. उसको जो मॉडिफाई किया जाता है उसी को एंटीसीडेंट कहा जाता है. यूजुअली एन एडजेक्टिव क्लॉज इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स एंटीसीडेंट. तो नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद ही एडजेक्टिव क्लॉज होता है. द क्लॉज इज कनेक्टेड टू इट्स एंटीसीडेंट बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन. और ये रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, हूज, विच, दैट, बी, इट मे, दैट बी, इट मे ऑल्सो बी कनेक्टेड बाय अ रिलेटिव एडवर्ब वाई, वेन, वेयर. हेंस दिस क्लॉज इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज अ रिलेटिव क्लॉज. तो एडजेक्टिव क्लॉज को जिससे जोड़ा जाता है वो रिलेटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं, जो बताया यहाँ पे हु, whom, whose, which. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेस, अब ये कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं. डिफाइनिंग बाय, फर्स्ट है डिफाइनिंग, ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज. इसको डिफाइनिंग भी कह सकते हैं या रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज. दूसरा है नॉन डिफाइनिंग, ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस. पहला है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. अब देखिए डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग, पहला है डिफाइनिंग. अ डॉक्टर इज अ पर्सन, अब इसको जोड़ा कैसे, देखिए अ डॉक्टर इज अ पर्सन हु हैज बीन ट्रेन्ड इन मेडिकल साइंस. जाहिर सी बात है एक डॉक्टर वो व्यक्ति होता है जो कि चिकित्सा विज्ञान में प्रशिक्षित होता है. अब इसको जोड़ा कैसे, जो हु, तो अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो गया, हु हैज बीन ट्रेन्ड इन मेडिकल साइंस. दूसरा है एन एथिस्ट इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. एक एथिस्ट वो व्यक्ति होता है जो कि ईश्वर में आस्था नहीं रखता. अ टीचर इज अ पर्सन हु इम्पार्ट्स नॉलेज टू स्टूडेंट्स. टीचर वो होता है जो बच्चों को नॉलेज देता है. इफ वी ओमिट द वर्ड्स इन इटैलिक्स, अगर इटैलिक्स में जो लिखे हुए शब्द है वो हटा दें, वी लर्न ओनली दैट, तो हम यही सीखेंगे कि अ डॉक्टर इज अ पर्सन, एन एथिस्ट इज अ पर्सन एंड अ टीचर इज अ पर्सन. बस इससे ज्यादा हमें कुछ समझ में नहीं आएगा. सच इंफॉर्मेशन अबाउट दीज पर्सन इज अनसेटिस्फैक्ट्री. इससे आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं. इवन दो यहां तक कि ऑल द थ्री सेंटेंसेस, ये सारे के सारे तीनों के तीनों वाक्य आर ग्रामेटिकली करेक्ट, अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये ठीक है. द पर्सन
in the sentence are defined or distinguished from each other, but the adjective clauses in italics, the definition of a teacher is no longer simply a person, but a person who imparts knowledge to students. लेकिन वो person भी कैसा जो विद्यार्थियों को knowledge देता है, as the antecedents in all the three sentences have been defined by the adjective clauses, relative clauses, they are called defining clauses, since they are integral part of the sentence, they are not separated from the antecedent by commas. ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर relative pronoun से जोड़ना है adjective clause को और antecedent को, तो who, whom, whose, which, ये सब complete the, अब exercise आ गई है, complete the following sentences by using defining relative clauses. अब इसको जोड़ना है defining relative clauses से. example है, a tailor is a person who stitches clothes. बस कुछ नहीं, simply हमें who लगाना है. a surgeon is a person. अब surgeon कौन हो सकता है? who can do the surgery. a barber is a person who cuts the hair. ये सब इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना. इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक्सरसाइज दी हुई है. अ पोएट इज अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स. तो आपको उसको डिफाइन करना है. द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड ओनली इन डिफाइनिंग क्लॉजेस, इट मे डिनोट बोथ persons and things. The relative pronoun who denotes persons and which denotes things. देखिए, who केवल इंसान के लिए, that इंसान और चीजें दोनों के लिए, और which केवल इंसान के लिए. अब आगे आपको एक और इसमें पार्ट है जिसको कि देखते हैं जरा. यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि हाँ, अभी ये बड़ा है थोड़ा सा, तो इसको कल हम समझने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं भी पूरा हुआ तो फिर हम इसको कल कंप्लीट कर देंगे. यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, आई लाइक मैन दैट वर्क हार्ड. हमें वो लोग पसंद है जो कड़ी मेहनत करते हैं. आई लाइक बुक्स दैट कंटेन क्लासिकल लर्निंग. तो ये एक तरह से दैट के भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. I like men who work hard. ये भी person हो गया. I like books which contain classical learning. ये things हो गई. If the antecedent is a vague noun, pronoun the use of that or who is equally appropriate. I am waiting someone, that या who. Can help me. तो यहाँ पे that और who दोनों से बता रखा है. They are the type of people that या who can support demonetization. तो ये सारी चीजें हैं इसमें. अच्छा, दूसरा point भी आएगा इसमें, non-defining. चलिए इसको, यानी that और which को भी थोड़ा और समझेंगे कल, और non-defining को भी पढ़ेंगे. तो आज

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: अच्छा भुवना, मैं जा रहा हूँ, बाय।
1: कहाँ जा रहे हो भैया?
0: मैं स्कूल जा रहा हूँ।
1: स्कूल की तो छुट्टियाँ हो गए, अब फिर भी स्कूल जा रहे?
0: क्या बात कर रहे हो, छुट्टियाँ हैं?
1: हाँ।
0: अरे मैं तो भूल ही गया, हमारे स्कूल की तो छुट्टियाँ पड़ गई।
2: लगता है पंकज अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहा है, क्यों पंकज?
0: हाँ दीदी, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ।
2: और स्कूल की जब छुट्टियाँ होती हैं तो हम सभी बच्चे स्कूल को बहुत मिस करते हैं ना?
1: हाँ दीदी।
2: तो सबसे ज्यादा स्कूल को कौन मिस कर रहा है?
1: मैं।
0: मुझे लगता है मैं मिस कर रहा हूँ।
3: नहीं मैं।
2: मुझे लगता है तुम सब के सब स्कूल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो।
3: हाँ दीदी।
2: तो भुवना, मिस कर रही हो तुम स्कूल को?
1: क्योंकि हम बहुत मजे करती थी स्कूल पे, अब तो बहुत छुट्टियाँ, हम घर पे रहे। रोज स्कूल जाके फ्रेंड से बात करना, एंजॉय करना, पर घर पे कुछ भी नहीं दीदी। नो मस्ती
2: एंड नो फ्रेंड्स, है ना? और सैंडी तुम?
3: हाँ, मुझे भी स्कूल की बहुत याद आ रही है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलना कूदना, मस्ती करना, दोस्तों से बातें करना, सबकी याद आ रही है बहुत।
2: खेलना कूदना घर में नहीं हो पाता ना जैसे स्कूल में होता है।
3: टीवी देखो फिर घर पे बोर पूरे दिन।
2: और पंकज, तुम स्कूल को क्यों मिस कर रहे हो?
0: मैं स्कूल को मिस कर रहा हूँ, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को मिस कर रहा हूँ। मुझे अपने फ्रेंड्स की याद आ रही है, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ हमेशा मस्ती किया करता था, लेकिन घर पे तो कोई फ्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल अकेला फील कर रहा हूँ।
2: हाँ, जब सुबह से शाम तक हम स्कूल में होते हैं तो इतने ढेर सारे फ्रेंड्स हमारे साथ में होते हैं, छुट्टियों में वो सब बहुत याद आते हैं ना?
0: हाँ दीदी।
2: किसी को पढ़ाई की याद आती है क्या?
1: मुझे आती है। हम ना क्लास में पढ़ाई के साथ मस्ती, टीचर्स के साथ इतना एंजॉयमेंट, हम जब पढ़ रहे हैं ना वो एक नया सा हम कुछ सीख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता।
2: अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ भुवना, तुम्हारे स्कूल की सबसे अच्छी चीज क्या है?
1: अच्छी चीज मतलब हमारी क्लास।
2: तुम्हारी क्लास?
1: हाँ।
2: अच्छा, मतलब और क्लास के टीचर्स भी बहुत अच्छे होंगे फिर तो?
1: हाँ।
2: तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है?
1: मेरी साइंस टीचर।
2: और वो तुम्हारी फेवरेट क्यों है?
1: क्योंकि वो इतनी अच्छे से समझाती है और हमारे साथ जोक्स बोलती है, एंजॉय करती है, सब कुछ करती है, जैसे हमारी बेस्ट फ्रेंड हो।
2: अरे वाह, मतलब पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करती है और एंजॉय भी करती है, इसीलिए बच्चों की वो फेवरेट टीचर है।
1: हाँ।
2: अरे वाह। और सैंडी, तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है अब तक?
3: अब तक तो फिफ्थ तक एक मैम थी, मंजू मैम, जो हमें इंग्लिश पढ़ाती थी।
2: और वो तुम्हारी फेवरेट क्यों थी?
3: क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी और मस्ती मजाक स्टोरी सुनाती थी हमें।
2: स्टोरीज भी सुनाती थी? हाँ। और बच्चों को तो स्टोरी सुनना बहुत अच्छा बहुत लगता है ना? तो क्या कभी उनसे डांट पड़ी है?
3: मार भी खाई है इनका।
2: मार भी खाई है? क्यों?
3: क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है ना।
2: अच्छा, मंजू मैम इंग्लिश पढ़ाती थी।
3: हाँ।
2: क्यों, आप इंग्लिश का होमवर्क नहीं करते थे क्या?
3: करता था पर उतना नहीं जितना करना चाहिए।
0: हमेशा गलतियाँ।
3: हाँ।
2: और पंकज की फेवरेट टीचर कौन है?
0: एक्चुअली मेरी फेवरेट टीचर कोई नहीं है।
2: फेवरेट टीचर कोई नहीं है? इतने साल स्कूल गए और एक भी फेवरेट टीचर नहीं है?
0: सब फेवरेट है,
2: मतलब सारे टीचर्स अच्छे होते हैं।
0: हाँ।
2: है ना? क्योंकि हमें हर टीचर से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है।
3: हाँ दीदी।
2: कम ज्यादा या सब्जेक्ट की नॉलेज तो हमें वही दे पाते हैं, है कि नहीं?
0: हाँ दीदी।
2: ठीक है, ये तो हुई टीचर्स की बात, अब मुझे बताओ तुम लोग के फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं स्कूल में?
3: मेरे अकाउंट।
2: अच्छा, सैंडी को तो अकाउंट्स पसंद है।
0: और मुझे बायो पसंद है।
2: बायो पसंद है। और भुवना को?
1: सोशल।
2: सोशल साइंस। अच्छा सैंडी, तुम्हें अकाउंट्स क्यों पसंद है?
3: इजी लगता मुझे अकाउंट ऐसे,
2: मतलब तुम्हें कैलकुलेशंस अच्छे लगते हैं। और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है?
3: बीएसटी। हां, बिजनेस स्टडी।
2: बिजनेस स्टडीज क्यों, उसमें बहुत थ्योरी होती है?
3: हाँ, सारे टॉपिक जैसे, तो बोरिंग लगता।
2: पर सबसे मजा आता है कैलकुलेशंस करने में सैंडी में।
3: हाँ।
2: तो ठीक है, चलो अब कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी किसी को तो हम किसकी हेल्प लेंगे? सैंडी की।
0: मेरी।
2: ठीक है, और पंकज तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
0: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बायो।
2: बायो। बायो में क्या अच्छा लगता है?
0: बायो में मुझे सब कुछ अच्छा लगता है।
2: सब कुछ
0: मुझे बायो पढ़ना बहुत पसंद है।
2: क्या उसमें डायग्राम्स होते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी के बारे में या फिर और क्या ऐसी चीज़ें जो तुम्हें अच्छी लगती है बायो में?
0: बायो में तो सब कुछ होता है, प्लांट्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो सारी चीज़ें ही पसंद है मुझे।
2: मतलब तुम्हें उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना अच्छा लगता?
0: मुझे जीवों के बारे में जानना बहुत पसंद है। किसी
2: जीवों के बारे में? अच्छा, मतलब उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये सब तुम्हें जानना बहुत अच्छा लगता है।
0: जी दीदी।
2: और भुवना, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
1: सोशल साइंस।
2: वो सब्जेक्ट तुम्हें क्यों अच्छा लगता है?
1: क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
2: बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है हमें भी तो बताओ।
1: वो हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री में जाते हैं हम कहीं खो जाते हैं।
2: अच्छा, हिस्ट्री पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है?
1: और सिविक्स भी।
2: और सिविक्स भी, मतलब जानकारियाँ मिलती हैं कि हमारे देश में और दुनिया में पहले क्या क्या हुआ है, तो वो सब जानकारियाँ इकट्ठा करना आपको बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ, हमारा प्रेजेंट स्टेट कैसा है, हमारा पास्ट स्टेट कैसा है, और ये मुझे मेरी एम के लिए भी बहुत सहायता करेगी कि मैं एक लॉयर बनना चाहती हूँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है।
2: जब हम छोटे से ही हमारा कोई फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा तैयार करें।
0: क्या बात है, भुवना को हिस्ट्री इतनी पसंद है कि वो उसमें खो जाती है, और हम जब पढ़ते थे तो सो जाते थे।
2: हिस्ट्री पढ़ते हुए सो जाते थे?
3: पंकज ने मार भी खाई है इसके लिए।
2: अच्छा, क्यों, क्या हुआ था संडे?
3: क्योंकि हम क्लास में बैठे थे, मैं पंकज पास में, सर हमें पढ़ा रहे थे, सोशल साइंस में हिस्ट्री था। पंकज सो गया बुक्स रख के, मुंडी नीचे करके सो गया, और सर पढ़ा रहे हैं। सर ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा मुझसे पूछा, तो मैं खड़ा के आंसर दे रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं तेरे पास वाले को खड़ा कर, तो पंकज तो सो रहा है, फिर सर ने आके एक थप्पड़ मारा पंकज को।
2: तो मतलब पंकज को हिस्ट्री इतनी बोरिंग लगती थी कि उसको नींद आ जाती थी?
3: हाँ दीदी, मुझे भी बोरिंग।
2: आपको भी बोरिंग लगती थी?
3: पर मुझे जगना पड़ता था इसके लिए।
2: अच्छा, अरे वाह, मतलब दोस्ती के लिए पढ़ाई।
1: मुझे तो ज्योग्राफी में सोना था।
2: क्यों, ज्योग्राफी में नींद क्यों आती
1: है? ना बोरिंग दीदी, कि ये नेचर वो सब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, और मेरी सोशल टीचर इतनी स्लो समझाती है ना, किसी को भी ऐसा लगता है रात हो गई चलो सोते हैं, दादी माँ की कहानियाँ सॉन्ग्स ऐसी सुनाती है क्लास।
2: हाँ, क्योंकि हम लोग का एक एक इंटरेस्ट होता है, और जो टॉपिक हमें अच्छा लगता है वो पढ़ने में तो मजा आता है, पर स्कूल में तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है।
3: हाँ दीदी,
2: है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो सब में जगाना चाहिए।
1: हाँ दीदी,
2: ताकि हम एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास हो जाएं, और बाद में जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है उसे परस्यू करें।
3: हाँ दीदी,
2: है ना।
1: हाँ।
2: अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती है या और कुछ भी होता है?
1: स्पोर्ट्स
2: और
0: मस्तियाँ
2: और कल्चरल एक्टिविटीज।
1: हाँ, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे,
2: स्पोर्ट्स डे, इतनी सारी चीजें होती है ना स्कूल में।
0: पिकनिक भी होती है दीदी।
3: होती है
2: पिकनिक और मस्ती तो सबको याद आती है, पहले मुझे ये बताओ स्पोर्ट्स कौन कौन खेलता है यहाँ पे?
1: मैं
0: भी।
2: सब लोग खेलते हैं। भुवना, तुम कौन सा गेम खेलती हो?
1: मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ।
2: बास्केटबॉल, अच्छा आपको बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है?
1: हाँ।
2: अरे वाह, और सैंडी?
3: क्रिकेट।
2: क्रिकेट, तो मतलब तुम स्कूल की क्रिकेट टीम में हो क्या?
3: ऐसे गए नहीं कभी, पर खेले हुए।
2: खेले हो, अरे वाह,
3: हमसे अच्छे से खिलाड़ी है स्कूल में।
2: अच्छे अच्छे खिलाड़ी तो होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स अपने में एक अच्छी एक्सरसाइज भी है, और उसमें मजा भी तो आता है।
3: हाँ।
2: और पंकज?
0: मुझे भी क्रिकेट पसंद है।
2: और भुवना को कोई और गेम भी अच्छा लगता है क्या?
1: मैं खो खो खेलती हूँ, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला।
2: गोल्ड मेडल, आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन हुआ था या नहीं?
1: हाँ।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब भुवना बहुत तेज भागती है।
0: तेज तो मैं भी भागता हूँ, मुझे रिले रेस में सेकंड प्राइज मिला।
2: अरे वाह, और सैंडी?
3: मुझे कुछ नहीं मिला। मैं जिम्नास्टिक में खेला हुआ।
2: अच्छा, उसमें क्या करते हो?
3: उसमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है,
0: योगास,
3: हैंड स्टैंड, हाथ पे खड़े होना,
0: गार्ड व्हील,
3: फिर उल्टी डाई, बिग बोर्ड।
2: और ये सब आपको कौन सिखाता है?
3: ये टीचर,
0: पीटीआई टीचर।
2: पीटीआई टीचर, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। भुवना, आपने भी ये सब सीखा है क्या?
1: मैंने तो हुला हुप सी, जो रिंग है, रिंग
0: अपने वेश के ऊपर घुमाना।
1: मैंने रिंग सीखी है, वो मैं घुमाती हूँ एटलीस्ट 2 मिनट्स तक।
2: 2 मिनट्स तक आप उस रिंग को घुमाते हो?
1: हाँ, ये तो मिनिमम है।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है।
1: हाँ।
2: इसको तो आपको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। बच्चों, स्पोर्ट्स के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, अगर आप आगे खेलते हैं स्पोर्ट्स में तो फिर उसके थ्रू आपके एडमिशन्स में भी आपको मदद मिलती है, और वो सर्टिफिकेट्स आगे भी काम में आते हैं, इसलिए हमें स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलना भी चाहिए।
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा ये बताओ मुझे, आप लोगों के क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताओ।
3: मेरी क्लास में एक फ्रेंड है नितेश मेरा, जो मेरे साथ बैठता है, अच्छा फ्रेंड है, जो हमेशा मेरे साथ देता है, हमेशा मेरे साथ रहता है। क्लास में हम दोनों साथ में पढ़ते हैं, साथ में मस्ती करते हैं
2: क्लास में। अच्छा एक बात, कभी कुछ ऐसा हुआ जब आपकी पूरी क्लास ने इकट्ठा होकर साथ में मस्ती की हो?
3: हाँ, हमने होली खेली थी।
2: होली?
3: हाँ, हमारे स्कूल में से होली अलाउ नहीं है खेलने का, पर हमारी क्लास, कॉमर्स क्लास ने शुरुआत तो मैंने करी थी, एंड पूरी पूरी क्लास ने करी। उसके लिए मुझे पनिश भी किया गया था मैम ने।
2: पनिशमेंट मिला था? क्या पनिशमेंट मिला था सैंडी को?
3: जो हम लोगों ने कचरा करा था उससे मुझे झाड़ू निकालना पड़ा था।
2: मतलब झाड़ू से पूरी सफाई की?
3: हाँ, सफाई करनी पड़ी मुझे।
2: बात तो सही है, जब गंदा किया है तो साफ तो करना पड़ेगा।
3: पर मैंने ज्यादा नहीं खेला था, थोड़ा सही बस एक को लगाया था।
0: शुरुआत तो तुमने की,
3: शुरुआत तो मैंने कर दी थी।
2: और पंकज तुम्हें ऐसा कुछ याद है?
0: हाँ।
2: क्या?
0: एक बार हमारे क्लास में टीचर्स नहीं थे तो मैं और मेरे सारे क्लासमेट्स क्लास में मस्तियाँ कर रहे थे, और हमारे स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं था लेकिन हम फ़ोन लेके जाते थे और क्लास में गाने सुनते थे। तो गाने सुन रहे थे और प्लास्टिक की बॉल से कैच कैच खेल रहे थे। इतने में हमारे एक टीचर हैं, बायो के टीचर, वो क्लास में एंटर कर गए और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो सब अपनी जगह पर बैठ के भाग के और बॉल क्लास में ही छोड़ गए। मैंने देखा कि बॉल अभी बाहर पड़ी है और सर अभी एंटर ही करने वाले थे, जैसे ही मैंने बॉल उठा के अपने पास रख लिया। लेकिन मैं जब बैठने गया अपनी प्लेस पे तो सर ने मुझे देख लिया जाते हुए, तो उन्हें लगा कि मैं क्लास में मस्तियाँ कर रहा था और उन्होंने बॉल की आवाज़ सुन ली थी बाहर से। तो वो मेरे पास आए और कहा कि तुम बॉल से खेल रहे थे? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा चलो सब चेकिंग करवाओ अपनी बैग। तो इतने में मैंने कह दिया हाँ मैं ही खेल रहा था बॉल से। तो मेरे सारे दूसरे फ्रेंड्स तो बच गए लेकिन मैं फंस गया, और एक लड़का और था जो फ़ोन में गाने चला रहा था, उसने गाना बंद नहीं किया था तो उसका फोन पकड़ लिया था सर ने।
2: क्योंकि कभी कभी जब टीचर्स अचानक से आते हैं तो हम डर जाते हैं।
3: हाँ।
1: होली से याद आया दीदी कि जब मैं होली होती है ना, जब मैं बस में चुपचाप बैठ जाती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, एक लड़का ने स्टार्ट किया दीदी इस होली पे, फुल बॉटल टू बॉटल पानी मेरे मुंह पर फेंक दिया। इतना बुरा लगा, मैं उनको जाकर क्या करूँ दीदी, और सारे शुरू हो गए, यहाँ पानी वहाँ पानी, फिर सीट पे भी पानी, और मेरे साइड जो बैठ रहा था ना वो भी पानी। इतना पानी ना देकर मुझे ना इरिटेशन आ गया, तो मैं नेक्स्ट स्कूल भी नहीं गई, इतना बुरा लगा मुझे। तो छोड़ दो ये तो एक, और सारे जगह पानी पानी, इतना दीदी मैं गीला गीला कर गई। मेरी मम्मी पूछ रही थी तू क्या नहा के आई, ऐसी पूछ रही, मैं क्या बोलूं दीदी, फुल टोटल बस बस ऐसा हो रहा था, एक समुद्र जैसा बन गई आप। और वो ना कल वो बच्चा बोल रहा होली तो है एंजॉय करो, बस भी कोई एंजॉय करता है दीदी, क्या इतना पानी।
2: एक्चुअली स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं ना।
3: हाँ दीदी।
2: तो किसी को खेलने में मजा आता है, किसी को नहीं आता।
1: दीदी आपने कभी खेला आपके बचपन में?
2: मैंने तो बहुत होली खेली है।
3: आपको होली पसंद है दीदी?
2: हाँ मुझे होली बहुत पसंद है।
3: मुझे भी।
2: स्कूल में तो हमें परमिशन नहीं थी होली खेलने की उस टाइम।
1: दीदी आप सोच रहे थे हमारे स्कूल में परमिशन थी क्या? किसी भी स्कूल में परमिशन नहीं होती है दीदी, ऐसे ही खेलते स्टूडेंट्स तो।
2: हाँ मुझे भी याद है, एक बार हमारा 10th का बोर्ड का एग्जाम था और हम लोग दूर थोड़ा सा जाते थे, बस को थोड़ा सा दूर जाना पड़ता था बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो वहाँ से लौटते समय हमारी बस में होली शुरू हुई थी। और फिर एक गर्ल्स की बस थी एक बॉयज की बस थी, दोनों बसेस में जो होली शुरू हुई थी कि 15 किलोमीटर तक वो होली चलती रही थी।
3: मजा आ गया होगा फिर तो।
2: फेस्टिवल्स में भी स्कूल में मजा आता है ना?
1: हाँ,
2: और कोई ना कोई प्रोग्राम भी तुम लोग के स्कूल्स में जरूर होते होंगे।
1: हमारे में आर्ट के प्रोग्राम, साइंस फेयर्स होते हैं। मैंने एक बार साइंस फेयर में पार्ट ली तो मैं सिलेक्ट हो गई। मैंने एक सर्क्यूट बनाई जिसमें एक हट होती है, और मैंने एक सर्क्यूट बनाई उसमें एक बच्चा रहता है लेकिन उसको लाइट नहीं है। मैंने एक फॉर्मूला यूज करके सर्क्यूट बनाई ताकि उसको लाइट आए अंदर।
2: अच्छा आपने बनाया?
1: हाँ।
2: अरे वाह, तो इसके लिए तो आपके टीचर्स ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया होगा।
1: हाँ, जो भी वहाँ आता है हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो हमारे चीफ गेस्ट थे, एक आर्ट एंड कल्चरल प्रोग्राम के कुछ हेड थे, तो वो आए तो मेरे मुझको बोला वेरी गुड, मुझे बहुत वो कॉम्प्लीमेंट बहुत खुश लगी।
3: साइंस फेयर
2: ये तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि आपको अगर साइंस पसंद है, कोई भी सब्जेक्ट पसंद है, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो कुछ नया नया निकल के आता है।
3: हाँ दीदी। हाँ।
2: है ना? और यहाँ पे डांस किसको पसंद है, डांस या सिंगिंग?
1: मुझे
0: मुझे
3: जे।
2: अरे वाह, सबको
3: आता
2: पसंद
3: नहीं डांस।
2: कोई नहीं, पसंद तो है ना?
3: हाँ बहुत।
2: और डांस एंजॉय करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। पूर्णा ने डांस सीखा है क्या?
1: मैं डांस नहीं सीखती हूँ, लेकिन मैंने एक प्रोग्राम की शिव तांडव की मैंने।
2: अच्छा आपने शिव तांडव किया?
1: हाँ।
2: कब?
1: हमारे स्कूल पे अम्मा आई थी जो स्कूल का हेड है, तो उन्होंने ये स्कूल बिल्ड किया, और उन्होंने जब आते हैं वो उनको हगिंग सेंट बुलाते हैं, तो सारे लोग हग करते हैं और चलते, ऐसा बोलते हैं कि जब उनको हग करते हैं ना कुछ अच्छा होता है हमारे जीवन में, ऐसा बिलीफ है। तो वहाँ जो लोग बैठते हैं ना उनको एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो हम सब लोग अमृता स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, स्किट, ऐसे मैंने स्किट भी पार्ट ली स्किट में, और मैंने डांस की शिव तांडव।
2: शिव तांडव किया आपने, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
1: हाँ।
2: और लोगों ने भी पसंद किया होगा।
1: हाँ।
2: क्योंकि शिव तांडव करना तो बहुत डिफिकल्ट है।
1: हाँ,
2: है ना?
1: मैंने ना एक वीक टू वीक प्रैक्टिस की बैठ के।
2: उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं भुवना?
1: लाइक तब ना शिव की थर्ड आई ओपन होता है, तो बहुत एंगर ऐसा होना चाहिए
2: आपके डांस में, वो दिखना चाहिए और एक्सप्रेशन
1: हाँ।
2: में भी, है ना? अरे वाह। और सैंडी आपने कुछ किया है या कभी स्कूल में ऐसा परफॉर्मेंस?
3: नहीं, मैंने कभी नहीं किया।
2: सिंगिंग, डांसिंग, स्किट?
3: मुझे इंटरेस्ट नहीं है।
2: इंटरेस्ट नहीं है। हीरो किसको बनना है यहाँ पे?
3: बनना तो मुझे भी है।
2: फिर डांसिंग और स्किट?
0: हीरो तो सिर्फ पंकज ही बनेगा।
3: नहीं, मैं बनूंगा।
2: अच्छा, पंकज ने तो जरूर पार्टिसिपेट किया होगा। अभी हीरो बनना है पंकज को, तो कुछ तो किया होगा। पंकज बताओ।
0: हाँ, मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था।
2: अच्छा, कब?
0: शांति उनमें ही किया था।
1: ग्रुप डांस था भैया?
0: ग्रुप डांस भी था और सिंग सोलो भी था।
1: ओ, आपने सोलो भी की?
2: कौन से सॉन्ग पे किया था?
0: ग्रुप डांस किया था, बम बम बोले, जो तारे जमीन पे का सॉन्ग है उस पे किया था।
2: ठीक है, कोई नहीं। और बताओ, तुम लोग के स्कूल में और किस किस तरीके के प्रोग्राम होते हैं जिनको तुम सबसे ज्यादा इंजॉय करते हो?
3: रिपब्लिक डे। और
1: मैं स्पोर्ट्स डे को एंजॉय करती हूँ दीदी, क्योंकि सर मुझे हर बार कराटे को सेलेक्ट करते हैं और मैं ब्रिक्स को ब्रेक करती हूँ।
2: अच्छा, आप कराटे में ब्रिक्स को ब्रेक करते हो? कितने ब्रिक्स को ब्रेक करते हो आप?
1: एक साथ दो ब्रिक्स को ब्रेक कर सकती हूँ।
2: अरे वाह,
1: क्योंकि ग्रीन बेल्ट है ना।
2: ग्रीन बेल्ट कराटे?
3: अच्छा,
2: में
3: तुम जूडो खेली हुई हो?
2: कराटे?
3: कराटे, हाँ, सॉरी, कराटे।
2: वेरी नाइस, ये तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। कराटे, जूडो, ऐसा कुछ तो हम सबको।
1: और पिरामिड्स भी बनाते हैं हम।
2: पिरामिड बनाते हो?
3: तो भुवना से डर के रहना पड़ेगा।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपके स्कूल में ये सिखाया जाता है?
1: हाँ।
2: कराटे की क्लास होती है डेली?
1: हाँ, होती है, एवरी फ्राइडे होती
2: है। एवरी फ्राइडे, अरे वाह। और पंकज और सैंडी?
3: हाँ दीदी।
2: आप लोगों को क्या अच्छा लगता है इन प्रोग्राम्स में?
3: मुझे, हमें तो क्रिकेट ही बहुत पसंद है।
2: जैसे रिपब्लिक डे का प्रोग्राम होता है या फिर इंडिपेंडेंस डे पे प्रोग्राम होता है, तो उसमें सबसे अच्छा क्या लगता
0: sports
2: है?
0: स्पोर्ट्स डे।
2: स्पोर्ट्स डे अच्छा लगता है?
0: हाँ दीदी,
2: क्योंकि स्पोर्ट्स में हम लोग खेलते हैं गेम्स।
0: हाँ, स्पोर्ट्स में सब कुछ आता, मस्तियाँ करते।
2: अच्छा, लेकिन मैंने सुना सिंगिंग तो यहाँ पे सबको पसंद है।
0: सिंगिंग?
2: तो फिर कभी स्कूल में गाना नहीं गाया?
1: दीदी, मैं स्कूल में खॉयर ग्रुप में हूँ, तो मैं रोज गाना, प्रेयर्स, वो सब में ही गाती हूँ।
2: अच्छा, आप रोज गाना गाते हो?
1: नहीं, प्रेयर्स होते हैं ना रोज स्कूल को स्टार्ट करने से, नेशनल एंथम में, और मेरी फ्रेंड रोज खॉयर ग्रुप में गाते हैं।
2: अरे वाह। और आप लोग की मॉर्निंग प्रेयर्स में आप लोग कुछ नहीं करते?
3: मैंने, हम पीछे खड़े रहते हैं।
0: मैंने अपनी 4th to 6th क्लास में मैंने प्रेयर्स की है।
2: प्रेयर्स की है? क्योंकि वो प्रेयर्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं?
0: हाँ,
2: स्टेज पे आके।
0: हाँ, और मैंने एक बार रिपब्लिक डे पे सिंगिंग भी की थी।
2: अच्छा, उसके बाद बंद क्यों कर दिया तुम लोगों ने?
3: था नहीं मुझे तो।
2: कोई तो रीजन होगा, सोच के बताओ।
3: अब अच्छा नहीं लगता, पहले थोड़ा है।
2: अच्छा नहीं लगता या कोई और वजह है?
1: स्टेज फियर
2: कि दोस्त क्या कहेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, है ना?
0: हाँ, लेकिन जब छोटे थे तब तो ये सब समझ में नहीं आता था।
2: और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये फियर्स हमारे अंदर आ जाते हैं।
0: हाँ दीदी,
2: लेकिन फियर्स को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बताओ?
3: नहीं पता, आप बताओ दीदी।
2: भुवना, आप बताओगे?
1: मुझे लगता है एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस।
2: फियर्स को फेस करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस तो चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है जब आप फियर को फेस करने की बस हिम्मत दिखाते हो। ट्राई तो करो, एक बार आप फेस करोगे फिर कॉन्फिडेंस आता जाएगा।
1: नेवर लूज होप।
2: हाँ, और स्कूल तो बच्चों ऐसा टाइम होता है जब आपको ये सब मौके मिलते हैं।
0: हाँ दीदी।
3: हाँ दीदी।
2: और बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सब मौके हमें उतना नहीं मिल पाते, है ना? तो
1: हाँ,
2: इसीलिए अगर आपके अंदर कोई फियर हो, दोस्त क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, गलती हो गई तो ये सब भूल के हमें ट्राई करना चाहिए, ताकि अपनी गलतियों से हम सीखें और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए।
3: ओके दीदी।
2: ओके
1: ओके।
2: और
1: दीदी, आपको पता है मैं स्कूल में टॉप भगवद गीता सिंगर हूँ।
2: अच्छा, आप भगवत गीता गाते हो?
1: हाँ।
2: पूरी?
1: पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी चैप्टर्स पता है मुझे।
2: तो आप हमें कुछ गा के सुनाओगे?
1: मैं एक श्लोका सुनाऊंगी 12th चैप्टर की।

0: व्यक्तं तेषां के योग वित्तमाम।
1: अरे वाह बोना, बहुत ही अच्छा था। इसके लिए तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए, है ना?
0: धन्यवाद।
1: तो मतलब स्कूल्स में हमारे ये सब टैलेंट भी बहुत विकसित होते हैं, है कि नहीं?
2: हाँ दीदी।
1: अच्छा मुझे ये बताओ कि स्कूल में क्या कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है?
2: हमारे हेडमास्टर।
1: सैंडी को हेडमास्टर से डर लगता है, और भुवना को?
0: मुझे तो मेरी इंग्लिश टीचर से।
1: इंग्लिश टीचर से डर लगता है?
0: हाँ।
1: क्यों?
0: डांटती रहती, इतनी बुरी मूड होती है दीदी। जब हमको रॉन्ग काउंटिंग की टेस्ट कॉपी में हम जाते, वो अच्छी मूड में है तो ठीक है मार्क्स डालती है, नहीं तो नहीं डालती है। और वो इतनी डांटती दीदी, ऐसी डांटती है, आर यू अ बालू, आर यू अ चिंपैंजी, ऐसा डांटती है। मुझे डर लगता है उनसे, उनको देख कर ही। क्लास में एंटर होते ही इतना बैड मूड देख के सबको ऐसा लगता है कि आज का दिन गया यार। जब भी ना हमको मैम एब्सेंट होती है ना, इतनी खुशी होती है जी, हम बर्थडे भी मस्ती इतना नहीं कर सकते।
2: आर यू बालू?
1: एक्चुअली टीचर्स के पास, टीचर्स तो बड़े होते हैं तो उनके पास बहुत सारे अपने भी टेंशन होते हैं।
0: हाँ,
1: है
0: ये
1: ना?
0: तो करेक्ट।
1: और जब हम बच्चे होते हैं तो हम उन टेंशन से बहुत दूर होते हैं। तो इसलिए कभी कभी टीचर अगर बैड मूड में हो या थोड़ा स्ट्रिक्ट हो तो हमको क्या करना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए, है ना? क्योंकि टीचर है ना।
0: हाँ दीदी।
1: तो बस इसीलिए जैसे हमारे फ्रेंड्स अपने होते हैं वैसे हमारे टीचर्स भी अपने होते हैं, है ना? तो उनका रिस्पेक्ट और रिगार्ड हमेशा बनाए रखना चाहिए।
0: हाँ।
1: अच्छा ये बताओ, स्कूल में तुम लोग को सबसे ज्यादा, क्योंकि स्कूल लाइफ जीवन की सबसे अच्छी लाइफ होती है, तो स्कूल में तुम्हें सबसे ज्यादा याद क्या आता है? कोई ऐसी मेमोरीज या कोई ऐसी बातें हैं जो तुम बहुत मिस करते हो?
2: हमारे क्लासरूम।
1: क्लासरूम। और पंकज?
3: अपने फ्रेंड्स को।
1: फ्रेंड्स को बहुत मिस करते हो?
3: हाँ दीदी।
1: क्योंकि जब स्कूल खत्म हो जाता है तो याद तो आते
2: हैं। हाँ दीदी।
1: है ना? उसमें सबसे ज्यादा याद क्या आता है? कोई ऐसा दिन हो या कोई ऐसी बात जो आपको मेमोरीज के रूप में अब याद आती हो?
0: मुझे सबसे अच्छा मेमोरी तो चिल्ड्रंस डे, जब हम स्कूल में इतने अच्छे से मनाते हैं। क्या कि ना हमने इस बार 3 डेज चिल्ड्रंस डे बनाई, मेरी प्रिंसिपल ने ऐसा बनाया कि हम 3 डेज एंजॉय स्कूल पे। तो हमने इतना खेला दीदी, मॉर्निंग टू इवनिंग इतना खेलते थे, और कलर ड्रेस पहन के आ सकते थे, और बहुत सारे गेस्ट होते थे वो आते थे, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, इतना मज़ा आता था।
1: 3 दिन चिल्ड्रंस डे मनाया? अरे वाह, मतलब फुल मस्ती।
0: हाँ दीदी।
1: और सैंडी आपको कुछ याद है ऐसे?
2: हाँ, मुझे भी चिल्ड्रन डे अच्छा लगता है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे आता है। और उस दिन
1: चिल्ड्रंस डे के दिन आपका बर्थडे होता है?
2: हाँ।
1: अच्छा, अरे वाह, मतलब डबल मस्ती।
3: डबल मजा।
2: डबल मजा।
1: और उस दिन कलर ड्रेस भी अलाउड होती है?
2: अलाउ होती है, पर मैं पहन के नहीं जाता, स्कूल में रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं ना।
1: नहीं बिल्कुल, रूल्स तो फॉलो करने भी चाहिए। और पंकज, आपकी कोई ऐसी मेमोरी है, खास मेमोरी जो आपको अब स्कूल के बाद याद आती हो?
3: हमारे क्लासरूम में तो हर दिन मस्ती होती थी, इसलिए हर दिन मुझे याद है। सारे दिन ऐसे हैं जो यादगार हैं।
1: एग्जाम टाइम किसको याद आता है?
0: मुझे मुझे एग्जाम से
3: अभी एग्जाम खत्म हो गया और रिजल्ट नहीं आया, इसलिए अभी तो हर दिन एग्जाम टाइम याद आता है।
0: मुझे एग्जाम्स बहुत पसंद है दीदी।
2: अरे
0: सबसे फेवरेट तो मेरी एग्जाम्स ही है, क्योंकि इतने अच्छे से लिख सकते
2: हो ना तुम, इसी दुनिया के हो ना।
0: हाँ।
1: एग्जाम्स क्यों अच्छे लगते हैं भुवना तुम्हें?
0: क्योंकि सारे फ्रेंड्स, हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो हम ज्ञान वो पेपर में लगाते हैं और इतना लिख सकते हैं, और बहुत कुछ सीखते हैं दीदी एग्जाम पे हम, और इतना मजा आता है। मुझे एग्जाम तो फेवरेट है सच में बोलूं तो।
3: आसपास से पूछ के लिखता हूँ मैं।
0: नहीं सच में, मैं कॉपी करना इतना पसंद नहीं।
1: बिल्कुल नहीं ना?
0: बिल्कुल नहीं।
3: थोड़ा बहुत तो होगा।
0: नहीं मैं कभी कॉपी नहीं करती हूँ।
2: अच्छा, मैं तो पूरी कॉपी।
3: हमारी तो स्टार्टिंग ही कॉपी करने से होती है।
1: अच्छा एग्जाम टाइम में डर लगता है क्या?
2: डर तो लगता बहुत।
0: मुझे एक्साइटमेंट होती है।
3: मुझे भी।
1: अच्छा मतलब पढ़ाई लास्ट मोमेंट शुरू होती है लग रहा है।
2: हाँ, हम लोगों की लास्ट मोमेंट होती है।
1: अच्छा एग्जाम टाइम में 3 घंटे तो मिलते हैं सबको, तो एग्जाम पूरा हो जाता है ना?
2: हाँ, पेपर हाँ,
3: पूरा हो जाता है।
1: तो फिर क्यों डर लगता है?
2: कंफ्यूजन रहता, क्वेश्चन गलत है कि सही है।
1: क्वेश्चन गलत है कि सही है?
0: पेपर,
2: सॉरी आंसर गलत है कि सही है?
0: पेपर मिलने से पहले थोड़ा दर्द दीदी, पेपर मिलेगा तो ना हाँ किया, इतना इजी पेपर ऐसा लगता है।
3: और जब हार्ड पेपर आ जाए तब?
0: तब तो क्या, हमको अंडरस्टैंड करना है, थोड़ी देर उस पे टाइम लगाना है ताकि हम समझ सके और फिर पेपर लिखना है, इजी।
3: अच्छा तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा एग्जाम था जो तुम्हें टफ लगा?
0: लास्ट ईयर की मैथ्स एग्जाम।
3: तब कैसा फील हुआ था?
0: थोड़ा लाइक आई, मुझे सब कुछ नहीं आया, थोड़ी मैं छोड़ दी, फिर भी अच्छा लगा।
1: अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग को अगर अपना स्कूल अपने हिसाब से चलाने के लिए बोला जाए, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो जिनका फ्यूचर भी तुम लोग को देखना हो, तुम लोगों पर डिपेंड करता हो, तो वो स्कूल कैसा होगा?
3: अच्छा, संडे टू मंडे स्कूल, बाकी छुट्टी,
4: बाकी दिन छुट्टी।
1: बाकी दिन छुट्टी मतलब सिर्फ दो दिन स्कूल और बाकी दिन छुट्टी? और उसमें पढ़ाई क्या क्या करवाओगे? उनका फ्यूचर भी आप लोगों पे ही डिपेंड करता है, ये भी याद रखना साथ में।
3: ओके, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा।
1: क्या करोगे बताओ, क्या कोई नया तरीका है तुम लोगों के पास स्कूल में पढ़ाई करवाने का, या फिर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें लगता है इससे और अच्छे से हम पढ़ सकते हैं?
0: हाँ दीदी।
1: क्या?
0: जब हम स्पोर्ट्स करते हैं ना, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, तभी हम और पढ़ाई करेंगे ना, वो अच्छे से हम समझ जाएंगे। ऐसे तरीका, हाफ मस्ती हाफ पढ़ाई, ऐसा कुछ।
1: मतलब अगर हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेलें और फिर पढ़ाई करें तो और अच्छी होगी पढ़ाई, ये भुवना कहना चाहती है। और पंकज,
3: हमें हर क्लास के बाद एक एंटरटेनिंग पीरियड रखना चाहिए जिसमें बच्चे वापस एंटरटेन हुए और वापस उनका माइंड फ्रेश हो जाए और वो वापस अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दे सके।
0: ऐसा हुआ तो 3:30 तक हम टाइमिंग्स भी बढ़ाना चाहिए ये सब का।
1: फिर तो हमारा स्कूल बहुत लंबा हो जाएगा अगर हर क्लास के बाद एक एंटरटेनमेंट होगा।
0: तो 24 आवर स्कूल पे ही रहेंगे हम।
3: 20 मिनट्स के लिए तो होने चाहिए।
1: हाँ,
4: टीचर्स ऐसे होने चाहिए जो फ्रेंडली, जो मिलजुल के रहें। जो कोई कोई टीचर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि उनका फ्रेंड अटेंड करना डर लगता है, ऐसे टीचर होने चाहिए जो हमेशा हमारी बात को समझे, मिलजुल के रहें।
1: तो आज हमें स्कूल के बारे में बातें करके बहुत सारा मजा आया है ना बच्चों?
5: हाँ दीदी।
1: तो अगली बार मिलेंगे और फिर खूब सारी बातें करेंगे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।
5: बाय बाय। स्कूल है, पढ़ाई है, फिर भी इतनी मस्ती। एग्जाम्स है, उसका फियर है, फिर भी इतनी मस्ती।
0: इसलिए तो हम स्कूल जाते हैं
3: मस्ती करने,
5: एंजॉय करने
0: और बहुत कुछ सीखने के लिए। तो चलो दोस्तों, छुट्टियों के बाद

0: आपने अब तक जाना कि स्वामी जी इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता थे। केवल अपने देश का ही नहीं बल्कि उन्हें विश्व इतिहास का अच्छा ज्ञान था। राजनीतिक इतिहास के साथ साथ वे सामाजिक बदलाव का इतिहास भी बयान करते थे।
1: भारत के सिवाय अन्यत्र सभी देशों के धर्मों का यही मत था कि समस्त संसार टुकड़ा टुकड़ा अलग है, ईश्वर भी अलग है, प्रकृति भी अलग है, मनुष्य अलग है, इसी प्रकार पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पत्ता मिट्टी पत्थर धातु आदि सब अलग है। भगवान ने इसी प्रकार सब अलग करके सृष्टि की है।
2: स्वामी जी ने सभ्यता का इतिहास अपनी रोचक शैली में बताया। उन्होंने सृष्टि की शुरुआत से प्रारंभ किया।
1: हम पहले ही कह आए हैं कि हमारी विद्या बुद्धि और चिंता सभी आध्यात्मिक हैं। सभी का विकास धर्म के भीतर है और पाश्चात्यों में ये सारे विकास बाहर शरीर और समाज में है। भारत के चिंतनशील मनीषी क्रमशः समझ गए थे कि इन चीजों को अलग अलग मानना भूल है। अलग होते हुए भी उन सब में एक संबंध है। मिट्टी पत्थर पेड़ पत्ता जीव जंतु मनुष्य देवता यहां तक कि स्वयं ईश्वर भी एक है। अद्वैतवादी इसकी चरम सीमा पर पहुंच गए। उन्होंने कहा, यह सब कुछ उसी का एक विकास है। सचमुच यह अध्यात्म और अधिभूत जगत एक ही है, उसी का नाम ब्रह्म है, और जो अलग अलग मालूम पड़ता है वो भूल है, वही माया अविद्या अर्थात अज्ञान है, यही ज्ञान की चरम सीमा है।
0: पाश्चात्य मत से समाज का क्रम विकास हुआ, धीरे धीरे मनुष्य सभ्य हुआ।
1: इसलिए तो इस देश के प्रायः सभी लोग परिणामवादी बने हुए हैं। जैसे छोटा पशु कालांतर में बदलकर बड़ा पशु हो जाता है, कभी बड़ा जानवर छोटा भी हो जाता है, कभी लुप्त भी हो जाता है, इसी प्रकार मनुष्य का भी हुआ होगा, उसका भी क्रमशः विकास हुआ होगा। मनुष्य सभ्य अवस्था में एकाएक पैदा हुआ, इस बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। कारण इनके बाप दादा थोड़े ही दिन पहले असभ्य जंगली थे, अब इतने कम दिनों में ही वे लोग सभ्य हो गए हैं। इसलिए वे लोग कहते हैं कि सभी मनुष्य क्रमशः असभ्य अवस्था से सभ्य हुए हैं और हो रहे हैं।
2: आदिम मनुष्य प्रकृति के साथ एकात्म होकर गुजर बसर करते थे, धीरे धीरे वे प्रकृति पर विजय पाने लगे।
1: आदिम मनुष्य काठ पत्थर के औजारों से काम चलाता था, चमड़ा या पत्ता पहनकर दिन बिताते थे, पहाड़ की गुफाओं में या चिड़ियों के घोंसलों की तरह झोपड़ियों में गुजर करते थे। इसका प्रमाण सभी देशों में मिलता है और कहीं तो अभी भी मनुष्य उसी अवस्था में मौजूद है। क्रमशः मनुष्य ने धातु का व्यवहार करना सीखा, उन नरम धातुओं का जैसे टीन और तांबा। प्राचीन यूनानी बेबीलोन और मिश्र निवासी भी बहुत दिनों तक लोहे का व्यवहार नहीं जानते थे। जब वे पहले की अपेक्षा सभ्य हो गए तो पुस्तक आदि लिखने लगे, सोने चांदी का व्यवहार करने लगे, परंतु तब तक वे लोहे का व्यवहार नहीं जानते थे। अमेरिका महाद्वीप के आदिम निवासियों में मैक्सिको पेरू माया आदि जातियां दूसरों से सभ्य थीं। वे बड़े बड़े मंदिर बनाती थीं, सोने चांदी का उनमें खूब व्यवहार था, यहां तक कि सोने चांदी के लालच से स्पेन वालों ने उनका नाश कर डाला। किंतु वे सब काम चकमक पत्थर के औजारों द्वारा बड़े परिश्रम से किए जाते थे, लोहे का कहीं नामो निशान भी नहीं था।
0: शिकार, फिर पशुपालन, फिर खेती किसानी, ये रहा मनुष्य विकास का इतिहास।
1: आदिम अवस्था में मनुष्य तीर धनुष या जाल आदि के

0: द्वारा पशु पक्षी या मछली मारकर खाता था। क्रमशः उसने खेती बाड़ी करना और पशु पालना सीखा। जंगली जानवरों को अपने अधिकार में लाकर अपना काम कराने लगा। गाय, बैल, घोड़ा, सुअर, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, मुर्गी आदि मनुष्य के घर में पाले जाने लगे। इनमें कुत्ते मनुष्य के आदिम दोस्त थे। इसके बाद खेती बाड़ी आरंभ हुई। जो फल फूल, साग सब्जी, गेहूं चावल मनुष्य आजकल खाता है, उन चीजों की आदिम जंगली अवस्था बहुत भिन्न थी। बाद में मनुष्यों के अध्यावसाय से ही वे वस्तुएं अनेक सुखदायक पदार्थ बन गई। प्रकृति में तो दिन रात परिवर्तन होता ही रहता है। नाना प्रकार के पेड़ पौधे पैदा होते रहते हैं। पशु पक्षियों के शरीर संसर्ग में देश काल के परिवर्तन से नई नई जातियों की सृष्टि होती रहती है। इस प्रकार प्रकृति मनुष्य की सृष्टि करती थी, पर मनुष्य की सृष्टि के पूर्व प्रकृति धीरे धीरे पेड़ पौधों तथा दूसरे पशुओं में परिवर्तन करती थी, पर मनुष्य की सृष्टि होते ही उसने जोर से परिवर्तन आरंभ कर दिया। मनुष्य एक देश के पौधे और जीव जंतुओं को दूसरे देश में ले जाने लगा और उनके परस्पर मिश्रण से कई प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों की जातियां मनुष्य द्वारा उत्पन्न की जाने लगी।
1: समाज की सृष्टि हुई। सभी लोग देवता और जंगली लोग असुर कहलाए।
0: समाज की सृष्टि होने लगी। देश भेद से ही समाज की सृष्टि हुई। समुद्र के किनारे जो लोग रहते थे, वे अधिकांश मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जो समतल जमीन पर रहते थे, वे खेती बाड़ी करते थे। जो पर्वतों पर रहते थे, वे भेड़ चराते थे। जो बालू के मैदानों में रहते थे, वे बकरी और ऊंट चराते थे। कितने ही लोग जंगलों में रहकर शिकार करने लगे। जिन्होंने समतल जमीन पाकर खेती बाड़ी करना सीखा, वे पेट की ज्वाला से बहुत कुछ निश्चिंत होकर विचार करने का अवकाश पाकर अधिकतर सभ्य होने लगे। किंतु सभ्यता आने के साथ शरीर दुर्बल होने लगा। जो दिन रात खुली हवा में रहकर अधिकतर मांस खाते थे उनमें और घर के भीतर रहकर अधिकतर अनाज खाते थे, बहुत अंतर होने लगा। शिकारी पशु पालने वालों या मछली खाने वालों को जब कभी भोजन की कठिनाई पड़ती, तभी वे समतल भूमि निवासी कृषकों को लूटने लगते। समतल निवासी आत्मरक्षा के लिए आपस में दल बांधने लगे और इस प्रकार छोटे छोटे राज्यों की सृष्टि होने लगी। देवताओं का भोजन अनाज होता था। वे सभ्य होते थे तथा ग्राम, नगरों अथवा उद्यानों में निवास करते थे और बुने हुए कपड़े पहनते थे। असुरों का वास पहाड़, पर्वत, मरुभूमि या समुद्र तट पर होता था। उनका भोजन जंगली जानवरों का मांस तथा जंगली फलमूल था और कपड़े थे बकरी के चमड़े अथवा अन्य कोई चीज से बने, जो इन चीजों के बदले में वे देवताओं से पा जाते थे।
2: देव और असुरों में संघात शुरू हुआ। देव बुद्धि बल से जीतने लगे।
0: असुरों को भोजन का अभाव होते ही वे लोग दल बांधकर पहाड़ से उतरकर या समुद्र के किनारे से आकर गांव नगरों को लूटते थे। वे कभी कभी धन धान्य के लोभ से देवताओं पर भी आक्रमण कर बैठते थे। यदि बहुत से देवता एकत्रित ना हो सकते थे तो उनकी असुरों के हाथ से मृत्यु हो जाती थी। देवताओं की बुद्धि तेज थी, इसलिए वे कई तरह के अस्त्र शस्त्र तैयार करने लगे। ब्रह्मास्त्र, गरुणास्त्र, वैष्णवास्त्र, ये सब देवताओं के अस्त्र थे। असुरों के अस्त्र तो साधारण थे, पर उनके शरीर में बल बहुत था। बारंबार देवताओं को असुरों ने हरा दिया, पर वे सभ्य होना नहीं जानते थे। वे खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते थे और ना बुद्धि का प्रयोग ही कर सकते थे।
1: जनसंख्या धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ वीर जाति बने और कुछ कमजोर।
0: उपलब्ध इतिहास से मालूम होता है कि जम्बूद्वीप के मध्य भाग और अरब की मरुभूमि में असुरों का प्रधान अड्डा था। इन स्थानों में इकट्ठे होकर असुरों ने अपनी संतानों को चरवाहों में फैला दिया। यूरोप खंड के आदिम निवासियों की एक विशेष जाति अवश्य पहले से ही थी। पर्वत की गुफाओं में इस जाति का निवास था और इस जाति के जो लोग अधिक बुद्धिमान थे, वे थोड़े जल वाले तालाबों में मचान बांधकर उन्हीं पर रहते और घर द्वार निर्माण करते थे। ये लोग अपने सारे काम चकमक पत्थर से बने तीर, भाले, चाकू, कुल्हाड़ी आदि से ही चलाते थे। क्रमशः जम्बूद्वीप का नर स्रोत यूरोप में आने लगा। कहीं कहीं अपेक्षाकृत सभ्य जातियों का अभ्युदय हुआ। रूस देश की किसी जाति की भाषा भारत की दक्षिणी भाषा से मिलती है, किंतु ये जातियां बहुत दिनों तक अत्यंत बर्बर अवस्था में रही। एशिया माइनर के सभ्य लोगों का एक दल समीपवर्ती द्वीपों में जा पहुंचा। उन लोगों को हम यवन कहते हैं और यूरोपीय उन्हें ग्रीक नाम से पुकारते हैं।
2: जातियों के समित्रण से यूरोपियन जाति का जन्म हुआ। भारत और ग्रीस सभ्यता में अग्रणी थे।
0: हिंदुओं का सा काला रंग, उत्तरी देशों का दूध की ही तरह सफेद रंग, काले भूरे अथवा सफेद केश, काली भूरी नीली आंखें, खास हिंदुओं की तरह नाक, मुंह और आंखें, तथा चीनियों की तरह चपटे मुंह, इन सब आकृतियों से युक्त बर्बर यूरोपीय जाति की उत्पत्ति हो गई। कुछ दिनों तक वे आपस में ही मारकाट करते रहे। उत्तर के डाकू मौका पाने पर अपने से जो सभ्य थे उनका नाश करने लगे। बीच में ईसाई धर्म के दो गुरु, इटली के पोप और पश्चिम में कॉन्स्टेंटिनोपल शहर के पेट्रियार्क इस पशुप्राय बर्बर जाति और उसके राजा रानी के ऊपर शासन करने लगे। इस ओर अरब की मरुभूमि में मुसलमानी धर्म की उत्पत्ति हुई। जंगली पशु के तुल्य अरबों ने एक महापुरुष की प्रेरणा से अदम्य तेज और अनाहत बल से पृथ्वी के ऊपर आघात किया। पश्चिम पूर्व के दो प्रांतों के उस तरंग ने यूरोप में प्रवेश किया। उसी प्रवाह में भारत और प्राचीन ग्रीक की विद्या बुद्धि यूरोप में प्रवेश करने लगी। कई शताब्दियों के पश्चात जब तुर्क आदि जातियां बौद्ध धर्म छोड़कर मुसलमान बन गईं, तो उस समय इन तुर्कों ने संभाव से हिंदू, पारसी आदि सबको दास बना लिया। भारतवर्ष को जीतने वाले मुसलमान विजेताओं में एक दल भी अरबी या पारसी नहीं है, सभी तुर्की या तातारी हैं। सभी आगंतुक मुसलमानों को राजपूताना तुर्क कहते हैं। यही सत्य और ऐतिहासिक तथ्य है। कुतुबुद्दीन से लेकर मुगल बादशाहों तक सब तातार लोग ही थे, अर्थात जिस जाति के तिब्बती थे उसी जाति के, सिर्फ वे मुसलमान हो गए। हिंदू पारसियों से विवाह करके उनका चपटा मुंह बदल गया।
2: मूर जाति ने यूरोप में सभ्यता का सूत्रपात किया। स्वामी जी ने कहा,
0: इधर मूर नामक एक मुसलमान जाति ने स्पेन देश में एक अत्यंत सभ्य राज्य की स्थापना की और वहां अनेक प्रकार की विद्याओं की चर्चा आरंभ कर दी। फलतः पहले पहल यूरोप में यूनिवर्सिटियों की सृष्टि हुई। इटली, फ्रांस और सुदूर इंग्लैंड से वहां विद्यार्थी पढ़ने आने लगे। राजा रजवाड़ों के लड़के युद्ध विद्या, आचार, कायदा, सभ्यता आदि सीखने के लिए वहां आने लगे और घर द्वार, महल, मंदिर तब नए ढंग से बनने लगे। यूरोपीय नामक वस्त्र के ये सब उपकरण हुए। एक शीतोष्ण पहाड़ी समुद्र तटमय प्रदेश उसका करघा बना और सर्वदा युद्ध प्रिय बलिष्ठ अनेक जातियों की समष्टि से पैदा हुई एक सम्मिश्र जाति इसकी रूई हुई। इसका ताना हुआ आत्मरक्षा और धर्मरक्षा के लिए सर्वदा युद्ध करना।
1: यूरोप में जमीन उर्वरक नहीं थी, इसीलिए अन्न की खोज में वे दूसरे देशों पर चढ़ाई करते रहे।
0: यूरोपियनों को जिस देश में मौका मिलता है वहां के आदिम निवासियों का नाश करके स्वयं मौज से रहने लगते हैं। इसलिए उनका कहना है कि आर्य लोगों ने भी वैसा ही किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस धारणा का आधार क्या है? सिर्फ अंदाज ही? तुम लोग अपना अंदाज अनुमान अपने घर में रखो। किस वेद अथवा सूक्त में अथवा अन्यान्य और कहीं तुमने देखा है कि आर्य दूसरे देशों से भारतवर्ष में आए? इस बात का प्रमाण तुम्हें कहां मिला है कि उन लोगों ने जंगली जातियों को मार काट कर यहां निवास किया? इस व्यर्थ अहमकपन की क्या जरूरत है? तुमने तो रामायण पढ़ी ही नहीं, फिर व्यर्थ ही रामायण के आधार पर ये सफेद झूठ क्यों गढ़ रहे हो?
2: पर भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। रामायण आर्य जाति द्वारा अनार्य विजय का उपाख्यान नहीं है।
0: रामायण क्या है? आर्यों के द्वारा दक्षिणी जंगली जातियों की विजय। हाँ, यह ठीक है कि रामचंद्र सुसभ्य आर्य राजा थे, पर उन्होंने किसके साथ लड़ाई की थी? लंका के राजा रावण के साथ। जरा रामायण पढ़कर तो देखो, वो रावण सभ्यता में रामचंद्र के देश से बढ़ा चढ़ा था कम नहीं। लंका की सभ्यता अयोध्या की सभ्यता से अधिक थी कम नहीं। इसके अलावा वानरादि दक्षिणी जातियां कहां जीत ली गईं? वे सब तो श्री रामचंद्र जी के दोस्त बन गए थे। किसी के ग्रह का या किस बाली नामक राजा का राज्य श्री रामचंद्र ने छीन लिया? तुम कहो तो सही।
1: दूसरों का नाश कर खुद जीना, यूरोप का हमेशा यही रवैया रहा।
0: यूरोपीय लोगों, तुमने कब किसी देश का भला किया है? अपने से अवनत जाति को ऊपर उठाने की तुम में शक्ति कहां है? जहां कहीं तुमने दुर्बल जाति को पाया, नेस्त तो नाबूद कर दिया और उसकी निवास भूमि में तुम खुद बस गए और वे जातियां एकदम मटिया मेट हो गईं। वे सब जंगली जातियां आज कहां हैं? एकदम सत्यानाश। जंगली पशुओं की तरह उन्हें तुम लोगों ने मार डाला। जहां तुम्हारी शक्ति काम नहीं कर सकी, सिर्फ वहीं अन्य जातियां जीवित हैं।
2: स्वामी जी ने भारत और यूरोप की तुलना करते हुए कहा,
0: भारत वर्ष ने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। आर्य लोग बड़े दयालु थे। उनके अखंड समुद्रवत विशाल हृदय में, दैवी प्रतिभा संपन्न मस्तिष्क में, उन सब आकर्षक प्रतीत होने वाली पाश्विक प्रणालियों ने किसी समय भी स्थान नहीं पाया। विदेशी अहमकों, यदि आर्य लोग जंगली लोगों को मार पीट कर यहां वास करते तो क्या वर्णाश्रम की सृष्टि होती? यूरोप का उद्देश्य है सबको नाश करके स्वयं अपने को बचाए रखना। आर्यों का उद्देश्य था सबको अपने समान करके अथवा अपने से भी बड़ा करना। यूरोपीय सभ्यता का साधन तलवार है और आर्यों की सभ्यता का उपाय वर्ण विभाग। शिक्षा और अधिकार के तारतम्य के अनुसार सभ्यता सीखने की सीढ़ी थी वर्ण विभाग। यूरोप में बलवानों की जय और निर्बलों की मृत्यु होती है। भारत में प्रत्येक सामाजिक नियम दुर्बलों की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया है। आर्य लोग शांति प्रिय हैं, खेती बाड़ी करते हैं और शांति से अनाज पैदा करते हैं। अपने परिवार का पालन पोषण मात्र कर देने से खुश हो जाते थे। उनके लिए सांस लेने का अवकाश यथेष्ट था, इसलिए चिंताशील तथा सभ्य होने का अवकाश अधिक था। हमारे जनक राजा अपने हाथों से हल भी चलाते थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ आत्मविद भी थे। यहां आरंभ से ही ऋषि मुनियों और योगियों आदि का अभ्युदय था। वे लोग आरंभ से ही जानते थे कि संसार मिथ्या है, लड़ना झगड़ना बेकार है। जो आनंद के नाम से पुकारा जाता है उसकी प्राप्ति शांति में है, और शांति है शारीरिक भोग के विसर्जन में। सच्चा आनंद है मानसिक उन्नति में और बौद्धिक विकास में, ना कि शारीरिक भोगों में। जंगलों को आबाद करना उनका काम था।
1: अंत में स्वामी जी आधुनिक यूरोप की तारीफ करते हैं।
0: पाश्चात्य देशों में इस समय एक साथ ही लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा हो गई है। केवल भोग की चीजों को ही एकत्रित करने पे वे शांत नहीं होते, वरन सभी कामों में एक सुंदरता देखना चाहते हैं। खान पान, घर द्वार, सभी में सुंदरता की खोज है। जब धन था तो हमारे देश में भी एक दिन यही भाव था। इस समय एक दरिद्रता के कारण ही हम लोग इतो नष्ट स्ततो भ्रष्ट होते जा रहे हैं। जाति के जो गुण थे वे मिटते चले जा रहे हैं और पाश्चात्य देश के लिए हम एक नियम को अपनाने में भी असमर्थ हैं। पूजा पाठ प्रवृत्ति आदि जो कुछ था उसे तो हम लोग जल में प्रवाहित किए दे रहे हैं, पर समय उपयोगी किसी नवीन नियम का अभी भी निर्माण नहीं हो रहा है।
2: भारत ने प्राचीन गौरव खो दिया है, हर तरफ अवनति ही नजर आती है।
0: यहां सबसे अधिक दुर्दशा कलाओं की हुई है। पहले सभी वृद्धाएं दीवारों को रंग बिरंगा करती थी, आंगन को फूल पत्तों के चित्रों से सजाती थी, खाने पीने की चीजों को भी कला की चातुरी से सजाती थी। वो सब या तो चूल्हे में चला गया है या शीघ्र ही जा रहा है। नई चीजें अवश्य सीखनी होंगी और करनी भी होंगी, पर क्या पुरानी चीजों को जल में डुबाकर? नई बातें तो तुमने खाक सीखी हैं, केवल बकवास करना जानते हो। काम की विद्या तुमने कौन से सीखी है? आज भी दूर के गांव में लकड़ी के और ईंटों के पुराने काम देखाओ। कलकत्ते के बढ़ई एक जोड़ा दरवाजा तक तैयार नहीं कर सकते। दरवाजा क्या, सिटकनी तक नहीं बना सकते। बढ़ई पना तो अब केवल अंग्रेजी औजारों को खरीदने में ही रह गया है। यही अवस्था सब चीजों में उपस्थित हो गई है। हमारा जो कुछ था ये सब तो जा रहा है, और विदेशों से भी सीखी है केवल बकवास।
1: पश्चिम में सफाई का बहुत महत्व है, स्वामी जी ने जब देखा तो कहा,
0: साफ सुथरा बनने ठन्ने में इस देश का इतना अधिक अभ्यास हो गया है कि गरीब से गरीब आदमी की भी इस ओर दृष्टि रहती है। दृष्टि भी किसी मतलब से ही रहती है, कारण साफ सुथरा कपड़ा लत्ता ना पहनने से कोई उन्हें काम काज ही ना देगा। नौकर मजदूरिन रसोईया सबका कपड़ा दिन रात लकालक रहता है। घर द्वार झाड़ झूड़ धो पोंछ कर साफ सुथरा किया रहता है। इनकी प्रधान विशेषता ये है कि इधर उधर कभी कोई चीज नहीं फेंकेंगे। रसोई घर झकाझक कूड़ा करकट जो कुछ फेंकना है बर्तन में फेंकेंगे, फिर उस स्थान से दूर ले जाकर फेंकेंगे, ना आंगन में और ना रास्ते में ही फेंकेंगे।
2: स्वामी यूरोप और अमेरिका में खूब घूमे, उनकी कला की तारीफ की।
0: जिनके पास धन है उनका घर देखने की चीज होती है, रात दिन सब झकाझक रहता है। इसके बाद देश विदेशों की नाना प्रकार की कारीगरी की चीजों को एकत्रित करते हैं। इस समय हमें उनकी तरह कारीगरी की चीजें एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जो चीजें नष्ट हो रही हैं उनके लिए तो थोड़ा यत्न करना पड़ेगा या नहीं? उनकी तरह का चित्रकार या शिल्पकार स्वयं होने के लिए अभी भी बहुत देरी है। इन दोनों कामों में हम लोग बहुत दिनों से ही अपटु हैं। हमारे ठाकुर जी तक कितने सुंदर होते हैं या तो जगन्नाथ जी को ही देखने से पता लग जाता है। बहुत प्रयत्न से उसकी नकल करने पर कहीं एक आध रवि वर्मा पैदा होते हैं। उसकी अपेक्षा देशी ढंग के चित्र बनाना अधिक अच्छा है। उनके कामों में फिर झकाझक रंग हैं, पर उनकी अपेक्षा जयपुर के सुनहले चित्र और दुर्गा जी के चित्र आदि देखने में अधिक सुंदर हैं।
1: आपने स्वामी जी के विश्व सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास सुना। वे जहाँ भी जाते थे वहाँ के इतिहास और समाज को भली भांति जानने का प्रयास करते थे और अपने ढंग से परिभाषित करते थे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आगे दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे इसी समय अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सफर कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज मैं आपको ले चलता हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत गाने तो सुनाएंगे ही, लेकिन आज का तारीख है 2 जुलाई। जी हाँ, 2 जुलाई की कुछ खास बातें, वो है आलोकनाथ धवा, आशा लता, मोहम्मद अजीज, विद्या बिंदु सिंह, स्वामी राम चंद्रलाल माधव त्रिवेदी, इन सभी का जन्मदिन है। इसके साथ ही यूसुफ मेहर अली और अस्मिता भट्टाचार्य, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए, कुछ जिनका जन्मदिन है उनके बारे में, जैसे कि आपको पता है हर रोज मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, आज भी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले एक खूबसूरत विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि विचार ही आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर आप अकेले बैठे हो तो सुंदर विचारों को एक बार देखिए और उसको मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। आपकी खुशी नहीं बढ़ी तो मुझे बताना, आपको अगर एनर्जी नहीं मिला तो मुझे बताना। तो आइए, ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ जोड़ने वाला हूँ और विचार सुनकर हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत। जी हाँ दोस्तों, विचार है कि ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। है ना खूबसूरत विचार। तो एक बार सोच के देखिए, ताकत कहाँ लगती है, है ना? जब कुछ बुरा होता है वहाँ ताकत की जरूरत पड़ती है। अगर दुनिया में जीना है तो प्रेम से जिए, प्रेम से बोले, प्रेम से रहे, कौन मना कर रहा है आपको, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम को, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं ले चलता हूं आज के दिन विशेष। जैसे कि मैंने कहा, 2 जुलाई का तारीख है और आज एक बहुत ही पॉपुलर जो है हिंदी के विशेष साहित्यकार के बारे में बात करना चाहूँगा। जी हाँ, आलोक जी के बारे में। आलोक धनवा इनका पूरा नाम है और हिंदी के बहुत ही पॉपुलर कवि हैं और हिंदी के उन कवियों में से इनका नाम आता है जिन्होंने 70 के दशक में कविताओं को एक नई पहचान दी। उनकी गोली दागो पोस्टर, जनता का आदमी, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेंदिया जैसे कविताएं बहुत चर्चित हैं। आपने भी इसमें से कोई कविता सुनी ज़रूर होगी। अगर नहीं सुनी तो आज ज़रूर सुन लेना। दुनिया रोज बनती है उनका एक बहुत ही बड़ा जो है कविताओं का एक संकलन है जिसका टाइटल उन्होंने रखा था दुनिया रोज बनती है। इन्हीं कविताओं के लिए उनको जो है याद किया जाता है और उनकी कविताओं को अंग्रेजी और रूसी भाषा में अनुवाद भी किए गए हैं। तो चलिए इनके बारे में और बातें मैं आपको सुनाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले गुजरात से हमारे बीच एक मेहमान आए हैं, उनसे एक बहुत ही प्यारा सा आध्यात्मिक गीत सुनते हैं। जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे।
1: क्या नाम है आपका?
2: बीके कृष्णमूर्ति।
1: कृष्णमूर्ति जी, क्या करते हैं वैसे आप?
2: मैं तहसीलदार हूँ।
1: अच्छा, अभी भी वर्कआउट करते हैं या रिटायर हो गए?
2: रिटायर अभी होने वाला हूँ।
1: कब होने वाले?
2: दिवाली पे।
1: अच्छा तो आखिरी समय आपका जो है रिटायरमेंट का नज़दीक आ रहा है, और तहसीलदार का काम करते हुए गाने का शौक कैसे लगा आपको?
2: मैं पहले से गा रहा हूँ और बाबा के कई गीत भी लिखे हैं, गाए भी हैं, लेकिन कभी चांस नहीं मिला। आज थोड़ा टाइम था तो इधर पहुंच गया।
1: अरे वाह, क्या बात है, आपको तो पहले आ जाना चाहिए था, इधर सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ना कब हुआ?
2: मेरा 92 से।
1: 92? अच्छा अच्छा, कैसे परिचय मिला आपको, किसने बताया?
2: याद, मैं एक रामजी मंदिर में कोई प्रदर्शनी आई थी।
1: अच्छा अच्छा।
2: फिर मैंने वो देखी तो मैंने सोचा कि बस यही सत्य है। फिर मैं इनका शिविर में कोर्स किया, फिर उसमें अभी तक कुमार हूँ मैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा कृष्णमूर्ति जी आपको सुनकर, और बड़ा अच्छा है कि आपने सत्य की खोज आपको शायद पहले से थी और 92 में जैसे ही आपने ये मंदिर में गए और प्रदर्शनी देखते ही सत्य के साथ आपका जो है मुलाकात हो गया।
2: हाँ जी।
1: फिर आप स्वदर्शन के इस यात्रा को अभी तक पूरा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, हमारे श्रोताओं को जल्दी से बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाइए।

अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सब।

अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक

0: जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
1: नमस्कार कृष्णमूर्ति जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी आपने जो है मंत्रमुग्ध कर दिया अपनी सुंदर गीत के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। मैंने कहा ना, आज का दिन बड़ा अच्छा है और बहुत ही मज़ा आने वाला है कार्यक्रम में, और अभी तो आपकी खुशी डबल हो गई होंगी, है ना। तो अपनी खुशी के पैरामीटर को चेक करते रही है। और मैं बात कर रहा था आलोक जी के बारे में। आलोक जी एक ऐसे कवि थे, नई पीढ़ी के लिए एक सिग्नेचर थे। जन कवि के साथ साथ वो लोगों के साथ इस तरह से जुड़ जाते थे अपने रचनाओं के साथ। जैसे एक जो टाइटल है वो आपको बड़ी अच्छी लगेगी, इनकी टाइटल जो है ना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था इनके कविताओं से ज़्यादा, गोली दागो पोस्टर। अब देखिए, ऐसा कोई सोच सकता है कि ऐसा भी कोई टाइटल होगा? फिर इसके बाद उनका जिलाधीश, भागी हुई लड़की। तो इस तरह के खूबसूरत टाइटल के वजह से ये चर्चे में हमेशा रहे, और सहज और सुलभ दो शब्द इनके व्यक्तित्व की पहचान होती थी। हर नुक्कड़ नाटक में इनका जो है आलोक जी का उपस्थित होना, या उनकी लिखी हुई कविता पर या फिर रचनाओं पर अगर नाटक करते हैं, तो अपने आप में वो नाटक जो है पब्लिक को पसंद आ जाती थी। तो आइए, ऐसे विशेष कवि के बारे में खूबसूरत बातें आपको सुनने को मिल रहा है। कवि आप नेट पर अगर सर्च करेंगे तो आलोक नंदवा लिख के आप जो है उनकी कविताओं को देखिए, तो कभी पढ़ के देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। और ये पटना निवासी थे आलोक नंदवा। इनके लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में जो है ये काम करते रहे वहाँ पर, और सम्मान में पहला सम्मान इनको जो है एकेडमी से मिला था, फिर उसके बाद नागार्जुन सम्मान, फिर फिराग गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान इनको नई दिल्ली से प्राप्त है, और भवानी प्रसाद मिश्र इनका भी सम्मान इनको मिला हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके लिए, आप सुनाए हैं सफर कार्यक्रम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना, और इसके पहले कृष्णमूर्ति जी को भी आपने सुना जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है, और एक बहुत ही प्यारा सा आध्यात्मिक गीत आपको सुना है। तो आइए अब एक और व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, आशालता वबगावकर। इनके बारे में, एक हिंदी और मराठी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं। कई फिल्मों में इन्होंने अपनी शानदार अभिनय से बड़े पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी है। दूरदर्शन पर अपने कई सीरियल और घर घर की पहचान बनाई। मूल रूप से आशालता का नाम जाना जाता है आशालता वबगावकर। गोवा की रहने वाली थी और गोवा हिंदू एसोसिएशन से जुड़ी थी। सबसे पहले कोंकणी और मराठी नाटकों में अभिनय करना इन्होंने शुरू किया था, और यहाँ से इनकी कहानी एक्टिंग की शुरू हो गई। तो आइए, इनका जन्म आज ही के दिन 2 जुलाई को 1941 को गोवा में हुआ था, और 100 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया। अभिनय के साथ साथ इन्होंने मराठी फिल्मों के लिए गाने भी गाए, और एक मराठी गायिका, नाटककार और फिल्म अभिनेत्री के रूप में इनको प्रसिद्धि भी मिली। आशालता जी, शुरुआती शिक्षा मुंबई से उनका हो गया, कोलंबो हाई स्कूल से, और गिरगांव में इनकी पूरी शिक्षा हुई। 12वीं के बाद कुछ समय तक उन्होंने मंत्रालय में पार्ट टाइम जॉब भी किया, और इस दौरान उनकी आर्ट में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी साथ साथ में हो गई। और नत्थीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान में एमए परीक्षा पूरा करके ऑल इंडिया रेडियो के मुंबई केंद्र पर कुछ कोंकणी गाने भी गाए, और फिर यहाँ से उनको जो है फिल्म में सफ़र की एक चिराग जो है शुरू हो गया। और आशालता कई शानदार हिंदी फिल्मों में भी भूमिका निभाते हुए, और उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी जंजीर। इस फिल्म में आशालता ने अमिताभ बच्चन की सौतली माँ का किरदार निभाया था। यह फिल्म साल 1973 में आई थी। वही आशालता को बॉलीवुड में असली पहचान बसु चटर्जी की फिल्म अपने पराये से मिली थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फेयर और सहायक कलाकार पुरस्कार भी जीता था, और मराठी नाट्य जगत में भी एक अच्छा नाम इनका हुआ। दि गोवा हिंदू एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत नाटक संगीत सैन सोकलोल में रेवती की भूमिका में आशालता ने अपनी नाटकीय करियर की शुरुआत की, और मराठी नाटक मत्स्य गंगा आशालता के अभिनय करियर में एक मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने गद साबुती चली सजनी तू कर चापकली, ऐसे कई जो है कला उन्होंने दिखाई, और इस तरह के खूबसूरत गाने भी गाए उन्होंने। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ मुख्य इनके फिल्म जो है, जैसे अंकुश, उसमें नाना पाटेकर का माँ का भूमिका ने निभाई। अपने पर आए, आहिस्ता आहिस्ता, शौकीन, वो सात दिन, नमक हलाल, यादों की कसम, इस तरह के ये खूबसूरत फिल्में इनकी हैं जिनमें इन्होंने अच्छी एक्टिंग की। और आशालता 22 सितंबर 2020 को इस दुनिया को अलविदा कहीं, क्योंकि कोरोना के समय में बिल्कुल महाराष्ट्र के सातारा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया था। और परिवार के अनुसार सातारा में अपने मराठी सीरियल आई कालूबाई की शूटिंग करने पहुंची थी। यहां कोरोना के लक्षण आए और पाए जाने के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और फिर आईसीयू में भर्ती करवाने के बाद आशालता का जो है बचना मुश्किल था, और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये थी कुछ खास बातें आशालता के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसी ही कहानी आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन आगे एक बहुत ही खूबसूरत गाना भी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप हमरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हमरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आशा लता जी की कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। हिंदी एंड मराठी फिल्मों की सक्रिय अभिनेत्री, हिंदी फिल्मों में और मराठी फिल्मों में काम करते हुए नाटकों के साथ साथ गीत भी उन्होंने गाए। तो आइए एक ऐसे ही अजीज बहुत ही पॉपुलर कलाकार के बारे में, एक गायक के बारे में बात करते हैं जिनका जन्म आज ही हुआ है। 2 जुलाई 1954 पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था और भारत के बहुत ही पॉपुलर गायक में से एक मोहम्मद अजीज़, जिन्होंने मुख्यतः बंगाली, उड़िया, हिंदी फिल्मों में गाने गाए। कोलकाता की गालिब रेस्टोरेंट में एक गायक के तौर पर अपना करियर शुरुआत किया था इन्होंने। 1984 में मुंबई आ गए और फिर इनकी पहली फिल्म अंबर थी जो 1984 में रिलीज हुई। मोहम्मद अजीज ने पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के लिए मर्द टांगे वाला ये गीत गाया था। उन्हें 80 और 90 के समय में मोहम्मद रफ़ी का उत्तराधिकारी भी बताया गया था। है ना कमाल की बात।

तो आइए एक और खूबसूरत बात मैं बताना चाहूँगा इनके बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही अलग अलग भाषाओं को मिलाकर टोटल 20,000 गाने अभी तक इन्होंने गाए। अब एक फिल्म है खुदगर, इस फिल्म का मशहूर गाना है आपके आ जाने से, ये भी इनका ही गाया हुआ है, जिसे अभिनेता गोविंद और नीलम पर, अभिनेत्री नीलम पर फिल्माया गया था। मोहम्मद अजीज ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति जैसे मशहूर गायिकाओं के साथ ड्यूट गाना गाए। आइए इनके बारे में बात करते हैं। आज ही के दिन 2 जुलाई सन 1954 को पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ और वास्तविक नाम थोड़ा लंबा है, सैयद मोहम्मद अजीज अन्नवी। हिंदी फिल्मों में उन्हें ब्रेक तब मिला जब संगीतकार अन्नू मलिक ने अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म मर्द में मर्द टांगे वाला ये टाइटल सॉन्ग गाने को दिया। ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ, हिट हुआ। उसके बाद तो मोहम्मद अजीज साहब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोहम्मद अजीज ने हर सफल कंपोजर के लिए गाना गाया। प्रसिद्ध संगीतकार की जोड़ी लक्ष्मीकांत पैरेलाल ने भी उनको अपनी कई फिल्मों में मौका दिया। जब लक्ष्मीकांत पैरेलाल की जोड़ी उतार आई तो मोहम्मद अजीज का भी संगीत करियर जो है उतर गया। तब नए संगीतकार उभर कर आए, जैसे उदित नारायण, कुमार शानू जैसे नए गायकों को तवज्जो मिलने लगा। लेकिन मोहम्मद रफ़ी के फैन थे मोहम्मद अजीज। अपने समय के बेहद लोकप्रिय गायक मोहम्मद रफ़ी के गानों को बहुत प्यार से सुना करते थे और उनसे ही बहुत प्रेरणा इनको मिलती थी। ये उनको अपना गुरु मानते थे, मोहम्मद अजीज। हालांकि मोहम्मद अजीज ने रफ़ी से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन सुन सुन कर सीखा और करियर में एक समय ऐसा भी आया जब लोग उनको मोहम्मद रफ़ी का उत्तराधिकारी कहने लगे। एक बार मोहम्मद अजीज ने कहा भी था कि मुझे लगता है कि अगर कोई मोहम्मद रफ़ी का 5% भी गाने का लायक हो जाता है तो उसे देश का बेस्ट सिंगर माना जा सकता है। मोहम्मद रफ़ी साहब उनकी कितनी बड़ी प्रेरणा थे। इसे लेकर मोहम्मद अजीज़ ने एक बार ये भी कहा था कि उन्होंने मुझे इस हद तक प्रेरित किया था कि मैं अपनी पूरी आत्मा लगाकर उन्हें आत्मसात करता हूँ। हालांकि मैंने अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग का टीचर से ली है, लेकिन मैं रफ़ी साहब को अपना गुरु मानता हूँ। मैंने आज कई भाषाओं में और दुनिया भर में परफॉर्मेंस किया है और मैं अपने इस सक्सेस का श्रेय पूरा मोहम्मद रफ़ी साहब को देता हूँ। तो ये मोहम्मद अजीज ने कहा था फिल्म इंडस्ट्री में। मैं ये चीज़ों को जो है मोहम्मद रफ़ी का शिष्य था और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये उन्होंने कहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन सफ़र कार्यक्रम को। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और बातें कर रहे थे मोहम्मद अजीज के बारे में। एक बार रफ़ी साहब ने मोहम्मद अजीज के गाने सुने तो वो कह उठे, अरे ये तो मेरे जैसा गाता है। और माना जाता है कि अलग अलग भाषाओं में मोहम्मद अजीज ने करीब 20,000 से गाने गाए, ज़्यादा गाना गाए। इनमें से आपके आ जाने से, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, कागज कलम, दावत ला, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन मेरे लिए, मेरे दो अनमोल रतन। जी हाँ, ये ऐसे गाने तुझे रब ने बनाया होगा जैसे कई गाने जो हैं इनके यादगार हैं, जो लोगों के दिल में आज भी गुनगुनाते हुए या गुनगुनाते हुए लोग नज़र आते हैं। हिंदी फिल्मों को कई बेहतरीन और सुपरहिट गाने देने वाले गायक मोहम्मद अजीज़ का 27 नवंबर 2018 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। उस समय वे 64 वर्ष के थे और कोलकाता से एक कार्यक्रम खत्म कर मुंबई लौट रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर ही उनकी तबीयत खराब हो गई। मोहम्मद अजीज सोमवार की रात कोलकाता में एक कार्यक्रम के लिए गए थे। जब वे दोपहर को लौटे तो उनकी एयरपोर्ट पर तबीयत खराब होने लगी और नानावटी अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये थी कुछ खास बातें मोहम्मद अजीज के बारे में आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। जैसे कि किसी भी गायक को अगर अच्छा बनना है तो कहीं ना कहीं एक आदर्श है, किसी ना किसी को हमें जो है गुरु बनाना ही पड़ता है, और गुरु के बिना ये विद्या अधूरी रह जाती है। आप कितना भी यूट्यूब से आज सीख रहे हो, टेक्नोलॉजी का ज़माना, मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब ख़राब है, यूट्यूब से ज़रूर सीखिए आपको, क्योंकि सीखना कभी भी बंद नहीं होता। और जो गायक है, इवन मोहम्मद रफ़ी साहब को पूछो या मोहम्मद अजीज साहब का इंटरव्यू आप देखो या किसी भी बड़े कलाकार किशोर दा का इंटरव्यू देखो, तो उन्होंने कहीं ना कहीं संगीत में महारत हासिल होने के बाद, लोगों ने उनको इतना सुना, लता जी को भी सुना आपने, उन सभी का एक ही कहना है कि भाई संगीत जो है वो इतना गहरा है उसे कोई नाप नहीं पाएगा। कंप्लीटनेस नहीं है, यहाँ चलता रहना है। तो जीवन चलने का नाम है, रुक गए तो ख़त्म हो गए। इसलिए अगर आप गायक बन रहे हो या बनने के कगार पे हो या गायक के शौकीन हो, गाने के शौकीन हो, तो आप रियाज करते रहें। जितना रियाज करेंगे उतना आप माहिर बनेंगे, उतना आप समुंदर में गोते खाएंगे। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो।

0: रुक। ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: और पहाड़ भले ही न टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। और इसलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए मोहम्मद अजीज की कहानी सुनकर भी आपको बहुत खुशी हुआ, अगर आप एक कलाकार है तो और अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। अभी एक आखिरी एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं। ये ग्राम जैतपुर सोनवा फैजाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं विद्या विंदु सिंह। जी हाँ, आज ही के दिन 1945 में इनका जन्म हुआ था और लोक साहित्य के क्षेत्र में इनका नाम बहुत ही पॉपुलर है। कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, लोकगीत, हर विषय पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है, पर सबसे ज़्यादा उनको अवधि जो रुचि है लोक साहित्य में मिली और इनकी खुद की भी रुचि थी और यही इनकी पहचान बनी। विद्या विंदु सिंह को सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि मिली लोक साहित्य से, इसमें अवधी भाषा के लोकगीत, मुहारे, राम से जुड़े कई ऐसे प्रासंग भी है जिनको सिर्फ कहा या सुना जा सकता है। साहित्य में उनके योगदान हेतु उन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर विद्या विंदु लोक साहित्य के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाती हैं और पद्मश्री इनको तब मिला। अवधी भाषा का साहित्य हो, अवधी लोकगीत हो, राम इसके प्राण हैं, राम ही इसके मुख्य पात्र हैं। अपनी रचनाओं में राम और सीता को सहज भाव से चित्रित करने वाली, राम कथा के कई अनसुने प्रसंगों को संजोने वाली हिंदी और अवधी की लेखिका समीक्षा डॉक्टर विद्या विंदु सिंह को पद्मश्री 2022 में मिला। तो उनके कार्य के लिए उनकी रचनाएं 118 रचनाएं प्रकाशित हैं, जिनमें कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, लोकगीत, ये सारी विधाओं में उन्होंने लिखा है। डॉक्टर विंदु सिंह कहती हैं, मैं किसी बोली या भाषा को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन के पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसे सही नहीं मानती हूँ। जहाँ तक बात अवधि की है तो ये हिंदी को भी समृद्ध करती है। जिस तरह तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है, इस परंपरा का पालन करने वाले लोग ही अवधि को आगे बढ़ा सकते हैं। घर में बच्चों के साथ भी अवधि में बात करें तो आम तौर पर लोग घर में नहीं करते हैं। तो ये उनकी बात थी, डॉक्टर विद्या विंदु सिंह की बातें। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे अब चाहूँगा

अतत और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और जाते जाते फिर से एक सुंदर विचार आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। कहते जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं, जीवन में ज़्यादा रिश्ता होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं, ढेर सारी खुशियाँ, बहुत प्यार, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, संते रहो।

0: मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अभी बजे हैं शाम के 5।

सुनेगा ये जहां कहेंगे जो हम सुनेगा।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष पेशकश में। वैसे तो आप सभी को पता है कि हम मना रहे हैं डी एडिक्शन वीक, यानी कि नशा मुक्ति सप्ताह मना रहे हैं। सरकार कहती है कि नशा मुक्त भारत यानी विकसित भारत, और सच में विकास से नशे का गहरा संबंध है, क्योंकि वो रुक जाता है, थम जाता है। और भारत का युवा अगर नशाग्रस्त होने लगे, अगर ये प्रभाव उन पर पड़ने लगे, तो पूरे देश पर असर पड़ता ही है, क्योंकि भारत को एक युवा देश कहा जाता है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं तीन यूथ जो अलग अलग फील्ड में हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, अपने जॉब्स भी कर रहे हैं, समाज के लिए भी एफर्ट्स कर रहे हैं। और क्या वो उनके अनुभव हैं, क्या वो देख रहे हैं, आज हमें ये जानने को मिलेगा। तीन नए पर्स्पेक्टिव्स आज हमें मिलेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदीश, और वो एक क्लाइमेट इमरजेंसी फैशन के लिए काम करते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही कमाल की चीज है। जगदीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: और हमारे साथ जुड़ गए अभिमन्यु, जो कि कंसल्टेंट हैं प्रोक्योरमेंट एंड रिस्क एडवाइजरीज में, और साथ साथ वो बहुत ही युवाओं से कनेक्टेड भी रहते हैं, उनकी ओपिनियंस को जानते हैं, और एक अनुभवी टीचर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि।
0: और हमारे साथ जुड़ गई हैं ललिता, जो कि एक यूथ वॉलंटियर हैं, बच्चों के साथ उन्होंने काम किया है, बड़ों के साथ उन्होंने काम किया है, नशा मुक्ति के लिए भी काम किया है, उनको पढ़ाने के लिए, वापस स्कूल पहुंचाने में भी उनका योगदान रहा है। तो ललिता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू,
0: वेलकम। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप तीनों ने ज्वाइन किया, बहुत इंटरेस्टिंग पैनल है आज हमारे पास। आप सभी अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि नशा मुक्ति की बात होती है, तो सबसे पहले तो मैं आप ही लोगों के ओपिनियंस जानना चाहूंगी, या आपके ऑब्जर्वेशन जानना चाहूंगी कि क्या देखते हैं आप, क्या अपने आसपास किस तरह की बातें देखते हैं, या किस तरह का इफेक्ट देखते हैं नशा डाल रहा है आज जो हमारे साथ के ही लोग हैं, युवा हैं, उनके ऊपर। आपसे शुरुआत करें अभिमन्यु जी।
2: बिल्कुल बिल्कुल आरुषि। अगर मैं ये बताऊं कि मेरे एक्सपीरियंसेस मैंने क्या देखे हैं यूथ में, मैं सबसे पहला एक्सपीरियंस मुझे याद आता है जब मैं 11th 12th में दिल्ली गया था कोचिंग लेने के लिए। और जैसे आजकल युवा लोग नीट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है वो एग्ज़ाम और उसकी तैयारी, बहुत कॉम्पिटिशन रहता है उस एग्ज़ाम में। जब हम तैयारी करते थे, ये 2008-2007 के आसपास की बात है, उस टाइम दो अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, AIEEE अलग होता था और IIT के लिए अलग एग्जाम होता था इंजीनियरिंग वाले लोगों का। तो हम कोचिंग लेने बाहर गए थे, दिल्ली गए थे, तो मेरा एक प्रिय मित्र जो गौरव नाम था उनका, और गौरव नाम बोलेंगे उनको यहाँ पे हम, ठीक है, उनकी प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए। तो मेरे पिताजी ने उनको देख कर मुझे दिल्ली भेजा था, ये बोला था कि मैं तुम्हारे भरोसे पर अभिमन्यु को दिल्ली भेज रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत स्टूडियस होते थे, ठीक है, और टॉपर थे अपने, और तो उनके भरोसे पर मुझे दिल्ली भेजा था कि वो मेरा ध्यान रखेंगे। तो 4-5 महीने जब हमने कोचिंग करी, उनका व्यवहार चेंज होता गया, मुझे नहीं पता था क्यों चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज होता गया, मुझे ये पता था। एक दिन मैं क्लास से जल्दी आ गया, उनकी क्लासेज अलग होती थी मेरी अलग, तो मैं एक दिन क्लास से जल्दी आ गया, तो मैंने देखा, मैं उनके रूम में गया तो मैंने देखा कि वो नशा कर रहे थे। अब कौन सा नशा कर रहे थे वो मैं स्टूडेंट्स को डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ ज़्यादा बाहर है, बट मैंने ये देखा कि कैसे वो इंसान जो कभी एक टॉपर होता था, वो कैसे एक नशे की आदत में पड़ गया दिल्ली जाकर 4-5 महीने के अंदर, और सिर्फ नशे में नहीं, उसकी वजह से कैसे उसके मार्क्स भी गिरते जा रहे थे। तो जहां मेरे पिताजी ने उनके भरोसे पर मुझे भेजा था, ये इतना आसान हो जाता है बच्चों के लिए, खासकर उस उम्र में राह से भटकना, वो मैंने फर्स्ट हैंड अपने सबसे प्रिय मित्र के ऊपर देखा था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और कैसे उसकी सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ा कि जो वो नंबर लाना चाहते थे, जिस वजह से लाखों रुपए लगा के उनके माँ बाप ने उन्हें बाहर भेजा, वो चीज अचीव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि जब आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते तो आपका फोकस और जो आपकी कंसंट्रेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और नशा सबसे पहले आपसे वही लेता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कई बार लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि हम बहुत थक जाते हैं या फिर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, इसलिए नशे का सहारा लेते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, उल्टा ही असर डालता है और आपके लिए मुश्किल ही खड़ी कर देता है, आपको लक्ष्य से दूर ही ले जाता है, मदद नहीं करता। और आपने बताया वो टॉपर थे और कहां उनकी ये परिस्थिति हो गई।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कितना डिफिकल्ट है। जगदीश, आप क्या देखते हैं?
1: देखो, मैं तो गांव में काम करता हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अभी उदयपुर में काम कर रहा हूँ। तो नियर बाय गांव है उदयपुर में, जहाँ पे अभी मैं रह के काम कर रहा हूँ। तो अभी एक वीक पहले की एक्सपीरियंस है, मैं उससे शेयर करूंगा, बहुत ताजा एक्सपीरियंस है। मैं कुछ लोकल मैरिज अटेंड कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे मैरिज का भी बहुत टाइम चल रहा है, लोकल में शादी अटेंड कर रहा हूँ। तो वहां पे मनवार करते हैं कि बीड़ी सिगरेट एक प्लेट के अंदर, मतलब वो घूमती है प्लेट, और जिसको भी लेना है लेके पी सकते हैं सर। तो मेरे को भी देते
0: अच्छा
1: हैं, तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं सर। तो उनका बहुत जबरदस्ती वाला रहता है कि नहीं आप पियो पियो, मतलब शौक पे, एक बहुत अच्छा राइसी वाला कि हाँ पियोगे तो बहुत अच्छा है, आप बहुत हमारे स्पेशल गेस्ट है, ऐसा फील कराते। पर
0: अच्छा
1: वहां पे मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, मतलब पिछले 3 दिन में लगातार एक मैरिज को अटेंड करने जा रहा था, शादी से पहले के जो इवेंट होते हैं। तो उसमें कुछ लड़के लोग जो कि अभी 14-15 साल के भी नहीं है, 9th-10th क्लास में पढ़ते होंगे या 8th में भी, तो वो बच्चे जो बीड़ी सिगरेट जो प्लेट आती है, जब इधर उधर वो जाती है प्लेट, सारे मेल्स में बटती है वो, तो उसमें से वो छुपा के एकदम से चोरी से, जैसे उन्होंने किसी ने देखा नहीं, मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन, उन्होंने लिया वहां से और जेब में रख दिया चुपके से। और वो क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद में जब लेट नाइट हो जाता है तो मेरे रूम पे मुझे ड्रॉप करने आते हैं, और मैं मेरे को बोलती कि आपका रूम देखना है, चलो चलते हैं। बट वो वही मेरे को बहाना करके मेरे घर के बाहर ये साइड में एकांत में वहां पे बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। उनको लगा कि मेरे को नहीं पता है। और ऐसा ऐसा एक बार मेरा एक्सपीरियंस रहा। दूसरे तीसरे दिन उनको लगा कि नहीं सर, फैमिलियर हो गए, मतलब थोड़ा बातचीत कर सकते हैं। तो हंसी मजाक में मुझे बोले कि आप यहाँ भी सो भी सकते हैं, हम और एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, और सर आप कौन सी बीड़ी पीते हो? तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि ये क्या बोल दिया तुमने, मतलब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, ना ही तुम्हारा हम उम्र हूँ। मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी और मेरी एज में बहुत
2: अक्सर
1: फर्क
2: ऐसा
1: है।
2: ही होता है जगदीश
1: मैं
2: भाई,
1: 27-28 साल का हूँ और तुम 17 साल। हाँ
0: सिगरेट
1: जी
0: में दोस्ती
1: हाँ, वहीं से दोस्ती स्टार्ट होती है। उनको लगा कि
0: कोशिश
1: शेयरिंग
0: करते हैं
1: करते
0: लोग।
1: हैं, उनको ये तो पता है
2: इस
1: कि
2: पे मैं
1: मैंने देख
2: भी
1: लिया उनको दूर से, तो उनका था कि आप
2: इस पे
1: शेयर
2: जगदीश
1: कर रहे
2: भाई
1: हैं,
2: के
1: क्या
2: साथ मैं
1: जाता है
2: भी
1: कुछ।
2: बताना चाहूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज
0: हाँ
2: कंटिन्यू।
0: बिल्कुल
1: तो हालांकि मैंने उन्हें, उनकी फैमिलीज भी थी वहां पे, बात किया, फिर मैंने खुल के बोला कि तुमने वहां से उठाई और तुम मेरे को छोड़ने आने के बहाने वहां आके पीते हो, नाम का मेरा छोड़ना है, मेरे को छोड़ना तो तुम्हारा ऐसे ही
0: अच्छा नहीं है
1: ऑब्जेक्टिव,
0: वो।
1: तुम्हारा ऑब्जेक्टिव दूसरा है कि तुम घर से दूर आकर के ये करने आते हो, है ना। तो उनकी फैमिली को वही बोला कि ये चीजें इनके लिए नहीं है, ये स्टूडेंट है अभी, और इनको बात करने का भी तरीका नहीं कि किससे बड़ों से कैसे बात करते हैं, तो ये
0: इतने
1: चीजें आप
0: इतने
1: स्वीकार
0: बड़े
1: करो।
0: स्टूडेंट होंगे जगदीश, मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते होंगे ऑलमोस्ट
1: ये
0: वो,
1: एक था
0: या बात
1: 10th क्लास का, मतलब कि आप मान सकते हैं 14-15 साल के बच्चे हैं, 10th-11th के बच्चे, मतलब 16 साल के, 17 साल के बच्चे। एक ने बताया भी था 17 साल का है ऐसा, तो मैंने कहा मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ फिर, है ना। तो मतलब वही कि मैं उनको समझा रहा था। और एक और मैरिज अटेंड किया था, बट अभी मनु जी अभी बता रहे तो मैं उनके बाद भी बता सकता हूँ। तो
2: नहीं, प्लीज आप बताइए जगदीश भाई। मैं तो, आपने जब वो बताया कि वो आपसे बीडी के लिए पूछा आपसे कि आप भी हमारे साथ भी हम बातें करेंगे, तो मुझे ये, जैसे हम आजकल नौकरी करते हैं उसमें हम देखते हैं कि कैसे अभी भी क्या करते हैं कि लोग इसको सुट्टा ब्रेक बोलते हैं। तो
1: जी
2: जो लोग सिगरेट पीते हैं वो लोग साथ में बाहर जाके ब्रेक लेते हैं, साथ में बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, उसमें बातें करते हैं, तो उस तरह से उनकी दोस्ती भी ज्यादा हो जाती है। इनफैक्ट मुझे भी लोगों ने ऐसे बोला कि अगर आपको करियर में जल्दी तरक्की करनी है तो आप भी ऐसे सिगरेट पिया करो साथ में, और जाके उनके अपने बॉस वगैरह से दोस्ती करने का एक आजकल तरीका बन चुका है।
0: बताइए,
2: तो वो
0: दोस्ती का
2: चीज याद आ
0: तरीका।
2: गई थी आपसे जब आपने बोला कि, और आपसे बोल रहे थे कि चलो भैया आप भी बीड़ी पियो हमारे साथ, हम आपके साथ बीड़ी पियेंगे। तो ये चीज प्रेवलेंट है
0: कैसे
2: बच्चों में
0: जोड़
2: भी और
0: दिया
2: बड़ों में
0: गया
2: भी।
0: है ब्रेक को
2: हाँ,
0: सिगरेट
2: सोशलाइज कर
0: से,
2: दिया
0: सोशलाइज
2: गया ऐसे से। हाँ
0: कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा एफर्ट भी होता है एडवर्टाइजमेंट्स का, कंपनीज का भी, क्योंकि वो चाहते हैं
2: हाँ
0: ज्यादा बिके, तो इसके से उसका एक कनेक्शन बिठाने लगते हैं कई बार लोग। आप दोनों की जो स्टोरीज हैं वो कहीं ना कहीं भले अलग अलग जगह की हैं मगर कुछ मिलती जुलती हैं। यहाँ मैं ललिता से भी जानना चाहूंगी एक्चुअली, क्या उनका पर्सपेक्टिव है, वो क्या देखती हैं, और क्या ये प्रॉब्लम, मैं ललिता आपसे भी ये भी जानना चाहूंगी कि ये क्या ये महिलाओं में भी है या बच्चियों में भी है, या फिर सिर्फ लड़कों का ये इशू आपको लगता है ज्यादा रहता है?
3: एक्चुअली में दीदी, जैसे कि मैं स्कूलों में जाती हूँ, स्कूलों में नहीं अदरवाइज मैं गांव में भी जाती हूँ। ऐसे बात करें तो कम से कम मेरे लगभग 3,500-4,000 बच्चे हैं जिनके साथ मैं काम, के साथ है। तो जॉब पे तो मैं सब चीजें देखती हूँ जैसे काम करने वाले लोग हैं। अगर जो गांव की जैसे भैया बात कर रहे थे ना, 17 साल के जो बच्चे होते हैं ना, 15 से 17 साल वाले बच्चे, इनमें ज्यादा ये चीजें होती है। और होती क्यों है, जब मैं बच्चों से बात करती हूँ ये सब चीजें क्यों होती है, तो मैं ये सब नहीं करनी चाहिए, तो बोलते हैं मम्मी पापा भी तो करते हैं। उनका ऑलमोस्टली जवाब ये होता है कि मम्मी पापा भी तो करते हैं। आप उनको ऐसा बोलेंगे ना, भाई ये फायदा करता नहीं है, मतलब नुकसान चीजें है, इस पे लिखा भी होता है, तो उनका सीधा जवाब होता है आज तक तो मम्मी पापा को कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीजें देखते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है बच्चों के लिए समझाना कोई वो नहीं है, बट इनके लिए कुछ अलग करना चाहिए हमें। जब मैं किसी भी बच्चे, जैसे मैं जाती हूँ, जैसे लड़कियों की बात हुई, तो जैसे लड़कियां बोलती है मम्मी भी खाती है, ऐसे मैं बताऊं आपको कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं जा रही थी पैदल पैदल ऑफिस जा रही थी, तो रास्ते में मुझे स्कूल वाली बच्चियां मिली, तो बोल रही है दीदी आप आते नहीं हो। तो मैंने बोला जब मैं तब आऊंगी तुम्हारे पास जब तुम नशा करना छोड़ दोगी। नशा क्या होता है उनका, वो पाउच वाले वो आते हैं ना देसी वाले, वो उनका बहुत ज्यादा चलता है लड़कियों
0: तंबाकू।
3: में भी। नहीं वो क्या बोलते, वो पाउच में आई थिंक
2: गुटखा।
3: शराब भी आता है, वो
0: अच्छा
3: गांव
0: अच्छा
3: के एरिया में बिकता है वो, तो वो भी वो लोग पीते हैं। तो मैं
0: वो
3: लड़कियों से जब
0: बच्चे हैं
3: ऐसे बोलती
0: स्कूल
3: हूँ मैं
0: के,
3: कभी आपके
0: लड़कियां हैं
3: स्कूल का
0: स्कूल
3: तुम
0: की जिनकी बात कर रहे हैं।
3: मतलब पीना छोड़ दे, तो उनका सीधा जवाब होता है दीदी हम पियेंगे नहीं तो चलेगा कैसे।
0: और ये कितनी बड़ी
3: उनका
0: बच्चियों की बात
3: मतलब
0: कर रहे हो आप ललिता,
3: यही
0: कितनी
3: 15 से शुरू हो जाती है, वो
0: 15 से 16
3: छोड़
0: से।
3: देती हैं, घर पे रहती हैं, फिर माँ बाप को समझाने जाओ तो माँ बाप कहते हैं कि हमारा धंधा नहीं चलेगा, हम इनको स्कूल भेजेंगे। तो
0: मतलब वो बोल रही है पियेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, 15 साल की एक बच्ची
3: हाँ
0: वो ये बोल रही है कि पियेंगे नहीं तो काम कैसे
3: दीदी
0: चलेगा। मतलब
3: जी
0: कितनी कितनी कितनी खतरनाक ये सिचुएशन है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कितनी ज्यादा मुश्किल ये हो चुकी है अभी हम हमारे आसपास हम देख रहे हैं। आप जगदीश कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे लगता है आप भी कहते कहते रुक गए थे, जरूर आप वो बात
1: बिल्कुल
0: बताएं।
1: बिल्कुल। कुछ और मैरिज अटेंड किया था, तो वहां पे जो है मतलब दारू सब होता है, और दारू में भी महिलाएं पुरुष सारे लोग पीते हैं, मिलके खुल के पीते हैं। और हालांकि उस कम्युनिटी का नाम नहीं ले जाऊंगा, वहां पे इनवाइट नहीं किया जाता किसी को भी अदर कम्युनिटी को, बट मैं उनके साथ में वर्क कर रहा हूँ, उनके बच्चों के साथ में, डायरेक्ट उनके बच्चे नहीं, उनके रिलेटिव के बच्चे के साथ में। तो जस्ट ऐसा मैंने लाइजनिंग बनाया कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ कम्युनिटी में, मैंने मेरा खुद का बाउंडेशन है ऐसा, मतलब जिस तरीके से मैं फील्ड में कहीं गांव में एकदम डेप्थ में जाके काम करता हूँ। तो वहां पे मैंने देखा कि कुछ दिन तक तो उन्होंने छोरी छिपे किया या मेरे सामने नहीं किया, पर कंटिन्यू जब जाने लगा, 2-3 दिन जब जाता हूँ तो उनका शर्म ऐसा दूर हो जाता है कि सर तो अपने ही है, ऐसा है ना, मार साहब तो अपने ही है। तो फिर वो मेरे को दारू का बोतल ऐसा, तो मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं चलता है। तो फिर वो कि नहीं अगर आप मतलब आप अगर पैसे मतलब वही कि आप चश्मा पहन के आए हो या शहर के आए हो तो आप जरूर पियेंगे, या हम रईसी वाला है आपको मनवार कर रहे हैं, बहुत रेस्पेक्ट से दे रहे हैं, आपको पीना पड़ेगा जोर जबरदस्ती वाला। मैंने कहा नहीं मेरा नहीं चलता है, तो आप फिर कौन सी कम्युनिटी से है ये वो कि नहीं चलता आपको। मैंने कहा नहीं मैं पीता ही नहीं हूँ सर। तो बोले आपके लिए क्या कोल्ड ड्रिंक लाए क्या, मतलब ऐसा मतलब उनको कुल मिला के कुछ तो पीने का देना है मुझे, जिसमें मैं उनके जैसा बराबर का उनको फील आए कि सर ने
0: वो
1: तो कुछ तो
0: स्टेटस
1: पीना।
0: स्टेटस से जोड़ दिया है उस चीज को
1: हाँ
0: वहां
1: हाँ
0: पे।
1: भले उनके पास पैसे नहीं हो कोल्ड ड्रिंक के भी, बट वो मुझे कोल्ड ड्रिंक इसलिए देते ताकि हम्बल हम सब लोग एक जैसे हैं, एम्पैथी फील हो उनको, सहानुभूति फील हो, और वो उसके लिए वो करते हैं ऐसा। तो वही था कि जोर जबरदस्ती में, फिर अभिमन्यु जी ने जैसे बताया, तो मेरे भी कुछ जनजी मतलब है दोस्त लोग हैं, तो उनका वही कि एक सुट्टा तो मार लो कुछ नहीं होगा है ना, थकान दूर हो जाएगा या कुछ नहीं, एक से चलता है। मैंने कहा मेरा हेल्थ इश्यूज है, मैं नहीं करता हूँ ऐसे नशे पते ऐसे, नहीं नहीं एक से कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं होगा है ना। और मैंने कहा मुझे आता भी नहीं है सिगरेट पीना, नहीं ऐसे ऐसे करो फूक लो अंदर ऐसे करो,
0: बताएंगे
1: चलो
0: भी, सिखाएंगे भी।
1: हाँ मेरे को करके
2: ये देखो
1: बताएंगे करके बताएंगे।
2: ये चीज ऐसी हो गई है आरुषि बहन की, आज के टाइम में एक समय होता था जब कल्चरली नशा जो है ना एक गलत चीज की तरह देखा जाता था, और ये माना जाता था कि जो सोसाइटल आउटकास्ट है, जो सोसाइटी के सबसे मैं यूं कहूंगा मिसफिट्स हैं, जो सोसाइटी में फिट नहीं होते, ऐसे लोग नशा करते हैं या फिर ऐसे लोग ही इन सारी चीजों का सेवन करते हैं। आज उल्टा हो चुका है। अगर मैं आज अपनी ऑफिस की कभी

0: गैदरिंग्स में पार्टी में जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं, जो किसी तरह का नशा नहीं करते हैं, वो लोग बहुत कम रह गए हैं। उन लोगों को ऐसे देखा जाता है जैसे जगदीश भाई बता रहे हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बिना शराब के एंजॉय कैसे करेगा। जैसे अब ये लोग, हम लोग कई बार गैदरिंग्स में डांस भी करते हैं, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मेरी शक्ल से ऐसा नहीं लगता लेकिन मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तो जब मैं
1: बहुत
0: बिना
1: अच्छी बात
0: शराब
1: है।
0: पिए डांस करता हूँ और काफी लोगों से ज्यादा डांस कर लेता हूँ, तो वो मानते ही नहीं है कि मैंने शराब नहीं पी और मैं फिर भी इतना एंजॉय कर पा रहा हूँ। मतलब आज ऐसा हो गया कि लोग सोचते हैं इस सब चीज के बिना गुजारा नहीं हो सकता, ये
1: बताइए,
0: कल्चर एक
1: मतलब इसके
0: फिनोमिना बन
1: बिना आप
0: चुका है।
1: डांस भी नहीं कर सकते, इसके बिना आप एंजॉय नहीं कर सकते,
0: हाँ
1: ये एक मान्यता बन
0: हाँ
1: गई है।
0: ये मान्यता बन गई। अब ऐसा हो गया, उल्टा हो गया कि वो लोग जो शराब नहीं पीते उनको ऐसे देखा जाता है कि इनके साथ कुछ गलत हो जैसे, तो ये इतने अलग कैसे है, ये एक देखने में आया जो पहले ऐसा नहीं होता था। जब हम
1: ये
0: छोटे होते थे
1: अभी
0: 20 साल
1: अभी
0: पहले में
1: अभी
0: भी,
1: लग
0: और अब में
1: रहा है।
0: बहुत फर्क आ गया है,
1: हाँ, ये मतलब
0: बहुत फर्क आ
1: अभी
0: गया है।
1: आप चेंज
0: और
1: देख रहे
0: हाँ,
1: हैं।
0: एक और बात याद आई, एक और बात याद आई कि वो दारू वाले में बताना भूल गया। वो कह रहे कि सर दारू नहीं पिला रहे आपको, बियर पिला रहे है ना, बियर मिला रहे है ना। लेडी, एक लेडी जो मुझे आके बोलती है कि वो खुद भी पीते थे, सब लोग वो लेडी वहां पीते हैं शादी में उस कम्युनिटी में। वो मुझे बोली कि सर बियर बियर, वो बोली, क्लियर बोली वो मुझे कि वो बियर सर आपको पिलाएंगे। मतलब बहुत प्राउड फील कर रही थी उस बियर में भी वो, कि सर हम तो दारू तो हमारे चलता नहीं है माताजी के, पर बियर जरूर चलता है, तो बियर आपको पिलाएंगे। इनका सॉरी माताजी, मैं बियर भी नहीं पीता हूँ।
1: मतलब अच्छा, तो एक तो दो चीजें मुझे समझ में आई, एक तो दोस्ती बढ़ाने के तरीके से इसको जोड़ दिया गया है, और दूसरा स्टेटस से भी जोड़ दिया गया है कि आप
0: बिल्कुल
1: पीते हो तो एक स्टेटस है आपका, आप पिलाते हो तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मतलब बहुत ही गलत चीजों से जोड़ दिया गया है इस चीज को।
0: विनाश काल विपरीत बुद्धि
1: बिल्कुल
0: जैसे बोलते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल, और वो हो रहा है। अब मैं आप तीनों से एक और बात जानना चाहूंगी, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं जेनरेशन की। एक तो जैसे आपने कहा अभिमन्यु, कि आपने बताया कि पहले नहीं होता था, बहुत साल पहले ये नहीं होता था, अब ये ट्रेंड बन गया है जैसे, तो ज़्यादा ये कौन सी जनरेशन में आपको लगता है, आप तीनों को लगता है सबसे ज़्यादा इस वक्त जो नशे की समस्या है, कौन सी जनरेशन को ज़्यादा असर डाल रही है, जिस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? मतलब ये 25 से 35 साल के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आपको लग रहा है 15 से 25 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, या क्या लगता है आपको, दोनों में से कौन सी जनरेशन ज़्यादा इफेक्टेड है? जी
0: मैं अगर इस पे बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रुचि बहन कि जनरेशन का इससे लेना देना नहीं है, बजाय कि
1: ओके
0: इसके कि आज ये ऐसा फिनोमिना बन गया कि जिन लोगों के पास कारण नहीं है, हर एक के पास कोई कारण होता है, मेरे पास कोई कारण है कि मैं ये सब चीजें ना करूं, लोगों के पास कारण नहीं बचा है, लोग खुशियां ढूंढते हैं इन चीजों में। तो उम्र की बात नहीं रह गई है, बात ये रह गई है कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हो। हर कोई, जो भी इंसान स्ट्रेस में है आज के टाइम में, जो इंसान स्ट्रेस में है, जो अकेला फील करता है, जिसको लगता है कि मुझे वो पारिवारिक सुख नहीं मिलता, या वो चीजें, वो जो सुख मिलना चाहिए वो
1: खुशी
0: आसपास
1: नहीं
0: नहीं
1: मिल
0: मिल
1: रही
0: रहा है,
1: उनके
0: वो
1: जीवन में।
0: खुशी नहीं है, वो इन चीजों में ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, जब हम छोटे थे तो एज अ सोसाइटल में चीजें बोलूंगा कितनी नहीं थी, बट अब मैं बच्चों में भी देख रहा हूँ, मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को, फिजिक्स पढ़ाया है 2018-19 में, 11th 12th 10th क्लास के मैं बच्चों को पढ़ाता था, उनमें भी ये चीज कॉमन है। तो आज मैं, आज जब ऑफिस जाके देखता हूँ तो जो बड़े हैं 45-50 साल के, 40 साल के, उनमें भी वो चीज कॉमन है। क्यों? क्योंकि अब सोसाइटी में इस चीज को गलत मानते ही नहीं है, ये एक्सेप्टेबल हो गया है सोसाइटी द्वारा। तो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल हो गया है, तो इस वजह से मैं यूं कहूंगा कि जनरेशन का इसमें कोई बैरियर
1: बात
0: एटलीस्ट
1: नहीं
0: मेरे
1: है।
0: एक्सपीरियंस में नहीं रह गया है।
1: आप लोग क्या सोचते हैं, ललिता आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जनरेशन कौन सी ज्यादा इफेक्टेड है, या आप अभिमन्यु जी की बात से सहमत हैं, या आपकी कोई अलग सोच है तो आप वो भी बताएं।
2: मैं भैया की बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं जो फील्ड में देखती हूँ ना दीदी, उससे पता चलता है कि मतलब कोई जनरेशन का इसमें लिमिट नहीं है। जैसे भैया ने
1: अच्छा
2: बोला, जैसे वजह मिल जाती है लोगों को, ये वजह है आजकल लोगों को, मतलब ये बच्चों की जैसे बात करें या बड़ों की बात करें, बच्चों को ये लगता है माँ बाप पी रहे तो हमने थोड़ा पी लिया तो क्या जाता है। और बड़ों की बात करें, जैसे कि ऑलमोस्टली लोग इसके बिना काम नहीं होता है। जैसे मैं एक जगह पे ऐसे ही हमारे काम वाले हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर उनको तार पे भी चलना है ना, बोलेंगे पी के ही चलेंगे, भाई पी के मत चलो दीदी, बिना पिए तो चलते भी नहीं है, चला भी नहीं जाता है। तो ऐसे सब किसी जनरेशन का
1: ओके
2: मेन नहीं रह गया। ऑलमोस्टली अभी क्या होता है, 12 साल तो क्रॉस होते ही लोगों को ये आदत हो जाती है पीने का, तो
1: 12 साल क्रॉस करते ही आदत हो जाती है।
2: लत लग जाती है उनको। क्यों? क्योंकि माँ बाप है
0: हाँ
2: ना, बोलते
0: बिल्कुल,
2: बेटा जा 10 रुपए गुटखा लेके आ जा, या ये 10 रुपए का रोड पे पाउच मिल रहा है लेके आ जा, फिर वो लाने लाने तो आदत हो जाती है वो।
0: मैं दोनों
1: जगदीश।
0: इसमें ऐड करना चाहूंगा ये बस एक लाइन, कि इसमें बस ये कि नशे का फर्क है, जो 10वीं 11वीं के बच्चे वो वेप करके पीते हैं, एक नई चीज निकली है, वो खुशबू वाली सिगरेट है, वो फ्लेवर वाली सिगरेट है, वो वेप बोल देते हैं। तो जो छोटी उम्र के लोग हैं, जेन जी जिसे बोलते हैं, 10th 12th 11th वाले, वो वेप का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े कुछ और कर रहे हैं वो, उनको क्योंकि इतनी
1: मतलब
0: जल्दी शायद शराब
1: प्रकार
0: नहीं मिल
1: बदल
0: पाती।
1: गए।
0: हाँ, उनको शराब नहीं मिल पाती, आपको एक लीगल एज चाहिए उसके लिए, तो दूसरे तरीके निकाल दिए जाते हैं।
1: और जगदीश आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कौन सी
0: हाँ,
1: जनरेशन ज्यादा सफर कर रही है या आपको
0: मैं
1: लगता है?
0: जो बिल्कुल जो अभी जो स्कूल वाले बच्चे हैं, 9th 10th से ऊपर के बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत अलग अलग नशा ट्राई करते हैं, है ना। और उनका जो है मतलब देखा जाए डेटा वाइज भी, आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा डेटा भी, बट उनका जैसे एक्सपीरियंस है आसपास के बच्चे हैं, वो छुप छुप के जो पेरेंट्स से नशा करते हैं या उनकी पॉकेट मनी से नशा करते हैं, वो हद से ज्यादा करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स लोगों का ये कि कभी कभी वाइफ नहीं पसंद करती है, या अगर बेटा बेटी बड़े हो गए तो वो पापा मम्मी को नहीं करने देते हैं, पर जो बच्चा छुप छुप के करता है ना, उसका रेशो बहुत ज्यादा है, मतलब देखा जाए तो, है ना। वो लड़कियां भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं जो छुप छुप के कर रहे हैं, और जो स्कूल और कॉलेज में, और वो डिफरेंट डिफरेंट नशा ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो जैसे एक पाउडर वही सूंघते हैं उसको, और जो आप सिगरेट की बात कर रहे हैं कि उसका फ्लेवर रहता है जिसमें वो ठंडक करता है गले में पीने के बाद में, है ना। तो वो सब चीजें बच्चे ट्राई करते हैं, और ट्राई ऐसे करते हैं कि किसी को नहीं पता कि ये करते हैं। बाकी ये जो पॉकेट मनी इनकी फैमिली से लाते हैं, उसी से ही इंजॉय करते हैं, आसानी से करते हैं, क्योंकि फैमिली को नहीं पता कि ये कर रहे हैं बच्चे, और ये छुप छुप के करते हैं इस एज में, और ये हद से ज्यादा कर रहे हैं।
1: तो एक चीज मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, अगर आप जवाब दें इसका, तो क्योंकि आप भी स्कूल गए, कॉलेज गए, जॉब की, तो ये प्रेशर तो आपके ऊपर भी आया ही है। तो क्या आप लोगों ने, आप तीनों ने खास तौर से अगर आप अपने अपने बारे में बताना चाहें, कि आपने क्या डिसाइड किया हुआ था, या कभी मन गया ही नहीं उस तरफ, या कोई चीज थी जिसने आपको सही रास्ते पर चलने के लिए हेल्प की? क्योंकि दोस्त तो बोलते ही हैं, और जैसा आपने कहा आगे बढ़ने के लिए लोग बोलते हैं करियर में बहुत जरूरी है, दोस्तों के साथ रहने के लिए बहुत जरूरी है, या स्ट्रेस में बोलते हैं लोग बड़ा जरूरी है। तो आप इस चीज से कैसे बचे रहे, किस चीज ने आपको मदद की, या क्या आपके लाइफ का फॉर्मूला था जिसने आपको बचाया, ये मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी। कौन
0: मैं
1: शेयर?
0: बताऊं तो
1: हाँ
0: पहले आप बताइए।
1: जी।
0: मैं सीखा जो हूँ, मतलब कि ये चीज नहीं करना है या मेरे लिए सही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पापा हैं जिनको मैंने देखा था करते हुए बचपन में, और उसके बाद में हमारी घर की जो कंडीशन है या उनका जो स्वास्थ्य है वो कितना प्रभावित हुआ है, और वो कितना पेन होता है उनको खाना खाने में, या वो खाना खाने से पहले पूरे अपने फेस के अंदर लिक्विड लगाते हैं उंगली से, उनको जलन कम हो, उस वजह इजिली वो खाना खा पाए, ठंडक हो उनके चेहरे मुंह के अंदर, तो वो सब चीजें मैंने देखी। और छुप छुप के दवाई जब लेते हैं या लगाते थे, हमको कभी नहीं बताया कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम वो चीजें करना तो हम तो नहीं चाहेंगे ना कि वो चीजें करें। तो
1: जी
0: उनसे हम मेरे को प्रेरणा मिली कि नहीं ये चीज करना गलत है, क्योंकि जितना प्रॉब्लम आज वो फेस कर रहे हैं ना, शायद मैं भी फेस करूंगा, या मेरे बच्चे भी देखेंगे, या मेरे आसपास की कम्युनिटी भी, और वो सही नहीं है ना। कह उस जगह अगर कुछ अच्छा चीज खा सकते हैं, तो मैं मतलब जो बच्चे भी जो मुझे मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे बीड़ी पीने का, तो मैंने कहा इस जगह तुम अच्छा खाओ ना, तो बोले कि अच्छा क्या खाए, बहुत महंगा। मैंने कहा तुम उसी पैसे में तुम फल फ्रूट खा सकते हो, है ना। तो बोले इससे थकान दूर होता है, मतलब ज्यादातर लोगों का यही कि तनाव या थकान स्टेट जो हमारा है दिमाग में मेंटली, वो दूर करने के लिए हम ये गुटखा खाते हैं या नशा करते हैं। तो मैं वो जो बात से भटक रहा हूँ, पर वही बता रहा हूँ कि मैं अपने पापा से सीखा हूँ कि उनके जो हेल्थ इश्यूज है, बाद में उनको समझ में आया कि नशा नहीं करना है या वो नहीं कर रहे हैं, तो यही चीजें मैं नहीं करूँ, तो फिर मैं संभल गया और मैंने नहीं किया।
1: शुरू से ही आपने सीख लिया उस चीज को,
0: बाकी
1: देख
0: लोगों ने
1: लिया।
0: रिक्वेस्ट तो किया जब मैं फेलोशिप कर रहा था, तो अलग अलग दिल्ली से, यूपी से, अलग अलग जगह से, वेस्ट बंगाल से मेरे साथ फेलोज थे, जहाँ पे और लड़के लड़कियां यूथ है तो इजीली रोड पे भी सिगरेट पीते हैं,

0: कि आप बिल्कुल इससे दूर रहे।
1: दीदी ऐसा तो एक ऐसे मैं बताऊं मेरा एक्सपीरियंस तो खैर मेरे घर में तो ऐसा कोई है नहीं, और मेरी मम्मी कहती है मेरे पापा पीते थे, बट हमको पता नहीं वो पीते थे कि नहीं, लेकिन मम्मी से ऐसे पता चला। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब ये सब चीजें उनको नहीं, मतलब पसंद नहीं बिल्कुल, एक सुपारी भी उनको पसंद नहीं है।
0: बिल्कुल पसंद
1: और
0: नहीं है।
1: दूसरा जो
0: ओके
1: एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई थिंक शायद बाबा जी का वरदान है मेरे को, ऑलमोस्टली लोग है ना मेरे साथ रह के छोड़ देते हैं ये सब चीजें खाना, मतलब ऐसे मेरे
0: अच्छा,
1: पास कम से कम 6 लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया खाना पीना ये सब चीजें, मान लो
0: बहुत अच्छी
1: कुछ
0: बात है।
1: सुपारी या गुटखा खाते भी थे बट वो आए तो अब वो खाना छोड़ दिया उन्होंने। तो मेरा
0: ओके
1: एक्सपीरियंस तो खैर मेरे बड़े पापा थे वो बहुत पीते थे, और वो उनकी
0: ओके
1: जो डेथ हुई थी ना मतलब इस तरीके से हुई थी, तो उसके बाद से मुझे ऐसा फील होता है लोगों को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, और जितना होता है मैं लोगों को समझाती हूँ, और
0: तो इसलिए
1: आज के
0: कभी
1: जमाने
0: आप पे
1: में
0: वो
1: ऐसा मतलब
0: प्रेशर
1: किसी
0: नहीं
1: को
0: आया।
1: समझा नहीं सकते। हाँ आप आज के जमाने किसी को आप समझा नहीं सकते, लोग देख के आपको फॉलो करते हैं, आप समझाओगे तो लोग बड़ा ज्ञान देने वाली आई है ऐसा सीधा होता है लोगों को, तो
0: ऐसा बोलते हैं, तुम
1: लोग
0: बड़ा
1: देखते
0: ज्ञान
1: हैं
0: दे
1: ना
0: रहे हो।
1: फॉलो ज्यादा करते जी
0: कंपनी का असर पड़ता है,
1: ऐसा
0: मतलब आप ये कह रहे हो, है ना, दोस्त
1: कंपनी का सर पर
0: जैसे होते हैं
1: जी
0: उसका भी असर पड़ता है, और आपके दोस्त ऐसे रहे जो इन चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करते।
1: नहीं है
0: ये बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: बहुत अच्छी दोस्ती और बहुत अच्छा संघ मिला आपको। अभिमन्यु जी, आप शेयर करना चाहेंगे आपका क्या
1: जी
0: एक्सपीरियंस रहा?
1: मेरा जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया ऋषि बहन, मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा था कि जो इंसान, जब हम छोटे होते हैं छोटी छोटी चीजों का हम पे असर ज्यादा होता है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम उस रूम में एंटर करके गौरव को देखा, जो मेरा दोस्त था और टॉपर होता था वो, और जब मैंने देखा कि वो, अब बताता हूँ कर क्या रहा था, वो बेसिकली वाइटनर वगैरह जो आते हैं ना उसको थैली में डाल के वो उसको सूंघ रहा था, जो फ्लूइड वाइटनर बच्चे यूज करते हैं, ठीक है। तो वो उसके कहीं कहीं पे वो सारा सफेद लगा हुआ था, वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता। वो देखने में, जब मैं देखा उसके चेहरे पे कहीं कहीं वाइटनर लगा हुआ है और उसकी जो हालत हो गई थी, और जैसे उसके बाद मैंने उसकी लाइफ में गिरावट आती देखी, वो मेरे अपने आप में एक चीज थी, मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मुझे ये चीज कभी नहीं करनी है, कि मुझे इस तरह से निर्भर नहीं होना किसी भी सब्सटेंस पे। और उसके बाद आप एक बात देखिए, आप अपनी लाइफ में भी ये चीज देखोगे, जो लोग नशा करते हैं, ठीक है, वो किसी भी कारण से शुरू करें लेकिन बाद में फिर उससे दुगनी मेहनत करते हैं उसको छोड़ने के लिए। आप जिससे भी बात करोगे ना, मतलब हम जब देखते हैं लाइफ में जिस चीज, जिसकी लाइफ इस चीज से असर करने लग जाती है, वो फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि यार मैं छोड़ना तो चाह रहा हूँ, छूट नहीं रही है, ठीक है। उनको
0: करेक्ट
1: मेहनत करने लगती है, उनको कई जगह पे फिर कोर्सेज करने पड़ते हैं, कुछ कुछ डॉक्टर्स के जाना पड़ता है, मैंने परिवार में भी ये देखा है कि थेरेपी लेनी पड़ती है। तो उस चीज को अपनाया ही क्यों जाए जिसको पता है कि बाद में जाके फिर आपको छोड़ना है। उसका कारण मुझे ऐसा लगता है, देखो हमें कारण में जाना जरूरी है, जैसा जगदीश भाई ने भी बोला कि लोग इस चीज को ना प्लेजर के लिए ढूंढते हैं, तो आप प्लेजर लाइफ में किसी और चीज से भी तो खोज सकते हो। तो अगर मैं मेरी
0: करेक्ट
1: बात करूं, तो मैंने बचपन में जब वो देखा गौरव का, और तब से भी हमारे, मैं हरियाणा से हूँ, यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर भी है, तो जनरली मुझे खुशी इस चीज से मिलती है कि मान लो मैं रनिंग करने चला जाऊं, या फिर मैं एक्सरसाइज कर लूं, या मैं कुछ अच्छा खा लूं, या फिर कुछ अच्छी मूवीज देख लूं। तो लाइफ में आप प्लेजर बहुत अलग अलग चीजों से ढूंढ सकते हो, तो वो कारण रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहला ही मेरा 10th 11th में जो मैंने वो एक्सपीरियंस किया और मैंने लाइफ में गिरावट देखी, मुझे वो दिमाग में बैठ गई थी कुछ चीज की, मुझे ये
0: वो
1: चीज तो नहीं चाहिए
0: इमेज
1: फिर।
0: आपके दिमाग में बैठ गई
1: हाँ,
0: थी।
1: एज इट इज वो इमेज मेरे दिमाग में क्लियर बैठ गई थी, क्योंकि एकदम प्रोटेक्टेड फैमिली से हम गए थे, मैंने कभी ये चीजें कभी देखी भी नहीं थी यहाँ पे। अब और वहां एकदम से बड़े शहर में जाना, छोटे से शहर से निकल के और बड़े शहर में जाके इस तरह की मायावी चीजें देखना, ये बहुत बड़ा
0: फर्स्ट
1: एक अनुभव
0: एक्सपीरियंस
1: था।
0: था आपका ऐसा। एक और सवाल मेरे मन में आया, वो मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत लोग कहते हैं। पिछले दिनों भी हमने कुछ इंटरव्यूज किए तो लोगों ने कहा ना नहीं कह पाते यू, ना कहना सीख नहीं पाते। और एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो बच्चे बड़े होते हैं, कई बार उसने बड़ा भी इसी प्रकार से किया जाता है कि जो माता पिता ने कहा हाँ बोलो, टीचर्स ने जो कहा हाँ बोलो, ज्यादा चीजों को क्वेश्चन नहीं करो, तो जब वो दोस्तों के सर्कल में भी जाते हैं तो क्वेश्चन करने से डरते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि अगर ना बोलेंगे तो हमारा सर्कल नहीं रहेगा, दोस्त नहीं रहेंगे, या मे बी और भी रीजंस हो सकते हैं, कई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़ी दुनिया है ना। ना कैसे कहा जाता है, क्या ना कहने से दोस्ती टूट जाती है, या दोस्त बदल जाते हैं, या हम अकेले हो जाते हैं, या क्या होता है, मतलब ना कहा कैसे जाता है, या ना कहना

0: ऐसे सीखे आप लोग ना,
1: इसमें
0: जब आपको करना होता है तो कैसे करते हो ना?
1: इसमें पहले मैं बोलूं, अगर आप लोगों को ठीक लगे
0: बिल्कुल
1: जगदीश
0: बिल्कुल,
1: बताइए।
0: जरूर
1: ठीक,
0: प्लीज.
1: तो ये चीज एक बहुत अच्छी बात उठाई आपने आरुषि बहन, और ये बहुत सच भी है कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी ना नहीं बोल पाते। ठीक है, जब हम ह्यूमंस जो है उनकी टेंडेंसी रहती है कि हम फिट होना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग हमें अपनाएं, पर अपनाने के लिए कई बार क्या होता है, करते हैं जो दिखता है कि बाकी सारे लोग भी कर रहे हैं और हमसे पूछेंगे मना कैसे करेंगे। लेकिन
0: करेक्ट.
1: ये चीज मैं जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, यूथ को भी, जब मैंने डील किया उनके साथ, जब हम खुद भी यूथ होते थे, मेरा एक मित्र है उसको मनोज बोलते हैं, चलो उसकी एक सबसे हम सबको एक चीज बहुत अच्छी लगती थी कि कई लोग होते हैं जो हाँ में हाँ भर देंगे, कई लोग होते हैं जो आपको जो सुनना है वो बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनको, जिनके ओपिनियंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर वो गलत है तो वो आपके मुंह पे गलत बोलेंगे, और कोई चीज सही है तो वो आपके मुंह पे सही बोलेंगे। तो हम लोग, आपसे भी मैं बात पूछना चाहूंगा, हम उन्हीं के पास जाके एडवाइस देते जिनको हमें पता है कि चल ये मेरे मुंह पे, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे मुंह पे ये बोलेगा, सामने
0: बताएंगे.
1: बताएंगे, तो दोस्ती टूटने की बात तो नहीं। हम सारे बल्कि उस चीज की बहुत रिस्पेक्ट करते थे मनोज की, हमें ये पता था कि ये शख्स एक बुलंद इंसान है, ये अपने खुद की विचारधारा रखना जानता है, अगर कोई चीज ये गलत हम करेंगे तो ये हमसे बोलेगा, तो उस ऐसे इंसान से सलाह ली जाती है। और जहां तक रही बात ना करने से दोस्ती टूट जाने की, क्या वो लोग आपके अभी दोस्त हैं जो इतनी सी बात पे आपसे दोस्ती तोड़ दें? दोस्त तो वही वही होते जिनके आप आगे आप जैसे हो वैसे रह सको। तो ये चीज पे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप, जो इंसान स्ट्रांगली नो बोलना जानता है गलत चीज को, और जो इंसान स्ट्रांगली यस बोलना जानता है सही चीज को, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है लोगों की नजरों में, चाहे वो तुरंत ना दिखे बट वो समय के साथ दिखती है।
0: दिखती है समय के साथ. इट्स वंडरफुल. सेम क्वेश्चन ललिता जगदीश, ना कैसे बोला जाता है?
2: दीदी एक्चुअली में ना का पहले बात मैं आपको बताऊं, लोगों ने एक मन में ना एक इमेज बना रखा है, ना बोलेंगे ना तो हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, जैसे भैया ने बोला रिश्तों पे असर पड़ता है, कई बार ऐसा होता है दोस्त दूर कर देते हैं, लेकिन हमको दोस्त की जरूरत होती है इसलिए भी हम पीते हैं. ना बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक इमेज में हम मन में बना लेते हैं ना, अरे ना बोलेंगे तो इतना हमारा घाटा हो जाएगा, पर हमारा फायदा कितना रहा वो भी हमें देखना चाहिए. कई लोगों से मैंने एक्सपीरियंस सुना है कि ना मतलब उन्होंने शराब कैसे छोड़ा, उससे उनका फायदा क्या हुआ. पहले उन्होंने बोला हमें लगा भाई हमारे रिश्ते हमसे दूर जा रहे हैं, हमें कोई सपोर्ट में नहीं कर रहा है, बट जब धीरे धीरे जब हमें पता चले, जैसे भैया ने बोला कि जो कई लोग ऐसे होते हैं सीधे मुंह पे बोलते हैं, जो उनको पसंद नहीं है तो बोल दिया, भाई पसंद नहीं है तो नहीं है, लेकिन लोग एक बात तो हमेशा याद रखे, चलो ये बंदा ऐसा था कि जो था वो मुंह पे बोलता था, चाहे वो गलत हो या सच हो, जो भी था वो सच बोलता था, सामने आके बोलता, डरता नहीं था किसी से. उसी पर जब हम चीजों को ना, जैसे कि हमें पता ही है हमारा नुकसान करता है, हमें ये नहीं लेना है, रिश्ते क्या ये छूट जाएंगे, दूसरे रिश्ते तो बन जाते हैं ना, जो आपके इंतजार में भाई कब ना बोलेगा, नशे को कब छोड़ेगा, कुछ लोग आपके इंतजार में भी तो बैठे हैं, तो आप उनके
0: ये
2: लिए भी
0: नहीं
2: हमें
0: पता
2: एक
0: होता ना कि
2: ना
0: कुछ लोग
2: बोलना.
0: इंतजार में बैठे हैं, ये नहीं पता होता, ऐसा लगता है यही है जो है, ये
2: बिल्कुल
0: छूट गए तो मैं अकेला,
2: अकेला
0: ये
2: हूँ,
0: लगता है।
2: वो सामने हमारा एक इमेज होता है कि हमने ना बोला कि ये चीज हमसे छूट जाएगी, लेकिन हमारा इतने लोग इंतजार भी तो कर रहे हैं हमारे ना बोलने से, कितने खुश होंगे, कितनों को फायदा होगा. कई जब पेरेंट्स होते हैं बच्चों को फायदा होता है, चलो आज हमारे पापा आज पी के नहीं आए, आज हमारे साथ टाइम बिताएंगे. माँ बाप को होता है हमारा बेटा पी के नहीं आया, हमारे साथ टाइम बिताएगा, बात करेगा, कितना सुखी परिवार होता है. वो रिश्ते तो क्या उसी बात जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते इस चीज में, वो आपके जीवन कभी बना नहीं सकते. तो
0: बना ही नहीं
2: अपनों
0: सकते,
2: के लिए भी कई बार ना बोलना सीखना पड़ता है.
0: बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल
1: बहुत
0: सही
1: अच्छी बात
0: बात है,
1: बोली।
0: बहुत अच्छी बात बोली एक्चुअली। आप दोनों के पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं कि ना कहने से कितना मतलब फायदे में हम रहते हैं। लेकिन जैसे मैं छोटी छोटी बात करूं कि सिर्फ नशे की बात नहीं है, मान लीजिए आपके दोस्त प्लान कर रहे हैं नाइट आउट करेंगे, पूरी रात घूमेंगे, आपके माता पिता ने बोला है कि नहीं भाई नहीं जाना चाहिए रात को, लेकिन पीयर प्रेशर है कि सब लोग जा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा तो बोलेंगे क्या तू बच्चा है अभी तक, अपने माँ बाप की सुनता है अभी तक, या फिर और भी चीज़ है, या किसी भी चीज़ के लिए मुझे अंदर से नहीं मन है या मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपने दोस्तों को ना नहीं बोल सकती या ना नहीं बोल सकता। ये छोटी छोटी बातों से भी डिफिकल्ट होता है कई बार ना बोलना। जगदीश आप कैसे समझते हो उस बात को, ना कहना आपको कभी मुश्किल लगा या आपके लिए हमेशा आसान था?
2: कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हमारे बहुत खास दोस्त थे और उनको उनका मतलब ना बोलना और एक डर था कि
3: चलो मेरे को पीपीटी में हेल्प करने वाला था, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, उसको लैपटॉप चलाना आता है ना, आप मना कैसे करें। तो मैं उससे बातें घुमाता था कि उस टॉपिक पे बात नहीं जाए जो टॉपिक पे वो कर रहा है, या
0: उसपे आपको ना बोलना
3: मेरे को
0: पड़े।
3: सिगरेट दे रहा है ना, तो मैं उसको बातें घुमाता था ताकि उसको बुरा भी नहीं लगे, वो अपनी बात भूल जाए, है ना कि अभी नहीं, अभी अभी नहीं, ये वाला ये करना है, ये करना। मैं मतलब बात को टालने में बहुत माहिर था कि उसको पता नहीं चले और बात टल जाए और सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे थे उनको बहस करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और मतलब मेरा ये कि दोस्त बहुत जल्दी भी बनते हैं और बहुत जल्दी मतलब दोस्ती कट भी हो जाती है, बन भी जाती है। तो मेरा ये कि जिन लोगों से अगर दोस्ती होती है ना, वो बहुत काम के लोग होते हैं, तो उनको पहली बात तो मैं खोना नहीं चाहता। तो मेरे लिए भी मुश्किल तो है ना कह पाना बहुत चीजों के लिए, अभी भी मैं सीखा है, पर बहुत डर रहता है ना कहने के पीछे कि पता नहीं उसका क्या जवाब आएगा, या अभी लेट नाइट मुझे जरूरत पड़ी कि अगर लेट नाइट मैं अकेला हूं, मेरे को डर लगेगा, तो कौन मेरे लिए आएगा तैयार, एकदम मेरे लिए 24/7 कौन अवेलेबल है, मैं फैमिली से दूर हूँ, तो वो सब चीजें हैं। बट कैसे मेंटेन रखना है, कैसे नशे में भी नहीं पड़ना है, कैसे वो दोस्त को भी नहीं खोए, और वो ठीक है आज नहीं तो कल समझेगा कि ये चीज गलत है। बाकी अवेयरनेस का काम तो चल रहा है, डेली उसको कहा जा रहा है मेरी तरफ से कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, पर वही एकदम से चीजें नहीं छूटती है, अगर आप ज्यादा ही करेंगे तो वो दो दूर हो जाएंगे आपसे, अगर आप ज्यादा पीछे पड़ जाओगे, डिस्टेंस बनाएंगे, तो डिस्टेंस बनाना नहीं, उनको नहीं बनाने देना है, और देखते हैं
0: इंटरेस्टिंग
3: कोशिश है कि
0: पर्सपेक्टिव।
3: थोड़ा छोड़ दें।
0: तो ये भी एक नया पर्सपेक्टिव है कि भाई म्यूचुअल होती है, हमें भी जरूरत होती है लोगों की, लोगों को भी जरूरत होती है हमारी। तो कई बार इस वजह से भी हम ना नहीं बोल पाते हैं कि फिर हमारे लिए कौन आएगा। लेकिन जगदीश ने कहा जैसे वो बात को घुमा के या थोड़ा अलग तरीके से उसे रखते हैं। और ना कहना सीखना लेकिन बहुत ज़रूरी होता है, ये हमें आज नहीं तो कल समझ में आता है धीरे धीरे कि हाँ थोड़ा थोड़ा हमें अपने लिए भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो अपना लाइफ अपनी तरह से तो कभी जी नहीं पाएंगे। और नशे की
3: जैसे
0: जहाँ बात आती है
3: एग्जाम्पल के लिए मुझे वो बियर या दारू पिला रहे थे, बियर, तो मैंने उस जगह कोल्ड ड्रिंक भी नहीं चलता है, मुझे हेल्थ इश्यू है, पर थोड़ा सा उनके सामने मैंने कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट लिया, उसमें भी वो बोले कि नहीं दो घूंट, फिर दो के बाद बोले कि चार घूंट, सॉरी उनका मैं चार घूंट नहीं, भी उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो
0: मतलब जितना हम
3: बट वही मैंने
0: हावी बोलते
3: टाला,
0: हैं
3: दूसरा
0: उतना
3: ऑप्शन मेरे पास था कि ये नहीं तो ये वाला मैं कर सकता हूँ।
0: ऑप्शन आप बात कर रहे हैं, ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो अब क्योंकि आप तीनों ही कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, आप लोगों ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, करीब से देखा है। आपने शुरू में ललिता कहा था कि समझाने से नहीं होता, कई बार लोग बोलते क्या आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, है ना। तो क्या तरीका होता है, मतलब अगर आप के सामने कोई ऐसा व्यक्ति है या बच्चा है या हम उम्र भी है, हाउ यू डील विद इट, या कैसे आप उनको ये एक्सेप्ट करा सकते हैं कि नशा ठीक नहीं है उनके लिए? क्या कोई और तरीका है क्या हमारे पास? क्या लगता है आप तीनों को?
2: दीदी एक्चुअली में जो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जैसे मेरे साथ ऐसे केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। बट एक बार मेरे साथ ऐसा केस हुआ था, मैं एक्चुअली में दोनों भाई बहन थे, बट उनको आदत थी पीने की, दोनों पीते थे। क्यों? मम्मी पापा उनको पैसे लेके भेजते थे, अब वो दुकान पे बच्चे क्या कर रहे हैं माँ बाप को कैसे पता चलेगा, माँ बाप को तो पता नहीं चलता बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना पैसा दिया, बच्चे क्या चॉकलेट का भी नाम लेते हैं, हमने चॉकलेट खा लिया, टॉफी खा लिया, ऐसा होता है। तो मैं उनको ऐसे रोज आते जाते देखती थी, मैं उनको बोलती थी मतलब चीजों के लिए समझाती थी, भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। तो बोलते थे दीदी ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, हमारे मम्मी पापा भी तो खाते हैं, उनको तो आज तक कुछ नहीं हुआ, हम ही क्यों होगा, ऐसा जवाब होता था। तो मैं सोची यार इनको समझाने से कोई मतलब नहीं है, हम इनको बार बार बोलेंगे तो वो ऐसा होता है बंद, या तो हमसे वो दूर होता है, मतलब हमसे बात करना नहीं चाहेगा, या मिलेगा तो कोई ना कोई बहाना करके वो चला जाएगा। इसे क्यों ना हम कुछ ऐसा उनके साथ गेम, जैसे कि मैं पहले जुड़ी हुई थी छोटी बड़ी बातों से, एक बच्चों के साथ जुड़ी हुई थी, एक्टिविटी के द्वारा वो बच्चों को चीजों समझाई जाती थी, तो वो चीजें मुझे याद थी। तो मैंने क्यों क्यों ना बच्चों के साथ गेम गेम के तरीके से ही किया जाए, बच्चों का आप बच्चे क्या है, बच्चों का आप कुछ खाने पीने का दे दो तो अपने आप बच्चे जुड़ जाते हैं आपसे, तो मैंने ऐसा कुछ बच्चों का ग्रुप ये किया, छोटे छोटे बच्चों का जो नहीं ये सब चीजें नहीं लेते हैं, और उन दोनों को भी उसमें ऐड किया। तो मैं कुछ ऐसी चीजें उनको देती थी खाने के लिए जिससे जैसे जो नशा करते उनको जलन होती, जैसे भैया ने बोला उनके पूरा दर्द होता है, जलन होता है चीजें, मतलब ऐसा कुछ चीज खाते हैं तो जैसे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ चॉकलेट दे दिया, उनको ऐसा कुछ मसाले वाली चीज दो जिससे उनको जलन होती थी, ऐसा
0: अच्छा
2: चीजें रखो जो बच्चे खाओ। हाँ तो वो खाते थे, तो सब बच्चे तो अच्छे से खा लेते थे, मजे से खा लेते थे, लेकिन जो बच्चे थे उनके गले वो जो अंदर का होता है ना गुटखा खा करके पूरा वो सिल गया था, वो मतलब वो घाव सा हो जाता है, तो गुटखी खाएंगे दर्द होगा, जलन होगी। तो ऐसे धीरे धीरे मैं उनको समझाती नहीं थी, बस चीजें लाकर खिलाती थी और कुछ ना कुछ गेम करवाती थी। धीरे
0: मतलब
2: धीरे
0: उनको
2: वो क्या
0: उससे खुद
2: हुआ,
0: समझ में आए।
2: हाँ तो एक दिन क्या हुआ, वो जो लड़का था आया, बोला दीदी आप ये चीजें मत लेके आया करो। मैंने लगा क्यों, कह रहा इसे खाने से ना जलन होती है। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं लेके आऊँ। दूसरे दिन मैं मीठा लेके गई, तो मीठा खाया तो उसको और ज्यादा वो घाव जैसा होता है ना, बोला दीदी मैं नहीं खाऊंगा, और ऐसे बोलते कि घाव होता है मीठा खाने से। ना ठीक है कुछ मत खाओ, तो मैं ऐसे ही आगे बैठा गया। फिर धीरे धीरे बोला यार बच्चे खाते हैं, बच्चे रहते हैं, हमारे एक चीज खाने से हमारा इतना कुछ छूट रहा है, ना हमें चॉकलेट मिल रहा है, ना कुछ ऐसी चीजें मिल रही है, ना दीदी हमको इतना गेम में शामिल करती है, ना उनके साथ मतलब बच्चों को ऐड करती है उतना। धीरे धीरे धीरे वो बच्चों को जब चीजें सीखी ना, आज वो बच्चे कम से कम आप भले 16 साल के हो गए हैं, 16 साल उन्होंने, 2 साल हो गया बच्चों ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया।
0: दैट्स
2: मैं
0: वंडरफुल।
2: बोलती तो तुम खाओ, मैं पैसे दे रही हूँ तुमको, मैं खुद बोलती थी मेरे से पैसे लेके जाओ तुम खाओ, तुम्हारा फायदा होता तुम खाओ, मैं खुद पैसे दूंगी। मैं ऐसे बच्चों को बोलती हूँ अगर तुम्हारा फायदा होता तुम मेरे से पैसे लेके जाओ, जितने भी
0: तो आप
2: मुझे
0: आपने
2: पता
0: उनको
2: चलता है कि
0: रियलाइज
2: मसाला डाल।
0: करवाया है इस प्रकार से। दैट्स वेरी गुड, वेरी क्रिएटिव, कुछ अलग तरीका है उनको ना कहने से ज्यादा रियलाइज कराना कि तुम्हें कितना पेन हो रहा है देखो, या तुम लेफ्ट आउट
2: हाँ
0: फील कर रहे हो। क्योंकि कई बार जो नहीं पीते वो लेफ्ट आउट
2: हाँ
0: फील करते हैं, आपने उनको लेफ्ट आउट फील करवाया जो पीते हैं, है ना। तो
2: भाई
0: उल्टा ये जैसे
2: असल में
0: वो
2: ये भी था
0: चाल
2: ना, वो बच्चे क्या
0: चली।
2: जिसका दांत वो मतलब ऐसे खराब हो जाते हैं ना सब चीजें खाने से, तो क्या वो हंसते नहीं थे किसी के सामने, तो सारे बच्चे हंसते थे, तो ऐसे बच्चे
0: शर्म
2: चिल्लाते
0: आती
2: हुए
0: है
2: तुम
0: अपने
2: हंसते
0: इंसान
2: क्यों नहीं
0: देख
2: हो,
0: के।
2: तुम घूम रहे हो क्या, वो बच्चों की हरकतें होती है ना एक दूसरे को बोलने की। तो धीरे धीरे
0: बिल्कुल,
2: उनको ऐसा हुआ भाई हमारा दांत खराब हो गया, हम हंस नहीं सकते किसी के सामने, तो सब
0: खुद ही
2: चीजें उन्होंने
0: रियलाइज
2: छोड़ना
0: हुआ।
2: सीखी। फिर उन्होंने पूछा भी दीदी हम क्या करें तो हमारा दांत साफ हो जाए, तो मैंने बोला पहले सब चीजें छोड़ दिया है, अब अपना अच्छी चीजें रोज सुबह उठो ब्रश करो नहा दो और बच्चों को और समझाओ, मतलब दीदी समझाना नहीं है हम भी आपकी तरह करेंगे, ऐसा
0: दैट्स गुड।
2: था।
0: सेम अभिमन्यु जी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या तरीका आपको लगता है जो काम करता है, जिससे लोग समझे, क्या हो सकता है ऐसा तरीका।
1: मैं तो इतना क्रिएटिव नहीं हूँ जितना ललिता बहन है, ठीक है। ऐसे क्रिएटिव तरीके मैं तो नहीं निकाल पाया। जब भी मेरा बच्चों के साथ डील करना होता है, मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं एक चीज में मानता हूँ कि आप किसी को अगर आपको बुरी चीज से बचाना है तो उनको अच्छी चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित करो, ठीक है। तो मैं हमेशा मेरी कोशिश यही रही, अभी भी मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो अब 23-24 साल के हो गए हैं। मैं भी इतना बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन वो भी क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, कॉलेज में ही मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 10th क्लास के बच्चे थे, तो मैं अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए कॉलेज में था तब से ही पढ़ा रहा हूँ।
0: पढ़ा
1: तो
0: रहे
1: अब
0: हो,
1: अभी भी वो मेरे से मिलते हैं, तो हमारी जनरली वो मेरे से कंफर्टेबल होते हैं राय लेने के लिए कि मैं आगे क्या करना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में उनको एक चीज समझाता था कि आपकी लाइफ में हमेशा एक नॉर्थ स्टार होना चाहिए। मैं अपने सारे दर्शकों को ये बात बोलना चाहूंगा, एक नॉर्थ स्टार का कॉन्सेप्ट आप जरूर, नॉर्थ स्टार क्या होता है, ध्रुव तारा अगर हिंदी में बात करें तो। ध्रुव तारा मतलब एक चीज जिस पे आप लाइफ में फोकस करना चाहो। क्या
0: ओके
1: होता है ना कि जब जैसे घोड़े की रेस करी जाती है, तो जब उनको घोड़े जिसको जीतना होता है, घोड़े को जब रेस कराई जाती है तो उनके आंखों के दोनों तरफ पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो सिर्फ सामने देखे। आजकल के साथ आजकल प्रॉब्लम यही है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ईजी है, आप चारों तरफ देख पा रहे हो, आप सोशल मीडिया यूज कर पा रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे खोलते ही आपको कोई अच्छी चीज तो देखने को मिलती नहीं, आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलती है।
0: बहुत
1: तो उस टाइम
0: मिलते
1: भी मैं
0: हैं।
1: बच्चों से यही बात करता था कि आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनको वो रियलाइज कराता था। तो ये जो भी हमारे दर्शक है उनको भी ये रियलाइज करना चाहिए कि लाइफ में उनके लिए सबसे बड़े सपने क्या है, उनके लिए सबसे बड़े ड्रीम्स क्या है। क्योंकि ये जो नशा है वो सबसे पहले आपसे आपकी आपके सपनों को ही छीनता है, ठीक है। क्योंकि जो नशे करने वाला व्यक्ति होता है वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाता। तो ये चीज समझाने की मैं पूरी कोशिश करता था, उदाहरण देता था, ठीक है, उनसे पूछता था। कोई लोग बताते थे कि हमें दुनिया घूमनी है, तो मैं उनसे पूछता था दुनिया घूमने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, वो पैसा कैसे कमाओगे, किस तरह की नौकरी करोगे। कोई कहता था मुझे स्पोर्ट्स में आगे जाना है, हरियाणा में स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत है, तो उस तरह की फिजिक कैसे बनाओगे, कितनी एक्सरसाइज करनी होगी। तो एक नॉर्थ स्टार आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक गोल होना चाहिए जिसपे आपका सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा टाइम उस पर जाए, सबसे ज्यादा फोकस उस पर जाए, और उसके बीच में आपको कभी भी लाइफ में किसी चीज को नहीं याद दे देना चाहिए। तो ये मेरी कोशिश रहती थी समझाने के लिए।
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अभिमन्यु जी, एंड सो राइट कि आपको एक लक्ष्य पता हो, उस तरफ जाना है तो उसके लिए, और फिर सेकंड स्टेप भी आपने ये पूछा ना कि जैसे ये तो करना चाहते हो, मेरा सपना तो ये, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वो
1: ब्रेकडाउन
0: बता
1: करना
0: दो।
1: पड़ेगा आपको, आप जितना ब्रेक डाउन
0: ब्रेकडाउन।
1: करोगे आपको समझ होएगा कि भाई मेरे को ये चीजें करनी है। तो अब क्या हुआ, अब एकदम से आप किसी से बंद नहीं करा सकते। आप पहले उनसे बोलो भी कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट में चीजें ठीक है, जैसे अति सभी चीज की खराब है, तो लोग पहले अति से थोड़ा कम में आते हैं, ठीक है, तो कम से फिर वापस छोड़ देते, जैसे ललिता ने या फिर जगदीश भाई ने छुड़वाया है लोगों का, तो एकदम से किसी का नहीं छूटता, थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो ऐसे लाइफ में आपको फोकस क्या है उस तरफ बढ़ो, और जो चीज है उसके साथ बीच में आती है उसको धीरे धीरे करके साथ में साइड में करते जाओ।
0: ये मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है, जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें रेडियो पे, कि आप उनसे पूछें कि उनका लक्ष्य क्या है और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ताकि वो रियलाइज हो कि मुझे जाना किस तरफ है, मेरा डायरेक्शन क्या है और क्या उस चीज़ के आड़े आ सकता है। और जैसे आपने कहा कि अगर कमज़ोर मन है या कमज़ोर, तो फिर वो कोई अपने सपने पूरे नहीं कर पाता है, फिर वो तो
1: बिल्कुल
0: आपको स्ट्रांग होना ही है। जगदीश, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि और क्या तरीका होता है, मतलब बात करने का स्टूडेंट से, या फिर बच्चों की हम बात कर रहे हैं, क्या तरीका होता है जिससे उन्हें समझ में आए, जो प्रैक्टिकली उन पे काम करे, नशा गलत है, ये बात समझ में आए।
3: जी। उनको ना उनके आसपास में जो माहौल है या कुछ केस स्टडी है आसपास की जो हमने पता की है, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे। इवन अगर मेरे पेरेंट्स का भी मैं बोलूंगा तो किसी बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, वो हमारी कम्युनिटी से नहीं है, मैं उनकी, बट उनके लोकल में अगर कोई ऐसा हुआ, कोई स्टोरी है या हमने पता किया, या हो सकता है हम नहीं जानते हो किसी इंसान को जिसकी डेथ हुई हो इस कारण से, तो स्टोरी हमें पता हो तो उन स्टोरी से उनको समझाना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। और वो शायद उन लोगों से जरूर कनेक्ट करेंगे अपने आप को कि मुझे वो नहीं करना है जो मेरे अपनों ने किया है या मेरे मेरे मिलने वालों, मेरे चाहने वालों ने किया है, तो वो ज्यादा उनको कनेक्ट कर पाएगी। मैंने जो समझाया लोगों को और जिन लोगों ने छोड़ने की कोशिश की या जिन लोगों ने छोड़ दिया, मेरा यही तरीका रहता है कि मैं उनको उनकी लोकल स्टोरीज बताऊं, है ना, क्लियर बताऊं, क्योंकि जब पता है फील्ड में काम कर रहे हैं तो डर नहीं रहता है मेरे को कि मैं फला फला आदमी का नाम ले रहा हूँ या किसी लेडी का नाम ले रहा हूँ, है ना। कभी कभी ऐसा भी हुआ कम्युनिटी में कि कोई लेडी है जो पता चला कि वो मायके जब जाती है अपने पियर में तो वहां पे दारू पीती है ना, तो ये पता चला उसकी बेटी से ही, है ना। तो फिर वो जब आए तो मैंने बात किया कि काकी आप मेरे पास काम तो करते हो, मैं आपको सिखाता भी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करो, है ना, आप उस पैसे को सही जगह लगाओ, है ना, सही यूज करो, तो आप ही पियेंगे और आपके बच्चे जानते हैं, तो बच्चे तो आज नहीं तो कल ट्राई तो करेंगे ना, आप रोक नहीं
0: बिल्कुल
3: सकते उनको। और क्यों पीना है, आप अच्छी चीजें खाओ, है ना, तो बोले कि नहीं हमारे तो घर पे ही बनता है, तो घर पे बनता है इसका मतलब घर पे किराने की दुकान है, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम सारा सामान खुद ही खाएंगे बेचेंगे नहीं, तो थोड़ा समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग अपनों पे आ जाते हैं कि हमारे घर बनता है तो पीने पियेंगे ना, आप कौन होते रोकने वाले, या हम खरीद के थोड़ी ना पी रहे हैं ऐसा,
0: क्या क्या रीजन
3: तो
0: मिलते हैं ना
3: वही
0: उस चीज
3: कि
0: के लिए
3: पैसे
0: लोग।
3: की बात नहीं है यहाँ पे, पैसे से उस नशे को नहीं तोलना है, आप उस स्वास्थ्य से तोलो कि आपका स्वास्थ्य उससे गड़बड़ होगा, आपके बच्चों पे गलत बुरा असर पड़ेगा, आपके बच्चे आज नहीं तो कल चीजें करेंगे, तब आप रोक नहीं पाओगे, तब आपको बोलने का हक नहीं होगा कि ये गलत है ना, क्योंकि आपको करते हुए देख रहे हैं बच्चे।
0: दैट्स वंडरफुल, मुझे लगता है तीन अलग अलग रास्ते
3: तो
0: मिले हैं
3: अक्सर मैं
0: आपको
3: उन कम्युनिटी से
0: इस चीज के।
3: परेशान रहता हूँ जिनके घर पे बनता है, और अक्सर वो लोग घर पे कोई भी जाता है तो वो फ्री में मतलब करते हैं, मेहमान जब भी उनके घर कोई चला गया और उनके घर पे अगर दारू बनी है तो सब करते ही करते हैं, और मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, सर्व किया है लोगों ने कि
0: करते ही
3: आप
0: हैं।
3: गेस्ट हो, आप तो 5 साल बाद हमारे,
0: तो आपको पीना ही
3: 5 साल
0: है,
3: बाद हमारे घर पे आए तो पीना पड़ेगा ऐसा
0: प्रेशर होता

0: देवो भव
1: बिल्कुल
0: में वो शामिल किया गया उन्होंने।
1: गलत गलत कॉन्सेप्ट हो गया ये, बिल्कुल अतिथि देवो भवा में अभी हमारा बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है हमारी सोच में। और तीन अलग अलग रास्ते मिले, ललिता ने बताया कैसे जो लोग ऑलरेडी नशा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना फोमो कहा जाता है, जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं नहीं करता सब लोग करते हैं तो उसे ना लगे, वो प्रेशर बिल्ड आपने उस पे कर दिया जो नशा करता है, बाकी लोगों के सामने उसको लगने लगा कि नहीं मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूँ, मुझे क्यों परेशानी हो रही है, एक तरीका। दूसरा अभिमन्यु जी ने बताया बहुत इंटरेस्टिंग कि ध्रुव तारा होना चाहिए, एक आपके जिंदगी में लक्ष्य होना ही चाहिए, वो क्या है और फिर वो कैसे अचीव करना है ताकि फोकस बदल जाए, उन चीजों से डिस्ट्रैक्शन से हट जाए। तीसरा जगदीश ने बताया कि लोकल स्टोरीज, अपनी स्टोरीज या कहीं और की बड़ी स्टोरीज या अमेरिका की, इसकी उसकी, दिल्ली की, कहीं की बताएं, सच है लोकल जो उनके समुदाय की कहानी है, वहां से किसी का एग्जाम्पल काम करता है। तो ये तीन बड़े इंटरेस्टिंग तरीके मिले हैं मुझे लगता है, जो हम हेल्प कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास लोगों की मदद कर सकते हैं। और हार नहीं माननी है, ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत वंडरफुल काम कर रहे हैं आप तीनों, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये पैनल आज, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपने शेयर किए हैं, क्योंकि आप तीनों काम कर रहे हैं इसीलिए ये प्रैक्टिकल अनुभव आप शेयर कर पाए हैं। और हम आशा करते हैं जिन्होंने सुना होगा आज या जिन्होंने देखा होगा उन्हें भी कुछ आइडियाज यहाँ से जरूर मिले होंगे, क्योंकि जब बदलाव की या चेंज की बात आती है तो यूथ पे ही नजर जाती है, तो आप लोगों ने वो बात साबित कर दी आज अपने क्रिएटिव आइडियाज से। जाते जाते लास्ट में आप सबसे बस एक शब्द में जानना चाहूंगी, नशे को अगर आप किसी चीज के इक्वल बताएं कि नशा सुनते ही कौन सा शब्द आपके मन में आता है, तो वो एक शब्द क्या होगा, नशा सुनते ही क्या शब्द आपके दिमाग में आता है?
0: मेरे लिए मैं कहूंगा नशा सुन के मेरे मन में आता है वीकनेस।
1: ओके नशा मतलब वीकनेस। ललिता आपके दिमाग में क्या आता है, नशा मतलब क्या?
2: मेरा जो मैं बात करूं नशे का, तो मेरा क्या एक्चुअल में काम का ही होता है, बट जितना हो सके मेरा ये नशा है कि मैं बच्चों को नशे से दूर करूं, कि
1: तो एक शब्द कौन सा आपके
2: वो
1: दिमाग में
2: अपने
1: आता है, नशा क्या है, नशा एक क्या है आपके लिए, कोई
2: नशा
1: एक
2: एक
1: शब्द?
2: जहर का काम करता है दीदी, मतलब
1: नशा एक जहर है।
2: अंदर ही अंदर उसको खाते जाता है, वो बाहर से किसी को पता नहीं चलता है बट वो अंदर अंदर ही सबको खा जाता है, तो एक जहर का काम करता है नशा तो।
1: जहर है। जगदीश आपके दिमाग में कौन सा शब्द आता है, एक शब्द नशे को जब आप सुनते हैं, ये
0: हाँ,
1: शब्द
0: मैंने नशे से जुड़ मिलता जुलता ही रखा है, नाश, नाश की नुकसान
1: नाश,
0: या नाश कर देना किसी चीज को।
1: मतलब नुकसान है नशा, कमजोरी है नशा, और नशा जहर है। नशा कभी भी किसी को फायदा नहीं किया है, किसी को अपनी मंजिल की ओर लेकर नहीं गया है, किसी को रिलैक्स या स्ट्रेस फ्री हो गए हम आज के बाद, कभी हमें स्ट्रेस हुआ ही नहीं जिंदगी में, ऐसा आप किसी को कहते हुए सुनेंगे नहीं कि भाई नशा किया था एक दिन, उसके बाद से जिंदगी एकदम स्ट्रेस फ्री हो गई, कोई नहीं कहता ऐसा, क्योंकि वो ऐसे काम नहीं करता है। तो ये समझना जरूरी है, खुद को नशा मुक्त रखें, अपने दोस्तों को, अपने आसपास ये कोशिश बरकरार रखें, क्योंकि ये सब हमें मिलके ही करना होगा, एक जना नहीं कर सकता, हम सबको शामिल होना होगा। तो आप सभी आज अलग अलग स्थान से जुड़े, उदयपुर से जुड़े, आबू रोड से जुड़े, हरियाणा से भी जुड़े सब लोग, आप सभी एक दूसरे से भी मिले, और हमने जो ये पैनल डिस्कशन किया मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्पैक्टफुल लगा। आप तीनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, एंड थैंक यू सो मच जो भी आप लोग कर रहे हैं उसके लिए, और रेडियो मधुबन से जुड़ने के लिए भी थैंक यू सो मच
0: थैंक
1: ललिता,
0: यू
1: थैंक
0: सो
1: यू सो
0: मच,
1: मच
0: थैंक
1: अभिमन्यु
0: यू,
1: जी, थैंक यू सो मच जगदीश,
0: थैंक यू, थैंक यू।
1: थैंक यू।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: एक छोटे से गांव में भानु अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। काफी साल पहले एक बीमारी के कारण उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। तब से रामदीन भानु को पाल पोस कर बड़ा किए, लेकिन भानु काफी आलसी और कामचोर था। उसके बूढ़े पिता एक जमींदार के खेत में दिन रात कड़ी मेहनत करते तो वहीं भानु दिन भर सोता रहता।
1: अरे भानु बेटा, अभी तक तुम सोए हो? तुम्हें सुबह ही कहकर गया था कि कुछ बर्तन है उसे मांझ देना, लेकिन तुम अपनी आलसी से कभी बाज नहीं आओगे। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही दिन रात सोते रहोगे तो अपना जीवन कैसे बदलोगे?
2: ओ हो बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा अभी सुबह ही हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बर्तन मांझ देता हूँ। आप खाना खाकर जमींदार के खेतों में काम करने चले जाइए, वरना वो खामोखा गुस्सा करने लगेंगे।
1: भानु बेटा, अब मैंने जमींदार को साफ मना कर दिया है कि अब मैं उनके खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, अगर मेरा शरीर जवाब ना दिया होता तो मैं कभी तुम्हें काम करने को ना बोलता, लेकिन अब मेरी हड्डियों में उतनी जान नहीं बची कि खेत में काम करके घर का गुजारा चला सकूं। अब जो करना है तुम्हें ही करना है।
2: ये क्या पिताजी, आप साफ साफ ये बोलिए ना कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं। झूठ बात क्यों बोल रहे हैं कि आपकी हड्डियों में जान नहीं?
1: अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही? अरे नालायक, अभी तुम घर में रहते हो तो क्या पता, गांव में निकल कर देखो कितना ताना सुनने को मिलता है। सभी लोग कहते हैं कि निकम्मा बेटा पाल कर रखा है, लेकिन तुम्हें क्या, बस आराम से सोए रहते हो। और हाँ, जब मर जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा था या सच।
0: भानु गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है और एक जंगल में जाकर पैर के नीचे बैठ जाता है।
2: पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं, उन्हें क्या जरूरत थी मेरे पिता को बहकाने की? अगर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं तो उनको क्या हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन ऐसा काम करूंगा कि सारे गांव वाले मेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी मुझे थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूं।
0: भानु इतना कहकर वहीं सो जाता है। तभी वहीं से एक बाबा गुजरते हैं और भानु को सोता देख उससे कहते हैं,
3: अरे क्या मूर्ख इंसान है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? देखने में नौजवान और हट्ठे कट्ठे लग रहे हो, लेकिन काम आलसियों वाला कर रहे हो।
0: पंडित जी की बात सुनकर भानु का आंख खुल जाता है और वह खड़ा होकर उनसे कहता है,
2: अरे बाबा आपको क्या दिक्कत है, एक तो घर पे पिताजी सोने नहीं देते और जब जंगल में आकर एक सुकून का सांस ले रहा हूँ उसमें भी आप अड़चन डाल रहे हैं।
3: देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम गलत रहे पर चल रहे हो इसलिए तुम्हें खबरदार करने आया हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम पर कितना बड़ा मुसीबत आने वाला है, अगर समय रहते समझ गए तो ठीक, नहीं तो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना।
2: अरे जाओ जाओ बाबा, मैं अपनी हालत खुद सुधार लूंगा, सभी गांव के लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा और अब आप भी मुझे डराने लगे।
3: अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे सर पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा है, उसे गिरते टाइम नहीं लगेगा।
0: इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। भानु के मन में एक डर पनप गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा उसे क्या समझाना चाहते थे, लेकिन फिर वह उनके बातों का नजर अंदाज कर देता है और वहीं सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और भानु अपने घर की ओर निकल जाता है।
1: भानु बेटा, आज भी तुम्हें काम नहीं मिला और खाली हाथ घर वापस आ गए। हे भगवान, ये लड़का मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा।
2: अरे नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं काम की तलाश में निकला तो था, लेकिन सेठ जी ऐसा ऐसा काम दे रहे हैं जो मुझसे कतई नहीं होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा, बस आप मरने की बात मत करना।
0: अगली सुबह होते ही भानु बिस्तर से उठ जाता है और काम की तलाश में निकल जाता है। वह फिर से जंगलों में जाकर यही सोचने में समय बिता देता है कि आसान काम कैसे मिलेगा और थक हार फिर से सो जाता है। ऐसे ही भानु अब रोज करने लगता है। अपनी आलसी और बढ़ाता जाता है और ऐसा दिन आ जाता है कि उसके पिता बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। काफी जोर की उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब भानु काफी परेशान हो चुका था क्योंकि ना तो घर में कुछ खाने को बचे थे और ना ही पैसा।
1: भानु बेटा, अब मेरा बचना उम्मीद नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। अगर भूख लगे तो कोई भी काम कर लेना, काम छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान का सोच छोटा बड़ा होता है।
2: नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, मुझे उम्मीद है आप ठीक हो जाएंगे।
0: भानु अपने पिता को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। डॉक्टर उन्हें चेकअप करके भानु से कहते हैं,
4: देखो भानु, मैंने अभी उनका इलाज तो कर दिया है, लेकिन जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा।
2: लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो पैसे लगेंगे।
4: हाँ भानु, पैसे तो लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी तुम 40,000 रुपए जमा करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे पिता का बचना आसान होगा। अगर लेट हुआ तो शायद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम अभी से ही इंतजाम करना शुरू कर दो।
2: नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत पैसे का इंतजाम करता हूँ, बस आप उन्हें बचा लीजिए।
4: ठीक है भानु, मैं अभी इनको कुछ दवाइयां दे देता हूँ। इन दवाइयों से ये कुछ दिन आराम से रहेंगे, तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। अब ले जाओ इनको घर।
0: भानु अपने पिता को घर ले आता है। उनकी हालत अब कुछ ठीक थी, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। भानु को भूख लगा था, लेकिन घर में राशन ना होने के कारण भूखे ही सोने चला जाता है। लेकिन उसे नींद कहां से आएगी, इतनी बड़ी मुसीबत जो आई है।
2: हे भगवान, अब पैसे कहां से आएंगे? पिताजी ठीक कहते थे कि बेटा मेहनत करो, आलसी करने से कुछ नहीं होगा। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा। सुबह होते ही सेठ जी से पैसे उधार पर ले लूंगा और पिताजी का इलाज शुरू करा दूंगा, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी।
0: अगली सुबह होते ही भानु पैसे उधार पर लेने जमींदार के यहाँ निकल जाता है।
5: अरे भानु, तुम मेरे यहाँ, अब क्या हुआ? जब से तुम्हारा पिता मेरे यहाँ काम छोड़ा है, तब से सारा काम रुका हुआ है। लेकिन तुम उदास लग रहे हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
2: नहीं सेठ जी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पिताजी का तबीयत बहुत जोर की खराब है और डॉक्टर साहब 40,000 रुपए का मांग किए हैं, लेकिन हम गरीब आदमी इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा कहां से लाएंगे? आप तो एक जमींदार हैं और मेरे पिता आपके यहां काफी सालों से काम किए हैं, आप उनकी मदद कर दीजिए सेठ जी। अब उनकी जान आपके हाथों में है।
5: क्या 40,000 रुपए? अरे भानु, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो चुका है और जो घोरा लंगरा हो जाए उस पर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब तुम्हारे पिता से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। जैसे उसने मेरे काम को लात मारा, वैसे मैं भी तुम्हारे फरियाद को लात मारता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। 40,000 रुपए तो क्या 40 रुपए भी देना पसंद नहीं करूँगा।
0: भानु को एक उम्मीद था कि जमींदार उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसके उम्मीद पर पानी फिर गया। बेचारा उदास गांव के मुखिया के पास जाता है, शायद यहाँ उसे कोई मदद मिल सके। भानु मुखिया के पास भी हाथ पांव जोड़ता है, लेकिन उसे वहां भी कोई मदद नहीं मिलती। बेचारा उदास होकर जंगल में उसी पैर के पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन आज उसको नींद नहीं आ रही थी, आज उसके आंखों में एक डर झलक रहा था।
2: हे भगवान, मुझे माफ कीजिए, आज मेरी आलस की वजह से कोई काम देने को तैयार नहीं हो रहा है, और आपको तो पता ही है कि बिना काम मिले पैसे का इंतजाम कैसे होगा। आप मेरी मदद करें भगवान, मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है, आज से मैं आलस नहीं करूंगा।
0: भानु एक पछतावा के आंसू बहा रहा था, उसे कोई राह नहीं दिख रहा था। तभी उसी रास्ते से वही पंडित गुजर रहा था और भानु को रोता देख उसे कहता है,
3: क्या हुआ बेटा, मुसीबत आई तो खून के आंसू रोने लगे? मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम्हारा आलस तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक लिया, और देखो आज तुम्हारी हालत बद से बदतर हो गई।
2: मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपकी बात को हल्के में लिया। लेकिन बाबा आज मुझ पर बहुत बड़ी संकट आई है। पिताजी का तबीयत काफी सीरियस है। डॉक्टर 40,000 रुपए का मांग किए है और मुझे गांव में कोई मदद नहीं कर रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा, नहीं तो पिताजी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। एक तो बचपन में ही मां चली गई, लेकिन अब पिताजी चले गए तो मैं अनाथ हो जाऊंगा।
3: ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है यह सुनकर अच्छा लगा। ये लो बेटा, ये मेरी सख्ती से जलाया हुआ राख है, इसे तुम अपने जुबान से चूम लो और जंगल में ही लकड़ी काटना शुरू कर दो। ये राख तुम्हें थकने नहीं देगा और तुम्हारे अंदर दानव वाली शक्ति आ जाएगी।
0: भानु को एक रास्ता मिल चुका था। वह फटाक से राख को चूम लेता है और जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। भानु देखते ही देखते काफी ज्यादा लकड़ी काट लेता है और उसे बाजार में बेचने निकल जाता है। लकड़ी सूखा और अच्छा देखकर तुरंत ही उसका लकड़ी बिक जाता है। भानु पैसे लेकर सीधा घर चला आता है।
2: अरे वाह भगवान, आपने तो गजब कर दिया, इतना जल्दी मुझे 6,000 रुपए का मुनाफा हो गया। अगर ऐसे ही लकड़ी काटता रहा तो कुछ ही दिनों में 40,000 रुपए जमा हो जाएंगे। हे बाबा, आपकी राख में तो सच में जादू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगले दिन होते ही भानु जोर शोर से काम करने लगता है ताकि जल्द से जल्द अपने पिता का इलाज शुरू करा सके। भानु को जानवरों की तरह मेहनत करते देख गांव वाले भी तंग रह जाते हैं। इस तरह भानु कुछ ही दिनों में 36,000 रुपए इकट्ठा कर लेता है।
2: भगवान की कृपा से 36,000 रुपए का इंतजाम तो हो गया है। अब मुझे जल्द से जल्द 4,000 रुपए का इंतजाम और करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी का तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही है।
0: भानु अपने पिता के पास जाता है तो देखता है कि उनकी तबीयत पहले से काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। दवाइयां भी खत्म हो चुकी थीं। अगर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ना लग गया तो बचना मुश्किल हो जाएगा।
2: हे भगवान, पिताजी का तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं। अभी मुझे थोड़ा और वक्त दे दो भगवान, 4,000 रुपए का इंतजाम करना है। एक काम करता हूँ, फिर से जमींदार साहब के पास जाता हूँ, इस बार वो मुझे मना नहीं करेंगे।
0: भानु द्वारकर जमींदार साहब के पास जाता है और 4,000 रुपए के लिए गिरगिराने लगता है। जमींदार भानु को मजबूर देख उसका फायदा उठाने का सोचता है।
5: भानु को सख्त 4,000 रुपए का जरूरत है। अगर मैं इसी का फायदा उठाऊं तो मेरा काम कम पैसों में निपट जाएगा। अरे वाह रे जमींदार, तुम्हारे जैसा तेज बुद्धि का तो कोई सेठ है ही नहीं। ठीक है भानु, मैं तुम्हें 4,000 रुपए नहीं बल्कि पूरे 5,000 रुपए देता हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरा 10 कट्ठे का खेत जोतना होगा। बोलो, क्या तुम यह काम करोगे?
2: ठीक है मालिक, अगर आपका यह काम करने से मेरे पिताजी का इलाज हो सकता है और वह बच सकते हैं तो मैं यह काम पूरे मेहनत और लगन से करूंगा। एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
0: भानु जल्द से जल्द 4,000 रुपए इकट्ठा करना चाहता था। वह बिना रुके खेत में कुदाल लेकर चला जाता है। भानु दिल लगाकर मेहनत करता है। उसे यकीन था कि भगवान उसका साथ जरूर देंगे। शाम हो जाती है और 10 कट्ठा जमीन भानु जोत देता है। वह सेठ के पास जाता है और अपनी मेहनत का पैसा मांगता है।
2: सेठ जी, आपके कहे अनुसार खेत की जुताई खत्म हो गई। अब आप अपना वादा पूरा करें, मुझे मेरे पैसे दे दें ताकि कल अपने पिताजी का इलाज शुरू करा सके।
5: वाह भानु वाह, एक दिन था जब तुम अपना आलस छोड़ना नहीं चाहते थे और आज देखो तुम पर मुसीबत आई तो कैसे अपने आप आलस छूट गई। ये लो तुम अपने पैसे और जल्द से जल्द अपने पिताजी का इलाज शुरू कराओ।
0: अगले दिन ही भानु अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। पैसे पूरे होने के कारण उनका इलाज भी जल्द से जल्द हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और भानु के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।
1: अरे वाह बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है कि तुम मेरा बेटा हो। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा, लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की, डॉक्टर के फीस चुकाए और मुझे एक नया जीवन दान दी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो और खुश रहो मेरे लाल।
0: ऐसे ही एक दिन भानु जंगल में लकड़ी काटने निकलता है तो फिर से वही बाबा उसी रास्ते में भेंट होते हैं।
2: अरे बाबा, आपकी कृपा से मैंने मेहनत करना सीख लिया और आपकी उस राख की मदद से अपने पिता का इलाज सफलतापूर्वक करा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अगर आप उस राख में अपना जादू ना मिलाए होते तो आज मेरे पिताजी इस दुनिया में ना होते और मैं भी कहीं आलस के कारण सोया होता। सच में उसमें जादू था, वरना मैं इतना मेहनत नहीं कर पाता।
0: बाबा जी भानु के बातों पर हंसने लगे और सारी सच्चाई बताने लगे।
3: अरे भानु बेटा, तुम शायद बहुत भोला हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतना मेहनत जो कर रहे हो उसकी वजह वह भभूत है? नहीं बेटा, तुम जो भी मेहनत किए वो अपने लगन से किए, बस मैंने तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया है। वो भस्म नकली था। तुम्हें राह दिखाने के लिए वह कोई अद्भुत शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का डर था जिसे तुमने निकाल फेंका।
2: क्या सच में बाबा वो सिर्फ राख था?
0: भानु को अब पता चल गया था कि सच्चा चमत्कार किसी वस्तु में नहीं बल्कि इंसान के मेहनत और लगन में होता है। अगर कोई इंसान किसी काम को करने को ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता।

0: तरफ शेर खान का खौफ छाया हुआ है, मगर लीना लोमड़ी शेर खान की चमचागिरी करके अपनी जान बचाती है।
1: लीना लोमड़ी, आज किसकी खबर लेकर आई हो?

0: और यहाँ आ गए। कृपा करके हमें रामपुर का रास्ता दिखाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
1: लोमड़ी ने सोचा दोनों बकरियों को रास्ता दिखाने के बहाने शेर खान के पास ले जाया जाए और छोड़ दिया जाए।
2: शेर खान इन्हें मारकर अपना पेट भर लेगा और मेरी जान बच जाएगी।
1: अपनी मौत से बेखबर दोनों बकरियां लोमड़ी पर भरोसा करके उसके साथ जाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही देर में लीना लोमड़ी दोनों बकरियों को लेकर शेर खान के पास पहुंच जाती है।
0: अरे ये तुम हमें कहाँ ले आई और ये कौन है?
2: ये हमारे जंगल के मुखिया हैं। आगे का रास्ता ये तुम्हें आप बताएंगे। मुखिया जी, ये दोनों बकरियां रास्ता भूल गई है, इन्हें गांव का रास्ता दिखाइए ना।
0: हाँ मुखिया जी, हमें जल्द से जल्द अपने मुकाम तक पहुंचा दीजिए ना प्लीज।
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे भाई सबको अपने आखिरी मुकाम तक पहुँचाना ही तो मेरा काम है।
1: और फिर शेर खान ने हमला करके दोनों बकरियों को मार गिराया।
3: ए लोमड़ी की बच्ची, ठीक इसी तरह मुझे रोज शिकार का पता देती रहना और बदले में मैं तेरी जान हमेशा बख्शता रहूँगा।
2: जी महाराज।
1: अगले कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन जंगल में शिकारी आते हैं।
3: भाई जंगल तो बहुत अच्छा है, बस कुछ अच्छे शिकार हाथ लग जाए तो बात बन जाए।
1: शिकारियों के आने की बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। इसी सिलसिले में सारे जानवर इकट्ठा होकर टेंशन में खड़े हुए हैं।
4: भाई लोग, अब हमारा बचना मुश्किल है, आगे खाई और पीछे कुआं है। हम शेर खान से बचेंगे तो शिकारी मार देगा और शिकारी से बचेंगे तो फिर शेर खान मार देगा।
5: भालू भाई, मेरी हिरनी प्रेग्नेंट है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है उसकी। अब इस हालत में मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँ, आप ही कुछ बताइए ना।
4: मेरे ख्याल से तुम्हें अपने परिवार के साथ किसी दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए।
6: भालू ठीक बोल रहा है, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए आज ही दूसरे जंगल में चला जाऊंगा।
2: अगर सब इसी तरह से जंगल छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगी?
1: फिर लोमड़ी ने दूर की सोची।
2: अब जो भी जंगल छोड़कर जाएगा मैं उसी का नाम शेर खान को बताऊंगी।
1: और फिर यही बात लोमड़ी ने शेर खान को बताई।
3: अच्छा तो आज जिराफ जंगल छोड़ के जाने वाला है। ठीक है, काफी दिनों से मैंने जिराफ नहीं खाया है, बड़ा मजा आएगा।
1: कुछ देर बाद जिराफ जंगल छोड़कर जा रहा होता है तब शेर खान उसका रास्ता रोकता है।
3: कहाँ जा रहा है जिराफ?
6: मैं दरअसल मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, वो रोहित शेट्टी की सर्कस सुनमाई है ना, उसमें मेरे चाचा जी ने रोल किया है, बस उन्हीं को देखने जा रहा हूँ महाराज।
3: अरे तो मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मैं जानता हूँ कि तुम जंगल छोड़ के जा रहे हो, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इधर ही तुम्हें मार दूंगा।
1: फिर शेर खान हमला करके जिराफ को मार देता है। अगले दिन हिरन अपने परिवार के साथ जंगल छोड़ने वाला है।
5: चलो हिरनी, हमें जल्द से जल्द इस जंगल को छोड़ना है।
2: हाँ हम तैयार हैं। पापा, रास्ते में शेर खान हमको मार तो नहीं डालेगा ना?
5: नहीं बेटे, अभी शेर खान के सोने का वक्त है, वो सोया होगा तब तक हम काफी दूर निकल जाएंगे।
1: पेड़ के पीछे छुपी हुई लोमड़ी ये सारी बातें सुनकर शेर खान के पास जाने के लिए निकल पड़ी।
2: महाराज, आज तो आपको लॉटरी लगने वाली है।
3: पहेलियाँ मत बुझा, जल्दी से बता कि आज मुझे किसका शिकार करना है।
2: आज हिरन अपनी गर्भवती पत्नी और अपने बच्चे के साथ जंगल को छोड़कर जाने वाला है।
3: अच्छा, तब तो आज मैं गर्भवती हिरनी को ही मारूंगा, उसके पेट में जो ताजा बच्चा है ना उसे खाने में बड़ा मजा आएगा।
1: एक तरफ हिरन अपने परिवार के साथ दूसरे जंगल की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है और दूसरी तरफ शिकारी लोग शिकार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उधर चलते चलते हिरनी को पेट में दर्द होने लगता है।
2: मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैं और नहीं चल सकती हूँ, लगता है मुझे यही बच्चा पैदा हो जाएगा।
5: ये शेर खान का इलाका है, थोड़ी हिम्मत करके इस इलाके को पार कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो चलो जल्दी करो।
1: तभी शेर खान आ जाता है।
3: रुक जाओ,

0: शेर खान को देखकर सारे हिरण डर जाते हैं।
1: ऐसे ही सारे जानवर जंगल को छोड़ के चले जाएंगे तब तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा।
0: हिरण समझ जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए वो हिरनी और अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर खान को बातों में उलझाता है और मौका पाते ही हिरनी को भगा देता है।
2: भागो हिरनी, भागो, जल्दी भागो यहाँ से।
0: सभी हिरन अपनी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा में भागते हैं। शेर खान हिरनी के पीछे भागता है और कुछ ही देर में वो हिरनी का रास्ता रोक लेता है।
1: आज तक कोई अपनी मौत से भाग सका है क्या जो तू भाग लेगी?
3: देखो देखो, मेरे पेट में बच्चा है, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो।
1: भगवान के लिए तुझे जाने दूंगा तब तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, और मैं मरना नहीं चाहता।
3: हे भगवान, मुझे इस राक्षस से बचा ले। हे भगवान, मुझे बचा ले।
1: भगवान सिर्फ तेरे हैं जो तुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। अरे मैंने भी तो भगवान से यही मांगा है कि मुझे एक अच्छा शिकार दे दीजिए, और भगवान ने तुझे भेज दिया।
3: थोड़ी तो दया करो, मेरे पेट में बच्चा है।
1: उसी बच्चे को तो मैं खाना चाहता हूँ, चल अब जल्दी से मेरा पेट भर दे।
0: शेर खान जैसे ही हिरनी पर हमला करने जाता है तभी अचानक हिरन शेर खान पर हमला करता है। टक्कर लगने पर शेर खान को गुस्सा आ जाता है।
4: तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे टक्कर मारेगा?
2: मेरी बीवी को बचाने के लिए मैं तुझे तो क्या यमराज से भी भेज सकता हूँ। हिरनी तुम भाग जाओ यहाँ से, पैसे देख लूंगा।
3: मगर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ?
2: ये बहस का वक्त नहीं है, तुम्हें निकलना समय, भाग जाओ यहाँ से।
0: हिरनी वहाँ से भाग जाती है। शेर खान गुस्से में आग बबूला होकर हिरन पर हमला कर देता और मार देता। तभी लोमड़ी आती है।
3: शेर खान, शेर खान, मैं आपकी चमची हूँ ना?
1: अरे मस्का मत मारो, काम क्या है ये बताओ।
3: वो क्या है, पहले आप हिरन को मारकर अपना पेट भर लो और थोड़ा हिरन मेरे लिए बचाना, मैंने काफी दिनों से हिरन नहीं खाया है।
1: मेरी बात सुनो, इस हिरन को तुम ही खा लो, आज तो मैं उस गर्भवती हिरनी को ही खाऊंगा।
0: ये बोलकर शेर खान हिरनी के पीछे जाता है। शिकारी लोग पेड़ के पीछे ताक लगाए बैठे हुए हैं। उधर हिरनी दौड़ते दौड़ते काफी थक चुकी है। तभी शेर खान आ जाता है।
1: तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? अरे मुझसे तेरा पति नहीं बच पाया तो तू क्या बच पाएगी?
3: तो क्या तुमने मेरे पति को मार दिया?
1: हाँ, और उसकी लाश लोमड़ी को खाने के लिए दे दी।
3: तुम राजा नहीं, राजा के नाम पर धब्बा हो, कलंक हो इस जंगल के तुम, तुम्हें मेरा भगवान कभी माफ नहीं करेगा।
1: बहुत विश्वास है ना तुझे तेरे भगवान पे, तो बुला ले उसे और बचा ले अपने आप को।
3: हे भगवान, कोई चमत्कार कर दे और बचा ले मुझे इस शैतान से।
0: हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भागती है। ठीक उसी वक्त शिकारी हिरनी को भागते हुए देखता है।
1: महेश, लगाओ निशान उस हिरनी पर।
0: शिकारी हिरनी पर निशाना लगाता है। ठीक उसी वक्त बादल गरजने लगते हैं और बिजली कड़कती है।
3: हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान।
0: हिरनी पर ताक लगाए हुए बैठा शिकारी फायर करता है। दूसरी तरफ शेरखान हिरनी पर छलांग लगाता है। ठीक उसी वक्त हिरनी को पांव में चोट लगती है, वो नीचे गिर जाती है और शिकारी की गोली शेर खान को लग जाती है और शेर खान वहीं ढेर हो जाता है। तभी शिकारी हिरनी के पास आकर कहता है,
1: बड़ी किस्मत वाली है तू कि तू शेर खान से बच गई, मगर अफसोस तू हमसे नहीं बच पाएगी।
3: हे भगवान, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले भगवान।
1: अरे तेरे भगवान से मेरा शैतान बड़ा है, देख अब मैं तुझे मारूंगा और तेरा भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
0: शिकारी हिरनी पर निशाना लगाकर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, तब आसमान से अचानक बिजलियां शिकारियों पर गिर पड़ती है और पल में शिकारी खाक हो जाते हैं।
3: भगवान, भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे बचा लिया भगवान।
0: कहते हैं भगवान पर भरोसा रखने वालों को भगवान किसी भी रूप में आकर बचा लेते हैं। भगवान ने हिरनी को बचा लिया। प्रेगनेंसी के दौरान हिरनी को बेटा हुआ। अब हिरनी अपने बच्चों के साथ नए जंगल में खुशी से रहती है।
5: अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को
6: सची। आरती और मंत्र अब सारे गामा भक्ति ऐप पर।
7: एक छोटा सा गांव था बक्सीगंज, जहाँ की सुबह चिड़ियों

0: को क्या होता है?
1: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है, लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर का माय तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: की प्राचीन भूमि सदियों से वीरता, ज्ञान और तपस्या की जन्मभूमि रही है। हिमालय की तराई में बने आश्रमों से लेकर नदियों के किनारे बसे गुरुकुलों तक हर ओर ज्ञान और संस्कृति का दीपक जलता था। इन्हीं गुरुकुलों में एक प्रसिद्ध आश्रम था जहां आचार्य वरुण देव अपने शिष्यों को केवल शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा ही नहीं देते थे बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाते थे। उसी गुरुकुल में एक बालक आया, उसका नाम था अभिनव। अभिनव का शरीर कमजोर था, चेहरा सरल और मासूम। वह जब अन्य विद्यार्थियों के साथ अभ्यास करता तो अक्सर पीछे रह जाता। धनुष की डोरी खींचने में उसके हाथ कांपते, कुश्ती के दांव पेंच में वह धराशायी हो जाता। उसकी चाल धीमी और आत्मविश्वास डगमगाता रहता। गुरुकुल के अन्य विद्यार्थी मजाक उड़ाते, देखो ये तो तिनके जैसा है, हवा चली तो उड़ जाएगा, इससे युद्ध क्या होगा, ये तो बैल के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। ये बातें अभिनव के दिल में चुभती थी। वह अक्सर सोचता, शायद मैं किसी काम का नहीं हूं, भगवान ने मुझे कमजोर बनाया है तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन की बात है, गुरुकुल के सभी शिष्य धनुष बाण का अभ्यास कर रहे थे। विशाल लकड़ी के निशान पर तीर चलाना था। सभी शिष्य अपने अपने तीर मार रहे थे। राजन, जो गुरुकुल का सबसे तेज शिष्य था, उसने निशाने पर ठीक बीचों बीच तीर मारा। सबने उसकी प्रशंसा की। फिर बारी आई अभिनव की। उसने कांपते हाथों से धनुष उठाया, तीर चढ़ाया। जैसे ही डोरी खींची, हाथ कांप गए और तीर पास खड़े पेड़ से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। सभी शिष्य हंस पड़े। देखो यही है हमारा कमजोर अभिनव, इससे तो गिलहरी भी डरकर नहीं भागेगी। अभिनव का चेहरा झुक गया, आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, सचमुच मैं सबके सामने बेकार हूं, मुझे यहां क्यों रखा गया है। शाम को जब सब विश्राम कर रहे थे, वह अकेला नदी किनारे बैठा था। उसने चुपचाप पानी में अपना चेहरा देखा और बुदबुदाया, हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अगर मैं दूसरों जैसा होता तो शायद लोग मेरा मजाक ना उड़ाते। उसी समय आचार्य वरुण देव वहां आ पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, वत्स अभिनव, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अभिनव ने आंसू पोंछते हुए कहा, गुरुजी, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, साधारण हूं, मुझसे कभी कोई महान काम नहीं होगा, मुझे लगता है कि मैं जीवन में असफल ही रहूंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया और बोले, वत्स, याद रखो, मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं होती बल्कि उसके आत्मविश्वास से होती है। अगर तुम स्वयं पर विश्वास कर लो तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अभिनव ने संकोच से पूछा, लेकिन गुरुजी, आत्मविश्वास आएगा कैसे? जब लोग रोज मजाक उड़ाते हैं तो मेरा विश्वास टूट जाता है। गुरुजी बोले, सुनो वत्स, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है। जब तुम स्वयं से कहोगे मैं कर सकता हूं, तभी दुनिया भी कहेगी तुम कर सकते हो। गुरुजी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे रोप दो और हर दिन इसे देखकर याद रखना। जैसे यह छोटा बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा, वैसे ही तुम्हारा आत्मविश्वास भी समय के साथ बढ़ेगा। ये वचन अभिनव के दिल में उतर गए। कुछ दिनों बाद राजा का दूत गुरुकुल पहुंचा। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी शिष्य आश्रम के सामने रखे गए विशाल पत्थर के शिलाखंड को हिला देगा, उसे राजसभा में विशेष स्थान मिलेगा। सभी शिष्य उत्साहित हो उठे। पहले राजन आगे बढ़ा, उसने पूरी ताकत लगाई पर पत्थर जरा भी न हिला। फिर एक एक कर सभी ने प्रयास किया, कोई सफल न हुआ। अब बारी आई अभिनव की। वह पीछे हटने ही वाला था कि गुरुजी की आवाज गूंजी, वत्स अभिनव, याद रखो यह शक्ति की नहीं आत्मविश्वास की परीक्षा है, जाओ और प्रयास करो। सभी शिष्य हंस पड़े, ये तो हाथ लगाते ही गिर पड़ेगा। लेकिन अभिनव ने गहरी सांस ली, उसने खुद से कहा, अगर गुरुजी ने मुझ पर विश्वास किया है तो मुझे भी स्वयं पर विश्वास करना होगा। उसने हाथ रखे, पूरी शक्ति लगाई, पत्थर नहीं हिला, लेकिन सबने देखा कि अभिनव गिरा नहीं, उसका चेहरा चमक रहा था। गुरुजी ने कहा, यही पहला कदम है आत्मविश्वास का, जब तक तुम प्रयास कर रहे हो तुम हार नहीं सकते। उस दिन से अभिनव ने ठान लिया कि वह अब कभी हार नहीं मानेगा। वह सूर्योदय से पहले उठकर अभ्यास करता, धनुष बाण का रोज अभ्यास करता, शरीर को मजबूत करने के लिए लकड़ी के गट्ठर उठाता, हर रात ध्यान लगाकर खुद से कहता, मैं कर सकता हूं। शुरुआत में वह थक जाता, गिर पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ने लगा। एक बार जब वह दौड़ लगा रहा था तो गिर पड़ा। शिष्यों ने कहा, देखा यह तो कभी सफल नहीं होगा। लेकिन अभिनव उठ खड़ा हुआ और बोला, हां मैं गिरा हूं लेकिन हार नहीं मानी। यह वाक्य सुनकर सभी हैरान रह गए। अब उनमें से कुछ शिष्य भी प्रेरित होने लगे। गुरुजी अक्सर कहते, अभिनव तुम्हारा शरीर शायद अभी कमजोर हो लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास अब पर्वत से भी ऊंचा हो रहा है। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा ने घोषणा की, गुरुकुल के श्रेष्ठ शिष्य भी युद्ध में भाग लेंगे। सभी शिष्य युद्ध भूमि पहुंचे लेकिन सामने एक भयानक समस्या खड़ी हो गई। दुश्मनों ने युद्ध के रास्ते में एक विशाल हाथी छोड़ दिया था। वह गरजता, सूंड लहराता और मार्ग रोक देता। कोई योद्धा उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सभी डर गए। राजन ने कहा, यह तो असंभव है, इसे रोकना मौत को गले लगाने जैसा है। तभी गुरुजी की आवाज आई, जिसके पास आत्मविश्वास है वही आगे बढ़े। सबकी निगाहें अभिनव पर टिक गई। अभिनव के मन में क्षण भर डर आया लेकिन उसने याद किया, गुरुजी ने कहा था आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। उसने भाला उठाया और आगे बढ़ा। सब लोग सांस रोककर देख रहे थे। हाथी ने गर्जना की और उसकी ओर दौड़ा लेकिन अभिनव शांत रहा। उसने दृढ़ स्वर में पुकारा, रुको। हाथी कुछ पल के लिए थम गया, फिर अभिनव ने चतुराई से पास पड़े लकड़ी के गट्ठर को आग लगाई और रास्ते के किनारे रख दिया। हाथी आग देखकर डर गया और भाग खड़ा हुआ। पूरी सेना हक्की बक्की रह गई। जो कार्य सबको असंभव लगा था वह अभिनव ने अपने आत्मविश्वास से संभव कर दिखाया। युद्ध समाप्त हुआ। राजा ने अपनी सभा में अभिनव को बुलाया। उन्होंने कहा, आज हमने देखा कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में है। अभिनव ने साबित किया कि अगर मनुष्य स्वयं पर विश्वास कर ले तो वह किसी भी शत्रु को परास्त कर सकता है। राजदरबार तालियों से गूंज उठा। गुरुजी की आंखों में गर्व के आंसू थे। अब अभिनव केवल एक साधारण शिष्य नहीं रहा, वह पूरे राज्य का आदर्श बन गया। लोग अपने बच्चों को समझाते, देखो यदि आत्मविश्वास हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। और अभिनव अक्सर कहा करता था, कमजोर वह नहीं जिसके पास शक्ति नहीं है, कमजोर वह है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता।
5: दोस्तों,

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गाँव और अंचल में जाते हैं सभी से मिलते तो आज खुशी का बात है क्योंकि रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो होने के नाते कम्युनिटी से हम बात करते हैं। तो आज कम्युनिटी से खास कर आबूराज पोलोग्राम में पहुंचे 4 जून से 24 जून तक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण खेल में पहुंचे। तो यहां पर आज हम तिरंगा जी से एक प्रशिक्षित स्टूडेंट आए हैं तो उनसे भी बात करेंगे, उनका परिचय पहल लेंगे क्योंकि यहाँ का जो गतिविधि सब तक पहुँचाने के लिए रेडियो माध्यम हमेशा कोशिश करता है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए एक स्टूडेंट है जो कि प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं, इनका कोच भी धन्यवाद देते हैं और ये सरकार को भी धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर रूप में 21 दिन तक चला रहे हैं प्रशिक्षण, जिसमें सभी वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है और तिरंगी बहुत सारा गेम सरकार उनको रहने का, पहनने का, खाने का सब चीज सुविधा दी। तो उनको स्वागत करते हैं। आप अपना नाम बताएं और कहां से आए और किस उद्देश्य से लेकर आए।
1: तो मेरा नाम सर गणेश देवासी है, मैं सर सिरोही जिले से हूँ। मैं सर अभी आया था हमारी स्कूल से आया था जो जो कि सिरोही में है। स्कूल का नाम है श्री अग्रसेन दिव्यांग सेवा संस्था की सर मैं सर दिव्यांग हूँ जो मैं हॉस्टल में पढ़ता हूँ वहाँ से आया। ये सर मैंने अभी 2 महीने हुए मैं तिरंगाई सीखी है। इसमें सर मेरे को सर मेरा सपना है कि जैसे कि मैं अपने भारत को मतलब देश का नाम रोशन करूँ और अपने देश का जैसे कि वो तिरंगा मेरे कंधे पे होना चाहिए, सारे लोग बोलने चाहिए कि वाह अपने अपने बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है।
0: इतना उमंग उत्साह और कुछ करने के लिए जो जोश है सही में देखने को मिल रहा है अभी से। उम्र कितना होगा आपकी?
1: 16 साल उम्र है।
0: 16 साल उम्र में भी इतना उमंग उत्साह सर। और एक विकलांग जैसे दिव्यांग है और उनका दोनों हाथ नहीं है फिर भी कितना उमंग उत्साह, भले हाथ नहीं है लेकिन उसका मन में बुद्धि में तंदुरुस्ती है और करने के लिए कुछ इच्छा रखता है। तिरंगा उनका कंधा में होना चाहिए, ये जरूर होगा क्योंकि आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ से खासकर रेडियो मधुबन इस कार्यक्रम को प्रसारण कर रहे हैं और हमें खुशी है इस तरह बच्चों को एक मंच जो चाहिए था आज वो मंच मिल रहा है जो खेल के माध्यम से अपना बात को रख पा रहे। और खासकर आपका जो फिजिकल फिटनेस जैसे आप मैंने देख रहा हूँ आपका शाम दोनों हाथ में थोड़ा सा क्या पूरा दोनों हाथ में ये पैर में चलाते, तो इसके बारे में थोड़ा बताए कैसे आपका हाथ दोनों कट गया।
1: जैसे कि सर मैं बचपन मतलब मेरे हाथ थे फिर सर मैं 7 साल का था तब जैसे कि पापुरी में सर मतलब खेलने के लिए गया गार्डन में तो वहाँ पर सर इमली का पेड़ था तो सर मैंने उनको देखा नहीं था मतलब कोई बिजली का कबाइल जा रहा है। जैसे ही मैंने सर हाथ लगाया तो मेरे को करंट आ गया था, वो सर बिजली का जो वायर वो 11,000 वोल्ट का था सिर्फ मेरे सर दोनों हाथ कट गए। फिर सर उन पापुरी वालों ने बोला कि मैं तेरे को मतलब जो भी खर्चा होगा मैं सब कुछ दूंगा तेरे का मतलब भविष्य का सब कुछ होगा क्योंकि सर मेरे सर लाइफ तो खराब हो गई। फिर मेरे को वापस हॉस्पिटल लेके फिर सर वो वहाँ से गए फिर हमको कुछ ना तो एक रुपया भी दिया, जैसे भी मेरा खर्चा लगा वो सारे मेरे पापा ने दिया और मैं सर एक गरीब घर से हूँ। फिर पापुरी वाले फिर उनको बोला कि सर ये मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई मतलब मेरी हेल्प हो जाती तो फिर वो बोला कि तेरा जो भी वो कर ले। फिर हमने बोला सर मतलब बहुत अमीर है मतलब हम क्या कर सकते, फिर उन्होंने सर कुछ नहीं दिया मेरे को
0: पोर्टल पर। खास कर हमारा सहायता है हमारा सरकार सुन रहे इस कार्यक्रम को इस तरह जहाँ जरूरत है आवश्यकता है ये पुनित काम है जो भी कर सकते तो एक बच्चों का उमंग को बढ़ाने के लिए सरकार भी हाथ बढ़ाई हमारा इस मंच का माध्यम से हम रह सकते हैं क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक का परिचय भी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। आज बहुत खुशी और हर्ष का साथ हम पोलो ग्राउंड जो कि आबुराज में पहुंचे। 4 जून से 24 जून तक राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रशिक्षण में आज एक प्रशिक्षक को हम आप सबसे रूबरू कराएंगे। सभी तो प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करके पहुंचते हैं, और खासकर जो विकलांग कहते हैं, जिसको भिन्नक्षम कहते हैं। तो आज हमारे पास ऐसे पहुंचे महान हस्ती जो कि एक उमंग उत्साह को लेकर आए हैं, जिनका दोनों हाथ कट चुके हैं और दोनों पैर से ही सब काम करते हैं, और तीरंदाज तो उसमें भी जो तीर और धनुष का होता है खेल, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे। और मैं परिचय दूं तो कम होगा, वो खुद परिचय देंगे अपना नाम कहाँ से और कितना साल के और कैसे आज यहाँ तक पहुंचे और इसका लक्ष्य क्या है। और जीवन में संघर्ष तो होता ही, तो उनका हमसे जो साधारण व्यक्ति से एक विकलांग जो कि दोनों हाथ नहीं है, वो कैसे अपना दिनचर्या करते, खाना पीना रहना उठना, एक एस्कर्ट एक साथी हमेशा रहते हैं कहाँ भी जाते हैं, तो उनसे परिचय लेंगे। श्रीमान जी अपना परिचय दीजिए।
2: जी सर, मेरा नाम सर गणेश देवसी है। मैं सर सिरोही जिले से हूँ और सर मेरा गांव है सनवाड़ा, जो कि अपने देवदत्त तहसील में आया था। जब सर मैं बचपन में सर छोटा था ना, जब पावपुरी में सर मैं मतलब खेलने के लिए गया था, तो वहां पर सर इमली का पेड़ था, मतलब ज्यादा कोई सर ऊपर नहीं था, नीचे ही था 5 फुट पे। तो जैसे कि मैंने सर इमली को लगाया हाथ, तो इमली से मेरे हाथ में नहीं सर बिजली का कोई 11,000 वोल्ट का हाथ में मेरे को आया था। तो फिर मेरे को सर दोनों हाथ कट गए। फिर वहां से पावपुरी वाले ने सर उनको बोला कि हम तुम्हारे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, ज्यादा जो भी खर्चा होगा सब कुछ देंगे। फिर सर हमको गाड़ी में सर हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहां से वो सर चले गए। फिर पापा ने जो भी खर्चा हुआ सर मेरे पापा ने दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर उनको सर बोला कि भाई मेरी सर जिंदगी खराब हो गई सर, मैं मतलब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सर मेरा को थोड़ा बहुत मतलब मेरा जो हॉस्पिटल का जो भी खर्चा हुआ वो सर दे दे तो बहुत काफी है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो कर ले। फिर उन्होंने सर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं दिया। फिर सर मैं 1 साल तक मैं सर घर पे ही रहा, मतलब पापा लोग देखने के बच्चा अब क्या कर पाएगा। फिर सर मैं वहां से सर घर से दूर गया, जोधपुर गया, मतलब जो कि हमारे जो जैसे दिव्यांग बच्चे रहते हैं, वहां पर सर मैं 2 साल रहा। और जो मैंने सर जो भी सीखा जोधपुर से सीखा, मतलब कि जैसे कि पैर से खाना, पैर से कपड़े पहनना, जैसे कि पैर से ब्रश करना, पैर से बाल को मतलब बनाना, जो भी काम करता हूँ वो सब कुछ मैं सर पैर से करता हूँ। फिर सर वहां से फिर मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा। फिर से वापस खेल होते थे, तो मैं सर को सर बोलने लगा कि मेरे को सर खेल में सर आगे बढ़ना है। तो वो बोलने लगे कि तेरे हाथ नहीं, तू कुछ नहीं कर पाया। फिर यार सर मैं भी सर दुख लगने लगा। फिर सर मैंने वहां से सर घर आया। फिर घर में सर मैंने अपने सिरोही जिले में कोई ऐसी दिव्यांग हॉस्टल ढूंढी जो मेरे को मिल गई। उस हॉस्टल का नाम है श्री अग्रसेन दिव्यांग सेवा संस्थान सिरोही। फिर सर मैं वहां आया, तो फिर मैंने सर को बताया कि सर मेरे हाथ नहीं है, सारी घटना हुई। तो कोई बात नहीं, तू आराम से दे, तेरे को सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा, जो भी पैसे चाहिए वो मैं दूंगा। सर ने बोला सर कोई बात नहीं। फिर सर मैं वहां पर रहा। फिर टूर्नामेंट हुए जो कि सर उसमें मैंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। कैरम पेंटिंग में सर मैं स्टेट लेवल तक मैं पहुंच चुका हूँ। फिर मेरे को जयपुर में भजनलाल शर्मा आया जीर आए थे, तो वो भी मेरे को सर जयपुर में मेरे को सम्मानित किया था, मेरे को बहुत खुशी हुई। फिर सर मैं वहां से तीरंदाजी का भी मैच कर रहा हूँ प्रैक्टिस, वो भी सर मैं सिरोही में करता हूँ। फिर मेरे को सर ने सपोर्ट दिया, सर ने मेरे को आगे बढ़ाया। अभी सर मैं यहाँ पर माउंट आबू पर आया हूँ, तो अभी सर मैं तीरंदाजी सब कुछ कर रहा हूँ। पर जरा मेरे पास ये सर है, इसको बोलते हैं इंडियन, और मेरे को सर चाहिए कंपाउंड, जो कि सर मैं मतलब कंधे से चलाऊंगा, मुंह से चलाऊंगा, तो वो मेरे पास सर नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को कंपाउंड दिलाइए, तो मैं आगे के कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि सर इससे मतलब मेरे को बहुत दिक्कत होती है।
1: क्या आपका उम्मीद है सरकारी चीज हमेशा कोई कर पाएगा?
2: क्योंकि सर बहुत सारे लोग होते हैं जो देते हैं और बहुत सारे लोग नहीं देते, तो सरकार से मुझे लग रहा है कि मेरे को देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर।
1: सही बात बताएं, और उधर विल पावर देखना पड़ता भाई, जिससे इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं। आपने तो इच्छा किया, जरूरी इच्छा मात्र आपका सक्सेस तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक संकल्प आपका है, फिर संकल्प से आपका बोल तक पहुंच चुका है, बोल चुके हैं, वचन में आ चुका, अभी कर्म का बाकी है। कोई प्रैक्टिकल करा देगा, ये तो ऊपर वाला तय है। और आप जिसको याद करते आपका नाम जैसे गणेश से गणेश तक कर दिए, ये नाम कितना सार्थक करेंगे। और गणेश तो अग्र पूज्य है ये, तो इस नाम जो माँ बाप दिए उसका भी सार्थक करना है। मेहनत मेहनत मेहनत, 20 नाखून लगा कर एक लक्ष्य रखिए, ये जरूर हम कामयाब होंगे। कोई भी ऊंचा पहुंचने में बहुत सारा तकलीफ और कठिनाई आते हैं, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर रहना और उमंग उत्साह का साथ करना, ऊपर वाला जरूर मदद करता है। और आपका नाम जैसे माँ बाप दिए हैं और माँ बाप आपके लिए कितना सोचते हैं, तो आप अपने के लिए इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो तो जरूर ऊपर वाला भी आपका पास पहुंच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। खासकर अब आज दिव्यांग, ऐसे पहला बार रेडियो मधुबन में हम ले रहे हैं एक दिव्यांग, जो कि अति आवश्यकता है, जरूरतमंद दोनों, जिसका हाथ जैसे इंट्रोडक्शन में बताया उनका परिचय में कैसे यहाँ तक पहुंचे और किस तरह वो संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष जब करते हैं कोई ना कोई मिल जाते हैं, इसने कोई नहीं देता है, लेकिन देने वाले भी बहुत है, लेकिन उन तक पहुंच जाएंगे तो जरूर मिल जाएगा। और इस कार्यक्रम का माध्यम से जो भी प्रशासन या कोई भी भामाशाह इस तरह पुनित काम के लिए करना चाहते हैं वो करेंगे, और खासकर दिव्यांग एक सेवा संस्थान को भी धन्यवाद देते हैं जितना तक तो पहुंचाए। और आगे और 5-6 साल बाद थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उनका जिंदगी बन जाएगा और जो अंतिम पड़ाव तक पहुंचेंगे। और दिव्यांग सेवा संस्थान को धन्यवाद देते हैं इस पर, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से, इस तरह पुनित काम में सभी लोग हाथ बटाएंगे तो जो जरूरतमंद जो आवश्यकता है तो उन पर पहुंच पाएंगे, तो बहुत बहुत दुआएं मिलेगा। जहां दवाएं काम नहीं करता वहां दुआएं काम करता है, और उनका आशीर्वाद उनका जो भावना वहां तक पहुंचेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें खुशी लग रहा है, खुशी लगना चाहिए क्योंकि खुशी में ही सब कुछ है। दुखी होकर क्या, जो जिंदगी मिला उसको सार से निभाना चाहिए क्योंकि ये हमारा हाथ में नहीं, ऊपर वाला का हाथ में ही, हमारा कर्म का हिसाब किताब जहाँ पर नहीं होता तो भगवान भी बचा देते हैं, लेकिन क्या है हमें कर्म का गति को जानना पड़ता है। पूर्व जन्म में बा आगे जन्म में तो हिसाब किताब का चलते ये सब होता है। दिव्यांग कोई एक्सीडेंट, कोई एक साधारण व्यक्ति भी चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, कितना बड़ा पोस्ट हो, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका पूरा लाइफ चला जाता है। आप तो उससे बेटर है, आंखें पूरा पांच जो इंद्रिया है वो भी काम कर रहा है, जैसे हाथ नहीं है लेकिन पैर का दोनों डबल काम उसको मिल रहा है, ये खुशी का बात है। और जिसका चलते सब आपका पास आते, आप सबके पास जाते थे लेकिन सब आपको देखकर आपका पास आ रहे, ये भी आपका विशेषता है। हमेशा पॉजिटिव में रहना, नेगेटिव कभी नहीं सुनना, मेरा ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों ऐसे हुआ, तब तो हम आपका पास, कितना बच्चे था सभी के पास नहीं गए, आपका पास क्यों रुके, क्योंकि आप जो मेहनत करते हैं, जिसका दो हाथ है वो तो मेहनत करते हैं, जिसका दो हाथ नहीं वो दिखाते करके उसको ही कहते हैं नंबर वन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते, पुनः आपको स्वागत करते हैं। गणेश जी नाम ही कितना सुंदर, माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, नाम जैसे रखा है श्री गणेश, सब हर जगह में पूजा पाठ में श्री गणेश करना पड़ता है, आपका नाम इसलिए मैंने जितना खेल खेलते सभी स्टूडेंट से ले नहीं लेकर आपके पास में पहुंचे, क्योंकि सेकंड से आप करेंगे तो खासकर बहुत सारा खेल होता है, खेल मतलब गेम जो होता है ये बहुत कुछ डेवलपमेंट करता है। एक तो शारीरिक डेवलपमेंट होता है, शारीरिक जो स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, इसका साथ मानसिक मन और बुद्धि भी तंदुरुस्त रहता है, विकसित होता है, डेवलप होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, खेल से फायदा होता है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे खेल से, खेल को क्यों चुना?
2: क्योंकि सर ज्यादातर मतलब मेरे पास बहुत सारे खेलते थे सर, मतलब की कोई लंबी कूद है और रनिंग है, मेरे पास सर बहुत सारे खेलते थे, मैंने सर यही सुना क्योंकि सर जैसे कि सर मैं मतलब रनिंग करता हूँ ना, जब मैं सर सारे बच्चे एक साथ में दौड़ते, जब सर मेरे पैर में से कहीं भी मतलब कोई ऐसे आ जाए कोई बीच में वगैरह, तो सर मैं जैसे गिर जाता हूँ ना सीधा।

0: चाहे
1: तो श्रोता मित्रों, ग्रामवासी और खासकर हमारा जो श्रोता सुन रहे, चाहे भामाशाह हो, चाहे सरकार भी सुन रहे, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, और खासकर बच्चों का जो उमंग उत्साह भाई जिसमें हमारा शरीर साथ दे रहा है, उसमें ज्यादा मेहनत का इसमें उसमें ज्यादा जो मेहनत करेंगे उसी मेहनत को जो इसमें जो डालेंगे तो इस नंबर कहेंगे इस तरह कोई कंप्यूटर नहीं है, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटेटर है, लेकिन इसमें जो विकलांग जो दिव्यांग है तो इसमें कंप्यूटर कोई नहीं होगा, बहुत कम गिना चुना मिलेगा, तो फिर भी उसमें आपको सबका अटेंशन आपका पास रहेगा, क्योंकि आपका जो फिजिकल बॉडी जो दिखाई दे रहा है जिसमें दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर में सब कुछ करते, ये तो फर्स्ट स्टेप में ही आप प्रमोशन हो जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वालिटी, तो इसलिए आप थोड़ा सा वहां पर दूसरा गेम जैसे वॉलीबॉल हो, चाहे हैंडबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, उसी फील्ड जैसे रनिंग हो, इसमें जितना मेहनत करेंगे ना उसी मेहनत को इसमें अप्लाई करेंगे तो तीरंदाजी में जो कि आर्चरी में तो जरूर कामयाबी होंगे, और आप अच्छा सिलेक्शन गुड सिलेक्शन, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे, मेहनत तो सभी जगह में करना पड़ता है, लेकिन वो मेहनत को यहाँ पर लगाएंगे तो जरूर सक्सेस होंगे, ये मेरा विचार है
0: जी सर।
1: लेकिन आपका किस्मत और आपका लक, एक कदम लेंगे तो हजार कदम कोई ना कोई सपोर्ट करेगा, तो आपका जो एक कदम बढ़ा है ये कम बात नहीं है, पहला कदम आपका और हजार कदम सभी का
0: जी सर।
1: तो बहुत अच्छा लगा, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ,
0: अच्छा
1: जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ये तीन चीज को रखा, क्यों हुआ कैसे हुआ वो फुल स्टॉप, गया बीत गया, अभी हमें अभी फ्यूचर हमको बनाना है
0: जी सर। समझ गया
1: समझ गया, तो समझदार को इशारा काफी है, और हमारा श्रोता मित्र भी सुन रहे हैं, खासकर आज दिव्यांग एक तीरंदाजी से मिले बहुत खुशी लगा मैं, क्योंकि एक दिल का बात आज रखा और कितना मेहनत करते होंगे उनका, एक तो खाना पीना उतना दो दिनचर्या होता है ब्रश से लेकर, उसमें क्या तकलीफ होता है, मैंने क्या ज्यादा चैलेंज आपका कोई नहीं रहेगा, स्कर्ट आपका पास कोई नहीं रहेगा, तो आप किस तरह करते हैं?
0: यस सर, मैंने मतलब
1: कैसे सीखा इसको?
0: अभी तक सर मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं लगती, पहले सर मेरे को स्टार्टिंग में सर बहुत मेहनत लगी, और सर मेरे को बहुत कई बार शॉर्ट पूछी।
1: कितने साल में आपका ये जो हाथ का जो एक्सीडेंट हुआ जो तार लग गया, कौन सा साल?
0: मेरे मतलब 7 साल का था जब मेरे सर ये घटना हुई थी, अब मैं 16 साल का हूँ, 8 साल पहले की बात है।
1: 8 साल का जो शुरुआत कैसे रहा, कौन कौन सपोर्टिंग किया, कैसे आप करते थे? मम्मी पापा पहले सहयोग करते, कोई एक्सपर्ट कोई?
0: हाँ जी सर, पहले सर मैं मतलब कुछ नहीं कर पाता था, सारे काम सर मेरे मम्मी पापा करते थे, मेरे को सब मेरे को भी दुख लगना यार
1: क्या कर लेना पड़ता है क्या करे,
0: फिर सर मैंने सब कुछ मैंने सर ये पैर से मुझे सीखा, बहुत मेहनत लगी, और मैं अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ सर,
1: जरूर करेंगे
0: जरूर करेंगे मैं सर करके दिखाऊंगा, कि बस मेरे को सर पीछे थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए सर, मेरे को
1: सपोर्ट तो आपका इच्छा शक्ति जहां भी बोलेगा ना तो मिल जाता है, जो मायूस होता है उसको कोई नहीं देता है, सरकार भी क्या भगवान भी चुप रहेगा, लेकिन आप जो आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत देकर सब कुछ हो जाएगा। तो कैसे आपको तकलीफ आई शुरू शुरू में वो बताइए, जैसे आप कैसे सीखे इसको, जैसे ब्रश करना कोई नहीं रहेगा तो आप कैसे ब्रश करते हैं, हमारा तो हाथ है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड है ना, तो आप कैसे करते हैं वो
0: सब कुछ? सर पैर से करता हूँ, मतलब मेरे सुबह से लगा था शाम तक मेरा खुद का काम मैं खुद ही करता हूँ।
1: जैसे क्या क्या करते हैं?
0: मतलब मैं खुद जैसे ब्रश कर पाता हूँ, मतलब ये टी शर्ट को पहन पाता हूँ, पैंट को भी सर पहन पाता हूँ,
1: क्या बात,
0: और सर खाना भी खा लेता हूँ, और मतलब नाना धोना सब कुछ मैं कर लेता हूँ, कपड़े मतलब मैं धोता हूँ, और सर मैं हॉस्टल में तो मतलब सब कुछ सुविधा है, वरना तो मैं सर मैं खुद ही धो लेता हूँ।
1: अच्छा,
0: मतलब मेरा खुद का काम है, खुद मेरे को किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि तू मेरा ये कर ले, इसको जरूरत नहीं, मैं खुद का काम खुद ही करता हूँ।
1: तो उसमें कोई तकलीफ कष्ट आ रहा है?
0: सर पहले बहुत तकलीफ आई, अब सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अब मैं खुद आराम से करता हूँ।
1: तो वो चीज जो आराम करते हैं जैसे एक जनरल हो गया, मैंने डेली रूटीन है
0: सर, डेली डेली मतलब एक आदत बन गई
1: जी जी, ये भी एक आदत बनाना खेल को,
0: सर
1: एक ही तो चांस है। पढ़ाई कहाँ तक?
0: पढ़ाई सर करता हूँ सर।
1: कितना कौन सा?
0: अभी मैंने 10वीं का एग्जाम मैंने दिया है।
1: वो पैर में लिखा?
0: पैर जी सर, सब मेरा मतलब उमरक वगैरह सब कुछ मैं पैर से करता हूँ।
1: ये यूनिक है,
0: इससे
1: साधारण लोग तो बहुत मिलेंगे।
0: इससे मैंने सब क्लास कर दी, पहले दूसरे तीसरे सब क्लास मैंने कर दी, चौथी तीसरी सब मैंने सर 5 पैर से किए सर।
1: चलो ये तो ऐसे आप समान जो दिव्यांग है
0: जी सर,
1: तो उनके लिए क्या कहेंगे?
0: इनके लिए सर यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में हार मत मानो, जिंदगी से लड़ना सीखो, जिंदगी से लड़ना सीखो, मतलब कि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा जो अपने आप को मतलब कोई सी कमजोर समझ दे कि मेरे पास है नहीं, वो नहीं, मैं दिव्यांग हूँ, दिव्यांग के पास सब

0: से सब कुछ वो कर पाते, अपने मन में वो काम मैं करूंगा तो एक दिन उनको करके करके दिखाएंगे।
1: इसमें भी कुछ मैंने हमेशा पॉजिटिव रहना, उन्हें सकारात्मक
0: सोच जैसे,
1: और दिव्य गुण जब आ जाएगा तो जैसे वचन हमारा मीठा बोल हो,
0: जैसे
1: हमारा चेहरा में हर्षित मुक्ता हो, और जो भी है उसमें खुशी रहना है और किसी को निंदा नहीं करना है। खुशी देंगे तो हमें खुशी मिलेगी, क्योंकि जैसे हम खेल में एक एरो, जैसे ये एरो का कलर जैसे फेंकेंगे ना वापस वही आएगा ना,
0: तो
1: रेड नहीं आएगा क्योंकि हमें फेंके इस ब्राउन कलर का, तो रिटर्न क्या आएगा, ब्राउन का आएगा, ब्लैक फेंकेंगे तो ब्लैक आएगा। तो ये जो ये भी मुख जो हमारा है, ये तीर जिस धनुष से हमारा जीवा से जो शब्द निकलता है वो एरो,
0: जिससे समझ गया।
1: तो हमारा शब्द भी ऐसे होना चाहे पूरा उसको लगे तो ठीक जगह में लगे और अच्छा उनको महसूस हो, जैसे आपने करते हैं।
0: जी सर, करता हूँ।
1: खासकर ये जो तिरंजा जी आपने चुने हैं सभी खेल से, सभी खेल देखें तो उसमें आपका शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा, देगा तो भी उसमें आगे के लिए पूरा बहुत मुसीबत आता था, जैसे आपने रनिंग का बात बताया है ना, और क्या मैं और कुछ में प्रैक्टिस किया, जैसे जंप जंप जंप करते उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, उसमें वही है
0: जी सर, मतलब
1: सपोर्टिंग चाहिए,
0: सपोर्ट चाहिए मेरे को, मतलब कैसे मैं दौड़ता हूँ, मतलब कभी ये सब पैर चलता है सही है इधर आ जाए तो गिर जाता हूँ सर, मतलब किसी मुंह पे क्योंकि मेरा सपोर्ट नहीं है सर गिरने पे।
1: जी जी जी, इसलिए पैर से आप क्या क्या कर सकते हैं, पैर से जैसे आपने सब काम कर रहे हैं
0: जी सर,
1: पूरा ए टू जेड जो भी आवश्यकता है, चाहे करियर बनाने के लिए भी इसी पर ही निर्भर है, मुक्त है ये, लेकिन उसमें बोलना कुछ नहीं होता, इसमें बुद्धि का काम है, संस्कार का काम है, मन बुद्धि और संस्कार, ये तीन तो तंदुरुस्त है आपका, भले शरीर आपका एक अंग गया है दूसरा अंग तो है ही
0: सर, जैसे कि सर मैं हाथ ही नहीं तो मैं पैर ही हाथ
1: पैर हाथ ही हाथ पे दोनों काम कर रहा है, डबल काम कर रहा है, काम तो ही है हाथ तो, लोग तो आंख भी नहीं है, लोग दुनिया को नहीं देख रहे, आज से तो उससे तो बेटर आप
0: जी सर,
1: जिसका श्रवण नहीं है वो भी तो सुन करता है, मुख नहीं पड़ता तो वो भी तो आप देखे होंगे,
0: आज मार्च जब मैं सर जहाँ पर रहता हूँ ना सिरोही में, वहाँ पर ऐसे बच्चे है जो ना तो सर बोलते हैं ना सुनते हैं,
1: सुन पाते उसका तो
0: वो सर पढ़ाई वगैरह सब कुछ
1: देख पाते हैं सब कुछ, क्योंकि आंख जो है ना पूरा दुनिया को देखता है,
0: मैंने सर ऐसे बच्चे देखे जिनके आंख भी नहीं है कान भी नहीं है ना सुनते ना बोलते, मैंने सब कुछ सर देखा,
1: लेकिन उसमें ज्यादा बहुत मेहनत करना पड़ा, इससे भी ज्यादा मेहनत करना, आपका एक जो है उसमें भी आप इसमें कर पाएंगे तो कर पाएंगे, आपका ये काम हो पाएगा, उनसे बेटर कर पाएंगे है ना। तो तिरंजा जी में तो आप शुरुआत में जो जिस प्रशिक्षण लिए कैसे आपको इच्छा हुई, जब तिरंजा से कर पाएंगे इस जो भावना आया है तो कैसे फिर देखे ना कोई प्रेरणा दिया इस खेल को ना, आपने खुद लिया चुना ये आर्चरी के लिए, आप कैसे इंटरेस्ट लिए
0: ये सर आर्चरी को, मतलब मैंने सर पहले तो मैं सर जानता ही नहीं था आर्चरी सर क्या चीज है
1: जी,
0: फिर सर मैं यहाँ पर स्कूल में रहता हूँ ना वहां पर सर मेरे को सर ने एक वीडियो दिखाया जिसके से एक बच्ची है जिसके से दोनों हाथ नहीं है वो सर पैर से तीरंदाजी कर रही है, फिर मैंने सर को दिखाया, फिर सर ने मेरे को सर ने बोला तू कर पाएंगे, मैं सर आराम से कर लूंगा, वो सर करते तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं सर इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा, फिर मेरे को सर जहाँ पर भी हमारे सिरोही में जो तीरंदाजी का कोई है मैम वगैरह कोच वगैरह वापस सिखाते हमको, तो फिर मैं वहां पर गया, फिर मैंने देखा बच्चे को बच्चे करते हैं, फिर मेरे मैम को बोला कि मैम मेरे को मैम कैसे सीखूं, फिर मेरे को मैम ने ये मतलब दिया धनुष दिया
1: जी जी,
0: फिर मैंने एक दिन पकड़ा पैर में तो पहले दिन दिक्कत हुई, तीसरे दिन दिक्कत हुई, उसमें से दिक्कत आ रही है ज्यादा तो मेरे को दिक्कत आ रही है, और मैं अभी तक इसको करता हूँ अच्छे से करता हूँ, पर मेरे को सर इससे भी अच्छा करना है, अच्छा करके दिखाना है।
1: तो आपका बात सुनते सुनते मैं तो भाव विभोर हो गया, मैंने कितना एक साधारण व्यक्ति और एक दिव्यांग व्यक्ति में कितना अंतर है, और फिर भी उनका जो सपोर्टिंग जो दोनों हाथ का जो बल है वो पैर में आ जाता है, जिसका चलते डबल पावर डबल इंजन लग जाता है, और ऊपर वाला तो किसी हिसाब से बना है वो उसका ड्रामा फिक्स है, सभी का अलग अलग पार्ट हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ड्रामा का हिसाब किताब जो स्टुक हो रहा है किसका साथ क्या बात होगा वो भी प्ले हो रहा है, तो उसमें खुशी रहना है, उसी में ही जिंदगी है, तो कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, जो हुआ अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बोला था जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा वो भी अच्छा हुआ, कैसे अच्छा होगा वो हम नहीं सोचेंगे, उनको पता है ना, क्योंकि नहीं होता तो हम नहीं मिलते नहीं होता तो आपका बात कोई नहीं सुनता, साधारण व्यक्ति को कोई पूछता नहीं, लेकिन आपको तो सभी लोग पूछेंगे, स्वयं भगवान भी पूछेंगे, ठीक है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, और खास कर जैसे आप क्या आशा रखते हैं, जैसे तिरंजा जी जैसे इसको जो कहते हैं क्या कहते हैं इसको पूरा,
0: इसको तो सर बोलते हैं इंडियन
1: इंडियन
0: इंडियन जो कि
1: धनुष तीरा धनुष इंडियन है
0: जी सर।
1: तो ये धनुष जो कि हमारा गणेश जी का इसमें प्रैक्टिस करते हैं और ये इंडियन है
0: जी सर।
1: इंडियन में तकलीफ होती है क्या तकलीफ इसमें आपको चलन में क्या तकलीफ होती
0: जैसे,
1: है
0: जैसे कि मतलब मैं सर इधर से पकड़ता हूँ
1: जी
0: जैसे कि मतलब आप सर हाथ से पकड़ते हो इसको पूरा सर आपके से अंदर से मतलब यहाँ से पूरा आता है मेरे से इधर आता नहीं है
1: वो इसमें लगता है आपका
0: इसमें सर ये से ऊपर ऐसा इधर लगता है ये
1: तो जैसे भी लगा हुआ है
0: ये सर।
1: तो ये इंडियन में प्रॉब्लम है
0: जी सर।
1: तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए क्या आशा रखते हैं आप मैंने क्या चाहते हैं
0: ये सर मतलब ये हाथ वाले बच्चे चलाते हैं
1: वो हाथ वाला
0: जो सो ये मैं पैर से चलाता हूँ
1: पैर वाला भी ऐसे कुछ है का धनुष
0: पहले बार सर इधर एक बच्चे के पास है मतलब वो सर भारी है ज्यादा मतलब वजन में मेरे लिए सर आता मतलब कम वजन में आता है हल्का सा आता है।
1: अच्छा वो भी पैर में चलाता है क्या
0: वो सर पैर से मतलब वो सर यहाँ से पकड़ वगैरह टाइट है ये सर मेरे को खींचना पड़ता है इस पैर से ऐसे तो वो सर आता है मैं सर कंधे से खींचूंगा ऐसे ऐसे और मुंह से मैं सर चलाऊंगा।
1: अच्छा
0: वो सर अलग ही आता है।
1: अच्छा वो चीज कितने का कॉस्ट आता है
0: 4 लाख का आता है सर।
1: 4 लाख और ये 10 हजार
0: ये 10 हजार
1: 4 लाख और 10 हजार
0: बहुत फर्क है सर
1: बहुत फर्क है। ठीक है इच्छा रखिएगा तो हमारा लिसनर हो चाहे हमारा इसको देखा और इससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो समय अनुसार कोई ना कोई मदद करेगा तो सरकार चाहेगा तो क्या है कुछ नहीं है तो कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा लगा और मुझे और एक हमारे श्रोता मित्र से हम चाहते हैं आप जो इंडियन धनुष में अभी जो तीर और धनुष जो देखा है उसमें आपका तकलीफ तो आपने बताया लेकिन और जो इससे इम्प्रूवमेंट करने के लिए दूसरा क्या नाम बोला
0: कंपाउंड सर
1: कंपाउंड उससे वो धनुष से आप कर पाएंगे
0: जी सर।
1: तो इससे करियर आपका जो करियर बनना चाहेंगे इसमें
0: जी सर
1: ना कुछ डॉक्टर इंजीनियर पुलिस इसमें नहीं जाएंगे
0: इसमें सर अभी सर मेरे को ये अच्छा लगता है और सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पढ़ाई भी अच्छी लगती है।
1: ये पढ़ाई का बाद कहाँ तक पढ़ाई करेंगे
0: अभी सर सारी पढ़ाई
1: ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन तक बीएससी जो भी मिलेगा
0: जी सर।
1: तो बढ़ाकर क्या बनेंगे करियर किस में बनाएंगे खेल में ही बनाएंगे
0: जी सर
1: गेम में
0: क्योंकि सर मेरे को गेम अच्छे लगते हैं।
1: ग्रेजुएशन होने के बाद तो पैसा घर में इतना हो जाता है क्या करते पिताजी
0: दस ऑटो चलाते हैं।
1: कितना भाई बहन
0: मेरे सर 3 सर भाई है 1 बहन है।
1: 4 भाई बहन आप सबसे बड़े
0: नहीं मैं सर 20 में मतलब मेरे से बड़ा भी है
1: सब लोग सभी बच्चे पढ़ते हैं
0: जी सर।
1: माँ बाप बस जो ऑटो से जाता है
0: माँ मम्मी करते ही है पापा से ऑटो से जाते हैं।
1: खेती बाड़ी
0: खेती बाड़ी कुछ नहीं सर।
1: पशु
0: पशु कुछ नहीं सर।
1: अच्छा बस ऑटो से जो होता है सबका
0: जी सर
1: फिर उसमें भी सबका करियर बनाना है पढ़ाई कोई भी एक बन जाएगा तो सबका मेंटेन करेगा
0: सर।
1: ठीक है जब तक अच्छा इसलिए करियर आपको बनाने के लिए जो स्कोप है इसमें पैसा रोजगार करने के लिए
0: अभी तो सर हमारे साथ जा रहा है जो भी सर खर्चा वगैरह लगा वो सर स्कूल से आ रहा है
1: स्कूल से आ रहा है
0: मतलब कि जो भी जैसे कि मतलब मेरे को यहाँ पर आने के पैसे लगे जो भी रहने के वो सर सर
1: स्कूल जब तक पढ़ाई तब तक इसका बाद
0: इसके बाद भी सर मेरे को ये मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरे को आगे मैं सब करके दिखाऊंगा ना इसमें सर सरकार हमको सब कुछ सपोर्ट देती है। मतलब क्वेश्चन सर ने बताया था सर ने कि मतलब ये सर मेरे को एक बार कंपाउंड मेरे पास में आ जाए ना तो सर मेरा मतलब मेरे इधर इधर में सर दिक्कत नहीं आती सीधा सर यहाँ से सर नेशनल मेरे को खेलना पड़ता है।
1: अभी अभी राजस्थान में है सिर्फ
0: तो अभी सर मेरे को जिला वगैरह ये नहीं डायरेक्ट नेशनल मेरा होता है।
1: अब नेशनल कभी गए
0: कभी नहीं गया पर इसमें मेरे को ये 3 राज्य में सर मेरे को जाना आ गए
1: इसमें फील्ड में ही जाना है तो नेशनल में मौका मिलेगा तो जा सकते हैं
0: जी सर। मैच सर मार टूर्नामेंट होते है मतलब जैसे कि मैच सर दिव्यांग के अलग ही होते हैं
1: जी जी
0: पैरा ओलम्पिक बोलते हैं।
1: अच्छा पैरा ओलम्पिक में
0: पैरा में
1: उसमें ये धनुष वाला तो बहुत अच्छा है यहाँ का
0: मतलब कि जो मेरे वो आगे सर बच्चे आते हैं उनके पास सारे सर वो कंपाउंड ही होते हैं मेरे पास ये मतलब ये से।
1: कोई बात नहीं जितने जो है उसमें संतुष्ट
0: है
1: वो उसके लिए वो नहीं बोलकर हमको नहीं करना है बस एक बार बोलना जब समय आएगा तो आ जाएगा लेकिन उससे बेटर तो लोग देखेंगे ना तो इसमें करके भी देखा सकते हैं उसमें तो सब लोग कर लेते लेकिन इसमें तुम कर लेगा तो तुम्हारा अधिक प्लस पॉइंट आएगा ना
0: निश्चय
1: वो तो सुविधा साधन रहेगा उसमें तो सभी लोग कर लेते जहाँ कोई सुविधा साधन नहीं उसमें करके जो देखेगा जब आ जाएगा आपके पास वो भी कर सकते हैं जब तक नहीं तो इसमें तो बंद रुकना तो नहीं है ना
0: नहीं
1: वो नहीं आया तो हमारे पास नहीं है तो लोन जब हो जाएगा तो सरकार उसको लोन दे देगा कुछ ना कुछ कराएगा। ठीक है जब इनकम सोर्स होना चाहिए किस तक कब तक हम किसको मांगेंगे बोले इसका आधार समय कुछ इनकम होना चाहिए सरकार तो दे रहा है कब तक देगा जैसे स्टूडेंट लाइफ में तब तक पढ़ाई तब तक मिल जाता है इसका बाद फिर फिर आपको इस स्टूडेंट पीरियड में ही आपको कुछ करके आगे बढ़ना है, कहीं अभी फ्री में मिल रहा है, बाद में तो पैसा नहीं लगेगा, जब इसमें आप आगे जाकर टॉपर जाएंगे नेशनल लेवल तो आप सब कुछ मिलेगा सरकार तब देगी, लेकिन अभी तो 4-5 साल है तो बहुत मेहनत करना है उसमें, सोना संग दोस्त मोबाइल से सब जहाँ आवश्यक नहीं वहाँ करना है, वो समय को यहाँ लगाना है, क्योंकि 24 घंटा सभी का पास है, व्यर्थ से मुक्त, जहाँ आवश्यक नहीं वहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करना, ये 5 साल बस स्टूडेंट लाइफ में ये याद रखना, 5 चीज, बड़ों का बात मानना, उनसे जो बड़े हैं जो भी बोलते हैं आपको भलाई के लिए, उसमें नाराज बोले उस समय के लिए आपको खराब लगेगा, लेकिन आगे आपको अच्छा माँ बाप बड़ा भाई हो चाहे कोई मीडिया वाले हो कोई कोच आपको जब बोल रहा है तो आपका फायदा के लिए, बड़ों का बात मानना, ये पूरा लिख लेना, बड़ों का बात हमें
0: मानना चाहिए,
1: हाँ जी करना, ना जी नहीं हाँ जी, क्योंकि हमने देखा आप हम हमेशा हाँ जी कर ये इसमें तो पास हो जाएंगे, ठीक है, 24 घंटा से 6 घंटा 6 आवर्स एक्स्ट्रा देना है, कहाँ से लाएंगे, सोना कितना समय सोते हैं,
0: मतलब मैं अभी फ्री सर इसको, मतलब मैं शाम को नहीं आता इधर,
1: हाँ सोना 5-6 घंटा बस, 6 घंटा से ज्यादा नहीं सोना, और बाकी समय आपका पास है
0: जी सर, मतलब
1: 24 घंटा से 6 घंटा पहले 18 घंटा है, 18 घंटा से बस फ्रेश होकर 2 घंटा जाए
0: जी सर,
1: और बाकी समय पढ़ाई स्टडी में 6 घंटा 8 घंटा दे दें, फिर भी आपका 8 घंटा मिल जाएगा, किसे मोबाइल से कम रहेंगे, खाना पीना जल्दी जल्दी खाकर उसमें फोकस देंगे, तो 4-5 साल जब 6 घंटा एक्स्ट्रा देंगे इसमें
0: जी सर,
1: एक्स्ट्रा मैंने ऐसे नहीं है बढ़ कर इसमें पूरा ध्यान से तब जाकर हो पाएंगे, तो 6 घंटा एक्स्ट्रा देना है, बड़ों का बात
0: मानना है,
1: मानना है, और अपना जो आहार व्यवहार जो खाना और आपका जो शारीरिक एक्सरसाइज जो करते हैं वो भी रेगुलर करना है, 3 चीज याद रखना, और भोजन जो है अल्पाहार ज्यादा नहीं, आलसी लिमिट से, ताजा जितना आवश्यक उससे कम, जगह जैसे रहे पूरा भरते हो तो आलसी आ जाएगा, और तेल मसाला प्याज लहसुन जो उत्तेजित करता है ना वो चीज नहीं खाना भोजन में, क्योंकि शरीर के लिए जो आवश्यकता है वो चीज खाना है, जीवा के लिए नहीं, ठीक है, ये चीज रखेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे, एक तो बड़ों का बात मानना है, 6 घंटा एक्स्ट्रा देना, जितना कर उसको वो तो करना है, इसके बाद और 6 घंटा तो कहाँ से लाएंगे वो आप आपका ऊपर है, कैसे संग दोस्त से कम, व्यर्थ से मुक्त, मोबाइल से कम और निद्रा से कम, ठीक है, इतना करेंगे तो 3 चीज कर पाएंगे
0: जी सर,
1: तो ये करेंगे तो ऊपर वाला भी मदद करेगा और आप ऊपर वाले तो मदद तब करेंगे जब आप कुछ करेंगे, तो और क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, आज आपको रेडियो मधुबन आपका बात को सुनने के लिए, इसका पहले कोई मीडिया वाला आए थे सुन रहे थे आप बोल, कोई मीडिया वाला भी आपका इंटरव्यू लिया था,
0: इंटरव्यू सर सर आए थे सर, मेरे पास शुरू में भी सर 2-3 दिन आए थे, या इधर भी सर मैंने जब टूर्नामेंट में सर स्टार्टिंग में 4 तारीख को मैंने सर यहाँ पर डेमो दिया था, तो उस समय मेरे को एक इंटरव्यू देने के लिए आए थे,
1: कोई बात नहीं आप करते रहना है भाई, उसके बाद फिर ऊपर वाला अपना कर्तव्य आप कर रहे हैं
0: जी सर,
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर, और हमारा दिव्यांग भाई, दिव्यांग तो हम नहीं कहेंगे अभी तो, उनका मन बुद्धि और संस्कार तीनों तंदुरुस्त है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी है, क्योंकि वो मन बुद्धि और संस्कार जिसका तंदुरुस्त है ये शरीर तो ऑटोमेटिक चलेगा, जैसे गाड़ी का वाले एक ही चक्का खराब हो गया लेकिन उस ड्राइवर का इतना बुद्धि होता है वो 3 चक्का में भी
0: गाड़ी को चलाता है,
1: 4 चक्का वाला से आगे जाता है, तो उसमें वाह वाह तालियां बजाते हैं
0: जी सर,
1: तो आपका दो मैंने एक पहिया नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 पहिया को भी टक्कर देकर आगे निकलेंगे, जिसे ड्राइवर मन बुद्धि और संस्कार, आपका मन बुद्धि संस्कार तंदुरुस्त है शरीर ऑटोमेटिक तंदुरुस्त होगा, है कि नहीं, इस मानते हैं कि नहीं, भले गाड़ी खराब हो कितना भी लेकिन उसका ड्राइवर जब सही होगा
0: गाड़ी अपने आप चलेगी,
1: और ड्राइवर जब खराब होगा कितना भी गाड़ी होगा तो एक्सीडेंट करा देगा
0: जी सर,
1: तो ये शरीर का गाड़ी है,
0: गाड़ी
1: शरीर इज द मोटर, बॉडी इज द मोटर, सोल आत्मा सोल इज द ड्राइवर ऑफ द बॉडी, ये शरीर को कौन चलाता है, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि से आप सब काम कर पा रहे
0: जी सर,
1: शरीर का कोई काम नहीं है, इंटेलिजेंट आप समझ गए, तो आप कभी भी नहीं सोचा मैं एक गाड़ी नहीं हूँ मैं एक ड्राइवर हूँ
0: जी सर,
1: ये शरीर का मैं मालिक हूँ, मैं जैसे चला हूँ जहाँ चलाओ इस कर्मंदिर से करा पाऊंगा, है कि नहीं, तो ये चीज एक पॉइंट कोई आपको इतना बताया नहीं होगा, मैं एक ड्राइवर हूँ
0: जी सर,
1: आत्मा ड्राइवर है, आत्मा शब्द मालूम है ना, सो मन बुद्धि है ना, मन बुद्धि मन बुद्धि को देख नहीं सकते लेकिन है, आग से देखती मन से संकल्प करते ऐसे करो
0: जी सर,
1: जो करने वाला को ये बताते हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज से मिलकर, तो शाबाश आगे बढ़ते रहिए, ये हमारा दुआ है, और रेडियो मदन परिवार आपका साथ है और ऊपर वाला भी आपका साथ रहेगा, तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर, आप जाते थे, क्या कहना चाहेंगे रेडियो मधुबन और ब्रह्मा कुमारी को? क्या आपको लग रहा है ऐसे ब्रह्मा कुमारी वाले आए हैं, रेडियो मधुबन आपसे मिले हैं, आपका बात, तो आपको क्या महसूस हुआ, क्या लग रहा है?
0: मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब मैं तो सर लोगों को कहता हूँ कि मेरे को ये चाहिए, पर आप सर कहेंगे तो मतलब वो मतलब मानेंगे सर आपकी बात वगैरह, ऐसे मतलब अच्छा लग रहा है।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं आज से, गणेश और पवित्र भाई दोनों से हम इजाजत लेते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी वक्त इसी समय, और किस बात को लेकर सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा धन्यवाद, आभार।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हू वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में अवेलेबल है और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना होगी।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

होटल पंडित आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन

0: ओए रुके रुके रुके। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, पर जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? पर तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, अगर आप हर वक्त हर मोड़ पर सकारात्मक रहते हैं तो उसे कहेंगे वाह क्या जीवन जिया है इन्होंने। ऐसे ही कुछ अनुभवों के साथ आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आप हैं सुरेश कुमार जी। आप पिछले 3 दशकों से एक योगी जीवन जी रहे हैं, यानी कि ये नहीं है कि उन्होंने संसार को संन्यास कर दिया है, लेकिन अपनी भौतिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने जीवन को ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में शांतिवन में समर्पित करके अपनी योगी जीवन जी रहे हैं। इस योग की साधना से उन्होंने क्या प्राप्त किया है और उस उतार चढ़ाव में ये साधना उनके जीवन में कैसे मदद किया है, आइए आज हम जानते हैं। दोस्तों, सुरेश कुमार जी, आप 1990 में ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आए हैं। मूलतः आप कर्नाटका कूर्ग डिस्ट्रिक्ट से हैं। आगे की कहानी उनके जुबानी हम सुनते हैं। स्वागत करते हैं सुरेश जी को। नमस्कार भाई जी।
1: नमस्कार
0: भाई जी। हम सबसे पहले आपकी जर्नी की ये कहानी जानना चाहेंगे कि आपकी जीवन की शुरुआत जो कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में हुई है, और आपका बचपन कैसा रहा, आपने क्या पढ़ाई किया, और आपकी लौकिक परिवार, इसके बारे में आप संक्षिप्त में हमें बताएं।
1: देखिए, हमारा लौकिक जन्म कर्नाटक से हुआ है। कूर्ग डिस्ट्रिक्ट पूरे दुनिया में फेमस है, क्योंकि हमारा जो फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा, उनका भी जन्मस्थल वही है, मेरा भी वही जन्मस्थल है। तो बचपन में मुझे थोड़ा सा जीवन में खेल कूद में इंटरेस्ट ज़्यादा थे, तो एक अंदर से यही संकल्प था मुझे बड़े होने के बाद एक अच्छा काम करना है, थोड़ा एक सोशल सर्विस करना है। तो इसलिए मेरा प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल वगैरह कूर्ग में हुआ है। उसके बाद कूर्ग में पढ़ाई करते करते मुझे अंदर से यही हो रहा था, मुझे फौजी में भर्ती होकर के भारत का सेवा करना है, ऐसे अंदर से मुझे एक तड़पन थी।
0: तो बचपन से
1: ही
0: जी,
1: मेरा जो बैकग्राउंड परिवार है किसान परिवार में थे, तो इसलिए मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रोसेस नहीं करते थे। तो हर एक को जो भी बोलते थे मुझे फौजी में जाने के लिए प्रोसेस करते थे, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आ जाता था। इसलिए मैंने सोचा पढ़ाई करना तो फौजी में जाने के बाद आगे पढ़ाई करेंगे। तो उसके बाद मैंने 10वीं पढ़ाई करने के बाद घर में नहीं रहा, घर से बाहर गए, बेंगलोर गए। बेंगलोर में 2 साल प्राइवेट जॉब करते रहा, उसमें बीच में 2 बार भी मैंने इंट्री के लिए गए था, CRPF में गए थे, फिर BSF में गए थे, उसमें भी छोटे छोटे मिस्टेक कारण नहीं हुआ, फिजिकल मेडिकल सब हो जाता था, बाद में रिटर्न टेस्ट में फेल हो जाते थे। प्राइवेट जॉब में जब करने के गए, वहाँ एक भाई मुझे संपर्क में आया, वो केरल का भाई था, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संपर्क में 2 महीने से आया हुआ था।
0: ये कौन सी साल की बात है?
1: ये 1990 की बात है,
0: 1990 में
1: के बात है। फिर मुझे उन्होंने ये कहा, आपको मैं एक जगह में लेके जाऊंगा, वहाँ जाएंगे तो आप हमेशा जीवन में खुशी में रहेंगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और कभी टेंशन नहीं रहेगा जीवन में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बात सुन करके, जीवन में और क्या चाहिए, पहले भी वही संकल्प था। तो मैंने सोचा कहाँ जाने में आऊँगा, ऐसे बोला। तो मैं कभी जाने से पहले ब्रह्म कुमारी का नाम भी नहीं सुना था। जब ये भाई ने मुझे लेके गया ब्रह्म कुमारी सेंटर पे, तो वहाँ जाते ही मैंने दीदी को देखा, सफ़ेद वस्त्रधर दीदी को देखा, देखते ही मुझे ऐसा लगा ये अपना ही है, अपनापन महसूस हुई। मैंने सोचा पहले जब बचपन में थे मैंने क्रिश्चियंस को नंस को अगर देखते थे, तो मैंने सोचा क्रिश्चियंस में ऐसे नंस हो सकते हैं, हमारा हिंदू धर्म में क्यों नहीं हो सकते हैं, मेरे अंदर से ऐसे संकल्प चल रहा था। फिर वही मैंने सफ़ेद वस्त्रधारी को ब्रह्म कुमारी सेंटर में आके देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनापन महसूस हुई। उसके बाद मुझे पहले लेसन ज्ञान के बारे में हमें बताया है।
0: जब आपको ये राजयोग मेडिटेशन परमात्मा का ज्ञान जो ब्रह्म कुमारी से मिला है, उसमें कौन सी बात ऐसी थी जिससे आपको ये निश्चय हुआ कि यही सत्य ज्ञान है, यही चीज है जिसको मैं ढूंढ रहा था?
1: तो जब बचपन में मुझे भक्ति में कोई इतना रस नहीं थी, मैंने अंदर से सोच रहा था कोई शक्ति है दुनिया में, क्योंकि इसलिए तो दुनिया में लोग भक्ति मार्ग में मंदिर मंदिर भटकते रहते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो कुछ मन्नत मानते हैं, तो कुछ कईयों को सिद्ध हो जाता है, तो कुछ शक्ति होगा। और भगवान का नाम तो हमने भक्ति में तो सुना ही है, भगवान एक ही है, ये तो ना पता था। अनेक भगवान तो नहीं है, भगवान तो एक ही होंगे। भगवान का नाम बोलते हम ऊपर की ओर देखते हैं, लेकिन एक तरफ तो दुनिया में मंदिर मंदिर भी भटकते रहते हैं, लेकिन कौन सी भगवान है, सच्चा है, किसको हम पूजा करना है, अंदर से वो एक तड़फना थी, एक खोज थी, कोई सच कोई हो गए ऐसा सोच करके। फिर मैंने जब ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया तो मुझे कोर्स के लिए जो बेटा आया था, पहले खुद को परिचय मिले, उसमें मुझे संतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, आत्मा ये प्रकृति के बीच में बैठ करके अंकों द्वारा देखेगा, मुख द्वारा बात करेगा, कानों द्वारा सुनेगा, हाथों द्वारा काम करेगा, पैरों द्वारा चलेगा, ये एक चैतन्य शक्ति है, वो आप है। मैंने सोचा ये तो बहुत इतना अच्छा ईजी ज्ञान है, हमें स्कूल कॉलेज में कोई बताया नहीं, टीचर्स लोग ने तो हम शरीर के बारे में तो सारा ज्ञान बता देते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह बता देते, लेकिन शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा है इसके बारे में मुझे पहले बार मैंने सुना था। मुझे पहले सुनते ही मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी।
0: तो ये आपने कोर्स भी किया है और उस ज्ञान का अभ्यास करने लगे हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे अभी मेरा जीवन समर्पित करना है, और वो क्या मोड था, आप अपनी लाइफ को क्यों इस परमात्मा की कार्य के लिए समर्पित किए हैं?
1: जैसे बचपन मेरे को जो आर्मी में जाने का जो अंदर से दो तड़पन थी नहीं, तो उसका मुझे जैसे वो हम सोच रहे थे भारत देश का सेवा करेंगे, सोशल सर्विस करेंगे, मुझे लौकिक घर में नहीं रहना है, घर से बाहर जा करके सोशल सर्विस करना है, देश का सेवा करना है, ऐसे अंदर से दो संकल्प है ना, उसके अनुसार मुझे एक समर्पण भावना अंदर से थी। तो मैंने सोचा आर्मी में जाएंगे तो भी एक समर्पण हो जाएंगे, देश के लिए समर्पण हो जाएंगे, ऐसे मुझे अंदर संकल्प था, तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मेरे को अंदर से ऐसा लगा अभी तो हम तो देश का सेवा कर रहे थे, तो मुझे ये पता चला वो ईश्वरी विश्वविद्यालय पूरा दुनिया में है, केवल भारत देश में नहीं है, क्यों दुनिया में 140 कंट्री में है, तो इसलिए हम लोग केवल भारत का सेवा नहीं करना है, पूरा विश्व का सेवा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जिस्मानी मिलिट्री वाले नहीं है अभी, हम लोग अभी रूहानी मिलिट्री वाले, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने सोचा अभी इसमें समर्पित होकर के इस ज्ञान में आगे बढ़ करके विश्व का सेवा करेंगे, ऐसे अंदर से मुझे दृढ़ संकल्प किया था मैंने।
0: जी, ये जो आप 1995 से ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं, तो अभी आप क्या सेवाएं करते हैं, क्या जिम्मेवारियां हैं?
1: 90 से 95 तक हमने जो 5 साल के अंदर माउंट आबू में 3 बार विजिट दिया थे, एक बार क्या हुआ 1994 में हमारा मैंगलोर सेंटर विजिट देने के लिए आए थे, तो मृत्युंजय भाई वरिष्ठ भाई उन्होंने मुझे देख करके ये कहा आपको कोई बंधन नहीं है ना, आप कुमार है ना, आप माउंट आबू आ सकते हैं तो हमारे साथ तो आओ जाओ, आपको मैं सेवा दूंगा, ऐसे मुझे कहा था। उस समय तुरंत मेरे को अंदर से फ्लैश हुआ जो मेरे को संकल्प था, मैंने जो समर्पित होने के लिए इसलिए भगवान ने इनको भेजा होगा, अभी मुझे माउंट आबू जा करके सेवा में उपस्थित होना है, अंदर से मेरे को एक प्रेरणा आ गई, तो इसलिए मैंने तुरंत 94 में वहाँ से माउंट आबू आ गया। माउंट आबू आने के बाद मुझे मृत्युंजय भाई साहब ने एजुकेशन विंग में उनके साथ मुझे सेवा दिया। मैंने सोचा माउंट आबू जाएं तो कुछ भी सेवा मैं कर सकता हूँ, मेरे को ऐसे कोई सेलेक्टेड सेवा नहीं है, भगवान की सेवा है, कुछ भी करो अमरली उसमें भागिया बन जाता है। आते मुझे उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए सेवा दिया उसी समय 1994 में। उसके बाद मैं उस समय तो माउंट आबू में तो हमारा जो आश्रम में बहुत गाड़ियाँ वगैरह बहुत कम थे, तो उस समय भाई साहब के पास एक फिएट कार था। उस समय जो माउंट आबू जो हमारा ज्ञान सरोवर कैंपस है उसमें वैरायटी विंग्स का हमारा कॉन्फ्रेंस बहुत होता था, हर हफ्ते में दो कॉन्फ्रेंस होता था। उस समय MLA MPs गवर्नर्स मिनिस्टर को इन्विटेशन देने के लिए मृत्युंजय भाई निमित्त बनते थे, उनको मिलने के लिए उनको इन्विटेशन देने के लिए जयपुर जाना होता था, दिल्ली जाना होता था। उस समय फ्लाइट का व्यवस्था बहुत कम थी और ट्रेन भी मीटर गेज थी, ट्रेन की फैसिलिटी नहीं था, दिल्ली जयपुर जाना हो तो हम क्या करते थे बाई रोड चले जाते थे। उस समय अच्छा गाड़ी भी नहीं होते थे, फिएट कार थे, अम्बेसडर होते थे, उसी कार लेकर के हम लोग दिल्ली जयपुर जा करके मिनिस्टर्स को MLA MPs को गवर्नर को निमंत्रण देके आते थे। तो मैंने पहला बार माउंट आबू आके यहाँ गाड़ी चलाना शुरू किया।
0: जी, तो इस यात्रा में आपने क्या क्या सीखा है, जैसे एक आध्यात्मिक जीवन के लिए आप आए हैं, स्थूल कार्य तो हर कोई करना ही है, करते ही है, लेकिन आपकी स्व उन्नति में आपने ऐसी क्या चीजें सीखी है, क्या बदलाव आप देखते हैं, इस आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के कर।
1: जैसे मेरा यही लक्ष्य था, जब इस मार्ग में चलो तो मैं इस मार्ग के जो लक्ष्य है उसको पकड़ के चलना है। कार्य तो हर कोई व्यक्ति को जब तक जीना है तो तब तक कुछ न कुछ शरीर के अंदर काम करना ही है, इसलिए वो कर्म से हम रह नहीं सकते बिना कर्म से। तो इसलिए वो अंदर से सोच रहे तो कुछ भी कर्म करे लेकिन हमारा कर्म श्रेष्ठ हो जाए, उस कर्म के अंदर हमारा योग रहे, तो ऐसे अंदर से एक संकल्प थी। इसलिए मैंने क्या किया, जैसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नियम है जो कर्म योग करने का, हर कोई कर्म करते समय भगवान को याद में करना है, मुझे ये पहले कोर्स में बताया हुआ था, वो हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। इसलिए मैंने महात्मा के साथ याद में रह करके कर्म करने के लिए मैंने अंदर से स्टार्टिंग से कोशिश किया था। इसलिए हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुझे ये पता चला, सुबह से भी अमृत वेला होता है, तो अमृत वेला भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए बहुत सहज समय होता है, ईजिली कनेक्शन मिल जाती है। इसलिए मैंने जब से ये 7 डेज कोर्स हुआ तब से मैंने सुबह सुबह 4 बजे से 5 बजे तक जो अमृत वेला का मेडिटेशन होता है ना, उस मेडिटेशन को मैंने पक्का करा दिया था स्टार्टिंग से। तो वो मुझे बहुत अंदर से बल मिल गई, और जो भगवान की जो महावाक्य है जो उसको मुरली कहते हैं उसमें भी मैंने पक्का कर लिया था, कुछ भी हो जाए सुबह अमृत वेला उठना है और मुरली क्लास सुनना है और सारे दिन में जो भी सेवा मिले वो भगवान के याद में करना है। ये अंदर से मैंने दृढ़ संकल्प किया था, कहीं भी रहे, भले माउंट आबू में रहे, बाहर जाए, तो गाड़ी लेके जावे, तो भी मुझे भगवान को याद में सेवा करना है। अंदर से एक संकल्प करके मैंने सेवा कर रहा था, ये अंदर से मुझे बहुत बल मिल गई और एकाग्रता भी हमारा अंदर बढ़ते गया। इसलिए कोई भी दिन में जो भी हमारा विघ्न रूप बनते वो भी विघ्न से मुक्त होते थे। इसलिए मुझे ये राजा राजयोग जाना, ये अंदर से बहुत एक अच्छा लगा मेरे को, इसमें एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। तो इसके कारण से मैंने कोई भी कर्म करे भगवान की याद में करने के लिए शुरू करते थे स्टार्टिंग से। तो जब से माउंट आबू आया तब से मैंने इसको चालू रखा था, जैसे सुबह अमृत वेले उठना और मुरली क्लास सुनना है और सारे दिन जो भी हमें सेवा मिले उसको हम एक्यूरेट होकर के भगवान की याद में करना। इसमें अंदर हमें दिन में भले आप 500-600 किलोमीटर भी गाड़ी चलाए उसमें हमें थकान महसूस नहीं होता है, उसमें एनर्जी मिला हुआ रहता है, क्योंकि हम हर कर्म को भगवान को अर्पण करके हम कार्य शुरू करते हैं, तो हमें वो जर्नी पता नहीं चलता है, बहुत ईजी हो जाता है, जैसे ऐसे लगता है हम घर में बैठे बैठे हैं, बैठे हुए ऐसे फीलिंग होता है।
0: अगर आप अपनी पूरी जीवन को समराइज करते हुए अगर एक शब्द में आप कहना चाहते हैं, आप अपने जीवन को क्या कहेंगे?
1: क्योंकि जो समर्पित जीवन है ना, ये हमारा जीवन एक अच्छा जीवन जीने का एक कला हमें यहाँ मिल गया है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस आध्यात्मिक ज्ञान को पकड़ के चलने से जीवन एक ऊंची स्थिति में जा सकते हैं, जीवन में कोई भी प्रकार का टेंशन में आने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमें एक दिशा मिल गया ना, एक लक्ष्य मिलेगा, जीवन का लक्ष्य मिल गए, तो वो लक्ष्य के आधार से हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान को पकड़ के आगे चलने से हमारा जीवन सफल होगा। इसमें कोई भी प्रकार का हमारे लिए नुकसान नहीं है, हमारा जीवन एकदम सुंदर जीवन होगा, एक दैवी गुण अंदर से बढ़ते जाएंगे, हमारा इस जो जन्म है वो हमारा जन्म सफल हो जाएगा।
0: बहुत सुंदर भाई जी, आपने इतनी सुंदर जर्नी को संक्षिप्त में बताया। भाई जी, जैसे आपने कहा कि कोई भी सेवा मिले तो आप करने के लिए तैयार थे, और आपको यहाँ पे ड्राइविंग करने की जो सेवा मिली है, और जैसे आपने कहा कि कितना भी थकावट होता है, योग मतलब परमात्मा की याद में आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप कितना भी लंबा सफ़र है आपको कोई मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन 3 दशकों की आपकी इस यात्रा में कभी कुछ तो ऐसी बातें हुई होगी जो, क्योंकि सड़क पे जब चलते हैं हमेशा हम गलत है जरूरी नहीं है, हम जब सही भी जा रहे होते सामने से कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते हैं, तो कभी आपको ऐसी कोई परिस्थिति आई सामने और आपने इस आध्यात्मिक पढ़ाई या फिर इससे जो आपने सीखा है उससे आपने इस चीज़ को पार किया है?
1: तो एक अच्छी घटना है मेरे से हुई थी
0: जी,
1: तो आपको मैं सामने करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, अहमदाबाद से मैं अबरोड आ रहे थे, तो वहाँ से 3 घंटा लगता है अहमदाबाद से अबरोड आने के लिए। बीच में क्या हुआ, रात को हम ड्राइविंग कर रहे थे, तो भाई साहब भी हमारे बाजू में बैठे थे, तो रात को करीब 11:30 बजे थी, तो उसी दिन कोई ज़रूरी काम थी तो हमें वहाँ रुकना ना पड़ा, इसलिए रात को हम जर्नी करके आ रहे थे। तो क्या हुआ, 1.5-1.5 घंटा जर्नी हो चुका था, उसके बाद क्या हुआ, हमारा हाईवे पे गाड़ी में बहुत कम गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाते हैं, तो क्या हुआ हम आगे चल रहे थे तो पीछे से एक कार वाले बहुत देर से हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, तो तो हमने सोचा इनको आगे जाने दो बोल करके उनको मैंने साइड दिया था। फिर भी वो थोड़ा देर आगे जा करके फिर वापस गाड़ी स्लो करके कभी राइट में कभी लेफ्ट में आ रहे थे। कम से कम 5 किलोमीटर तक ऐसे आ रहा था। तो उसके बाद एक स्पीड ब्रेकर आया रोड पे, तो सिद्धपुर के पास में ही, तो मैंने गाड़ी को एकदम धीमे किया। तब तक ये गाड़ी पीछे जो आ रहे थे तो अचानक मेरा बाजू में आया, बाजू में आया तो मेरे को गाड़ी को रोकने के लिए कोशिश कर रहे। तो मैंने सोचा ये कोई पहचाने वाला तो है नहीं, कोई अनजान व्यक्ति है, अंदर तो 4 लोग बैठे हुए थे। मैंने ज़बरदस्ती गाड़ी को रोक, मैं सोचा उनका कुछ रास्ता भूल गया होगा, कुछ रास्ता पूछने के लिए आ रहा होगा, ऐसे सोच करके मैंने गाड़ी को थोड़ा साइड में स्टॉप किया। तो उस समय भाई साहब बाजू में बैठे हुए थे, लेकिन भाई साहब थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। 5 मीटर दूर में वो कार स्टॉप किया था। फिर ड्राइवर उतर के मेरे पास आ करके पूछता है, आपके वजह से पीछे एक कार नीचे गड्ढे में गया, अब गाड़ी के क्यों नहीं रोका, हम कब से आपको रोकने के लिए बोल रहे हैं, उसने मुझे कहा। ऐसे बोलते समय मुझे लगा ये तो ऐसे कुछ घटना हुआ ही नहीं है, हमारा गाड़ी को ऐसे नीचे गड्ढे में गाड़ी कैसे जाएगा, हमारा गाड़ी टच भी नहीं हुआ, ऐसे इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, कुछ उनको हमारे से कुछ चोरी करना होगा, इसलिए उन्होंने ऐसे हमको बहानाबाजी कर रहे हैं, सोच करके मैं अंदर से संकल्प आया। फिर मैंने ग्लास आधा नीचे उतरा हुआ था। फिर ऐसे उन्होंने कहने के बाद उन्होंने मुझे क्या किया, अब गाड़ी से उतरो, अब ज़्यादा बात नहीं करो, अब मैं शूट करूँगा बोल करके उनके जोब में पिस्तौल थे, वो पिस्तौल ले करके मेरा कान के पास ऐसे टिका दिया था। उस समय मैंने जो ड्राइविंग करते थे तो मैं मेडिटेशन अवस्था में थे, अंदर से कोई कन्फ्यूज नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, कुछ नहीं थी, मेरा अंदर से एकाग्रता भी बहुत अच्छा था। तो मैं मेडिटेशन करके हम अहमदाबाद से निकले हुए थे, तो दिन में रेस्ट भी मैं अच्छा किया हुआ था, कोई थकान भी नहीं थी, मैं एक्टिव होके गाड़ी चला रहे थे। उसी समय फिर इन्होंने ये ऐसे हमारे गाड़ी को रोका था, मेरे को पिस्तौल निकाल के मेरे कान के पास रखा। उसके बाद फिर मैंने भी डरा नहीं थी, मैं मेडिटेशन अवस्था में था, तो ये तो हमारा जैसे भाई है, ये क्या कर सकता है, हमारे पास ऐसा कुछ हुआ नहीं है घटना, या ऐसे डराने के लिए ऐसे दिखाएगा, सोच करके मैंने अंदर से कॉन्फिडेंस होकर के बैठे हुए थे। तो उसके बाद फिर उसमें अंदर 4 लोग थे, तो एक एक करके मेरे को गाड़ी से बाहर उतरने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो मैंने अंदर से संकल्प आया, गाड़ी से उतरेंगे कुछ कर डालेंगे, इसलिए मुझे गाड़ी से कुछ भी हो जाए गाड़ी से मैं उतरना नहीं है, क्योंकि बाजू में भाई साहब बैठे थे, ये कुछ करके मुझे कुछ करके फिर गाड़ी में बैठ के गाड़ी ले चले जाएंगे, भाई साहब भी कुछ कर सकते हैं, तो बड़ा दुर्घटना हो जाएगी, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे गाड़ी से उतरना नहीं है। अंदर से मेरे को भगवान का टचिंग हो रहा था, लेकिन मेरा लाइन क्लियर थी, कोई डर नहीं था, अंदर से मैंने उनको देख डरा भी नहीं था, मैं साक्षी वगैरह अपना भाई का समझ करके उनको देखा हुआ था। उस समय बाद में तीसरा व्यक्ति आकर के बोलते हैं, अब गाड़ी से उतरो नहीं तो गाड़ी बंद करो बोल करके गाड़ी बंद करके गाड़ी की चाबी अपने पास ले लिया। गाड़ी के अंदर हम दोनों बैठे हुए थे, गाड़ी बंद हो गई, फिर भाई साहब की नींद खुल गई। तब तक भाई नींद खुल गया तो जब इंजन बंद हो गए, तो इंजन बंद होने के बाद फिर बाद में वो लोगों ने भाई साहब को देख लिया, गाड़ी की चाबी तो ऑलरेडी ले चुके थे, हम गाड़ी मूव नहीं कर सकते थे। उसके बाद क्या किया, वो लोगों ने हमारा गाड़ी के पीछे जा करके आसमानी को और फायरिंग किया। तो उस समय भाई साहब उनको देखा तो भाई साहब पता चला ये लोग ऑलरेडी चोर लोग हैं, ये कुछ लूटने के लिए आए हैं, हमें किसी की हेल्प लेना पड़ेगा बोल करके भाई साहब ने क्या किया, रोड पे उतर डोर ओपन करके रोड पे आया। रोड पे आते समय पीछे से एक ट्रक वाले आए, उसको देख के भाई साहब उसको हेल्प लेने के लिए उनको रोकने के लिए बोला था। उस समय ट्रक वाला नज़दीक आया, आकर के हमें भी देखा, और वो लोग पीछे गाड़ी के पीछे 3 लोग थे, तो ट्रक वाले को समझ में नहीं आया ये कोई आरटीओ वाले चेक करने के लिए आया होगा, सोच करके ये लोग सीधा चले गए, कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद फिर बाद में भाई साहब क्या किया, पीछे मोड़ के देखा तो एक जीप वाले आए थे, वो हमारे गाड़ी के सामने खड़ा किया था। उस समय फिर भाई साहब इधर से उनके पास जाके बता रहे थे, ऐसे ऐसे हम लोग अहमदाबाद से आ रहे थे, हमारे सामने ये लोग गाड़ी रोक करके आसमानी का और फायरिंग किया, शायद कुछ लूटने के लिए आ रहे होगा, सोच करके समाचार बता रहे थे। मैंने अंदर से गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, सीट बेल्ट पहना हुआ था। उसके बाद ये लोगों ने क्या किया, इधर से मेरे को फायरिंग करके अपना गाड़ी बैठ कर चले गया। जैसे फायरिंग हुआ तो मेरा कान के पास ऐसे लगता था कोई इधर से कोई पत्थर फेंका, ऐसे फीलिंग हुआ, तो फायरिंग का आवाज़ भी सुनाई मुझे दिया था, तो यहाँ लगा तो मेरे को लगा तो उन्होंने फायरिंग किया ऐसा लग रहा था। बाद में जैसे हाथ पकड़ के ऐसे देखा कान के पास, धीरे धीरे कोन आना शुरू हो गई थी। फिर बाद में जब जीप के साथ जो भाई साहब बात कर रहे थे, वो फिर बाद में भाई साहब मैं जो मोड़ के देखा तो मैंने हाथ पकड़ के मेरा सिर नीचे ऐसे होकर के मैं बैठा हुआ था। उसी समय फिर जीप वाला भी पूछा, ये लोग जब गए थे ये लोग फायरिंग किया ना बोलकर, मैं ढूंढ करके पूछ करके आता हूँ बोल कर गए, वापिस नहीं आया जीप वाला। उसके बाद मुझे लगा तो इंजर हो गया, अभी 2200 को लगा अभी खून निकल रहा है, अभी ऑफिस हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाना हो तो कहाँ जाना है, क्या है कुछ पता नहीं है भाई साहब को। मेरे को जैसे खून आ रहा था कान के पास, जैसे मुंह में जैसे पानी भर हुआ था फीलिंग हो रहा था। जैसे भाई साहब नज़दीक आया, भाई साहब को मैंने चलो अभी हॉस्पिटल जाना तो वो एम्बुलेंस नंबर बताना पड़ेगा, पुलिस का नंबर बताना पड़ेगा बोल करके मैंने भाई साहब को पुलिस को नंबर बताया, 100 नंबर में करो पुलिस आ जाएंगे और 108 नंबर करो तो एम्बुलेंस आ जाएंगे। ऐसे मैंने भाई साहब बोलने के लिए जैसे मुंह ओपन किया तो मुंह के अंदर जो पानी समझा था वो खून भरा हुआ था मुंह के अंदर, वो क्या हुआ जैसे स्प्रे हो गया पूरा ऐसे सामने से। फिर भाई साहब उसको देखते बहुत घबराहट हो गया, भाई साहब को ये क्या हो गया अभी तो। फिर मैंने अंदर से संकल्प किया अभी कुछ ही वजह मुझे फायरिंग तो हुआ है तो आत्मा तो विनाश नहीं होगा, शरीर तो फायरिंग किया तो शरीर को लगा है ना, लेकिन आत्मा जरा हमारा अविनाशी है, मेरे शरीर के अंदर पार्ट बजाने वाले आत्मा है, तो आत्मा इस शरीर छोड़ेंगे तो अगले जन्म में अच्छा पार्ट बजाएंगे। अंदर से मेरे को ये संकल्प तोड़ करके अंदर से कोई घबराहट नहीं थी, मैं आराम से शांति से बैठा हुआ था। फिर बाद में भाई साहब ने एम्बुलेंस को और को हॉस्पिटल को फोन करने के लिए बोला, पुलिस को फोन किया तो 20 मिनट में एम्बुलेंस भी आ गया और पुलिस भी आ गई। तब तक मैंने अंदर से मेरा पूरा बेहोश नहीं हुआ था लेकिन खून नाक से और मुख से निकल रही थी, तो उसको फिर मैंने स्टेबल करके माइंड स्टेबल करके अंदर से कोई व्यर्थ संकल्प ही नहीं आया और एकाग्रत होकर के मैं यौगिक तो होकर के भगवान के याद में भगवान के साथ मैं बिंदु बन करके भगवान के साथ में बैठने के लिए अभ्यास किया। इतना अनुभव करते 20 मिनट हुआ, तब तक एम्बुलेंस भी आ गए पुलिस भी आ गए। तो उसके बाद फिर मुझे एम्बुलेंस में बिठा करके फिर नज़दीक वाला हॉस्पिटल में लेके गए। फिर वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने बोला आपको ये ज़्यादा इंजर हो गए होगा इसलिए हमारे पास स्कैन सिस्टम नहीं है, आपको वापिस मेसाणा में जाना है, वहाँ जाएंगे तो आपका इलाज हो सकता है ऐसे बोला। तब तक पुलिस भी आए थे, एम्बुलेंस भी साथ में, एम्बुलेंस में बिठा करके मुझे लेके गए थे। गाड़ी तो रोड पे खड़ी थी, गाड़ी खोलना पड़ा था, चाबी नहीं था हमारे पास। फिर मैंने भाई साहब को ये भी बोला था गाड़ी हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, चाबी हमारे पास नहीं है, वो लोग वापिस आ करके गाड़ी भी ले जा सकता है, इसलिए पुलिस को बोलना गाड़ी के पास रुकने के लिए। मैंने उतना भी कॉन्शियस मेरा अच्छे थी क्योंकि मैं यौगिक तो कह रहा है ना, अंदर से कन्विंस नहीं थी, कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं था और बेहोश भी नहीं हुआ था। मैं साक्षी होकर के मेरा खून निकलते हुए बॉडी को देख रहा था साक्षी होकर के। उसी समय फिर बाद में भाई साहब पुलिस को गाड़ी के पास रोकने के लिए बोला, फिर एक पुलिस गाड़ी के पास रुके थे। तब तक भाई साहब अहमदाबाद में हमारे हेडक्वार्टर में फ़ोन करके वहाँ नज़दीक वाला सेंटर वाले को फ़ोन करने के लिए बोला, वहाँ से दो भाई लोग भी टूर लेके आए थे और एक भाई और एक पुलिस गाड़ी के पास रुके थे और एक भाई हमारा साथ एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में आए थे। फिर बाद में उस हॉस्पिटल में वहाँ से कुछ ने एक्शन नहीं लिया डॉक्टर ने, बाद में डॉक्टर बोला अभी वापस मेसाणा में जाना है, वहाँ आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर पीछे से पुलिस वैन भी आए थे, हम भी एम्बुलेंस में बैठ करके मेसाणा में गए। पेशेंट में जाते वो रोटरी हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ जाने के बाद में पुलिस बोला ये तो रोटरी हॉस्पिटल है, यहाँ कोई आपका इलाज हो नहीं सकता, यहाँ स्कैनिंग सिस्टम नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करो, यह इमरजेंसी केस है, इसलिए आप अहमदाबाद ले चलो। फिर वहाँ से फिर अहमदाबाद एक घंटा जर्नी है मेहसाणा से अहमदाबाद जाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल में, फिर वहाँ हम गए थे। वहाँ जाते समय फिर बाद में लग रहा था मुझे अब एक घंटा जर्नी में कुछ भी हो सकता है, शरीर भी छूट सकता है, इसलिए मुझे भगवान के याद में रहना है, अंतमति स्वगति ऐसा सोच करके भगवान के याद में एक हाथ तो मेरा कान के पास ही, मेरे अंदर ऐसा लगता है कान के अंदर खून जा रहा है, उसको बंद करके और मैं रोकूं बोल करके एक हाथ में ऐसे बंद करके मैं बैठा हुआ था। फिर बाद में भाई साहब एम्बुलेंस में साथ में बैठे हुए थे, सब जगह में फ़ोन करके मैसेज वगैरह बता दिया था ऐसे ऐसे हुआ है बोल करके। फिर बाद में अहमदाबाद में अपोलो हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हुआ, इमरजेंसी इलाज हुआ, अच्छा हुआ, मेरे को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ और लास्ट तक भी बेहोश नहीं हुआ था, मैं फुल कॉन्शियस में हूँ, लेकिन सारा हिस्ट्री मुझे पता है क्या क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, कितना बजे हुआ, मेरा अंदर साथ में कितना लोग थे, सब मुझे सब याद रहता, साथ में याद रहा। फिर बाद में 8 दिन का हॉस्पिटल का सफ़र हुआ, एक ऑपरेशन अच्छी हुई। वो जी ड्रामा अनुसार क्या हुआ, जो कान के पास जो बुलेट जो घुसी थी वो मुँह के अंदर आकर के लेफ्ट साइड में गले में फंसा हुआ था, तो मुझे हॉस्पिटल जाने के बाद स्कैन करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया आपको यहाँ देखो गोली फंसा हुआ है, क्योंकि मुझे तब तक कुछ पता नहीं था, एम्बुलेंस में मैं सोते ही जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था, बाद में हल्का सा दर्द जैसा फीलिंग हो रही थी। फिर बाद में डॉक्टर बताने के बाद फिर बाद में स्कैन पता चला आपको गोली यहाँ फंसी हुई है, अभी उसको निकालना है। फिर बाद में स्कैनिंग पूरा होने के बाद फिर बाद में डॉक्टर ने बताया अभी आपका ब्लड खून बहुत लॉस हो चुके हैं, कम से कम इतना 3 घंटा जर्नी में कम से कम 3 लीटर खून निकल गया मेरा बॉडी से, तो मेरे को बॉडी गाड़ी से एम्बुलेंस नीचे उतरने के लिए एनर्जी नहीं थी, तो मेरे को हाथ पकड़ के फिर एम्बुलेंस में इसमें स्ट्रेचर में बिठा करके ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे। तो पहले स्कैनिंग वगैरह किया था, उसके बाद मेरे को स्टेबल करके आईसीयू में भर्ती करके, फिर उस समय डॉक्टर भी आए थे, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी आए थे, फिर नेक्स्ट डे तक के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि खून वगैरह चढ़ाना है इसलिए आपको कल ऑपरेशन होगा बोल करके। फिर बाद में ब्लड वगैरह खून वगैरह चढ़ा दिया था, नेक्स्ट डे 11 बजे से 1 बजे तक ऑपरेशन हुआ, उसमें स्टेबल आ गई। फिर बाद में वापस 4 दिन आईसीयू में थे और 4 दिन वार्ड में आ गया, 8 दिन में डिस्चार्ज हो गई और धीरे धीरे रिकवरी होते गए। लेकिन मेरा जैसे गोली कान के पास जो घुसी थी ना, यहाँ भी ऑपरेशन कर मतलब जो हड्डियाँ है वो थोड़ा डैमेज हो गई थी, उसको भी ज्वाइंट करके ये स्टिच किया था। अब लेफ्ट साइड में जो गले के पास जी जो बुलेट थी उसको निकलने के लिए ओपन करना पड़ा, उसको ओपन करके वहाँ भी स्टिच करके रखा था। इसके कारण इसको हीलिंग के लिए मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने तक मुंह बंद करके रखा था, 1.5 महीने ओनली जूस पे मैं रहा और जूस पीते रहा और मेरा हीलिंग अच्छा हो गया। फिर बाद में जूस पीने के साथ साथ में टैबलेट भी देते थे, वो टैबलेट को खाना पड़ता था लेकिन मुझे मुँह तो ओपन नहीं करना है तो जूस के साथ टैबलेट को क्रश करके देते थे, मैं वो भी भगवान के याद में पीता था तो मेरे को ईजिली अंदर चले जाती थी, तो इसलिए मेरा हीलिंग जल्दी हो गया। सब कुछ जो भी हो इसका सार यही है, एक तो प्लस पॉइंट है मैं गाड़ी से उतरा नहीं है, वो दुर्घटना बड़ा दुर्घटना से बच गई, और दूसरा मेरा हीलिंग के कारण यही है, मैं भगवान के याद से ये टैबलेट को मैं पीता था इसलिए मेरे को हीलिंग जल्दी हो गई। मेरे को इसके अंदर का कोई तकलीफ ही मेरे को महसूस नहीं हुई, कोई दर्द का महसूस नहीं हुआ। हॉस्पिटल में मैं ऐसे 8 दिन रहा, मैं ऐसा लगता है मैं इस शरीर से नहीं रहा हूँ, मैं वतन में उड़ रहा हूँ, ऐसे जैसे फरिश्ते जैसे उड़ रहा हूँ। जो भी हमारा सेवा करने के लिए नर्सेस लोग आते थे, ऐसा लगता था मेरे को ये फरिश्ते लोग मेरा सेवा करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे भगवान ने मुझे भेजा है, ऐसे अंदर से मेरा संकल्प होता था। बाकी सबको भगवान का संदेश सबको मैंने बांटा था हॉस्पिटल में, सब लोग वंडर कर रहे थे ये तो पेशेंट है ये तो गिफ्ट बांट रहा है, ऐसे उनको अंदर से ये होता था। मैंने सबको ये कहता था भगवान ने देखो मैं भगवान में याद में था इसलिए भगवान ने मुझे बचाया है, मेडिटेशन अवस्था में थे इसलिए आप लोग भी इस ज्ञान को प्राप्त कर लो, आपका जीवन भी ऐसे निडर होकर के जीवन में जो भी विघ्न आएगा वो विघ्न से पार हो सकते हैं, ऐसे मैंने सबको संदेश देता था।
0: सच ए वंडरफुल स्टोरी, कितनी बड़ी परिस्थिति है लेकिन एक परमात्मा की याद और उनके प्रति जो विश्वास है और वो जो शक्ति उससे जो मिलती है, कैसे हम अपने जीवन में हर परिस्थिति को पार करते हैं। कई बार हम जीवन में जब विकट परिस्थिति आते हैं भगवान को कोसते हैं कि तूने मेरे को ही ये क्यों परिस्थिति दिया है, लेकिन वही जगह पे भगवान तू था इसलिए मैं बहुत कुछ होने से थोड़े समय में बच गया। कितना अंतर है इस आलोचना में। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, कैसे विषम परिस्थिति में सकारात्मकता के साथ हम अपने जीवन को फिर से एक नॉर्मल लाइफ में लेके आ सकते हैं। अब अपने जीवन के उदाहरण उनसे हम सबके सामने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
1: थैंक यू।
0: जब परमात्मा को हम अपने जीवन समर्पित करते हैं हमारा जीवन कितना सुखमय और कितना सुंदर कितना सरल सहज बन जाता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई थकान नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है और संतुष्टता से ही भरपूर है हमारा जीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आज आपकी जीवन से हमें ये जो बातें सीखने को मिली हैं, शुक्रिया आपको। दोस्तों यहीं पे आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और उसमें घुली होती है फूलों की महक, धीमी धीमी बारिश, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और किशोर कुमार के गाने, ऐसे पल जिंदगी में सुकून देते हैं। वैसे सुकून के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन राठौड़ परिवार और सुकून चलिए देखते हैं कि राठौड़ परिवार में आज कौन सी हवा चल रही है।
1: ओ प्राण गटक्कम महोदय, कृपया प्रकट हो जाइए।
2: ये क्या बोले जा रही है शांति, किसे बुला रही है?
1: किशन जी महाराज को मम्मी, केवल नाम बुलाने से ये प्रकट कहाँ होते हैं?
2: ओहो, तुम दोनों भाई बहन पता नहीं कब बड़े होगे।
3: अरे आ गया दीदी, क्या हुआ, इतना क्यों गर्म हो रही हो?
4: आज जीजा जी आने वाले हैं, आजादी छीनने वाली है।
5: अरे रेस्पेक्ट से बात करो, शांति तुम्हारी छोटी बहन है रागनी।
1: थैंक यू भैया, आप मेरे अच्छे भाई हो।
5: वैसे आजादी और शांति तो जमाई सा की शादी के दिन ही छिन गई थी।
1: क्या भैया, आप भी जा रही हूँ मैं।
2: ये खीखी खीखी बाद में करते रहना तुम लोग, अभी जमाई सा शांति को लेने आ रहे हैं। चलो ये सब साफ करो। और ये राजकुमारी कहाँ गई? राजकुमारी कुछ खाने का अच्छा बना ले आज, मीठा भी देख दो तरह का होना चाहिए।
6: हाँ हाँ मासा, मैं ना गेहूँ के तेल में तेल डाल के भुने हुए संतरे के घी वाले लड्डू बना लेती हूँ।
1: गेहूँ का तेल, भुने हुए संतरे?
5: तेल से घी वाले लड्डू कैसे बनेंगे राजकुमारी?
2: अरे माता जी, दुनिया में कितनी महान राजकुमारियाँ हुई हैं, हमको यही वाली राजकुमारी देनी थी तुमको।
6: कुछ कहा मासा आपने?
5: माँ कह रही है कि राजकुमारी कोई पुरानी डिश बनाओ ना। देखो जमाई सा पुराने है ना, तो पुरानी रेसिपी बना लो आज। ये नई रेसिपी नए जमाई सा आएंगे ना, उनके लिए बचा के रखो।
1: रागिनी दीदी, तुम्हारे होने वाले पति की तो खैर नहीं।
0: अरे अरे अरे, ये कैसी भूल हो गई मुझसे, माफ करिएगा। राठौड़ परिवार के घोंसले के सबसे अनोखे पक्षी यानी जमाई जी से तो मिलवाए नहीं आपको। वैसे शादी के बाद बेटी हो जाती है पराई और दामाद होता है VIP, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप यही समझते हैं ना? लेकिन ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं बल्कि वोल्केनो इन प्रोग्रेस, जो कभी भी फट सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ बात कुछ, अब भाई राठौड़ परिवार है तो कुछ तो अलग होगा ना। तो कैसे हैं राठौड़ परिवार के जमाई सा, आइए खुद जान जाइए।
7: घड़ी का मां मासा, घड़ी का मां पापा, घड़ी का मां,
8: खड़ी गम्मा से माईसा, आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: पधारो सा, बैठिए बैठिए, थक गए होंगे आप।
1: थक क्यों गए होंगे, 15 मिनट का तो रास्ता है माँ।
2: चुप बैठ, जा पानी लेकर आ जा माईसा के लिए।
1: बैठू कि जाऊं? अच्छा अच्छा, जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। दीदी तुम्हें नहीं लगता ये दामाद लोगों को कुछ ज्यादा ही इज्जत मिलती है?
9: मुझे लगता है कि ये बहू लोगों को इज्जत कम मिलती है।
1: हाँ बात तो सही है, चलो अब पानी लेकर नहीं गई ना तो बेटी लोगों की भी इज्जत का फालूदा बना दिया जाएगा मम्मी द्वारा।
9: हाँ वैसे माँ ना कभी कभी बड़ी इक्वालिटी दिखाती है, बेटा हो या बेटी दोनों की शामत आती है।
0: हाँ भाई, आजकल इक्वालिटी के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं। लेकिन जब तक हर शहर हर गांव के घर के किचन तक इक्वालिटी नहीं पहुंचेगी तब तक बात नहीं बनने वाली। अब आप कहेंगे कि अरे भाई पुरुष भी तो खाना बनाते हैं आजकल, लेकिन पुरुष एक बार खाना बनाकर शाबाशी इस तरह पाते हैं मानो उनसे अच्छा कुक और कोई नहीं, पर महिलाएं उन्हें क्या मिलता है ये तो आप भी जानते हैं। चलिए खैर, सूरजमल यानी कि जमाई सा बैठे हैं आज राठौड़ परिवार के आंगन में। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ तो धमाका होने वाला है, आइए आइए जान लेते हैं।
8: और बताइए जमाईसा, कैसे हैं आप?
7: भाभी जी वो मैं,
10: अरे पहले कुछ खिलाओ पिलाओ फिर बातें करना।
11: हाँ हाँ जमाईसा, खाइए कुछ, ये लीजिए समोसे, लड्डू भी लीजिए।
7: भैया वो मैं
6: हाँ हाँ खाइए जमाईसा, ये मैंने नहीं बनाया है।
7: मैं कह रहा था कि
10: जमाईसा आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
7: नहीं तो
12: भैया सही कह रहे हैं, आज आप कुछ खा भी नहीं रहे।
8: अरे रे जमाईसा क्या बात है, और कुछ बना दें आपको खाना, ये पसंद नहीं आया कि माँ की याद आ गई आपको।
12: अरे आप क्यों इतना रो रहे हैं, क्या बात क्या हुई है?
13: आपने मुझे भी बताया नहीं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो?
12: बस
6: अरे जमाईसा
12: बात भी है तो बताइए हमें।
6: अरे क्या इतनी बड़ी परेशानी हो गई, रोने लगे, अरे अरे क्या हो रहा है
8: ये सब? तो
14: अरे बस
8: इस घर में,
6: हाँ इस घर में क्या?
14: चुप हो जाओ सर।
13: आपने मुझे भी नहीं बताया, क्या हुआ बोलो।
14: बस चुप हो जाओ सर। जमाई सर बताइए क्या बात।
7: बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, आपको तो पता ही है कि मैं और भैया मिलकर 10 साल से पापा का बिजनेस संभाल रहे हैं। आज तक मैंने कोशिश की है कि बिजनेस में चाहे जो हो, लेकिन उसका असर घर पर कभी नहीं पड़ना चाहिए, और बड़े भैया का सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन
10: क्या जीजाजी?
7: लेकिन इस बार बहुत बड़ा लॉस हो गया। मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन मेरे अकेले की नहीं है। काम का इतना प्रेशर था कि मैं कितने दिन से सोया भी नहीं हूं, और कुछ मामले में मेरी और भैया की सोच नहीं मिलती।
10: जमाईसा देखिए, बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है, आप परेशान ना हो।
12: हाँ, और हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, आपने पहले भी लॉस को मुनाफे में बदला है।
7: हाँ भैया, लेकिन इस बार बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है।
8: क्या बात है जमाईसा, खुल के कहिए।
15: जीजाजी, हम सब आपका अपना परिवार हैं, आप बेझिझक कहिए।
7: मैं जानता हूँ आप सभी मेरे स्वागत में बैठे हैं, ये सोचकर कि मैं शांति को घर लेने आया हूँ, लेकिन मेरे पास अभी शांति को ले जाने के लिए कोई जगह नहीं है।
3: क्या?
2: हे माता रानी, ये क्या सुन रही हूँ मैं?
7: माफ कीजिए मासा, मैंने आपको वचन दिया था कि शांति का ध्यान रखूंगा, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे अपने भैया भाभी ने आज मुझे घर से निकाल दिया है।
8: मैं तो पहले से जानती थी जमाईसा की भाभी एकदम चालाक लोमड़ी है, पूरे बिजनेस पे ताक लगाए बैठी हैं।
10: चंद्रावती, कैसे समय पर कैसी बात करनी है, कब सीखोगी तुम?
8: मैं तो बस सच बोलती हूँ, सच बोलना गुनाह है क्या?
10: चंद्रावती बस।
12: भाई साहब कोई बात नहीं, जाने दीजिए, भाभी आप भी अभी जाने दीजिए प्लीज।
6: सूरज, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं यहाँ पार्टी कर रही थी और तुम वहाँ।
12: शांति, जमाईसा, देखिए आप दोनों परेशान मत होइए, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे।
9: जीजा जी, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं देखती हूँ कैसे घर से निकालते हैं आपको।
6: दीदी, उसके लिए तो आपको टाइम मशीन चाहिए होगी ना?
9: टाइम मशीन?
6: हाँ, मतलब वो लोग जमाईसा को ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना?
8: हाँ, हमको तो पहले से
6: घर से ही निकाल दिया। ऐसा कोई करता है क्या, अपने घर से निकालते अपने भाई को? कोई क्या जमाना आ गया, ऐसे ऐसी बातें करते
12: हैं,
8: बहुत गलत बात हुई।
14: बस चुप हो जाओ सारे।
15: पापा, जीजा जी को अपने साथ रख लें।
14: किशन, तुम नहीं जानते अभी कि सही क्या है और गलत क्या है।
15: लेकिन पापा, मैं अभी 20 साल का।
8: किशन, तुम इतने बड़े नहीं हुए अभी, अब कविता मत सुनाने लगना कि उम्र से नहीं दिल से बड़ा होना है बंदगी।
6: भाभी जी, बंदगी नहीं जिंदगी, जिंदगी
8: क्या
6: उम्र से नहीं दिल से बड़ा होना है जिंदगी, ये कविता की लाइन है, मैंने ना बहुत बार सुनी है किशन भैया से।
15: भाभी अब मेरी कविता कहाँ से बीच में आ गई?
14: अब फैसला मैं करूँ, एक दामाद का घर जमाई कहलाना गलत नहीं बल्कि बहुत गलत है समाज की नजर में, इसीलिए
0: तो हमारे यहाँ बादल से ज्यादा समाज बरसता है और बिजली से ज्यादा कड़कता भी है। अब भगवत सिंह राठौर जमाई सा का क्या फैसला करेंगे ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन तब तक जरा सोचिए कि आपके घर के फैसले कौन कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बोल आप रहे हैं और सोच उन चार लोगों की है जो कभी नजर नहीं आते। जी बेटी को नहीं पढ़ा सकते, चार लोग क्या कहेंगे? अब जी लड़का खाना नहीं बना सकता, चार लोग क्या कहेंगे? सोचिए आपके घर में घर वालों की खुशी पर चार लोगों नामक काला बादल तो नहीं मंडरा रहा। आप सोचिए, तब तक मैं लेता हूं आपसे इजाजत, मुलाकात होगी घर ऑन एयर की अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा नमस्ते, रहिए गाते हंसते।
16: घर ऑन एयर पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। माँ के चरणों से बढ़कर इस जहाँ में दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। सोचिए जरा सा, अचानक मूत्र रुक जाता है या कम आता है तो सोचिए क्या करेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे। और जी हाँ, तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन छोड़ता है। आज बनाएंगे आशियाना के किचन में, अभी आपको बता दूंगी तो सस्पेंस कुछ रहेगा ही नहीं, बहुत ही सुंदर रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ आलू की। अब आलू की इसके आगे क्या सिखाऊंगी वो जरा अनुमान लगा करके आप जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। और प्रश्न भी बहुत ही सुंदर पूछने वाली हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: है ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे, एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक पापी इंसान मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था। लोग वहां काफी संख्या में इकट्ठे हो गए। वहीं पर एक महापुरुष आ गए। पास खड़े लोगों ने महापुरुष से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बताइए जिससे ये पीड़ा से मुक्त होकर के प्राण त्याग दे और ज्यादा पीड़ा नहीं भोगनी पड़े। महापुरुष ने बताया कि अगर जन्नत की मिट्टी लाकर इसको तिलक किया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर सभी चुप हो गए। अब जन्नत की मिट्टी भला कहां से आए और कैसे लाए? महापुरुष की बात सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और थोड़ी देर में लौट आया जन्नत की मिट्टी लेकर के मुट्ठी के अंदर और बोला, ये लो जन्नत की मिट्टी, इसे तिलक कर दो। बच्चे की बात सुनकर के एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस आदमी को जैसे ही तिलक किया, कुछ ही क्षण में वो आदमी पीड़ा से एकदम मुक्त हो गया। ये चमत्कार देख करके सब हैरान थे क्योंकि जन्नत की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है भला, और वो भी एक छोटा सा बच्चा, हो ही नहीं सकता। महापुरुष ने बच्चे से पूछा, बेटा ये मिट्टी तुम कहाँ से लेकर आए हो? पृथ्वी लोक पे कौन सा जन्नत है जहां से तुम कुछ ही पल में ये मिट्टी ले आए? लड़का बोला, बाबा जी एक दिन हमारे स्कूल की टीचर ने बताया था कि माँ के चरणों में सबसे बड़ा जन्नत है, उसके चरणों की धूल से बढ़कर दूसरा कोई जन्नत नहीं, इसलिए मैं ये मिट्टी अपनी माँ के चरणों के नीचे से लेकर के आया हूँ। बच्चे के मुंह से जब ये बात सुनी तो महापुरुष बोले, बिल्कुल बेटे, माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई जन्नत हो ही नहीं सकता, और जिस औलाद की वजह से माँ की आंखों में आंसू आए ऐसी औलाद को नरक इस जहां में ही भोगना पड़ता है। प्यारे श्रोता बंधु, अब आप समझ गए होंगे कि माँ की जन्नत से बढ़कर दूसरा कोई जन्नत नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी रुपया पैसा जमा कर ले, आसमां की ऊंचाइयों को क्यों ना छू ले, जब तक आपकी वजह से माँ खुश नहीं है तब तक वो भगवान भी आपसे खुश नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, तीर्थ यात्रा कर लीजिए, तभी माँ की महिमा इतनी गाई जाती है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे बहुत ही सुंदर गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

ओम शांति। मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे। अगर किसी भी कारण से मूत्र रुक गया हो या फिर रह रह करके आता हो तो आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे दे रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। रात में तांबे के बर्तन में पानी भर करके रखिए और इसको सुबह पीजिए, इससे लाभ मिलेगा। लगभग ऐसा सभी करते होंगे क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं इस पानी के। फिर भी ये मूत्र में भी फायदा करता है कि रात को आप तांबे के लोटे में पानी भर के रख दीजिए और इसको सुबह पीजिए नन्हे कोटे, तो फिर इससे मूत्र खुल करके आएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा नुस्खा भी आपको बहुत ही अच्छा दे रही हूँ कि भोजन के साथ छाछ को जरूर शामिल करिए। छाछ में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिए, ठीक है, गाढ़ी गाढ़ी छाछ मत पीजिए, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल करके इसको पतली कर दीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया मिला दीजिए, फिर पीजिएगा इसको, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अगला नुस्खा भी बहुत ही सुंदर है कि 2 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री दोनों को पीस करके ठंडे जल के साथ फाकी लीजिए। इससे रुका हुआ मूत्र खुल जाएगा और अगर मूत्र की वजह से जलन भी आती हो तो मिट जाएगी। कितनी बार जलन होती है ना, तो जलन भी ठीक हो जाएगी। ऐसी मात्रा दिन में 3 बार लेनी है, ठीक है। 2 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री दोनों को पीसिए। पीस करके आप, मतलब इकट्ठा पीस करके भी आप रख सकते हैं इस तरह, जो मैंने मात्रा बताई ना, तो इसको बढ़ा दीजिए और एक कांच की बोतल में भर दीजिए। फिर इस तरह की समस्या हो ना तो फिर आप थोड़ा सा ले लीजिए। मात्रा यही है 2 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री। ज़्यादा पीस रहे हैं तो भी इस अंदाज से पीसना। फिर इतना सा ले करके आप जल के साथ, नॉर्मल सादा पानी के साथ आप फाकी ले लीजिए। इससे रुका हुआ मूत्र आ जाएगा खुल करके और अगर मूत्र की वजह से जलन हो रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी। और लास्ट नुस्खा ध्यान से सुनेंगे। एरंडी का तेल 25 से 50 ग्राम तक गर्म पानी में मिला करके पीजिए। 15-20 मिनट में ही मूत्र खुल करके आ जाएगा। जब हर प्रकार से हार जाओ ना और कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है तो ये उपाय ज़रूर काम करेगा और 15-20 मिनट में ही खुल करके बाथरूम आ जाएगा। फिर से दोहरा रही हूँ, एरंडी के तेल आप लीजिए, जिसको हम कस्टर ऑयल भी कहते हैं, 25 से 50 ग्राम तक गर्म पानी में मिलाकर पीजिए, ठीक है। 25 से 50 ग्राम की मात्रा में एरंडी का तेल लेकर के गर्म पानी में मिला दीजिए और इसको आप पी जाइए। 15-20 मिनट में देखिए आप, आराम मिल जाएगा, मूत्र खुल करके आएगा और ये नुस्खा बहुत ही सटीक है। तो ये जो नुस्खे आपको सुनाए हैं ज़रूर आप आजमा सकते हो। अगर मूत्र होता है कभी कभी अचानक ही मूत्र या तो कम आना शुरू हो जाता है या फिर एकदम बंद हो जाता है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप हॉस्पिटल मत जाइए, वहाँ पर ज़रूर जाइए, लेकिन शुरुआत में सभी घर के नुस्खे ही आजमाने की कोशिश करते हैं। फिर हॉस्पिटल जाते तो जो भी है खैर, पर इन नुस्खों का आप फॉलो कर सकते हो। और आज का प्रश्न पूछ रही हूँ, बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए अकेली महिला की सुरक्षा के लिए आपके आसपास वृद्धा आश्रम या फिर नारी निकेतन है तो हाँ करिए, नहीं है तो ना करिए, ठीक है। अकेली महिला है, असुरक्षित है, उसकी सुरक्षा के लिए आपके आसपास वृद्धा आश्रम है आपके गाँव के आसपास या फिर नारी निकेतन है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर। पुनः सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं, नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर चीज़ की कीमत बताने लगते हैं, हर चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। हेलो
1: हेलो शैवल जी, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो?
1: बस बहन जी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा बाहर गए थे तो अभी अभी आए, और सुरेश भाई की बात चल रही थी जो जोचाना से बात कर रहे थे, मैंने रेडियो चालू किया तो आवाज सुनी, और सुरेश भाई के घर से रेणुका बहन का जन्मदिन है आज, तो ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। का स्वभाव बहुत अच्छा है, हम चोटीला मिले थे, हम गए थे वहाँ दर्शन के लिए, और वो भी वहाँ आए थे तो सुरेश भाई ने मुझे कॉल किया कि कहाँ हो, तो मैंने बोला कि चोटीला है
0: जी,
1: चामुंडा माता का दर्शन कर रहे हैं, तो वो भी बोले कि हमारे घर से आए हैं सब लोग दर्शन करने के लिए।
0: जी
1: तो
0: जी जी, उस समय रेडियो में आपसे बात भी हुई थी दोनों से।
1: जी। और फिर उन्होंने जो निशाने भी बताया तो हम मिला, हमको मिले थे बहन जी और सभी भाई बहन थे साथ में
0: जी,
1: तो बहुत स्वभाव बहुत अच्छा है, और जीवन में तरक्की तो की है उन्होंने काफी, जो ऐसा ही घर संसार चलाए
0: जी,
1: और
0: जी,
1: हमारे सुरेश भाई भी बहुत अच्छे परम मित्र है
0: जी जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। और कंचन भाई, आपके गांव के आसपास कहीं नारी निकेतन या वृद्धाश्रम है?
1: नहीं बहन जी, हमारे यहाँ नहीं है। इसका कारण है
0: जी
1: कि कोई भी ऐसा, कल आपने बात की थी कि एक ही बेटा हो तो ऐसा होता है तो क्या करे, तो
0: हाँ जी
1: हम सुलेख करते हैं बहन जी इसका
0: जी,
1: जो तू नहीं रखेगा माता पिता को नहीं रखेगा तो ये सब माल मिलकत है, जायदाद है, जमीन है, ये सब गांव वालों

0: रुक, ओए रुक का रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सर सरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आज किसी ने अनुमान नहीं लगाया कि मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा हिंट तो मैंने दिया ही था कि भाई आलू की, अब आलू की के इसके आगे क्या है वो आपने जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, आलू की पेटीज बना देते हैं फटाफट, ठीक है ना? पसंद है सभी को? चलिए, क्यों नहीं पसंद आएगी भाई, वैरायटी खाना बनना चाहिए ना। एक जैसा खाना रोज़ बनाएंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे, बड़े बोर हो जाएंगे, फिर परिवार के अन्य सदस्य भी कहेंगे अरे क्या रोज़ रोज़ ये का ये। तो फिर आपको थोड़ा सा वैरायटी प्रकार के सिखाते हैं। तो आलू की पेटीज के लिए पहले मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, उसके बाद बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी। तो आधा किलो ले लीजिए आलू, आधा किलो बोले तो 500 ग्राम, ठीक है। फिर आप लीजिए 15-20 काजू, और हरा धनिया आवश्यकता के अनुसार लेना है, खसखस 2 छोटे चम्मच, और थोड़े से लीजिएगा ब्रेड क्रम, थोड़ी सी अदरक लेनी है। फिर 2 ब्रेड की स्लाइस ले लीजिए, 20 या फिर 10-15 किशमिश ले लीजिए। देखिए आपको लेने कहीं जाना नहीं है, घर में है तो काजू और किशमिश लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं चला लीजिए, ठीक है। फिर 2 चम्मच सौंफ, कटी हुई हरी मिर्च ले सकते हैं आप आवश्यकता के अनुसार, मतलब 2-1 ले लीजिए। नमक स्वाद के अनुसार लीजिए। 150 ग्राम मटर लेना है, और आधा लीजिए नारियल, आधा चम्मच गरम मसाला, चुटकी भर शक्कर। ये हो गई आलू की पेटीज की सामग्री, जिसको फिर से दोहरा रही हूँ। 500 ग्राम आलू ले लीजिए, 500 ग्राम बोले तो आधा किलो, 10-15 काजू, अगर घर में है तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, नहीं तो 10-15 हो तो 10-15, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर वो कहते हैं ना कि जितना डालो उतना ही टेस्ट बढ़ता है, ड्राई फ्रूट्स हो मसाले हो। हरा धनिया आवश्यकता के अनुसार लीजिए, हरी मिर्च ले लीजिए 2-3, 2 चम्मच खसखस लेना है, थोड़ा सा ब्रेड क्रम ले लीजिए, और थोड़ी सी अदरक लेनी है। फिर 2 ब्रेड की स्लाइस लेनी है, 10-15 किशमिश ले लीजिए, 2 चम्मच सौंफ लेनी है, और नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। 150 ग्राम मटर लेना है, आधा नारियल ले लीजिए, आधा चम्मच ही गरम मसाला लेना है, और चुटकी भर लेने हैं आपको शक्कर, ठीक है। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए हम गीत सुनाएंगे। परंतु आज के प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो। देखिए प्रश्न सिंपल सा है कि महिला की सुरक्षा के लिए आपके गांव के आसपास कहीं पर वृद्धा आश्रम है, नारी निकेतन है तो हाँ कर दीजिए फोन करके, और नहीं है तो भी आप ना कर सकते हो फोन करके, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका रेडियो से जुड़ाव रहेगा, रेडियो से जुड़ते रहेंगे तो हमको भी लगेगा कि हमारे कौन कौन श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक तो है ठीक नहीं है। हम भी चाहते हैं ना कि हमारे सभी श्रोता बंधु स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो कभी कभी फ़ोन करके अपनी आवाज़ सुना दीजिएगा। बहुत लंबा समय निकल जाता है तो लगता है कि अरे क्या हुआ होगा, उनका फ़ोन क्यों नहीं आया। परिवार में भी ऐसा ही होता है ना, अपने रिश्तेदारों का फ़ोन नहीं आता है, बहुत समय बीत जाता है, तो हम क्या करते हैं, खुद करते हैं ना। अब यहाँ पर तो देखिए हम खुद तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये रूल्स नहीं है, रूल्स बोले तो हमारे पास नंबर भी नहीं होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि अरे हमारे श्रोता बंधु सभी स्वस्थ और अच्छे हैं। तो ठीक है, चलिए अभी तो सुनेंगे एक गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो, और आशियाना के किचन में बन रहा है ताजा ताजा आलू की पैटीज। तो सामग्री आप सभी लिख चुके होंगे, फिर भी एक नज़र डाल दीजिएगा अपनी डायरी में। आलू, काजू, हरा धनिया, खसखस, ब्रेड क्रम। अब ब्रेड क्रम किसको कहते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, कि जो सूखे ब्रेड होते हैं ना, उसका पाउडर कर दीजिए, उसको ब्रेड क्रम कहते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी सी अदरक, ब्रेड की स्लाइस, किशमिश, सौंफ, हरी मिर्च, नमक, मटर, नारियल, गरम मसाला और शक्कर। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ब्रेड को पानी में भिगो करके निचोड़ लीजिए और नमक आलू के साथ मिक्स कर दीजिए। फिर भरने के लिए थोड़ा सा मटर को दरदरा कर लीजिए, काजू को तल लेना है, मटर को मिला करके धीमी आँच में तलिए, और फिर सौंफ, मिर्च, अदरक, किशमिश, खसखस, इन सब को मिला लेना है। फिर गैस से नीचे उतार दीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़िए। ठीक है, इसमें चीनी भी डाल दीजिए, गरम मसाला भी मिला दीजिए। फिर इस मसाले को ठंडा होने दीजिए। अब आप आलू की छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लीजिए। आलू मैंने शायद सामग्री में बोला था ना, सबसे पहले आधा किलो आलू जिसको उबाल लेना है, उबाल करके उसके छिलके निकाल देने, हरा धनिया साफ करके रख देना है, हरी मिर्च को भी कतर देना है। ठीक है, अब आप गैस से नीचे उतार दीजिए, आलू की छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लीजिए, फिर मसाला भर करके चपटी कर लीजिए। ठीक है, और ब्रेड क्रम से लगा करके दोनों तरफ से तवे पर घी डाल करके फ्राई करिए, फिर इसको चटनी के साथ पिरसिए। तो ये बन गई आलू की पेटीज। फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बनाने का तरीका मुश्किल नहीं है, बस खाली ध्यान से सुनिएगा कि ब्रेड को पानी में भिगो करके निचोड़ लीजिए। ठीक है, फिर नमक, उबले हुए आलू, इन सभी को अच्छी तरह मैश कर दीजिए और मिक्स करना है ब्रेड के साथ। भरने के लिए थोड़ा सा मटर को भी आप दरदरा कर लीजिए। अगर सूखे मटर को भिगा रहे हो तो आप सुबह बनाते हो तो रात को भिगोइए, शाम को बनाते हो तो सुबह भिगोइए, फिर इसको दरदरा करिए। ठीक है, और काजू को तल लीजिए, फिर मटर अलग ही रखना है आपको दरदरा करके, और धीमी आंच पर इसको फ्राई करना है। फिर इसमें ही, जब मटर फ्राई हो जाए तो फिर इसमें ही सौंफ, हरी मिर्च, अदरक, किशमिश, खसखस, इन सब को मिला देना है और गैस बंद कर देना है। फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ दीजिए, फिर हरा धनिया डाल दीजिए, चीनी भी डाल दीजिए और गरम मसाला भी मिला दीजिए, अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें ये अपने आलू और ब्रेड का जो मिक्स कर रखा है ना, दोनों को इसमें ये सारा मसाला मिक्स करिए, अच्छी तरह मिक्स करके इनकी टिक्किया बना लीजिए। बना करके अब आप मसाला इसमें भर दिया आपने, आलू की जो मतलब छोटी टिक्किया बना लीजिए और मसाला भर करके चपटा करिए इसको, और इसके ऊपर आपको ब्रेड क्रम लगाना है। आप दोनों स्थिति में बना सकते हो, या तो सारे मसाले मिक्स करके फिर ब्रेड क्रम में आपको टिक्किया बना करके चारों तरफ से लपेटना है, उसके बाद आपको सेकना है घी में, फिर चटनी के साथ खा सकते हो, या फिर मसाले को आप एक तरफ रहने दो और आलू बॉईल किए हुए जिनके हमने ब्रेड और आलू को मिक्स कर रखा है हल्का सा नमक डाल करके, इनको चौड़ा करिए, इसमें मसाला भरिए, फिर इसको एक टिक्किया की तरह बनाइए और चपटा करके, और फिर ब्रेड क्रम में आप मिक्स करिए, मतलब चारों तरफ से लपेटिए, उसके बाद तलिए, जैसा आपको भावे वैसा करिए। ठीक है, तो इस तरह आलू की पेटीज बनाई जाती है। अब ये चटनी के साथ आप पिरस सकते हो। तो चलिए, चटनी तैयार है, आपने ज़रूर करी होगी ना, चटनी आपने बना ली होगी, आलू की पेटीज हमने तैयार कर ली है। तो लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप ये सभी सामग्री रखिए, और भी आपने कुछ बनाया हो तो वो भी रख दीजिएगा, और तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए। ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगा सकते हो। उसके बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा आलू की पेटीज का। हेलो
2: हेलो बहन जी।
1: हाँ जी कंचन भाई, नमस्कार जी, बोलिए।
2: नमस्कार। आपने जो आचार बनाना सिखाया था ना आगे
1: जी,
2: कैरी का आचार जो बनाना सिखाया था, तो मेरी बेटी ने, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था
1: जी,
2: और मेरी बेटी ने इस साल बनाया, तो थोड़ी गलती रहती थी, हर साल बनाती थी
1: जी।
2: लेकिन इसमें तेल आपने बोला था ना
1: जी,
2: सरसों का तेल बोला
1: हाँ
2: था
1: जी, हाँ जी हाँ जी
2: हाँ, वो इस साल डाला है। हर साल सिंह तेल और तिरुपति का तेल ऐसा डालते थे
1: जी, तो जी जी
2: इस साल आपने बोला था कि सरसों का तेल में
1: जी जी जी जी
2: तो ये किया है इसने, और बहुत अच्छा बना है।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। अचार बनाना हो तो सरसों के तेल में ही बनाइएगा, इसका टेस्ट एक अलग ही प्रकार से बहुत ही अच्छा आता है।
2: तो हाँ जी, बहन जी
1: अच्छा बनाना अचार।
2: हाँ बहुत अच्छा बना है बहन जी।
1: पहला
2: क्या रहता था, तो थोड़ा दूसरा तेल था तो थोड़ा नहीं रहता था
1: जी जी, वो अचार का वो जो स्वाद जो सुगंध जो टेस्ट वो नहीं बैठता दूसरे तेल से जी,
2: वो नहीं रहता
1: जी। चलिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जरूर आपकी बेटी को भी याद करिएगा, मुबारक दीजिएगा कि चलो रेसिपी को फॉलो किया उन्होंने।
2: हाँ इसको मैं जुड़ता हूँ बहन जी, लेकिन कोई काम में बिजी रहते हैं ना
1: जी जी,
2: तो
1: जी।
2: वो बोलती थी कि हमें, हम आने वाले हैं वहाँ,
1: जरूर पधारिए, स्वागत आपका।
2: माउंट आबू जाना है तो हम जरूर आए थे,
1: जरूर जरूर
2: मेरे जमाईदार बेटी को लेके आऊंगा मैं साथ।
1: क्या बात है, स्वागत आपका। जी जी बहुत बहुत आभार। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज का कार्यक्रम तो काफ़ी अच्छा रहा है। आपको विचार भी, हमारे श्रोता बंधुओं के फ़ोन भी आए थे, विचार बहुत पसंद आया है कि वे माँ की, माँ के चरणों में जन्नत होती है। कहीं पर भी ढूंढ लो, भले चारों धाम कर लो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। और आपको नुस्खे भी बहुत अच्छे दिए हैं, तो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। खुशनुमा जीवन की भी बातें अच्छी हुई है, तो रेसिपी में भी आपको आलू की पेटीज बनाना सिखाया है, आप बना सकते हो। अगर कभी गेस्ट घर पर आ गए तो एक अच्छा आइटम है, बना करके उनको खिला सकते हो। और आज का प्रश्न था कि महिलाओं की, मतलब अकेली महिला की सुरक्षा के लिए आपके गाँव के आसपास कहीं पर नारी निकेतन है या फिर वृद्धाश्रम है, तो जवाब दिया है बहुत सारा। जैसे कि विषय भी बहुत अच्छा था ना, कि भाई जीवन में तूफान आना भी ज़रूरी है ताकि पता चले कि कौन अपना और कौन पराया, तो इसमें भी चर्चा में भाग लिया है। नाम बताना चाहूँगी सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, उन्होंने कहा कि हमारे पिंडवाड़ा में नहीं है वृद्धाश्रम और नारी निकेतन, लेकिन उन्होंने खुशनुमा जीवन में बहुत ही अच्छी अपनी राय व्यक्त की है। फिर मोहन जी कुमावत आबू रोड से, उन्होंने कहा है कि आबू में है वृद्धाश्रम, लेकिन महिलाओं को नहीं रखा जाता है, पुरुषों को रखा जाता है। अभी ये वापस खुल गया हो तो पता नहीं, पहले हम एक बार जा करके आए थे तब वहाँ पर कोई नहीं थे। और पीयूष भाई ठाकुर भगवानपुरा से, आपने भी फ़ोन करके कुछ जानकारियाँ ली थी। और सुरेश भाई झोटाना से, आपने कहा कि हमारे गांव के आसपास तो नहीं है, लेकिन मेहसाना में है वृद्धाश्रम है, वहाँ पर स्त्री और पुरुष मतलब दोनों के लिए है, तो अच्छी बात है। और कंचन भाई मंडाली से आपका भी फोन आया है, आपने कहा हमारे गांव के आसपास नहीं है, और विषय में अच्छी आपने अपनी राय व्यक्त की है। और अभी उनका फ़ोन फिर से आया कि भाई उनकी बेटी ने जो अचार राशियाना में सिखाया, बना कर सभी को खिलाया, बहुत ही स्वादिष्ट बना। तो चलिए इसके ऊपर तो वही तालियां बजनी ही चाहिए कि रेडियो मधुबन को फॉलो किया है। और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के लिए भी तालियां की प्रश्न का जवाब, भाई है तो है वृद्धाश्रम और नारी निकेतन, नहीं है तो नहीं है, विषय में भी भाग लिया, इसके लिए भी शुक्रिया। और अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे किसमें, अंताक्षरी कार्यक्रम में। शनिवार है ना, तैयार रहिएगा अंताक्षरी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। किसी के काम जो आए उसे इन

सज्जन है कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।

को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यो घर में

इंसान का दिल है वे नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में ला।
4: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752 ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहाँ हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में जागृति इस कार्यक्रम में, जिसमें हम महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें कैसे मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक विषय है लव मैरिज, जैसे छोटी उम्र में लड़कियां बच्चियां प्यार में पड़ जाती हैं और प्यार में उन्हें एहसास नहीं होता है कि वह क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ऐसी छोटी उम्र में एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, तो प्यार के बाद जब समय बीतने के बाद उन्हें लगता है हमें शादी करनी चाहिए, हमें परिवार वालों को बताना चाहिए, पर उनके अंदर एक डर भी रहता है कि हम परिवार को बताएंगे तो वो कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, हमारे साथ क्या करेंगे, तो उसके बाद वह गलत डिसीज़न ले लेते हैं, जैसे घर छोड़ने का। तो कई बार तो उनका ये फैसला सही भी होता है, कई बार गलत भी हो जाता है। लड़कियाँ कई बार गलत डिसीज़न ले लेती है तो उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, और उसके बाद वह अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में बताना चाहती हैं, पर उन्हें पता भी होता है कि हमने ये गलत किया है, हम कैसे बताएं। उन्हें ना तो अपने पार्टनर का सहयोग मिलता है ना परिवार का, तो कई बार वह इससे भी गलत डिसीज़न ले लेती है, जैसे कि आत्महत्या करने का। तो ऐसे में हम परिवार में एक दूसरे का सहयोग कैसे करें, हम अपने बच्चों को कैसे सही राह दिखाएं, हम उनको कैसे सही गलत की पहचान कराएं, तो आज ऐसी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंजलि जी, आप एक काउंसलर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिलेशनशिप कोच भी है। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन जागृति इस कार्यक्रम में।
2: जी थैंक यू।
1: जी अंजलि जी, तो इस बार इन्हीं सवालों के साथ मैं एक और सवाल करना चाहूंगी अंजलि जी आपसे, इसी विषय पर कि बच्चों के मन में जो प्यार फीलिंग्स होते हैं, और इसमें पेरेंट्स को जब पता चलता है कि हमारे बच्चे इस लड़के को पसंद करते हैं और ऐसा हमारे घर का माहौल हो रहा है, तो वैसे में पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे समझाए और कैसे उनका दिल ना टूटे, तो उसमें पेरेंट्स की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो इस बारे में अंजलि जी आप थोड़ा बताइए।
2: जी पवन जी, बहुत कि ऐसा आपने प्रश्न पूछा है जो प्रश्न बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे दोनों के बीच में दूरियां लाने का कारण बनता है। यही एक समय होता है जहां बच्चों को अपने माता पिता के साथ का सपोर्ट का, इमोशनल बॉन्डिंग का, साथ ही साथ एक फ्रेंडलीनेस का उन्हें अपेक्षा होती है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझ पाएंगे और हमारी मदद कर पाएंगे। और जबकि वो ऐसी स्थिति में होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट में होते हैं, फिजिकल इमोशनल चेंजेस के स्टेट में होते हैं, जहाँ अट्रैक्शन की शुरुआत होती है, और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये हार्मोनल चेंजेस इतने पीक लेवल पे होते हैं कि उनको रोक पाना उनके लिए मुश्किल होता है, और वो ले जाता है अपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन की ओर, और वो रोक मानते हैं गॉड की तरफ से ही है कि गर्ल्स फॉर लाइक टूवर्ड्स बॉयज एंड बॉयज टूवर्ड्स गर्ल्स। तो ऐसी स्थितियां आने पर पेरेंट्स का समझदारी से काम लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो पेरेंट्स को उस समय एकदम से कहते ना रिएक्ट ना करके तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं। जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है अच्छा मेरी बेटी एक मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है या उसे प्यार कर रही है, कैसे हो सकता है, मैं तो ब्राह्मण हूँ मुस्लिम कैसे हो सकता है, पता चलते ही वो तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं, और रिएक्ट करने के साथ साथ कहने को या करने को तैयार हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उन्हें अपने जो एक बाउंड्री लाइन है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि बच्चे को हो सकता है मारपीट करना शुरू कर दें, अब्यूज करना शुरू कर दें, और बुरी तरह से इंसल्ट करना शुरू कर दें, और क्रिटिसाइज हॉस्टाइल होकर के बच्चे को एक तरह से अपने ये जो बिहेवियर कर रहे हैं वो सोचते हैं कि ये हमने इनको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है या हम इतना पैसा इस पर खर्च कर रहे हैं, तो दिस इज वॉट जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कहते हैं समझदारी की आवश्यकता होती है पेरेंट्स को कि जो चीजें हो रही है वो हो रही है ये और होती भी रहेंगी, ये एकदम से रिएक्ट करने से खत्म नहीं हो जाएंगी। और हो सकता है हम एकदम से रिएक्ट करते हैं तो वो हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो बहुत समझदारी की आवश्यकता होती है। बात पता चली है, हमें समझ लेना है कि मेरा बच्चा जो है डाइवर्ट हो गया है, ये उसकी एज का कह लीजिए या जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं एक दूसरे को किस तरह से अट्रैक्ट करके अपने उसमें चक्र व्यू में कैसे ले आते हैं, डाइवर्ट करा देते हैं, फ्रेंड सर्कल का पीयर्स का क्या असर हो रहा है, किस प्रकार से हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पवन जी। लेकिन रीजंस जो भी हो रहे हैं यहाँ पर मेन यहाँ पर है कि हमें अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने देना है और कैसे उस तक ये बात पहुंचानी है कि जो वो कर रहे हैं वो उनके लिए कितना ये फ्रूटफुल है और कितना ये फ्रूटफुल नहीं है, जो चीजें उनके साथ कर रहे हैं वो भविष्य के लिए कितना बेहतर है और कितना बेहतर नहीं रहेगा। तो ये पेरेंट्स को समझने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी रिएक्ट ना करें और उसे सोच समझ के प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स के लिए अपने आप को पेरेंट्स के साथ आपस में डिस्कस करके कि हमें बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, उस तरह से चीजें ना होने दें। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये मैं पहले नंबर पे ये बोलना चाहूंगी। और दूसरे नंबर पे ये बोलना चाहूंगी कि बच्चा जो है वो कुछ सुनना नहीं चाहता, वो ये समझता है कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मैं सही हूँ। वो प्रैक्टिकल चीजों पर जो है वो विश्वास करता है। जैसा कि मैं अभी आपको बताना चाह रही थी कि बच्चे के साथ कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का होना, अब पेरेंट्स का बच्चे के साथ एक रैपो एस्टैब्लिश करना, हर समय बच्चे की कमियां ना ढूंढना, क्रिटिसाइज ना करना, और समझ में आ भी रहा है ये बच्चा जो है ये रात भर फोन में बातें करता है छुपा छुपा के रजाई में, एक भी लिया है समझ भी आ रहा है, तो उसको अपने साथ बिठाना कि आओ चलो मेरे पास बैठो आकर के, हमें हम अपने बारे में बताते हैं कि हम जब पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, हम जब पढ़ते तो हमारे साथ क्या होता था, हमारे साथ भी यही चीजें चेंजेस हमारी लाइफ में भी होते थे, हमारे साथ भी फ्रेंड्स का इफेक्ट आता था, सारी चीजों का हमारे साथ भी ऐसा होता था। यानी कि जस्ट शेयर योर ओन स्टोरी, और जैसे ही आप अपनी स्टोरी आप शेयर करना शुरू करते हैं बच्चे के साथ तो बच्चा अपने आप को रिलेट करना शुरू कर देता है, और रिलेट करते करते वो किस होश में कह जाता है कि पापा मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है या मम्मी मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो वो ओपन अप हो पाता है। लेकिन हम ओपन अप होने ही नहीं देते हैं, हमें पता चला और हमने सीधा उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, बरसना शुरू कर दिया, उसको डांटना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया, ये हमारा रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो पवन जी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन शायद मुझे लगता है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा।
1: बच्चे जब भी अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि उनके मन में ये चीज हो रही है, तो आपने बताया कि वो रिएक्ट ऐसा करते हैं, वो अपने बच्चों पे चिल्लाते हैं, उन पर गुस्सा करते, इन कारणों में बच्चे कई बार ऐसी चीजें बताते भी नहीं है अपने पेरेंट्स को, छुपा कर रखते हैं, छुपाने के कारण उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, अपने पेरेंट्स

0: जी
1: जी
0: जी
1: अंजलि जी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत डिसीजन लेने के बाद जब अपने पेरेंट्स को बताते हैं तो पेरेंट्स मना कर देते हैं कि हम नहीं जानते, तुम तुम्हारा जानो, अब तुमने जो भी कर लिया है, परिवार में नाक कटा ली है, जो भी मतलब बच्चों पर जो भी इल्जाम लगाते, एक तो जहां उन्होंने गलती करी है वो भुगत रहे, उसके बाद उन्हें
0: तो
1: जो पेरेंट्स से सुनना पड़ता है वो अलग होता है। तो ऐसे में अगर बच्चे गलती कर भी लेते हैं तो पेरेंट्स उनको सही राह कैसे बतावे, उनकी सहायता कैसे करे, तो ऐसे पेरेंट्स या बच्चों को आप कुछ बताना या कुछ राय देना चाहेंगी?
0: बहुत जरूरी है बच्चों को ऐसे समय पे, इमोशनल क्राइसिस के समय पे बच्चों को डील करना, क्योंकि बच्चे जो है ये एक्सप्लोर करना, इनके अंदर एक बहुत बड़ा जुनून आ जाता है हर चीज का एक्सप्लोरेशन। तो नशा हो तो भी उसका एक्सप्लोर करना है कि नशा कैसे लेना है, कैसे लिया जाता है, उसका क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले ये कि वो एक्सप्लोर करते हैं, फिर इसी प्रकार से जो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, रेजिस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन, तो सेक्स हॉर्मोन्स का, तो उसका भी वो एक्सप्लोरेशन होता है कि क्या होता है, बच्चे कहाँ से होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, क्या तरीका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या तरीका है, फिर लव एंड किस, जैसे फर्स्ट, जैसे इन्फेचुएशन, फैचुएशन क्या है, पेरेंट्स की चीजों को भी वो कभी कभी ऐसी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं जो उसका भी उनके ऊपर ऐसा इफेक्ट आता है। तो इसमें पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं तो पेरेंट्स को अपने बिहेवियर पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनका बिहेवियर कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोवोकेटिव हो जाए बच्चों के लिए और उस पर गलत असर डालता हो, नंबर एक। नंबर दो है कि जो है पेरेंट, बच्चे जो हैं अगर इस तरीके की चीजें इनके साथ हो रही हैं और ये अगर अपने चीजों को बता नहीं रहे हैं तो मिसगाइडेड हो सकते हैं और इनकी लाइफ कहीं भी किसी भी रिस्क में पहुंच सकती है। तो अपने परिवार में, जरूरी नहीं है माँ हो पिता हो, अपने परिवार में कजन्स होते हैं, अपने परिवार में अपने अंकल्स होते हैं, बुआ होती हैं या मामा मासी होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो उनके साथ अपनी बात को कि मम्मी या मुझे डर लग रहा है मम्मी को बताना, आप ऐसे शेयर कर दो, ऐसा ऐसा होता है। और माँ बाप को भी इस चीज को समझना चाहिए कि ये एज है, कुछ भी ऐसा हो होने के चांसेस बच्चे के साथ हैं, तो हम पहले से ही बच्चे को इस कुछ जानकारी दे करके हमें रखनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, छोटा बच्चा है 6 साल का, 5 साल का, अभी तो जो ये हमारे अर्बन सिटीज में वहां पे गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी जाती है, स्कूल कॉलेजेस में भी दी
1: जी
0: जाती है
1: हाँ
0: और
1: जी
0: पेरेंट्स भी
1: जी
0: देते हैं, है
1: जी
0: ना। लेकिन जो तो रूरल एरियाज हैं, सेमी अर्बन एरियाज हैं, अभी भी माँ बाप जानते नहीं गुड टच बैड टच बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए पेरेंट्स
1: जी
0: बच्चों को। तो अपने ही घर के लोग हैं वो बैड टच कर रहे हैं, अब बच्चा दब रहा है, डर रहा है और जाना नहीं चाह रहा उसके पास, लेकिन माँ बाप समझ नहीं रहे और माँ बाप उसी के पास बार बार भेज रहे हैं, जाओ चाचा के ये दे कर आओ, जाओ मामा को ये दे कर आओ, जाओ ये करके आओ। एंड बच्चा वो जाना नहीं चाह रहा, बट आप उसको जाने दे रहे हो एंड नहीं समझ पा रहे हो कि बच्चा मना क्यों कर रहा है, जाने से मना क्यों कर रहा है, ऊपर से और उसको डांट रहे हो। तुम हमेशा ऐसे ही करते रहते हो, मना करते हो, तुम बात नहीं सुनते हो, तुम ये नहीं करते हो या करती हो। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर ऐसा बच्चा कर रहा है तो इसका रीजन समझने की कोशिश करनी चाहिए, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, इसका क्या रीजन है। और नहीं भी रीजन आप समझ रहे हैं तो भी बच्चा जैसे ही बड़ा होना शुरू हो जाता है, 4 साल 5 साल, समझदार जैसे ही आना होना शुरू हो जाता है, तो उसको ये एजुकेशन देनी आवश्यक है कि आप बच्चे आना शुरू कर दें कि क्या ये टच, किस प्रकार के टच होते हैं जो अच्छे टच माने जाते हैं, किस प्रकार के टच होते हैं जो बुरे टच माने जाते हैं। तो इन टचेस का बताना ये बहुत जरूरी है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताना ये बहुत जरूरी है। तीसरा, अट्रैक्शन के बारे में धीमे धीमे, कहते हैं धीमे धीमे नॉलेज को इम्पार्ट करना, एकदम से बम्बार्डम करके भी नहीं कि एक साथ सारी चीजों की जानकारी देना, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी बच्चे को देते रहने से क्या होता है, बच्चे को समझ में आता है कि मेरे माँ है, जो मेरी पिता है, ये कितना हमें समझ रहे हैं।
1: जी
0: और जो भी कुछ वो करेंगे वो अपने मम्मी पापा को जरूर बताएंगे, देखो पापा मेरे साथ ऐसा है, भैया मैं इस लड़के जैसे मैं बहुत बातें करती हूँ, इस लड़की से मैं बहुत बातें करता हूँ। तो इस तरीके की चीजें, इतना तक छूट मिलनी चाहिए कि बच्चा अपनी बातों को पेरेंट्स को शेयर कर सके।
1: जब बच्चे डिसीजन ले लेते, गलत कदम उठा भी लेते और अपने पेरेंट्स को इस चीज के बारे में बताते हैं कि हमने ऐसा कर लिया है, हमने शादी कर ली या लव मैरिज जो भी, उसके बाद भी पेरेंट्स जब वो मना करते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते थे, मना किया था, उसके बाद भी तुमने ऐसा कदम उठाया, तो इस चीज में पेरेंट्स को उनको कैसे समझाना चाहिए और कैसे

0: से उनको अपनापन दिखाना चाहिए।
1: सही बात है कि बच्चे घर वालों से छुपा के शादी करने का स्टेप उठा लेते हैं, और ये बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि वो स्टेप उनका कितना समझदारी वाला है ये उस बात को नहीं समझते, क्योंकि वो इमोशनली डिसीजन लेते हैं, एक
0: और
1: तरफा
0: उसके बाद
1: डिसीजन
0: उन्हें
1: लेते हैं।
0: एहसास होता है कि हमने गलती करी, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि हमने जिसे शादी करी वो लड़का प्रेम करता था या क्या करता। उसके बाद उनको एहसास होता है कि हमने जो भी किया गलत किया। पेरेंट्स भी मना कर देते हैं, हम नहीं जानते, अब तुम्हारा है तुम भुगतो। फिर वो लड़कियां मानसिक हिंसा का शिकार हो जाती है, अब वो कहाँ जाए क्या करे, तो गलत कदम उठाए। इससे अच्छा पेरेंट्स उनका साथ दे, सपोर्ट करे। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
1: पेरेंट्स को सपोर्ट, दो चीजों का व्यवहार कहते हैं, दोनों बैलेंस करना जरूरी है।
0: जी
1: बच्चे को ये शीशा दिखाना तो जरूरी है ही, लेकिन सपोर्ट करना भी जरूरी है।
0: जी
1: सपोर्ट करना इसलिए जरूरी है कि अगर बच्चा जो है, अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं और उसने वो
0: जी
1: ले ही लिया है निर्णय और शादी कर ही ली है, तो इससे
0: जी
1: बेहतर है कि पूरा समाज और पूरा परिवार आप पर हंसे और आपकी बेटी और या आपके बेटे पर हंसे। तो आप कहो कि ठीक है, तुमने जो डिसीजन ले लिया है तो उस डिसीजन तुम्हारा मेरे से ज्यादा अच्छा होगा, तुमने अपनी भविष्य का चुनाव कर लिया है तो शायद तुम ज्यादा अच्छा सोच पाती होगी या हो पाते होगे, तो क्यों
0: जी
1: ना हम तुम्हारे डिसीजन पे ही फिर काम करें। बेहतर हम तुम्हारे डिसीजन पे ही काम करें, और फिर जो भी तुम्हारे भविष्य लिखा होगा वो तुम्हारे सामने ही आएगा। तो हम इन सारी बातों को सामने रखते हुए, और हमें उनकी शादी खुशी खुशी कर देनी चाहिए।
0: जी
1: शादी क्योंकि हो चुकी है, कोर्ट मैरिज कर ली है, जो भी काम है ना कोर्ट मैरिज से ही पहले किया जाता है कि अगर
0: जी
1: नहीं किया तो हमें समझाना है, बताना है उसका अच्छा क्या है, उसका बुरा क्या है, उसके प्रॉन्स एंड क्या है, वो जॉब करता है, कहाँ जॉब करता है, कितनी इनकम है, कितनी इनकम में वो रह पाएगा या तुम्हें रख पाएगा, कितनी इनकम से तुम लोग की जिंदगी अच्छी चल पाएगी, कैसा परिवार है, तुम उस परिवार में समायोजित हो पाओगी कि नहीं हो पाओगी, तुम्हारे छोटा घर है यानी ऊंचा घर है, कैसा घर है, जिस हिसाब से चीजें सामने आ रही है उस हिसाब से उनको नॉलेज तो इम्पार्ट करनी होती ही होती है पेरेंट्स को।
0: जी
1: लेकिन इन सारे चीजों के बावजूद भी अगर वो कहती है कि नहीं मुझे इससे ही करनी है, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगी या तो मैं मर जाऊंगी,
0: जी
1: है ना, तो कुछ लोग तो वाकई ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि यार वो घर भी छोड़ देते हैं और मर भी जाते हैं। तो
0: जी
1: बेहतर है कि वो, है ना, होता है ऐसा,
0: जी जी
1: तो बेहतर है कि आप अपने परिवार में आप अपने सदस्य को खो दो, तो बेहतर है कि आप उसकी शादी कर दो। यही सोच लो कि ये डेस्टिनी में लिखा है और वो उसकी डेस्टिनी है, उसके सामने खड़ा हुआ है और उसको उसके डेस्टिनी के साथ बांधना है, एंड दिस इज द पेरेंट्स रोल इज नाउ गोइंग टू ओवर। और हाँ, कभी जरूरत होगी अगर तुम खुशनुमा जिंदगी बिताती हो तो ठीक है, तुम अपने परिवार में जाओ, खुश रहो, अगर तुम्हें जरूरत होती है कभी लाइफ में तो गुस्सा तो आता ही आता है पेरेंट्स को, नेचुरल है गुस्सा
0: जी
1: आना, तो नेचुरल है भाई, पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए अभी तक सब कुछ अच्छा अच्छा सोचा है तो आगे के लिए भी अच्छा ही सोचेगा। लेकिन इससे अच्छा तुम्हें लगता है कि नहीं मैं ज्यादा अच्छा सोच सकती हूँ, तो पेरेंट्स का गुस्सा आना लाजवाब है, और वो कहना भी लाजवाब है कि मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो जाकर, ये कहना भी होता ही पेरेंट्स का है। लेकिन ऐसा भी होता है जब बच्ची पे या बेटे पे कोई परेशानी आती है तो पेरेंट्स कितने भी नाराज हो, कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, लेकिन वो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं कुछ परसेंटेज में, 10% से 20% लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी फादर जो कहते हैं मेल जो फिगर है वो बिल्कुल चलाना नहीं चाहता, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा करके बच्चा अगेंस्ट में मैरिज कर लेता है। तो फिर मैंने ये देखा कि पेरेंट्स में जो मदर है, कुछ ऐसे केसेस मेरे सामने आए कि मदर फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए चुपके चुपके अपनी बेटी को पैसा भेजती थी और मिलना भी चाहती थी, लेकिन फादर के डर की वजह से वो मिलने बेटी के पास तो नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन कहती थी जब भी बेटा तुम्हें कोई परेशानी या कुछ हो तो माँ जो है पैसा मंथली, जैसे हस्बैंड देता था तो मंथली कुछ 5,000 भेज दिया कि लो तुम अपना खर्चा चलाना, लेकिन फादर ने कभी नहीं उसको कहा कि तुम मेरे घर वापस लौट के आना, और मदर भी कभी नहीं उसके बेटी के पास जा पाई, सालों सालों ऐसे केसेस भी आए थे। तो यानी कि मदर का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिल होता है और मदद करने की कोशिश करती है, और
0: जी
1: फादर बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि आप रिजिड अगर होते हैं तो आप अपने ही बच्चे का प्यार, अपने ही बच्चे के बच्चे का प्यार लेने से वंचित हो जाते हैं, जस्ट एक कि वो आपकी इच्छा के विपरीत उसने काम कर लिया। तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपकी इच्छा के विपरीत काम कर लिया लेकिन वो अपने उस परिवार में खुश है, अपने पति से खुश है, अपनी बहू से, अपनी पत्नी से खुश है, हमें और क्या चाहिए? हम यही तो चाहते हैं, मेरा बच्चा खुश रहे, है
0: जी।
1: ना।
0: और
1: शादी
0: अगर पति लव मैरिज लड़कियां कर लेती है उसके बाद भी, कई बार मैंने एक केस में आपको बताऊंगी अंजलि जी, ड्रिंक करता था उनके फादर, तो रोज पीकर वो उनकी मम्मी को मारते थे, मतलब उनकी वाइफ को मारते थे। तो उस बच्ची ने ऐसा सोचा कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, तो उनके पापा ने उस बच्ची को ऐसे बोला कि तू घर से निकल और जो लड़का मिले उससे शादी कर लेना।
1: हाँ
0: तो उस लड़की को रात को घर से बाहर निकाल दिया नशे में। तो उस
1: अच्छा
0: लड़की ने 10-5 दिन बाहर घूमी, फ्रेंडों के घर घूमी वगैरह, तो कॉलेज फ्रेंड कोई होगा इसका, तो
1: हाँ
0: उसने उसके साथ शादी कर ली। शादी के बाद उसकी जो सास थी वो कोई जादू तंत्र क्या बोलते हैं वो करती थी, तो उसको वो पसंद नहीं थी लड़की। तो उस लड़की के ऊपर पता नहीं क्या करवा दिया, वो पागल सी हो गई लड़की। तब उसकी माँ को पता चला कि मेरी बेटी ने लव मैरिज कर, उसकी माँ, आपने बताया ना जैसा कि माँ को लगाव होता है बच्चों से, पर पिता को भले ही पीता है करता है फिर भी यूं होता है कि नहीं, मेरा पहले तो बोला कि शादी कर ले, उसके बाद बोला मेरी इज्जत खराब कर दी। उसके दो भाई थे, उसको भी बोला कांटेक्ट में रहेगा नहीं, वहां जो उसके घर जो जाएगा वो मेरे घर वापस नहीं आएगा। वो बच्ची इतनी परेशान हुई, इतनी परेशान हुई, उसने शादी तो कर ली और उसको पता नहीं था कि वो लड़का कैसा निकलेगा, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा नहीं था। बाप ने भी घर से निकाल दिया था कि तू चली जा शादी कर लेना जो भी, और फ्रेंडों के घर पे रही, फ्रेंडों ने बोला कि जा घर जा, बाप है बोलता है, पर उसको भी थोड़ा ईगो था, मेरे बाप ने मेरे को घर से बाहर निकाला, मैं अब नहीं जाऊंगी वहां पर। वो रही 5-6 दिन, शादी कर ली, शादी के बाद 2 साल 3 साल तक रही, बच्ची थी छोटी सी उसके, तो उसका दिमाग पागल सी हो गई उसको। तो उसकी मम्मी उससे बात करती थी, तो उसकी एक फ्रेंड थी जो पालमपुर रहती थी, तो उसको पालमपुर उसकी फ्रेंड ने बोला तू आ मैं तेरा इलाज करवाती हूँ। तो उसको पालमपुर लेके गए, पालमपुर लेके जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि भाई खर्चा होगा, तो खर्चा तो उसकी फ्रेंड कहाँ से देगी, तो बोला कि तेरे हस्बैंड को फोन कर, तो पैसे तो मंगवा, इलाज मैं करवा दूंगी जो भी होगा। तो उसके पति ने फोन उठाना ही बंद कर दिया, बोले तू जाने तेरा काम जाने, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो उसको वो सदमा लग गया लड़की को कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, ना परिवार है ना ससुराल है, सास तो वैसे भी थी नहीं उसकी, और छोटी सी बच्ची थी जो उसके पास थी। फिर उसने क्या करा, उसकी फ्रेंड जो किराए के मकान में रहती वो केरोसिन उसकी सास लेकर आई होगी, केरोसिन रखा होगा कि बेटा ये केरोसिन आज मिला है मेरे को, ये मैं यहाँ रख रही हूँ, मैं घर जाऊंगी तब लेके जाऊंगी। तो उसने बोला कि तुझे क्या खाना है, तो उसने बोला मेरे को आज ये सब्जी बना के दे दे, मेरे खाने की इच्छा है। तो उसकी फ्रेंड ने बोला मैं लेके आती हूँ सब्जी, बस सब्जी लाने तक की देर थी उसने कैरोसिन ऊपर डाल दिया, कैरोसिन डाल दिया, और जो उसके दो बच्चे थे ना जिसकी फ्रेंड के वो घर में ही थे, उन बच्चों ने उसको जलता हुआ देखा।
1: ओ माय गॉड।
0: कि हाँ उसको जलता हुआ देखा, और वो खुद भी बच्चे 2 महीने तक सदमे में रहे, एक बॉडी को खुद जलता हुआ देखना। उस जो उसकी फ्रेंड थी वो किराए के मकान में थी, उसको इमरजेंसी वहां से खाली करवाया गया, उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसको खुद को एडमिट करा। फिर उनके ससुराल से उस लड़की वो जो उसकी फ्रेंड जो वहां से आई थी इलाज के लिए,
1: हाँ
0: उसके ससुराल से कोई नहीं आया, पर जो जिसकी फ्रेंड थी उसके पियर से सारे घर आए और डेड बॉडी ससुराल भेजी, और 1 महीने बाद उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली।
1: और ये लव मैरिज सी।
0: ये लव मैरिज थी, और ये परिवार का ना सपोर्ट करने का तरीका, सपोर्ट ना करा। अगर उसकी माँ ने हिम्मत कर कर एक बार सपोर्ट किया होता, एक बार उस बच्ची को घर लाया होता, तो शायद उसकी कंडीशन ये नहीं होती। पर वो भी उसके बाप से डरती थी क्योंकि वो पीता था, पीकर उसकी माँ को मारता था, वो डरती थी कि कहीं मैं बेटी को वापस घर में लाऊंगी तो ये मेरे को मारपीट करेगा। लड़के भी उसी चीज से डरते थे, पर वो लड़की उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि
1: तो मैं यही
0: उसे
1: सबसे
0: लगा
1: बड़े
0: मेरा
1: डिपेंड
0: डिसीजन।
1: जी बिल्कुल की बात सही है कि जो इमोशनली इतना डिपेंडेंट और इतने वीक हो जाते हैं, उनको लगता है कि बस दुनिया हमारी यहीं आकर रुक गई। तो उस
0: जी
1: नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं कि आदमी ने छोड़ दिया, परिवार वालों ने छोड़ दिया, तो अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन
0: जी
1: नहीं, जहाँ आपने जितनी हिम्मत जटोई थी, आपने अपने माँ बाप के अगेंस्ट में जा करके मैरिज की थी,
0: जी
1: आपने ये तो सोच ही लिया था कि कि हम माँ बाप के अगेंस्ट में जाएंगे तो सपोर्ट हमारा बंद हो जाएगा, ये तो
0: जी
1: सोच के ही हमने ये निर्णय लिया था। जब
0: जी
1: आपने ये सोच के निर्णय लिया तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी समय आपके ससुराल आपके पति का भी सपोर्ट बंद हो सकता है। तो तीसरा भी दरवाजा हमारे लिए है, दरवाजा है वो हमारा अपना स्वयं का आत्मसम्मान का और स्वयं के आत्मनिर्भर का। हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। शादी तो आपकी हो ही जाएगी, लेकिन आत्मनिर्भर यानी स्वयं पर निर्भर आप इस लायक हो जाओ कि आप बिना पति बिना माँ बाप के भी आप अपने जीवन का जीवन यापन कर सको, आप पैसा कमा सको और आप अपने जिंदगी आपके आधार से जिंदगी आप जी सको। ये ज्यादा प्रायोरिटाइज, इसकी प्राथमिकता ज्यादा होनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि शादी तो हो ही जाएगी आपकी, लेकिन शादी से पहले जरूरी है कि आप अपने पैरों खड़े हो जाएं, ताकि अगर कहीं से धोखा मिलता है तो आपके सामने रोजी रोटी का सवाल ना आए कि आपको अपनी जान गंवानी पड़े। यहाँ पे जान गंवाने का कारण तो पहला यही हुआ कि हम किसके पास जाएं, कहाँ से हम अपने बच्चे को पालें, कैसे हम अपने बच्चे को पालें, किस छत के नीचे हम रहें जाकर, कौन हमें छत देने वाला है। ये इतने सारे क्वेश्चन जब उठ खड़े होते हैं तो सारी दुनिया बंद सी लगती है। तो ये ऐसी सोच से भी अपने आप को बाहर निकालें कि अगर हमारी सकारात्मक सोच होगी और रहेगी कि पति नहीं तो क्या हुआ, माँ बाप नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास इतनी काबिलियत है, हम कहीं भी कुछ भी करके हम रह सकते हैं, कुछ दिन का आसरा हमें कहीं से मिल जाए। जैसे देखिए उसको कितना अच्छा आसरा मिला था, उसको सहेली मिली थी
0: जी
1: और उस
0: हाँ
1: अपने दो बच्चों के साथ उसने ये ने अपनी सहेली को पनाह दी थी, कितना अच्छा
0: जी
1: आसरा मिला था, लेकिन उस आश्रय को उसने ठुकरा दिया
0: जी
1: और अपनी एक गलत धारणा और गलत सोच की शिकार हो गई और
0: जी
1: अपनी गिल्ट फीलिंग का भी शिकार हो गई। इतनी ज्यादा गिल्ट आ गई कि देखो हमने हमारा निर्णय कितना गलत रहा, हम अपने माँ बाप को क्या चेहरा दिखाए जाके, कैसे चेहरा दिखाए जाकर, क्या मुंह लेकर के। तो वही कह रहे कि अपने आप को कंपेरिजन करना, फिर कंपेरिजन करके अपने आप को शर्मिंदगी फील करना या अपने आप को हीन भीन महसूस करना। हाँ, तो ये जो कंपेरिजन वाली कॉम्पिटिटिव फीलिंग आने की वजह से हम जब ऐसा कदम उठाने से अपने आप को बचा सकते हैं कि ये दिन भी नहीं रहेगा, आज ये जो दिन बुरा दिन आया है ये बुरा दिन भी चला जाएगा। हाँ, ईश्वर की हमारे ऊपर कहते हैं ईश्वर का हाथ और साथ, उसका सहयोग, उसका सानिध्य, उसका हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक ऐसी ताकत देता है, ऐसी शक्ति देते हैं, कहते हैं ऐसी संकटों से बचाते हैं, मदद करते हैं और कोई ना कोई ऐसा जरिया बना देते हैं उनके मदद से हमें कहीं ना कोई ऐसी रोशनी, कहते हैं अंधेरे में भी एक बहुत उजाला हो उसमें दीपक जलाएं तो रोशनी नहीं मालूम देगी, लेकिन एकदम अंधेरे में एक सीधा एक छोटा सा दीपक जला दें तो कितनी रोशनी आपको शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारी अंधेरी पूर्ण जिंदगी में एक भी व्यक्ति अगर सहारा देने वाला हो गया तो आपकी जिंदगी में रोशनी आने का यानी कि रास्ता आपको मिल गया, और फिर उसके बाद आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी तपस्या से और अपने एक लक्ष्य से जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और आप देखेंगे जरूर जरूर सफल होंगे। और अगर आपको एक पति अच्छा नहीं मिला है तो दूसरी जिंदगी में ऐसा नहीं कि दूसरा हमसफर आपको नहीं मिल सकता, आपको राह चलते हुए कोई ना कोई ऐसा साथी अगर मिलता है तो ये भी आपको नहीं रहना है कि हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। आजकल तो दूसरी शादी करने में भी कोई रोक टोक नहीं है, इवन सास ससुर अगर उनका बेटा एक्सपायर हो जाता है तो अपनी बहू की दूसरी शादी बड़े धूमधाम से करते हैं, कहते हैं ये मेरी बेटी है और मैं इस बेटी की दूसरी शादी करूंगा, करते हैं नहीं करते हैं बताइए,
0: जी जी
1: है ना। आजकल इतनी धारणाएं लोगों के अंदर बदल गई हैं। तो आपकी जिंदगी में बच्चा है छोटा है, आप अपने आप को संभालिए, अपने बच्चे को संभालिए, कहीं नौकरी पे जाइए और देखिए आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, चलते फिरते आपकी हो सकता है जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाए, बहुत मदद करने वाला आपकी सहयोगी मिल जाए, आप उससे शादी करिए, अपनी जिंदगी को फिर आगे बढ़ाइए। और ये भी नहीं आप करते हैं तो एक आध्यात्मिक एक रास्ता बन जाता है जो आध्यात्मिकता की ओर जाता है, तो प्रभु का साथ है, समाज सेवा है और आध्यात्मिक सेवा है, और अपने उस आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं के साथ अपने जीवन को आप जीना सीख सकती हैं और अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। तो कई रास्ते हैं, उन रास्तों पर चलना ज्यादा सही है बजाय कि अपने जीवन दान दे देना। आपने मौका ही नहीं दिया अपने आप को, माता पिता के अंदर रियलाइजेशन को, और वो आपके सामने घुटना टेक कर खड़े हो जाएंगे, बेटा तो मुझे माफ कर दो, बेटी मुझे तुम माफ कर दो, हमने तुम्हारे को सहयोग नहीं आ दिया। आपने मौका ही नहीं दिया पति को, आपने मौका ही नहीं दिया उसको अपनी गलती सुधारने का कि देखो तुमने मेरे घर को छोड़ा, मेरा घर कितना बर्बाद हो रहा है, तुम वापस आ जाओ, आपने ये कहने का मौका ही नहीं दिया। तो ट्रेन खड़ी हो जाती है, अब ट्रेन खड़ी हो जाती है तो सारे क्या होते हैं रास्ते में, सारे क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए तो उतरते ही यात्री, लेकिन जैसे ही लगता है कि हाँ ट्रेन चलने वाली है तुरंत उस पर सब यात्री आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जर्नी छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी ट्रेन 1 1 घंटे 2 2 घंटे 4 4 घंटे खड़ी हो जाती है, स्टॉपेज ले लेती है आकर के कहीं भी किसी जंगल में, तो यात्री तो नहीं छोड़ के चले जाते हैं, निराश होकर तो नहीं चले जाते हैं, पूरी ट्रेन में बैठ करके पूरी यात्रा को तय करते हैं, चाहे वो 2 दिन में पहुंचाए चाहे 3 दिन में पहुंचाए। ऐसी हमारी ये जीवन यात्रा है, तो जीवन यात्रा में हार खा करके अपनी जिंदगी को खो देना ये सबसे बड़ा, कहते हैं कि एक तरीके से अपनी बुद्धि और दिल और दिमाग तीनों के बीच में समन्वय ना करके अपने आप को हार खा लेना है और जिंदगी को खो देना है।
0: जी अंजलि जी, सही कहा आपने। कई बार माता पिता और समाज में बड़े बुजुर्ग बच्चों को घर में गुस्सा करना, उनके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे बच्चों को डर रहता है कि हम अपने माता पिता को बताएंगे तो ये कैसा बिहेवियर करेंगे, हमें हमारे साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो हर माता पिता को मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को दोस्त की तरह बात करे, उनसे अपनी परेशानियाँ पूछे, उनका विश्वास जीते, उनसे हर तरह के सवाल जवाब करे, उन्होंने क्या किया पूरे दिन, क्या नहीं किया, जैसे बैठकर बातें करे, ताकि उनको विश्वास रहे कि हम अगर कुछ भी होगा अपने माता पिता को बताएंगे तो वो उनका सहयोग करेंगे। अगर बच्चे आपसे कोई बात करे या कोई ऐसी चीज़ आपको बता दे जिस पर आपको गुस्सा भी आए, पर उस समय आप रिएक्ट ना करें, सही समय आने पर उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालें और कभी उनके साथ गुस्से से बात ना करें, ताकि उन्हें दूसरी बार विश्वास ना रहे और वो आपसे कोई बात शेयर ना करें। तो बच्चों से प्रेम से बात करें, और ज़्यादा प्रेम अंधविश्वास भी बच्चों के साथ ना रखें, उनका ज़्यादा गलतियों पर भी पर्दा ना डालें, सही और गलत की समझ उन्हें बताएं, ताकि आने वाला भविष्य उनका खराब ना हो।
1: जी
0: अंजलि जी, अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, और उम्मीद है हमें और पूरा विश्वास है कि हमारे जो भी श्रोता बंधु और जो भी माता पिता आपकी इस मार्गदर्शन को सुन रहे थे, उन्हें सही पहचान भी मिल गई होगी कि हमें अगर हमारे बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं और गलत डिसीजन ले भी लिया है तो उनका कैसे सहयोग करना है, उन्हें कैसे अपनापन दिखाना है और उन्हें कैसे गलत राह पर नहीं जाने देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी आपका।
1: जी शुक्रिया बहुत बहुत पवन जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी प्रकार से हमारे नौ युवा वर्ग और उनके पेरेंट्स और साथ ही साथ जो बच्चियां जो जान देने वाली हैं और देना सोच रही हैं, तो अपनी जिंदगी को मौका दें और सकारात्मक सोच रखें, अपने आपको इमोशंस और बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस और एकेडमिक इंटेलिजेंस दोनों के बीच का समन्वय रखते हुए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपसे विदाई लेती हूँ। नमस्कार।
0: थैंक यू अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे और हमारी युवा पीढ़ी को बचाएंगे। हम इसी के साथ हम अलविदा करते हैं, अगले हफ्ते अगली कड़ी में फिर जुड़ेंगे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM जागृति इस कार्यक्रम।
2: गोरा गोरा गाल तारा वाकड़िया वाड़ तारी लटकती।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गाँव और अंचल में जाते हैं, सभी से मिलते, तो आज खुशी का बात है क्योंकि रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो होने के नाते कम्युनिटी से हम बात करते हैं। तो आज कम्युनिटी से खास कर आबूराज पोलो ग्राउंड में पहुंचे, 4 जून से 24 जून तक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण खेल में पहुंचे। तो यहां पर आज हम तिरंगा जी से एक प्रशिक्षित स्टूडेंट आए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे, उनका परिचय पहले लेंगे, क्योंकि यहाँ का जो गतिविधि सब तक पहुँचाने के लिए रेडियो माध्यम हमेशा कोशिश करता है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए एक स्टूडेंट है जो कि प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं, इनका कोच भी धन्यवाद देते हैं और ये सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, इतने सुंदर रूप में 21 दिन तक चला रहे हैं प्रशिक्षण, जिसमें सभी वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है और तिरंगी, बहुत सारा गेम सरकार उनको रहने का, पहनने का, खाने का सब चीज सुविधा दी। तो उनको स्वागत करते हैं। आप अपना नाम बताएं और कहां से आए और किस उद्देश्य से लेकर आए।
1: तो मेरा नाम सर गणेश देवासी है, मैं सर सिरोही जिले से हूँ। मैं सर अभी आया था हमारी स्कूल से आया था, जो कि सिरोही में है। स्कूल का नाम है श्री अग्रसेन दिव्यांग सेवा संस्था की सर, मैं सर दिव्यांग हूँ, जो मैं हॉस्टल में पढ़ता हूँ, वहाँ से आया हूँ। ये सर मैंने अभी 2 महीने हुए मैं तिरंदाजी सीखी है। इसमें सर मेरे को सर मेरा सपना है कि जैसे कि मैं अपने भारत को, मतलब देश का नाम रोशन करूँ, और अपने देश का जैसे कि वो तिरंगा मेरे कंधे पे होना चाहिए, सारे लोग बोलने चाहिए कि वाह अपने अपने बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है।
0: इतना उमंग उत्साह और कुछ करने के लिए जो जोश है शरीर में देखने को मिल रहा है अभी से। उम्र कितना होगा आपकी?
1: 16 साल उम्र है।
0: 16 साल उम्र में भी इतना उमंग उत्साह सर, और एक विकलांग जैसे दिव्यांग है और उनका दोनों हाथ नहीं है, फिर भी कितना उमंग उत्साह, भले हाथ नहीं है लेकिन उसका मन में बुद्धि में तंदुरुस्ती है और करने के लिए कुछ इच्छा रखता है, तिरंगा उनका कंधा में होना चाहिए, ये जरूर होगा क्योंकि आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ से खासकर रेडियो माध्यम इस कार्यक्रम को प्रसारण कर रहे हैं और हमें खुशी है इस तरह बच्चों को एक मंच जो चाहिए था, आज वो मंच मिल रहा है जो खेल के माध्यम से अपना बात को रख पा रहे। और खासकर आपका जो फिजिकल फिटनेस, जैसे आप मैंने देख रहा हूँ आपका शाम दोनों हाथ में थोड़ा सा क्या पूरा दोनों हाथ में ये पैर में चलाते, तो इसका बारे में थोड़ा बताए कैसे आपका हाथ दोनों कट गया।
1: जैसे कि सर मैं बचपन में, मतलब मेरे हाथ थे, फिर सर मैं 7 साल का था, तो जैसे कि पापुरी में सर मतलब खेलने के लिए गया था गार्डन में, तो वहाँ पर सर इमली का पेड़ था, तो सर मैंने उनको देखा नहीं था, मतलब कोई बिजली का वायर जा रहा है, जैसे ही मैंने सर हाथ लगाया तो मेरे को करंट आ गया था। वो सर बिजली का जो वायर वो 11,000 वोल्ट का था, सिर्फ मेरे सर दोनों हाथ कट गए। फिर सर उन पापुर वालों ने बोला कि मैं तेरे को मतलब जो भी खर्चा होगा मैं सब कुछ दूंगा, तेरे का मतलब भविष्य का सब कुछ होगा, क्योंकि सर मेरे सर लाइफ तो खराब हो गई। फिर मेरे को वापस हॉस्पिटल में लेके फिर सर वो वहाँ से गए, फिर हमको कुछ सर ना तो एक रुपया भी दिया, जैसे भी मेरा खर्चा लगा वो सारे मेरे पापा ने दिया, और मैं सर एक गरीब घर से हूँ। फिर पापुर वाले फिर उनको बोला कि सर ये मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मतलब मेरी हेल्प हो जाती, तो फिर वो बोला कि तेरा जो भी वो कर ले। फिर हमने बोला सर मतलब बहुत अमीर है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, फिर उन्होंने सर कुछ नहीं दिया हमें। मेरे को
0: पोर्टल पर खास कर हमारा सहायता है, हमारा सरकार सुन रहे इस कार्यक्रम को, इस तरह जहाँ जरूरत है आवश्यकता है, ये पुनित काम है जो भी कर सकते, तो एक बच्चे का उमंग को बढ़ाने के लिए सरकार भी हाथ बढ़ाई है हमारा, इस मंच का माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक सामुदायिक का गतिविधि, सामुदायिक का परिचय रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल। आज बहुत खुशी और हर्ष का साथ हम पोलो ग्राउंड जो कि आबुराज में पहुंचे। 4 जून से 24 जून तक राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रशिक्षण में आज एक प्रशिक्षक को हम आप सबसे रूबरू कराएंगे। सभी तो प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करके पहुंचते हैं, और खासकर जो विकलांग कहते हैं, जिसको भिन्नक्षम कहते हैं। तो आज हमारे पास ऐसे पहुंचे महान हस्ती जो कि एक उमंग उत्साह को लेकर आए हैं, जिनका दोनों हाथ कट चुके हैं और दोनों पैर से ही सब काम करते हैं, और तीरंदाज तो उसमें भी जो तीर और धनुष का होता है खेल, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे। और मैं परिचय दू तो कम होगा, वो खुद परिचय देंगे अपना नाम कहाँ से और कितना साल के और कैसे आज यहाँ तक पहुंचे और इसका लक्ष्य क्या है। और जीवन में संघर्ष तो होता ही, तो उनका हमसे जो साधारण व्यक्ति से एक विकलांग जो कि दोनों हाथ नहीं है, वो कैसे अपना दिनचर्या करते, खाना पीना रहना उठना, एक एस्कर्ट एक साथी हमेशा रहते हैं कहाँ भी जाते हैं, तो उनसे परिचय लेंगे। श्रीमान जी अपना परिचय दीजिए।
1: जी सर, मेरा नाम सर गणेश देवसी है। मैं सर सिरोही जिले से हूँ और सर मेरा गांव है सनवाड़ा, जो कि अपने देवधर तहसील में आया था। जब सर मैं बचपन में सर छोटा था ना, जब पावपुरी में सर मैं मतलब खेलने के लिए गया था, तो वहां पर सर इमली का पेड़ था, मतलब ज्यादा कोई सर ऊपर नहीं था, नीचे ही था 5 फुट पे। तो जैसे कि मैंने सर इमली को लगाया हाथ, तो इमली से मेरे हाथ में नहीं आया सर बिजली का कोई 11,000 वोल्ट का हाथ में मेरे को आया था। तो फिर मेरे को सर दोनों हाथ कट गए। फिर वहां से पावपुरी वाले ने सर उनको बोला कि हम तुम्हारे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, ज्यादा जो भी खर्चा होगा सब कुछ देंगे। फिर सर हमको गाड़ी में सर हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहां से वो सर चले गए। फिर पापा ने जो भी खर्चा हुआ सर मेरे पापा ने दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर उनको सर बोला कि भाई मेरी सर जिंदगी खराब होगी सर, मैं मतलब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सर मेरे को थोड़ा बहुत मतलब मेरा जो हॉस्पिटल का जो भी खर्चा हुआ वो सर दे दे तो बहुत काफी है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो वो कर ले। फिर उन्होंने सर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं दिया। फिर सर मैं 1 साल तक मैं सर घर पे ही रहा, मतलब पापा लोग लगने के बच्चे अब क्या कर पाएगा। फिर सर मैं वहां से सर घर से दूर गया, जोधपुर गया, मतलब जो कि हमारे जो जैसे दिव्यांग बच्चे रहते हैं, वहां पर सर मैं 2 साल रहा। और जो मैंने सर जो भी सीखा जोधपुर से सीखा, मतलब कि जैसे कि पैर से खाना, पैर से कपड़े पहनना, जैसे कि वो पैर से ब्रश करना, पैर से बाल को मतलब बदलना, जो भी काम करता हूँ वो सब कुछ मैं सर पैर से करता हूँ। फिर सर वहां से फिर मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा। फिर से वापस खेल होते थे, तो मैं सर को सर बोलने लगा कि मेरे को सर खेल में सर आगे बढ़ना है। तो वो बोलने लगे कि तेरे हाथ नहीं, तू कुछ नहीं कर पाया। फिर यार सर मैं भी सर दुख लगने लगना। फिर सर मैंने वहां से सर घर आया। फिर घर में सर मैंने अपने सिरोही जिले में कोई ऐसी दिव्यांग हॉस्टल ढूंढी जो मेरे को मिल गई। उस हॉस्टल का नाम है श्री अग्रसेन दिव्यांग सेवा संस्थान सिरोही। फिर सर मैं वहां आया, तो फिर मैंने सर को बताया कि सर मेरे हाथ नहीं है, सारी घटना हुई। तो कोई बात नहीं, तू आराम से दे, तेरे को सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा, जो भी पैसे चाहिए वो मैं दूंगा, सर ने बोला मुझे, सर कोई बात नहीं। फिर सर मैं वहां पर रहा। फिर टूर्नामेंट हुए जो कि सर उसमें मैंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। कैरम पेंटिंग में सर मैं स्टेट लेवल तक मैं पहुंच चुका हूँ। फिर मेरे को जयपुर में भजनलाल शर्मा आया जी आए थे, तो वो भी मेरे को सर जयपुर में मेरे को सम्मानित किया था, मेरे को बहुत खुशी हुई। फिर सर मैं वहां से तीरंदाजी का भी मैच कर रहा हूँ प्रैक्टिस, वो भी सर मैं सिरोही में करता हूँ। फिर मेरे को सर ने सपोर्ट दिया, सर ने मेरे को आगे बढ़ाया। अभी सर मैं यहाँ पर माउंट आबू पर आया हूँ, तो अभी सर मैं तीन राज्य सब कुछ कर रहा हूँ। पर जरा मेरे पास ये सर है, इसको बोलते हैं इंडियन, और मेरे को सर चाहिए कंपाउंड, जो कि सर मैं मतलब कंधे से चलाऊंगा, मुंह से चलाऊंगा, तो वो मेरे पास सर नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को कंपाउंड दिलाइए, तो मैं आगे के कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि सर इससे मतलब मेरे को बहुत दिक्कत होती है।
0: क्या आपका उम्मीद है सरकार इस चीज पर हमेशा कोई कर पाएगा?
1: क्योंकि सर बहुत सारे लोग होते हैं जो देते हैं और बहुत सारे लोग नहीं देते, तो सरकार से मुझे लग रहा है कि मेरे को देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर।
0: सही बात बताए, और उधर विल पावर देखना पड़ता भाई, जिससे इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं। आपने तो इच्छा किया जरूरी, इच्छा मात्र आपका सक्सेस तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक संकल्प आपका है, फिर संकल्प से आपका बोल तक पहुंच चुका है, बोल चुके हैं, वचन में आ चुका है, अभी कर्म का बाकी है, कोई प्रैक्टिकल करा देगा, ये तो ऊपर वाला तो ही। और आप जिसको याद करते आपका नाम जैसे गणेश से, गणेश तक कर दिए, ये नाम कितना सार्थक करेंगे, और गणेश तो अग्र पूज्य है ये, तो इस नाम जो माँ बाप दिए उसका भी सार्थक करना, मेहनत मेहनत मेहनत 20 नाखून लगा कर एक लक्ष्य रखे, ये जरूर हम कामयाब होंगे। कोई भी ऊंचा पहुंचने में बहुत सारा तकलीफ व कठिनाई आते हैं, लेकिन फिर भी एक डट रहना और उमंग उत्साह का साथ करना, ऊपर वाला जरूर मदद करता है। और आपका नाम जैसे माँ बाप दिए हैं और माँ बाप आपके लिए कितना सोचते हैं, तो आप अपने के लिए इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो तो जरूर ऊपर वाला भी आपका पास पहुंच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। खासकर अब आज दिव्यांग, ऐसे पहला बार रेडियो मधुबन में हम ले रहे एक दिव्यांग जो की अति आवश्यकता जरूरतमंद दोनों, जिसका हाथ जैसे इंट्रोडक्शन में बताया उनका परिचय में, कैसे यहाँ तक पहुंचे और किस तरह वो संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष जब करते हैं कोई ना कोई मिल जाते हैं, इसने कोई नहीं देता है, लेकिन देने वाले भी बहुत है, लेकिन उन तक पहुंच जाएंगे तो जरूर मिल जाएगा। और इस कार्यक्रम का माध्यम से जो भी प्रशासन या कोई भी भामाशाह इस तरह पुनित काम के लिए करना चाहते हैं वो करेंगे, और खासकर दिव्यांग एक सेवा संस्थान को भी धन्यवाद देते हैं जितना तक तो पहुंचाए, और आगे और 5-6 साल बाद थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उनका जिंदगी बन जाएगा और जो अंतिम पड़ाव तक पहुंचेंगे। और दिव्यांग सेवा संस्थान को धन्यवाद देते हैं इस पर, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से, इस तरह पुनित काम में सभी लोग हाथ बटाएंगे तो जो जरूरतमंद जो आवश्यकता है तो उन पर पहुंच पाएंगे, तो बहुत बहुत दुआएं मिलेगा। जहां दवाएं काम नहीं करता वहां दुआएं काम करता है, और उनका आशीर्वाद उनका जो भावना वहां तक पहुंचेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें खुशी लग रहा है, खुशी लगना चाहिए क्योंकि खुशी में ही सब कुछ है। दुखी होकर क्या, जो जिंदगी मिला उसको सार से निभाना चाहिए क्योंकि ये हमारा हाथ में नहीं, ऊपर वाला का हाथ में ही, हमारा कर्म का हिसाब किताब जहाँ पर नहीं होता तो भगवान भी बचा देते हैं, लेकिन क्या है हमें कर्म का गति को जानना पड़ता है। पूर्व जन्म में व आगे जन्म में तो हिसाब किताब का चलते ये सब होता है। दिव्यांग कोई एक्सीडेंट, एक साधारण व्यक्ति भी चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, कितना बड़ा पोस्ट हो, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका पूरा लाइफ चला जाता है। आप तो उससे बेटर है, आंखें पर पांच जो इंद्रिया है वो भी काम कर रहा है, जैसे हाथ नहीं है लेकिन पैर का दोनों डबल काम उसको मिल रहा है, ये खुशी का बात है। और जिसका चलते सब आपका पास आते, आप सबके पास जाते थे लेकिन सब आपको देखकर आपका पास आ रहे, ये भी आपका विशेषता है। हमेशा पॉजिटिव में रहना, नेगेटिव कभी नहीं सुनना, मेरा ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों ऐसे हुआ, तब तो हम आपका पास, कितना बच्चे था सभी के पास नहीं गए, आपका पास क्यों रुके, क्योंकि आप जो मेहनत करते हैं, जिसका दो हाथ है वो तो मेहनत करते हैं, जिसका दो हाथ नहीं वो दिखाते हैं करके, उसको ही कहते हैं नंबर वन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते, पुनः आपको स्वागत करते हैं। गणेश जी नाम ही कितना सुंदर, माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, नाम जैसे रखा है श्री गणेश, सब हर जगह में पूजा पाठ में श्री गणेश करना पड़ता था आपका नाम, इसलिए मैंने जितना खेल खेलते सभी स्टूडेंट से ले नहीं लेकर आपके पास में पहुंचे, क्योंकि सेगन से आप करेंगे तो खासकर बहुत सारा खेल होता है, खेल मतलब गेम जो होता है ये बहुत कुछ डेवलपमेंट करता है। एक तो शारीरिक डेवलपमेंट होता है, शारीरिक जो स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, इसका साथ मानसिक मन और बुद्धि भी तंदुरुस्त रहता, विकसित होता है, डेवलप होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, खेल से फायदा होता है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे खेल से, खेल को क्यों चुना?
2: क्योंकि सर ज्यादातर मतलब मेरे पास बहुत सारे खेलते थे सर, मतलब कि कोई लंबी कूद है और रनिंग है, मेरे पास सर बहुत सारे खेलते थे। मैंने सर यही सुना क्योंकि सर जैसे कि सर मैं मतलब रनिंग करता हूँ ना, जब मैं सर सारे बच्चे एक साथ में दौड़ते, जब सर मेरे पैर में से कहीं भी मतलब कोई ऐसे आ जाए कोई बीच में वगैरह, तो सर मैं जैसे गिर जाता हूँ ना सीधा सर मेरे मुंह पे लगती है, और सर जैसे कि बच्चे कोई गिर जाता है पहले सर हाथ देते हैं, पहले सर हाथ पे लगती है बच्चों को, मतलब हाथ छिल जाते, तो मेरे सर सीधे मुंह पे लगती थी। कई बार सर मैं ऐसे गिर चुका हूँ और कई बार सर मैं मुंह पे चोट आई थी, फिर मेरे को सर दुख लगने की मैं सर कई बार गिरा हूँ कई बार मतलब ऐसे, फिर मैंने सर यार फिर मैंने सर मैं स्कूल में सर पढ़ता ना, बाप मेरे को सर ने सब कुछ मतलब मेरे को सर ये हिम्मत दी, सर ने बोला कि तू कुछ कर कर मैं तेरे मतलब पीछे सपोर्ट मेरा, तो फिर मैंने मेरे को मैम ने वीडियो दिखाया एक बच्ची कर रही थी किरणा जी, फिर मैंने सर उसको वीडियो को देखा है बच्ची कर पाती तो मैं नहीं कर पाता,
1: अच्छा।
2: फिर मैंने सर ये किरणा जी गेम सुना और इसमें सर मेरे को बहुत अच्छा अच्छा लगा है और बहुत सर ये गेम अच्छा है।
1: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी और खासकर हमारा जो श्रोता सुन रहे, चाहे भामाशाह हो, चाहे सरकार भी सुन रहे, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, और खासकर बच्चों का जो उमंग उत्साह भाई जिसमें हमारा शरीर साथ दे रहा है, उसमें ज्यादा मेहनत उसमें ज्यादा जो मेहनत करेंगे उसी मेहनत को जो इसमें जो डालेंगे तो इस नंबर कहेंगे, इस तरह कोई कंप्यूटर नहीं है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटेटर है, लेकिन इसमें जो विकलांग जो दिव्यांग है तो इसमें कंप्यूटर कोई नहीं होगा, बहुत कम गिना चुना मिलेगा, तो फिर भी उसमें आपको सबका अटेंशन आपका पास रहेगा क्योंकि आपका जो फिजिकल बॉडी जो दिखाई दे रहा है जिसमें दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर में सब कुछ करते, ये तो फर्स्ट स्टेप में आप प्रमोशन हो जाएंगे, इसका बाद नेक्स्ट आपका क्वालिटी
2: सर,
1: तो इसलिए आप थोड़ा सा वहां पर दूसरा गेम जैसे वॉलीबॉल हो चाहे हैंडबॉल हो चाहे क्रिकेट हो उसी फील्ड जैसे रनिंग हो, इसमें जितना मेहनत करेंगे ना उसी मेहनत को इसमें अप्लाई करेंगे तो तीरंदाजी में जो कि आर्चरी में तो जरूर कामयाबी होंगे, और आप अच्छा सिलेक्शन गुड सिलेक्शन, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे, मेहनत तो सभी जगह में करना पड़ता है लेकिन वो मेहनत को यहाँ पर लगाएंगे तो जरूर सक्सेस होंगे, ये मेरा विचार है
2: जी सर।
1: लेकिन आपका किस्मत और आपका लक, एक कदम लेंगे तो हजार कदम कोई ना कोई सपोर्ट करेगा, तो आपका जो एक कदम बढ़ा है ये कम बात नहीं है, पहला कदम आपका और हजार कदम सभी का
2: जी सर,
1: तो बहुत अच्छा लगा। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ,
2: अच्छा
1: जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। ये तीन चीज को रखा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो फुल स्टॉप, गया बीत गया, अभी हमें अभी फ्यूचर हमको बनाना है।
2: समझ गया,
1: समझ गया। तो समझदार को इशारा काफी है, और हमारा श्रोता मित्र भी सुन रहे हैं, खासकर आज दिव्यांग एक तिरंजा जी से मिले, बहुत खुशी लगा मैं, क्योंकि एक दिल का बात आज रखा, और कितना मेहनत करते होंगे उनका, एक तो खाना पीना उतना दो दिनचर्या होता है ब्रश से लेकर, उसमें क्या तकलीफ होता है, मैंने क्या ज्यादा चैलेंज आपका, कोई नहीं रहेगा एक्सपर्ट आपके पास, कोई नहीं रहेगा, तो आप किस तरह करते हैं?
2: सर मैंने मतलब
1: कैसे सीखा इसको?
2: अभी तो सर मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं लगती, पहले सर मेरे को स्टार्टिंग में सर बहुत मेहनत लगी, और सर मेरे को बहुत कई बार शॉर्ट पूछी।
1: कितने साल में आपका ये जो हाथ का जो एक्सीडेंट हुआ, जो तार लग गया, कौन सा साल?
2: मेरे मतलब 7 साल का था जब मेरे सर ये घटना हुई थी, अब मैं 16 साल का हूँ, 8 साल पहले की बात है।
1: 8 साल का जो शुरुआत कैसे रहा, कौन कौन सपोर्टिंग किया, कैसे आप करते थे? मम्मी पापा पहले सहयोग करते, कोई एक्सपर्ट, कोई?
2: हाँ जी सर, पहले सर मैं मतलब कुछ नहीं कर पाता था, सारे काम सर मेरे मम्मी पापा करते थे, मेरे को सब, मेरे को भी दुख लगना यार,
1: क्या लेना पड़ता है, क्या करे।
2: फिर सर मैंने सब कुछ मैंने सर ये पैर से मुझे सीखा, बहुत मेहनत लगी, और मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ सर।
1: जरूर करेंगे,
2: जरूर करेंगे, मैं सर करके दिखाऊंगा कि बस मेरे को सर पीछे थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए सर, मेरे को
1: सपोर्ट तो आपका इच्छा शक्ति जान भी बोलेगा ना तो मिल जाता है, जो मायूस होता है उसको कोई नहीं देता है, सरकार भी क्या, भगवान भी चुप रहेगा, लेकिन आप जो आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत देकर सब कुछ हो जाएगा। तो कैसे आपको तकलीफ आई शुरू शुरू में वो बताइए, जैसे आप कैसे सीखे इसको, जैसे ब्रश करना, कोई नहीं रहेगा तो आप कैसे ब्रश करते हैं? आपका दोनों हाथ, हमारा तो हाथ है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड है ना, तो आप कैसे करते हैं वो बताइए?
2: सब कुछ मैं पैर से करता हूँ, मतलब मेरे सुबह से लगातार शाम तक मेरा खुद का काम मैं खुद ही करता हूँ।
1: जैसे क्या क्या करते हैं?
2: मतलब मैं खुद जैसे ब्रश कर पाता हूँ, मतलब ये टी शर्ट को पहन पाता हूँ, पैंट को भी सर पहन पाता हूँ,
1: क्या बात,
2: और सर खाना भी खा लेता हूँ, और मतलब नाना धोना सब कुछ मैं कर लेता हूँ, कपड़े मतलब मैं धोता हूँ, और सर मैं हॉस्टल में तो मतलब सब कुछ सुविधा है, वरना तो मैं सर मैं खुद ही धो लेता हूँ।
1: अच्छा,
2: मतलब मेरा खुद का काम है, खुद मेरे को किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि तू मेरा ये कर ले, इसको जरूरत नहीं, मैं खुद का काम खुद ही करता हूँ।
1: तो उसमें कोई तकलीफ कष्ट आ रहा है?
2: सर पहले बहुत तकलीफ आई, अब सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अब मैं खुद आराम से करता हूँ।
1: तो वो चीज जो आराम करते हैं, जैसे एक जनरल हो गया, मैंने डेली रूटीन है
2: सर, डेली डेली मतलब एक आदत बन गई।
1: जी जी, ये भी एक आदत बनाना खेल
2: जी सर,
1: एक ही तो चांस है। पढ़ाई कहाँ तक?
2: पढ़ाई सर करता हूँ सर।
1: कितना, कौन सा?
2: अभी मैंने 10वीं का एग्जाम मैंने दिया है।
1: वो पैर में लिखा?
2: पैर से जी सर, सब मेरा मतलब उमरक वगैरह सब कुछ मैं पैर से करता हूँ।
1: ये यूनिक है,
2: इससे
1: साधारण लोग तो बहुत मिलेंगे।
2: इससे मैंने सब क्लास कर दी, पहले दूसरे तीसरे सब क्लास मैंने कर दी, चौथी तीसरी सब मैंने सर 5 पैर से किए सर।
1: चलो ये तो ऐसा आप समान जो दिव्यांग है
2: जी सर,
1: तो उनके लिए क्या कहेंगे?
2: इनके लिए सर यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में हार मत मानो, जिंदगी से लड़ना सीखो, जिंदगी से लड़ना सीखो। मतलब कि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा जो अपने आप को मतलब कोई सी कमजोर समझते कि मेरे पास है नहीं, वो नहीं, मैं दिव्यांग हूँ। दिव्यांग तो दिव्यांग के पास सब कुछ है, सब कुछ वो कर पाते, अपने मन में काम मैं करूंगा तो एक दिन उनको करके दिखाएंगे।
1: इसमें भी कुछ मैंने हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक सोच
2: जी सर,
1: और दिव्य गुण जब आ जाएगा तो जैसे बच्चन हमारा मीठा बोल हो
2: जी सर,
1: हमारा चेहरा में हर्षित मुक्ता हो, और जो भी है उसमें खुशी रहना है, और किसी को निंदा नहीं करना है, खुशी देंगे तो हमें खुशी मिलेगी। क्योंकि जैसे हम खेल में एक एरो, जैसे ये एरो का कलर जैसे फेंकेंगे ना वापस वही आएगा ना
2: जी सर,
1: तो रेड नहीं आएगा, क्योंकि हमें फेंके इस ब्राउन कलर का, तो रिटर्न क्या आएगा, ब्राउन का आएगा।

0: जब जब करते उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, उसमें वही है
1: जी सर कि मतलब कि
0: सपोर्टिंग चाहिए,
1: सपोर्ट चाहिए मेरे को, मतलब कि मैं हाँ। डरता हूँ मतलब कभी ये सर प्यार चलता है सही है, इधर आ जाए तो गिर जाता हूँ सर लगती सीधे मुंह पे, क्योंकि मेरा सपोर्ट नहीं है सर गिरने पे।
0: जी जी जी, इसलिए पैर से आप क्या क्या कर सकते हैं, पैर से जैसे आपने सब काम कर रहे हैं
1: जी सर,
0: पूरा A to Z जो भी आवश्यकता है, चाहे करियर बनाने के लिए भी इस पर ही निर्भर है, मुक्त है ही है लेकिन उसमें बोलना कुछ नहीं होता, इसमें बुद्धि का काम है, संस्कार का काम है, मान बुद्धि और संस्कार, ये तीन तो तंदुरुस्त है आपका, भले शरीर आपका एक अंग गया है दूसरा अंग तो है ही है
1: जी सर, जैसे कि सर मैं हाथ ही नहीं तो मैं प्यार ही
0: पैर हाथ ही, हाथ पर दोनों काम कर रहा है, डबल काम कर रहा है, काम तो ही है हाथ पर, लोग तो आंख भी नहीं है, लोग दुनिया को नहीं देख रहा, आज से तो उससे तो बेटर आप
1: जी सर अच्छे,
0: जिसका श्रवण नहीं है वो भी तो सुन करता है, जिसका मुख नहीं पड़ता तो वो भी तो आप देखे होंगे।
1: आज हम आज जब मैं सर जहाँ पर रहता हूँ ना सिरोही में, वहाँ पर सर ऐसे बच्चे हैं जो ना तो सर बोलते हैं ना सुनते हैं,
0: सुन पाते उसका तो
1: वो सर पढ़ाई वगैरह सब कुछ
0: पूरा चीज देख पाते हैं सब कुछ, क्योंकि आंख जो है ना पूरा दुनिया को देखता है।
1: मैंने सर ऐसे बच्चे देखे जो इनके आंख भी नहीं है कान भी नहीं है ना सुनते है ना बोलते, मैंने सब कुछ सर देखा,
0: लेकिन उसमें ज्यादा बहुत मेहनत करना पड़ा, इससे भी ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि आपका एक जो है उसमें भी आप इसमें कर पाएंगे, कर पाएंगे आपका ये काम हो पाएगा, उनसे बेटर कर पाएंगे है ना। तो तीरंदाजी जी में तो आप शुरुआत में जो जिस प्रशिक्षण लिए कैसे आपको इच्छा हुई, जब तीरंदाजी से कर पाएंगे इस जो भावना आया है तो कैसे फिर देखें ना कोई प्रेरणा दिया इस खेल को ना, आपने खुद लिया चुना ये आर्चरी के लिए, आप कैसे इंटरेस्ट लिए
1: ये सर आर्चरी को, मतलब मैंने सर पहले तो मैं सर जानता ही नहीं था तो आर्चरी सर क्या चीज है
0: जी।
1: फिर सर मैं यहाँ पर स्कूल में रहता हूँ ना, वहाँ पर सर मेरे को सर ने एक वीडियो दिखाया जिसके से एक बच्ची है जिसके से दोनों हाथ नहीं है, वो सर पैर से तीरंदाजी कर रही है, फिर मैंने सर को दिखाया, फिर सर ने मेरे को सर ने बोला तू कर पाएंगे, मैं सर आराम से कर लूंगा, वो सर करते तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं सर उससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। फिर मेरे को सर जहाँ पर भी हमारे सिरोही में जो तीरंदाजी का कोई है मैम वगैरह कोच वगैरह वापस सिखाते हमको, तो फिर मैं वहां पर गया, फिर मैंने देखा बच्चे को बच्चे करते हैं, फिर मेरे मैम को बोला कि मैम मेरे को मैम कैसे सीखूं, फिर मेरे को मैम ने ये मतलब दिया धनुष दिया
0: जी जी।
1: फिर मैंने एक दिन पकड़ा पैर में, तो पहले दिन दिक्कत हुई, तीसरे दिन दिक्कत हुई, उसमें सर दिक्कत आ रही है ज्यादा तो मेरे को दिक्कत आ रही है, और मैं अभी तक इसको करता हूँ अच्छे से करता हूँ, पर मेरे को सर इससे भी अच्छा करना है, अच्छा करके दिखाना है।
0: तो आपका बात सुनते सुनते मैं तो भाव विभोर हो गया, मैंने कितना एक साधारण व्यक्ति और एक दिव्यांग व्यक्ति में कितना अंतर, और फिर भी उनका जो सपोर्टिंग जो दोनों हाथ का जो बल है वो पैर में आ जाता है, जिसका चलता डबल पावर डबल इंजन लग जाता है, और वो ऊपर वाला तो किसी हिसाब से बनाया है वो उसका ड्रामा फिक्स है, सभी का अलग अलग पार्ट हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ड्रामा का हिसाब किताब जो स्टुक्त हो रहा है किसका साथ क्या बात होगा वो भी प्ले हो रहा है, तो उसमें खुशी रहना है, उसी में ही जिंदगी है, तो कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जैसे मैंने पहले भी बोला था जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा वो भी अच्छा हुआ, कैसे अच्छा होगा वो हम नहीं सोचेंगे, उनको पता है ना, क्योंकि नहीं होता तो हम नहीं मिलते नहीं होता तो आपका बात कोई नहीं सुनता, साधारण व्यक्ति को कोई पूछता नहीं, लेकिन आपको तो सभी लोग पूछेंगे, स्वयं भगवान भी पूछेंगे, ठीक है, तो इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, और खास कर जैसे आप क्या आशा रखते हैं, जैसे तीरंदाजी जैसे इसको जो कहते हैं क्या कहते हैं इसको पूरा,
1: इसको तो सर बोलते हैं इंडियन
0: इंडियन
1: इंडियन जो कि
0: धनुष तीर
1: धनुष
0: इंडियन है
1: जी सर,
0: तो ये धनुष जो कि हमारा गणेश जी का इसमें प्रैक्टिस करते हैं, और ये इंडियन है
1: जी सर,
0: इंडियन में तकलीफ होती है क्या तकलीफ, इसमें आपको चलन में क्या तकलीफ होती है,
1: जैसे कि मतलब मैं सर इधर से पकड़ता हूँ
0: जी,
1: जैसे कि मतलब आप सर हाथ से पकड़ते हो इसको पूरा सर आपके से ये अंदर से मतलब यहाँ से पूरा आता है, मेरा सर इधर आता नहीं है,
0: वो इसमें लगता है आपका,
1: इसमें सर ये सर ऊपर ऐसा इधर लगता है, ये
0: तो जैसे भी लगा हुआ है
1: ये सर,
0: तो ये इंडियन में प्रॉब्लम है
1: जी सर,
0: तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए क्या आशा रखते हैं आप, मैंने क्या चाहते हैं
1: ये सर, मतलब ये हाथ वाले बच्चे चलाते हैं,
0: वो हाथ वाला
1: जो सो ये मैं पैर से चलाता हूँ,
0: पैर वाला भी ऐसे कुछ है का धनुष,
1: पहले बार सर इधर एक बच्चे के पास है, मतलब वो सर भारी है ज्यादा मतलब वजन में, मेरे लिए सर आता मतलब कम वजन में आता है हल्का सा आता है,
0: अच्छा वो पैर में चलाता है क्या,
1: वो सर पैर से मतलब वो सर यहाँ से पकड़ वगैरह टाइट है, ये सर मेरे को खींचना पड़ता है इस पैर से ऐसे, तो वो सर आता है मैं सर कंधे से खींचूंगा ऐसे ऐसे, और मुंह से मैं सर चलाऊंगा,
0: अच्छा
1: वो सर अलग ही आता है,
0: अच्छा वो चीज कितने का कॉस्ट आता है,
1: 4 लाख का आता है सर,
0: 4 लाख, अब ये 10,000
1: 10,000
0: 4 लाख।

0: 10,000
1: बहुत फर्क है।
0: बहुत फर्क है। ठीक है, इच्छा रखिएगा। तो हमारा लिसनर हो चाहे हमारा इसको देखा है, और इससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट वो समय अनुसार कोई ना कोई मदद करेगा,
1: जी
0: तो
1: सर,
0: सरकार चाहेगा तो क्या है, कुछ
1: जी सर,
0: नहीं है तो कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। और मुझे और एक हमारे श्रोता मित्र से हम चाहते हैं, आप जो इंडियन धनुष में अभी जो तीर और धनुष जो
1: जी सर,
0: देखा है उसमें आपका तकलीफ तो आपने बताया, लेकिन और जो इससे इम्प्रूवमेंट करने के लिए दूसरा क्या नाम बोला है,
1: कंपाउंड सर होगा,
0: कंपाउंड, उससे वो धनुष से आप कर पाएंगे,
1: जी सर,
0: तो इससे करियर आपका जो करियर बनना चाहेंगे इसमें
1: जी सर,
0: ना, कुछ डॉक्टर इंजीनियर पुलिस इसमें नहीं जाएंगे।
1: इसमें सर अभी सर मेरे को ये अच्छा लगता है, और सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई भी अच्छी लगती है।
0: ने पढ़ाई के बाद कहाँ तक पढ़ाई करेंगे?
1: अभी सर सारी पढ़ाई कर रहा
0: ग्रेजुएशन,
1: हूँ,
0: ग्रेजुएशन तक,
1: जी
0: बीए,
1: सर,
0: बीएससी जो भी मिलेगा,
1: जी सर,
0: तो बढ़ाकर क्या बनेंगे, करियर किस में बनाएंगे? खेल में ही बनाएंगे,
1: जी सर,
0: गेम में ही।
1: क्योंकि सर मेरे को गेम अच्छे अच्छे
0: देखो,
1: लगते हैं।
0: ग्रेजुएशन होने के बाद तो पैसा घर में इतना हो जाता है, क्या करते पिताजी?
1: दस ऑटो चलाते हैं
0: कितना भाई बहन? चार
1: मेरे सर, 3 सर भाई है, 1 बहन है।
0: भाई बहन, आप सबसे बड़े?
1: नहीं मैं सर भी इसमें, मतलब मेरे से बड़ा भी है, छोटे
0: सभी
1: भी,
0: बच्चे पढ़ते हैं,
1: जी सर,
0: माँ बाप पैसे जो ऑटो से जाता है उसमें
1: माँ
0: से
1: मम्मी करते ही है, पापा सर ऑटो ऑटो चलाते हैं, भाई
0: खेती बाड़ी,
1: कुछ नहीं सर,
0: पशु,
1: कुछ कुछ नहीं सर,
0: अच्छा बस ऑटो से जो होता है सबका,
1: जी सर,
0: फिर उसमें भी सबका करियर बनाना है,
1: जी
0: पढ़ाई
1: सर,
0: कोई भी एक बन जाएगा तो सबका मेंटेन करेगा।
1: वही
0: ठीक
1: सर,
0: है, जब तक, अच्छा इसलिए करियर आपको बनाने के लिए जो स्कोप है, इसमें स्कोप है, इसमें पैसा रोजगार करने के लिए।
1: फिर अभी तो सर हमारे साथ जा रहा है जो भी सर खर्चा वगैरह लगा वो सर स्कूल से आ रहा है,
0: स्कूल चाह रहा है,
1: मतलब कि जो भी जैसे कि मतलब मेरे को यहाँ पर आने के पैसे लगे जो भी रहने के, वो सर सर
0: स्कूल
1: हमारे
0: से
1: साथ
0: करेगा,
1: सर सर दे रहे।
0: स्कूल जब तक तो पढ़ाई तब तक, इसके बाद
1: इसके बाद भी सर मेरे को ये मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरे को आगे मैं सब करके दिखाऊंगा ना, इसमें सर सरकार हमको सब कुछ सपोर्ट देती है।
0: हो
1: मतलब कोच ने सर ने बताया था सर ने कि मतलब ये सर मेरे को एक बार कंपाउंड मेरे पास में आ जाए ना, तो सर मेरा मतलब मेरे इधर इधर में सर दिक्कत नहीं आती, जा सीधा सर यहाँ से सर नेशनल मेरे को खेलना खेलना पड़ता है।
0: अभी अभी राजस्थान में है, सिर्फ
1: तो अभी सर
0: राजस्थान में,
1: मेरे को जिला वगैरह ये नहीं, डायरेक्ट सर डायरेक्ट नेशनल मेरा होता है,
0: अभी नेशनल कभी गए? हाँ,
1: कभी नहीं गया, पर इसमें इसमें तो मेरे को ये 3 राज्य में सर मेरे को जाना आ गए।
0: इसमें ही फील्ड में ही जाना है तो
1: हाँ
0: नेशनल में मौका मिलेगा तो जा सकते
1: जी
0: हैं।
1: सर, मैच सर हमारा टूर्नामेंट होते है,
0: हाँ हाँ
1: मतलब जैसे कि हमारे सर दिव्यांग के अलग ही होते हैं,
0: जी,
1: पैरा ओलंपिक बोलते हैं,
0: अच्छा पैरा ओलंपिक में
1: पैरा
0: आपका,
1: में
0: उसमें ये धनुष वाला तो बहुत अच्छा है, यहाँ का
1: मतलब कि
0: खासकर।
1: वो जो मेरे वो आगे सर बच्चे आते हैं उनके पास सारे सर वो कंपाउंड ही होते हैं, मेरे पास ये मतलब ये से
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितने जो है उसमें संतुष्ट
1: से
0: करो,
1: ये
0: उसमें
1: जो ही है
0: सीखना है,
1: उसे, जी
0: वो उसके लिए वो नहीं बोलकर हमको नहीं करना है, बस एक
1: सर,
0: बार बोलना भाई, जब समय आएगा तो आ जाएगा, लेकिन उससे बेटर तो लोग देखेंगे ना, तो
1: जी
0: करने,
1: सर,
0: इसमें करके भी देखा सकते हो, उसमें तो सब लोग कर लेते, लेकिन
1: जी
0: इसमें तुम कर लेगा तो तुम्हारा अधिक प्लस पॉइंट आएगा ना,
1: जी सर,
0: वो तो सुविधा साधन रहेगा, उसमें तो सभी लोग कर लेते, जहाँ कोई सुविधा साधन नहीं उसमें करके देखो, देखाएगा जब आ जाएगा आपके पास वो भी कर सकते हैं, जब तक नहीं तो इसमें तो बॉन्ड रुकना तो नहीं है ना,
1: नहीं,
0: वो नहीं आया तो हमारे पास नहीं है, तो लोन जब हो जाएगा तो सरकार उसको लोन दे देगा, कुछ ना कुछ कराएगा। ठीक है, जब इनकम सोर्स होना चाहिए, किस तक, कब तक हम किसको मांगेंगे,
1: जी
0: पहले
1: सर,
0: इसका आदर्श हमें कुछ इनकम होना चाहिए, सरकार तो दे रहा, कब तक देगा, जैसे स्टूडेंट लाइफ में तब तक पढ़ाई तब तक मिल जाता है, इसके बाद
1: जी
0: फिर आपको इसी स्टूडेंट पीरियड में ही आपको कुछ करके आगे बढ़ना है,
1: सर,
0: कहीं अभी फ्री में मिल रहा है, बाद में तो पैसा नहीं लगेगा, जब इसमें आप आगे जाकर टॉपर जाएंगे नेशनल लेवल, तो आप सब कुछ मिलेगा, सरकार तब देगा,
1: जी सर,
0: लेकिन अभी जो 4-5 साल है तो बहुत मेहनत करना है, उसमें सोना संग दोष मोबाइल से सब जहाँ आवश्यक नहीं वहां करना है, वो समय को यहाँ लगाना है,
1: जी सर,
0: क्योंकि 24 घंटा सभी का पास है, व्यर्थ से मुक्त, जहाँ आवश्यक नहीं वहां पर टाइम बर्बाद नहीं करना, ये 5 साल बस स्टूडेंट लाइफ में ये याद रखना,
1: जी सर,
0: 5 चीज, बड़ों का बात मानना, तुमसे जो बड़े हैं
1: जी सर,
0: जो भी बोलता है आपको भलाई के लिए, उसमें नाराज नहीं,
1: बोलो
0: बोले उस
1: नारे
0: समय के लिए
1: में
0: आपको खराब लगेगा, लेकिन आगे आपको
1: अच्छे
0: आपका
1: के
0: माँ
1: लिए,
0: बाप, बड़ा भाई हो, चाहे कोई मीडिया वाले हो, कोई कोच आपको यदि बोल रहा है तो आपका फायदा के लिए,
1: जी
0: बड़ों का
1: सर,
0: बात मानना, ये एक पूरा लिख लेना, बड़ों का बात हमें
1: मानना
0: हाँ
1: चाहिए,
0: जी करना, ना जी नहीं, हाँ
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: क्योंकि
1: सर,
0: हमने देखा आप हम हमेशा हाँ जी करते, ये इसमें तो पास हो जाएंगे। ठीक है, 24 घंटा से 6 घंटा, 6 आवर्स एक्स्ट्रा
1: जी
0: देना है, कहाँ से लाएंगे, सोना कितना समय सोते हैं,
1: मतलब मैं अभी फ्री सर इसको, मतलब मैं शाम को नहीं आता इधर,
0: हाँ सोना 5-6 घंटा, बस छह
1: पांच
0: घंटा
1: छह
0: छह घंटा से ज्यादा नहीं सोना, और बाकी समय आपका पास है
1: जी सर।
0: मतलब 24 घंटा से 6 घंटा प्लस 18 घंटा, 18 घंटा से बस फ्रेश होंगे 2 घंटा जाए
1: जी सर,
0: और बाकी समय पढ़ाई स्टडीज में 6 घंटा 8 घंटा दे दे, फिर भी आपका 8 घंटा मिल जाएगा। किसे मोबाइल से कम रहेंगे, खाना पीना जल्दी जल्दी खाकर उसमें फोकस देंगे, तो 4-5 साल जब 6 घंटा एक्स्ट्रा देंगे इसमें
1: जी सर,
0: एक्स्ट्रा मैंने ऐसे नहीं बॉट कर इसमें पूरा ध्यान से, तब जाकर हो पाएंगे। एक तो 6 घंटा एक्स्ट्रा देना है, बड़ों का बात
1: मानना है,
0: मानना है, और अपना जो आहार व्यवहार जो खाना और आपका जो शारीरिक एक्सरसाइज जो करते हैं वो भी रेगुलर करना है, 3 चीज याद रखना, और भोजन जो है अल्पाहार ज्यादा नहीं, आलसी लिमिट से, ताजा जितना आवश्यक उससे कम, जागा जैसे रहे पूरा भरत हो तो आलसी आ जाएगा, और तेल मसाला प्याज लहसुन जो उत्तेजित करता है ना वो चीज नहीं खाना भोजन में, क्योंकि शरीर के लिए जो आवश्यकता है वो चीज खाना है, जीवा के लिए नहीं, ठीक है। ये चीज रखेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। एक तो बड़ों का बात मानना है, 6 घंटा एक्स्ट्रा जितना कर उसको वो तो करना है, इसके बाद और 6 घंटा तो कहाँ से लाएंगे वो आप आपका ऊपर है, कैसे संग दोष से कम, व्यर्थ से मुक्त, मोबाइल से कम और निद्रा से कम, ठीक है। इतना करेंगे तो 3 कर पाएंगे
1: सर,
0: तो ये करेंगे तो ऊपर वाला भी मदद करेगा, और आप ऊपर वाले तो मदद तब करेंगे जब आप कुछ करेंगे। तो और क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, आज आपको रेडियो मधुबन आपका बात को सुनने के लिए, इसका पहले कोई मीडिया वाला आए थे सुन रहे थे, आप बोल रहे कोई मीडिया वाला भी आपका इंटरव्यू लिया था?
1: इंटरव्यू वाले सर आए थे सर, मेरे पास शुरू में भी सर 2-3 आए थे, या इधर भी सर मैंने जब टूर्नामेंट में सर स्टार्टिंग में 4 तारीख को मैंने सर यहाँ पर डेमो दिया था, तो उस समय मेरे को एक इंटरव्यू देने देने के लिए आए थे।
0: कोई बात नहीं, आप करते रहना है, इसके बाद फिर ऊपर वाला अपना कर्तव्य आप कर रहे हैं
1: जी सर,
0: ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर, और हमारा दिव्यांग भाई, दिव्यांग तो हम नहीं कहेंगे अभी तक, उनका मन बुद्धि और संस्कार तीनों तंदुरुस्त है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी है, क्योंकि वो मन बुद्धि और संस्कार जिसका तंदुरुस्त है ये शरीर तो ऑटोमेटिक चलेगा। जैसे गाड़ी का वाले एक ही चक्का खराब हो गया, लेकिन उस ड्राइवर का इतना बुद्धि होता है वो 3 चक्का में भी
1: गाड़ी को चला
0: जाता है, 4 चक्का वाला से आगे जाता है, तो उसमें वाह वाह तालियां बजाते हैं
1: जी सर।
0: तो आपका दो मैंने एक पहिया नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 पहिया को भी टक्कर देकर आगे निकलेंगे, जैसे ड्राइवर मन बुद्धि और संस्कार, आपका मन बुद्धि संस्कार तंदुरुस्त है, शरीर ऑटोमेटिक तंदुरुस्त होगा, है कि नहीं, इस मानते हैं कि नहीं? भले गाड़ी खराब हो कितना भी, लेकिन उसका ड्राइवर जब सही होगा
1: गाड़ी अपने आप चलेगी,
0: और ड्राइवर जब खराब होगा कितना भी गाड़ी होगा तो एक्सीडेंट करा देगा
1: जी सर।
0: तो ये शरीर का गाड़ी है,
1: गाड़ी
0: शरीर इज द मटर, बॉडी इज द मटर, सोल आत्मा, सोल इज द ड्राइवर ऑफ द बॉडी, ये शरीर को कौन चलाता है? मन और बुद्धि, मन और बुद्धि से आप सब काम कर पा रहे
1: जी सर,
0: शरीर का कोई काम नहीं है, इंटेलिजेंट आप समझ गए, तो आप कभी भी नहीं सोचा मैं एक गाड़ी नहीं हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ
1: जी सर,
0: इस शरीर का मैं मालिक हूँ, मैं जैसे चलाऊ जहाँ चलाओ इस कर्म इंद्र से करा पाऊंगा, है कि नहीं। तो ये चीज एक पॉइंट कोई आपको इतना बताया नहीं होगा, मैं एक ड्राइवर हूँ
1: जी सर,
0: आत्मा ड्राइवर है, आत्मा शब्द मालूम है ना, सो मन बुद्धि है ना, मन बुद्धि
1: जी सर,
0: मन बुद्धि को देख नहीं सकते लेकिन है, आंख से देखती, मन से संकल्प करते, ऐसे करो
1: जी सर,
0: जो करने वाला को ये बताते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आज से मिलकर, तो शाबाश आगे बढ़ते रहिए, ये हमारा दुआ है, और रेडियो मधुबन परिवार आपका साथ है, और ऊपर वाला भी आपका साथ रहेगा। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। आप जाते थे क्या कहना चाहेंगे रेडियो मधुबन और ब्रह्मा कुमारी को, क्या आपको लग रहा है ऐसे ब्रह्मा कुमारी वाले आए हैं रेडियो मधुबन आपसे मिले हैं, आपका बात तो आपको क्या महसूस हुआ, क्या लग रहा है?
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं तो सर लोगों को कहता हूँ कि मेरे को ये चाहिए, पर आप सर कहेंगे तो मतलब वो मतलब मानेंगे सर आप, आपकी बात वगैरह ऐसे, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं आज से, गणेश और पवित्र भाई दोनों से हम इजाजत लेते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी वक्त इसी समय और किस बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा धन्यवाद, आभार।

कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

0: नमस्कार साथियों, हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और आज है आपके होस्ट आपके साथ अपने फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मैं मन की आंखों में से आज है एक शानदार आवाज जो अपने गिटार के माध्यम से आपके बीच लाती है जिंदगी की मुस्कुराहट और एक जिंदगी की सुंदर आवाज जो भर देती है हमारे जीवन में मधुर संगीत। लेकिन कहते हैं ना कि मन की आंखों से में हम हर बार टटोलने की कोशिश करते हैं मन की आंखों को, कि मन की आंखें कैसे जीवन को आगे ले जाती हैं, चाहे आपकी जिंदगी में अंधेरा हो या प्रकाश। और रियली में आज हमारे साथ हैं प्रकाश। प्रकाश डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम जयपुर, पिंक सिटी ऑफ राजस्थान एंड पैलेस ऑफ इंडिया। सो वेलकम प्रकाश इन अवर शो मन की आंखों से विद दिस
1: हेलो
0: ओन
1: शरद।
0: फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। वेलकम प्रकाश।
1: हेलो फ्रेंड्स और हेलो शरद, कैसे हैं आप? और थैंक्स फॉर
0: मैं
1: वेलकमिंग मी।
0: अच्छा हूं प्रकाश, और आपकी आवाज सुन के और अच्छा हो गया हूं। श्रोताओं जो भी माउंट आबू से हमें सुन रहे हैं हमारे रेडियो वेव्स पे 107.8 FM पे, वो हमारे सुन सकते हैं हमारे ऐप पर भी, रेडियो मधुबन पर। डाउनलोड करें अपने फोन में और सुनते रहें जीवन की आवाज, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी प्रकाश,
1: हेलो
0: प्रकाश
1: सर।
0: हम लोग जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी बचपन की यादों के बारे में। उस पर तो आएंगे ही, और रंगों की इस दुनिया में प्रोमिनेंट कलर ब्लैक के बारे में भी। तो हालांकि मैं ब्लैक की बात कर रहा हूँ, एक फिल्म भी थी ब्लैक,
1: इट्स
0: लेकिन
1: माय फेवरेट कलर मैन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कलर है वो यूनिवर्स का। यूनिवर्स का कलर ही ब्लैक है।
0: यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, दैट्स ट्रू। तो आप प्रकाश जो है एक बिजली चैलेंज साथी हैं और FCI में अफसर हैं, इसके साथ साथ एक म्यूजिक के लर्नर हैं, स्टूडेंट हैं, और रॉक स्कूल से गिटार में भी एक अच्छी क्वालिफिकेशंस के साथ अपने संगीत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपकी शुरुआत की स्कूलिंग के बारे में जानना चाहूंगा प्रकाश।
1: स्कूलिंग एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि डैड आर्मी में थे तो हर 3 साल मेरा चेंज होता था। जैसे मेरा होम टाउन जयपुर है, बट मेरा मेरा बॉर्न गुवाहाटी में हुआ, तो
0: जी
1: 2 साल बाद फिर मैं उत्तराखंड चला गया। तो मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई उत्तराखंड रानीखेत में, बहुत खूबसूरत जगह है वो
0: जी जी
1: इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे वन एट अ टाइम 7 रेनबो एक साथ दिखते थे, बहुत खूबसूरत जगह है वो।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: तो
0: बहुत
1: वो उसकी यादें अभी भी ब्रेन में है, बर्फ पड़ना, वो कलर दिखना, फिर केदारनाथ बद्रीनाथ जाना, तो वो 3 साल मेरे लाइफ के सबसे खूबसूरत थे। सीढ़ी नुमा खेत देखना, तो रानीखेत बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम जयपुर, फिर इंदौर, फिर बॉम्बे, फिर लास्ट में जयपुर। ऐसे मतलब सारी डिफरेंट जगह देखने का मौका मिला था बचपन में, थैंक्स टू मॉम माई डैड।
0: अपने पेरेंट्स के साथ आपने पूरे देश की यात्रा की, और इस हमारे देश के एक वृहद इलाके को आपने देखा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की यादें हों या चाहे हमारे नॉर्थ के एक्सट्रीम हिमालय के पहाड़ हों
1: और सबसे
0: या
1: खूबसूरत तो केदारनाथ था। जब मैं 4 साल का था तो मैं केदारनाथ गया था, मुझे अभी याद है, इतना खूबसूरत था। पर और उसमें मेरे को अभी भी याद है, मैं खाई में गिरते गिरते बचा था, घोड़ा जब उतर रहा था तो ऑलमोस्ट ही कॉलैप्स, बट बच गया।
0: हाँ, कुछ ऐसी ही घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी जो है वो कांची है, कुछ पल में भी रह सकती है और जा भी सकती है
1: हाँ,
0: ना।
1: उस दिन रियलाइज हुआ था कि हाँ भगवान होते हैं, भोलेनाथ हैं, जब
0: क्या बात।
1: बचा, क्यों मुसीबत में ही तो पता चलता है भगवान का।
0: बहुत बढ़िया। तो स्कूलिंग करने के बाद आपने इंजीनियरिंग किया, दैट इज कंप्यूटर साइंस,
1: हाँ
0: और
1: सर।
0: कंप्यूटर साइंस की ब्रांच का सिलेक्शन कैसे किया आपने?
1: एक्चुअली वो मेरे को बचपन से सॉफ्टवेयर पसंद है, और मेरे बड़े भैया हैं, ही इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मुझे बचपन से कंप्यूटर गेम्स खेलना, कंप्यूटर पे काम करना बहुत पसंद था, तो सॉफ्टवेयर बहुत पसंद थे। मेरे भैया ने भी किया, तो वही जो होता है ना कि पसंद भैया मेरी एक जैसी थी, तो वही मेरे को भी प्रोग्रामिंग करना पसंद था कि कंप्यूटर के गेम्स बनाऊँ और इंटरेक्ट करूँ, कंप्यूटर को और एक्सप्लोर करूँ। तो इसके लिए मैंने फिर मुझे यही ब्रांच अच्छी लगी कि जिससे मैं, जो मेरे सवाल हैं, जवाब हैं, वो मिले मुझे, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस करी थी कि
0: क्या
1: प्रोग्रामिंग कर
0: बात,
1: सकूं,
0: क्या बात है।
1: गेम बना सकूं। मुझे गेम बनाने का बहुत शौक था कि खुद का गेम हो।

0: कि जी ले तेरी जिंदगी, तो फिर कैसे ये घटना हुई और आप कैसे मैदान में पहुंच गए इस खेल के?
1: वो एक्चुअली जो जिस सिचुएशन में है वो कभी पता था नहीं, स्कूल टाइम से था, गेम्स खेलना है, गेम्स में खेलता था, एक्सप्लोर ट्रैवल करना मुझे पसंद था, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस करी। यही चलता रहा, जब इंजीनियरिंग खत्म हो गई तब भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अच्छी जॉब लग गई मल्टीनेशनल कंपनी में, और तब भी कुछ नहीं पता था हो रहा क्या है, तब भी ये सोचता था कि जो प्लान कर रहा हूँ वही लाइफ में चल रहा है। और एक होता है ना, आप अपना स्केल बना देते हैं कि मेरे को ये करना है ये करना है, तो जो जो मैं सोच रहा था वही हो रहा था। और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, और फिर दुबई की एक कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मेरे को जाने था, बट तभी सडनली पता चला कि आई हैड अ ब्रेन ट्यूमर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रेन ट्यूमर आई हैव लॉस्ट माय आईसाइट। तो फिर इतना आगे जाने के बाद लाइफ वापस जीरो से स्टार्ट करनी पड़ी, तो फिर जब जीरो से करी तो लाइफ चेंज, तो उसके हिसाब से फिर नई लाइफ बनाई है, अभी भी चली रही है।
0: और उस लाइफ में लगा कि जो डगर को आपने चुना था, जो ब्रांच आपने इंजीनियरिंग की चुनी थी, कभी नहीं सोचा होगा कि ये विजुअली चैलेंज लोगों के लिए फेवरेबल ब्रांच है, और
1: है,
0: ये ऐसी
1: बिल्कुल
0: ब्रांच
1: सही कह रहे हैं
0: है,
1: आप।
0: और ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में एक विजुअली चैलेंज सामान्य व्यक्ति को भी कॉम्पीट कर सकता है, बराबरी के साथ खेल सकता है।
1: श्योर, बिल्कुल सही है सर, कोई इशू ही नहीं है, ये मैं फील कर रहा हूँ ना सर, मैंने तो दोनों लाइफ जी है, तो थैंक गॉड मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच करी, तो वो मुझे फिर, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं जब अब अगर मैं कंपेयर करूँ कि अगर मेरी ये ना होता तो मैं अपनी इंजीनियरिंग को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाता जितना अब मैं कर पा रहा हूँ उसको, जो अपनी क्वालिफिकेशन को, क्योंकि उसकी वो जो मैंने क्वालिफिकेशन ली वो अब मैं ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि थैंक गॉड मैं ये कर पा रहा, वरना एहसास मुझे कभी नहीं होता कि मैंने ये क्यों किया वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से एजुकेशन।
0: साथियों, सर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जयपुर से प्रकाश चौधरी को। प्रकाश फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आईटी डिपार्टमेंट में मैनेजर की पोस्ट पे काम करते हैं, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स, पोर्टल्स या व्हाट्स एवर, हम जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग उनके ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में कार्यरत हैं। तो वो भूमिका क्या है प्रकाश, जो
1: हाँ,
0: आपको FCI के लिए उपयोगी बनाती है दिव्यांग होने के बावजूद?
1: एक्चुअली मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखो ऑनेस्टली, अब जैसे पहले मेरी आईसेट है तब भी मैं आईफोन यूज करता था, बट मुझे वो पता नहीं था उसके अंदर वॉइस ओवर नाम की कोई चीज है जिससे लाइफ इतनी अच्छी चीज है। बट जब मेरी ये हुआ और जब मेरे को पता चला, डॉक्टर ने बताया कि टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर होता है, तो तब पता चला कि मैं कितना चीजें यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं आता सिर्फ। अब मैंने जैसे टेक्स्ट टू स्पीच का है तो हम इंडिपेंडेंटली मोबाइल लैपटॉप ये सब यूज कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, बाकी जो नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं हम भी कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ एडवांस नहीं हो पा रहा, कोई इशू नहीं आ रहा।
0: जी, ये बात तो है कि आप किसी तरह की बाधा महसूस नहीं कर रहे हैं अपने काम में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस या वेब, या कहें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा दखल उतना ही महत्वपूर्ण और इतना ही शानदार है जितना कि एक सामान्य व्यक्ति का, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर ने, या टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बदला है, और
1: बिल्कुल सर,
0: आप जैसे डेवलपर्स दुनिया की जिंदगी को आसान बना रहे हैं। तो हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि यह जो घटना आपके साथ हुई, ये कॉलेज के दौरान हुई, लेकिन वो झटका कितना बड़ा झटका था, कैसे आपने इसका ओवरकम किया, क्या मानसिक प्रभाव आपके मानस पटल पर रहे?
1: और वैसे सर वो तो रहता ही है कि आपकी इंजीनियरिंग हो गई, आप बस अपनी ड्रीम जॉब के पास जा रहे हो, सब कुछ होने वाला है, और एकदम से पता चला कि अब आप कर ही नहीं सकते, आप जितना आपने किया वापस जीरो पे आ गए, तो वैसे सर उस वक्त लगता है, बट एक वो होता है सर जीने की चाह और थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है, तो इसलिए सर फिर उसके
0: जी
1: बाद धीरे धीरे किया, लगा तो था सर, बट अब सोचता हूँ कि हाँ लगा था, बट थैंक्स टू गॉड मैं आगे मैंने कोशिश करी तो आगे मैं चल पाया, और अभी सीख रहे हैं सर, शौक तो लगा था सर, बट
0: ये
1: दैट्स
0: कुछ वैसा
1: लाइफ।
0: ही शौक है, यह कुछ वैसा ही शौक है जो आपको संगीत के शौक की तरफ ले गया। इस शौक ने आपको संगीत का शौक दे दिया।

0: तो ये
1: क्या
0: संगीत
1: बोल
0: का शौक कैसे मिला आपको?
1: रहे? एक्चुअली क्या, म्यूजिक मुझे बचपन से बहुत पसंद था सर, बट वही ना, हम लाइफ में इतने बिजी रहते हैं। जैसे मुझे गिटार बचपन से सीखना था, बट वही पढ़ाई, एजुकेशन, आपके और हॉबीज की वजह से कभी मौका नहीं मिल पाता था। तो जब ये हुआ, तब लाइफ में वापस सोचने का मौका मिला कि अब मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। कि तो लाइफ ने मौका दिया, तो मैंने सोचा कि जो मुझे पसंद है मुझे वो भी करना चाहिए। तो फ्री टाइम मिला, वापस से जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिला, तो मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया। और ऑनेस्टली मैं स्टार्टिंग में मेरा बस यही सीन था कि ऑब्वियसली बहुत सी चीजें आप नहीं कर पाते स्टार्टिंग में। यू कॉन्ट ट्रेवल, यू कॉन्ट राइड अ बाइक, तो वो जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कहाँ मैं डाइवर्ट करूँ?
0: जी
1: तब तो वो फ्री स्पेस में मैं क्या करूँ? क्योंकि एक होती है ना सर, कि जब आप पहले थे तो आप डे टू डे लाइफ में इतना अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करते थे, तो एकदम से आप स्टॉप हो जाए तो यू फील ना कि आपकी वो एनर्जी एग्जॉस्ट कहाँ करें, कि वही जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कुछ करने का, वो मैं कहाँ से लूँ? तो फिर तो मैंने सोचा कि गिटार सीखते हैं। बट मगर फर्स्ट टाइम उस दिन मेरे को शॉक लगा कि स्टेट ऑफ माइंड लोगों का क्या होता है। जो मेरा पहला टीचर आया, उसने जब मैं उसके सामने बैठा और उसको जैसे ही पता चला आई एम अ VI, अगले दिन गायब। उस दिन
0: जी
1: एहसास हुआ कि देखो, आई एम नॉट ब्लेमिंग द कंट्री, बट उस वक्त पता चला कि डिफिकल्टी क्या होती है। मतलब उस वक्त महसूस हुआ कि परसेप्शन कई कुछ लोगों का कितना आसानी से बदल जाता है। वो ना ऑनेस्टली मेरा उस टाइम में ये नहीं था, बस मेरा ये था कि कुछ गाने कर लूँ, फिंगर कर लूँ, टाइम पास हो जाए। फिर जब उन्होंने वो ऐसा किया, फिर एक और टीचर ढूंढा, उनका भी यही बिहेवियर, तब मेरा था कि अब प्ले करूंगा तो एक प्रो लेवल का ही मतलब प्ले करूंगा तो एक प्रोफेशनल लेवल की डिग्री करके ही रहूंगा। बस ये मैंने एक मन में था करने का, कि
0: जी
1: मैंने गॉड से कहा था कि यार गॉड, इतना हो रहा है, इतना मेरे को तो बस सीखना है, फिर भी ऐसा परसेप्शन मिला है तो कुछ करके ही दिखाना है। और फिर मैं वही, थैंक्स टू गॉड, मेरे पापा की मेहनत से, और जो मेरे बाद में मुझे टीचर मिले, लकीली मेरे पापा ने ढूंढा और लकीली वो टीचर मिले। मैं ये नहीं कह कि मैंने कुछ किया, मैं उन्होंने एफर्ट डाला। जो मुझे, देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लोग बुरे हैं, बट वो जो स्टार्टिंग के दो जो मिले, उनका जो मैंने परसेप्शन देखा तो थोड़ा फील हुआ, बट थर्ड अटेम्प्ट में मुझे फिर जो टीचर मिले, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। हेल्प मी, मतलब उन्होंने मुझे सिखाया, फिर उन्होंने कहा कि तुम अच्छा करना चाहते हो तो प्रो लेवल की डिग्री लो। जैसे आपने, उसका कुछ नहीं पता था, बस ये था कि अच्छा करना है, बस चाह थी, पता नहीं था कैसे करना है। वो मौका मेरे पेरेंट्स और गॉड ने दिया मुझे। तो मेरे टीचर ने बताया कि देखिए, VI भी गिटार की डिग्री ले सकता है। और मुझे पहले कुछ आइडिया नहीं था, तो पता
0: जी
1: चला कि जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं उसके सेमेस्टर होते हैं, तो म्यूजिक की भी डिग्री होती है, उसके सेमेस्टर होते हैं, एग्जाम होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होते हैं, तो जो मैंने डिग्री ली रॉक स्कूल लंदन से इलेक्ट्रिक गिटार रॉक एंड पॉप जेनर में, तो इसके भी 8 सेमेस्टर होते हैं। तो फिर मैंने फिर वन बाय वन सीखना स्टार्ट किया, उन्होंने हेल्प करी, तो थैंक्स टू गॉड कि फिर एक अच्छा सफर स्टार्ट हुआ। और भाई वन बाय वन सेमेस्टर क्लियर होते रहे, और लकीली मैं अब मैं कह सकता हूँ कि थैंक्स टू गॉड कि उस वक्त जो मुझे बुरा फील हुआ था कि मैं क्या कर पाऊंगा अगर ऐसा रहा तो, बट अगेन समय बीतने के बाद थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माई पेरेंट्स, कि अब मैं कह सकता हूँ यार थैंक गॉड मैं कम से कम एक डिग्री तो कर पाया गिटार की और मैं सीख पाया।
0: जी कितने साल का समय लगा आपको 8वें ग्रेड का सेमेस्टर का?
1: एक्चुअली सर, ये साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, तो हर सेमेस्टर का होता है वन बाय वन, तो मेरे को 4 साल लगे सर 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने में। मैंने 2016 से स्टार्ट किया था सर, तो 2020 में मेरा कंप्लीट हो गया। और किस्मत देखिए, जैसी मेरा जिस ईयर 2020 में मेरा ये डिग्री कंप्लीट हो गई, उसी साल मेरी ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया मेरी FCI के लिए। तो मतलब एक जैसी कंप्लीट हुई, एक नई जर्नी वापस स्टार्ट होगी प्रोफेशनल लाइफ की। तो वो कोइंसिडेंस इतना अच्छा था सर।
0: बहुत बढ़िया। तो जर्नी स्टार्ट हुई तो पहले तो आपकी जिंदगी कुछ मेटालिक सी हुई और फिर बाद में एकदम से रॉक आ गया
1: हाँ सर, वो तो
0: कुछ।
1: चल, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, ऐसा ही रहा है। और एक्चुअली मेरे को जैनर भी ये पसंद है, मेटल, रॉक, सूफी, जो मैंने वहाँ पे रॉक एंड पॉप में सीखा भी है, तो अलग अलग जेनर के मेरे को सीखने का मौका मिला।
0: आप, मुझे मालूम है कि आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग करते समय आपका, आप क्या जिंदगी ब्लूज में ले जाते हैं?
1: नहीं सर, उस टाइम आपको मेटल चाहिए सर, यू हैव टू फील ना पम्प्ड अप, तो उस वक्त
0: अच्छा
1: में मेटल, उसमें आप ब्लूज में सुकून में नहीं जा सकते। अगर आप सुकून में जाएंगे तो यू कांट लिफ्ट ना,
0: राइट
1: तो उस टाइम यू हैव टू लिसन रॉक म्यूजिक, में हैवी मेटल, जो रश ऑफ ब्लड हो, तब आपको
0: जी
1: एनर्जेटिक फील हो।
0: जी तो कुछ मेटल सुना दें आप हमारे श्रोताओं को।
1: श्योर सर, जैसे मेरे ग्रेड 8 के जो एग्जाम के थे पीसेस, वो मैंने किए थे। जैसे मेरा ये मेटल सॉन्ग है मीट डार्क ईयर, ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव मेटल है, आप सुनेंगे तो यू फील ना रश ऑफ ब्लड। ये
0: जी
1: ई माइनर स्केल का है और प्रोग्रेसिव मेटल, जैसे मेटल के बहुत डिफरेंट होते हैं, डेफ मेटल, हैवी मेटल, तो ये प्रोग्रेसिव मेटल है अल्टरनेट पिकिंग का, तो अभी आप ये
0: जी
1: सुन रहे होंगे। और इनमें एक सबसे खासियत क्या है, अभी इसमें एग्जाम में खुद की कंपोजिशन भी आप करते हैं, गिटार सोलो होता है, तो इसमें मैंने खुद की कंपोजिशन भी ऐड करी है, जो गिटार सोलो होता है, आप इम्प्रोवाइज करते हैं म्यूजिक के साथ।
0: जी बहुत बढ़िया
1: तो
0: श्रोताओं।
1: हाँ
0: तो मैं श्रोताओं को पेश करता हूं हमारे आज के प्रकाश, मन की आंखों के प्रकाश का यह मेटल म्यूजिक।

0: जी प्रकाश, श्रोता हूँ। मजा आ गया ना कि प्रकाश की आवाज में ही नहीं, उंगलियां भी मेटल लिखे हैं,
1: थैंक
0: और
1: यू।
0: इस मेटल के साथ इस डायमंड के पास क्या है और जानते हैं ये। प्रकाश, आपकी जिंदगी में एक अंधेरा है जो शायद कलर्स से आपका रास्ता
1: ऐसा
0: मालूम नहीं
1: कुछ,
0: कैसे कैसे होता है।
1: अरे
0: आपकी मन
1: मैं
0: की
1: ऐसे
0: आंखें क्या
1: देखे
0: देखती है,
1: ये
0: बताइए
1: नहीं
0: ना।
1: कह सकते सर। देखिए सर, ब्लैक इज ऑल्सो कलर, तो आप ये, हम ये कह सोच ही, मैं ये सोच ही नहीं सकता कि आई डोंट हैव कलर। सर, ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर, इज ऑल्सो वन कलर, तो मैं ये
0: जी
1: नहीं कह सकता ना कि मेरी बकेट एम्प्टी है,
0: जी
1: तो स्टिल आई हैव वन कलर, ब्लैक। एंड और आप देखिए, ये यूनिवर्स का कलर ब्लैक है, और ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर। आप ये सोचिए ना सर, हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे पास नहीं। आप ये सोचिए, ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर, जिस कलर से लोग भागते हैं उस कलर के साथ हम जी रहे हैं, तो हम कितने वो हैं, हमें भगवान ने कितना मौका दिया है कि यू कैन ना
0: हम
1: लिव
0: कितने
1: दैट वे।
0: स्ट्रांग है ना।
1: हाँ भगवान, क्योंकि ऊपर वाला मुसीबत उसी को देता है ना, कि उसके वो पहले उसको तैयार करता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। जैसे मैं अपने बारे में बताऊंगा, जैसे बचपन से मुझे भागवत गीता, महाभारत, स्पिरिचुअल चीजें, ये सब सुनने का बहुत शौक था। बट मुझे पता नहीं था कि मैं बचपन से, मुझे मोटिवेशन बातें क्यों अट्रैक्ट करती हैं, वो मुझे पता नहीं। एक होती ना अपनी पसंद, आप दौड़े जाते हैं उसके पास, तो ये मैं सुनता रहता था, मुझे फील नहीं होता था कि मैं क्यों सुन रहा हूँ, ये मुझे क्यों पसंद है। बट जब ये हादसा हुआ, तब थोड़ा रियलाइज हुआ कि आई थिंक गॉड इज प्रिपेयरिंग मी फॉर दिस मोमेंट। तो जो मैंने पहले ये स्पिरिचुअल चीजें, मोटिवेशन चीजें सुनी, वो मैं अब उस चीज को मैं इम्प्लीमेंट यहाँ कर पा रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है, मैं किसी और को कहूंगा नहीं, मेरी लाइफ का तो यही एक्सपीरियंस है कि जो भी सिचुएशन आती है उससे पहले गॉड हमें प्रिपेयर करता है। तो मे बी मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, और ये स्पिरिचुअल चीज है, तो वो हमें प्रिपेयर किया सर।
0: बेहतरीन। श्रोताओं, हमारे साथी प्रकाश का कहना है कि उनके पास एक कलर है, चाहे वो काला ही क्यों नहीं। तो प्रकाश, और भी
1: द स्ट्रॉन्गेस्ट
0: कोई
1: कलर है सर, चाहे नहीं, ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर।
0: यस, मैं कह सकता हूं कि आप काले में भी कूल लगते हैं, राइट?
1: थैंक यू सर।
0: तो मैं
1: काले
0: आपसे
1: हुए तो
0: कुछ
1: क्या हुआ, दिल वाले हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है श्रोताओं, मजा आ गया ना। तो आइए ना, इस बात पे हो जाए गीत।
1: हाँ सर, ये सेकंड सॉन्ग है जो मेरा लीड सी थी, रॉक फ्लेवर का है सर, इसमें रॉक जेनर है। आप इसकी बीट्स फील करेंगे तो इट्स ना, आप वर्कआउट करते हैं, यू फील पम्प्ड अप, तो ये रॉक जेनर का है प्रॉपर लीड शीट। आई होप आप लोगों को पसंद आए।

0: श्रोताओं, क्या बात है प्रकाश, आपने तो जिंदगी में आपके संगीत का रंग भर दिया है हमारे श्रोताओं को। मजा आ रहा है ना श्रोताओं बात करने में और साथ साथ ये बीट सुनने में। 1 2 3 4
1: जी
0: तो
1: सर।
0: प्रकाश, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस पूरी बातचीत के बीच आपका क्या रास्ता कुछ और कलर से भी है? कुछ यादें हैं आपकी पुरानी बचपन की कलर्स को लेकर?
1: ऑफिस कलर तो है सर, बहुत अच्छी यादें हैं सर।
0: और आपका तो मानना है कि कलर्स हमारे दिमाग में होते हैं, आंखों में नहीं, राइट?
1: सर आप जैसे, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, आप बहुत लोग सोचते हैं कि हम देखते हैं, एक्चुअली ये हम देखते नहीं है। साइंस के हिसाब से जैसे बॉडी वर्क करती है, ये आंख आंख इज जस्ट लाइक अ मिरर, जो हमारे ब्रेन में फोटो बनती है ना, वो हमें दिखता है। ये
0: जी
1: एक मिरर है। अब जिसी ने मेरे को, अब जैसे पहले मेरा ये मिरर काम कर रहा था तो मैंने देख लिया, तो ब्रेन में जो फोटो बनती है वो कलर हमें पता
0: जी
1: चलता है। अब जैसे पहले मेरी जो लाइफ थी वो मेरे को सारे कलर पता है, तो इस समवन से ना दिस इज रेड, तो वो रेड कलर मेरे ब्रेन में दिख जाएगा एंड आई कैन ना वो एक पता चल जाएगा हाँ रेड ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और इस चीज में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब मेरा हादसा हुआ तो मैंने पहले एक चीज पढ़ी थी, जैसे चमगादड़ होते हैं, देखा वो अपनी आंखों का यूज नहीं करते हैं बिकॉज दे कांट, वो फिर भी जब वो उड़ते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट उड़ते हैं। आप पता है वो कैसे उड़ पाते हैं सर?
0: जी
1: वो जब उड़ते हैं तो वो, जब मैं पहले सोचता था कि ये आवाज इतना क्यों करते हैं, बट सर वो आवाज करते हैं अपने, वो एक वेव्स बनाते हैं, और जैसे वेव्स होती हैं, वो वेव्स अगर सामने पहाड़ है वो आवाज करते करते आगे जाते रहते हैं, फिर वो वेव्स वापस जब पलट के आती है तो कान से सुनते हैं, और कान अपने कान से सुन के ये फोटो बनाते हैं कि सामने है क्या क्या नहीं। तो दे विल गेट, वो देखिए आईसेट ये वो नेविगेशन करने का यूज करते हैं, दे कांट सी, बट वो इतने एक्यूरेट होते हैं।
0: जी
1: ये तो एक बस ये पैरामीटर है कि हमने मिरर के थ्रू ऐसा कर लिया, बाकी हम सुन के और इसके थ्रू भी नेविगेशन आराम से कर सकते हैं सर।
0: हाँ, हमारी जिंदगी ने या हमारी प्रकृति ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं और हर इंद्री अपने आप में विशेष है, और किसी इंद्री में कुछ कमी भी है तो बाकी 4 तो आपको सपोर्ट करने के लिए है ना। तो प्रकाश, अपने थोड़े ठोकरों के ढाबों के बारे में बताइए ना, आपने ठोकरों के ढाबों में भूखे रहे या मस्त होके खाया?
1: क्या किसमें सर?
0: आपकी जिंदगी में कुछ, आपको कुछ ठोकरों के ढाबों से भी मुलाकात हुई होगी
1: अरे
0: आपसे?
1: सर वो तो सर, ये तो ठोकर तो सर वो है, बेस्ट फ्रेंड है सर, आज नहीं तो कल आएगी आएगी।
0: हाँ, तो ऐसे ढाबे जहां पर आपको ठोकरों का खाना मिला है तो बताइए ना, वो कैसी ठोकरें थी? या
1: वो ठोकरी तो सर ऑब्वियस है, ठोकर तो हमें सिखाती है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। जब जब हमें ठोकर मिलती है हमें अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलता है सर। तो जो जो ठोकरें आई, जैसे फर्स्ट टाइम जब कोई मैंने गिटार का था तो ठोकर आई, तो वो जब वो मुझको ठोकर फील हुई तो मुझे मौका अच्छा सीखने को मिलता। अगर मुझे वो ठोकर नहीं मिलती तो मैं सिर्फ 2 या 3 गाने करके लाइफ में आगे बढ़ जाता।
0: जहां पर आपको आपके विजुअल चैलेंज ने उनको चैलेंज दे दिया और वो
1: तो
0: डेयर नहीं ले पाए।
1: वही सर, वही ठोकरें आई हैं, वो उससे हमें सीखने को मिलता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग सर। जिस इंसान को जितनी ठोकर मिलती है ना सर, वो उतना तरक्की करता है, और मैं भी उतना ही कर पाया, यानी मेरी लाइफ में मेरे को कम ठोकर मिली है। अगर मेरे को और ज्यादा मिलती तो शायद मैं और अच्छा कर पाता जीवन।
0: जी, बहुत बढ़िया। हमारे एक शानदार क्रांतिकारी लाला हरदयाल, उन्होंने भी युवाओं के लिए बहुत शानदार किताब लिखी है, हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, सेल्फ डेवलपमेंट बाय योर स्ट्रगल एंड सक्सेस। आप सभी युवाओं को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने यही बताया है कि अपने हम कैसे आप की संघर्षों और सफलताओं से सीख सकते हैं। इसका मतलब संघर्ष भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी सफलताओं की सीख। तो खैर, हम श्रोताओं इस मोमेंट पे प्रकाश से कहेंगे कि वो कुछ और भी सुनाएं हमारे श्रोताओं को।
1: सर अब सर ये जो सॉन्ग है इसका नाम है डार्क मैटर, इट्स अ प्रॉपर जैज म्यूजिक। इसमें आपको डिफरेंट बीट्स दिखेंगी, डिफरेंट फ्लेवर दिखेगा, क्योंकि जैज है तो इसको आपको गिटार के साथ साथ बैकिंग ट्रैक में भी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, तो इट्स ऑसम सॉन्ग। आई होप आपको ये जैज फ्लेवर मेरा पसंद आएगा।

0: क्या बात है प्रकाश, आप तो छा गए हैं और हमारे माउंट आबू की वादियों में आपकी गिटार की आवाज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गूंज रही है, और इस वादी को आपके संगीत ने और खूबसूरत बना दिया है।
1: थैंक यू सर।
0: प्रकाश, हम हमारे श्रोताओं से बात कर रहे हैं हमारे मन की आंखों से शो में, और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं एज अ विजुअली चैलेंज पर्सन कि क्या मन की आंखें होती हैं। आपका क्या मानना है प्रकाश
1: बिल्कुल
0: जी,
1: होती हैं सर।
0: और ये कैसे काम करती हैं, कहाँ होती हैं
1: सर
0: आप?
1: ये मन की आंखें, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं थोड़ा इसमें, मन की आंखें सर ब्रेन होता है, लाइफ क्या है, जैसे मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, जैसे आप, मेरे लिए लाइफ क्या है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो जो हमारे ब्रेन में चल रहा है वही सब कुछ है सर, वही सच है। तो हमारे ब्रेन में, अगर हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन के थॉट्स अच्छे हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं तो हमारी लाइफ वैसे ही पॉजिटिव है, अगर हम नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं तो हमारे ब्रेन में फिर वो नेगेटिव ही चलता रहता है सर। तो वही, जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसे चमगादड़ है, वो नेविगेशन कैसे करता है, वो फोटो अपनी साउंड वेव सुन के सामने फोटो बना लेता है कि ये पहाड़ है क्या है। तो वही है कि हमने एक चीज चली गई तो बाकी की चीजों से कैसे नेविगेशन करके हम अपने ब्रेन में इमेज बना रहे हैं।
0: जी
1: हाँ, तो ये सर बाकी ये सब इंद्रियां हैं, इन सब इंद्रियों का काम है इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में देना। तो सब कुछ है सर, कुछ चेंज नहीं होता, एक चीज हो जाती है, बट वही है, जैसे बाकी जो लोग हैं उनके जो थॉट प्रोसेस है वही हमारा रहता है, बट हमें थोड़ा सा नेविगेशन अलग करना पड़ता है, बाकी खुशी सुकून सब ऐसा ही होता है सर।
0: क्या बात, बिल्कुल खुशी और सुकून बना रहे इसलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए हमारा फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और इस रेडियो स्टेशन यानी कि हमारे रेडियो मधुबन पर हम हमेशा ही कहते हैं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 107.8 FM। और मेरे साथ हैं प्रकाश, वो रियली एक प्रकाश हैं, उनका फेवरेट कलर ब्लैक है, और वो रॉक स्कूल से गिटार में, खास तौर पे रॉक एंड पॉप जॉनर में ग्रेजुएट हैं, और हम चाहते हैं कि वे अपने इस फन का फिर से हमारे सामने एक गीत के साथ पेश करें, अपने फन को फिर से एक गीत के साथ हमारे सामने पेश करें।
1: श्योर सर। अब ये जो मेरा अगला सॉन्ग है, इस सॉन्ग का नाम है क्राइमिया रिवर। इसमें एक प्रॉपर रॉक म्यूजिक है जिसमें थोड़ा आपको पेन, हार्ट ब्रोकन जैसा फील होगा, क्योंकि इसमें सिंगर भी है, और इस सॉन्ग में मैंने अपना गिटार सोलो भी ऐड किया है। आई होप आपको ये थोड़ा ना हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग पसंद आएगा।

0: लेकिन आज तो हम बात कर रहे थे दिल से दिल जोड़ने की, लेकिन प्रकाश ने गीत दिया है ब्रेकिंग, बट डेफिनेटली ये ब्रेकिंग तो नहीं था, ये शेकिंग था हमारे लिए। और हमने जैसे प्रकाश के गीत की बात की कि प्रकाश ने किस प्रकार से जिंदगी में अंधेरा आने के बाद गिटार उठाया, और मुझे तो मालूम चला है कि प्रकाश डंबल्स के साथ क्या कभी फंबल भी करते हैं।
1: बिल्कुल सर, वो तो मेरा सबसे
0: बोलो।
1: पहले उठता हूँ तो यही है सर, मेरा फ्रेंड। मैं तो एक्टिविटी मॉर्निंग में डंबल से ही स्टार्ट होती है सर। आई डू वर्कआउट अर्ली इन द मॉर्निंग पहले, बट हाँ ये है कि पहले आई कैन गो जिम, बट अब मैंने अपने पूरे जिम का सेटअप घर पे ही कर लिया है, तो मॉर्निंग में उठ के मैं घर पे करता हूँ सर वर्कआउट, और योगा भी करता हूँ सर, अष्टांगा योगा के कुछ मैंने पहले मुझे योगा जब ये हुआ तो मैंने एक टीचर से सीखा था प्रॉपर योगा, अष्टांगा योगा की प्राइमरी सीरीज, तो उसके भी सर कुछ पोजेस करता हूँ, जैसे हेड स्टैंड हो गया सर, उत्थिता पद्मोत्तानासन हो गया, ये मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी करता हूँ एंडिंग में, और स्टार्टिंग में मेरा वही प्रॉपर हैवी वेट लिफ्टिंग होता है, चेस्ट बैक वर्कआउट वो मैं करता हूँ सर।
0: जी, बहुत बढ़िया। और देखिए ना, प्रकाश एक चैलेंज के साथ हैं, पर जिंदगी के सारे कलर्स हैं। मॉर्निंग में योगा से लेकर अपने कार्यालय में अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट को मैनेज करना, हैंडल करना, और लोगों तक या सरकार की खाद्य सुरक्षा के संबंध में या सरकार की फूड मैनेजमेंट के संबंध में सही जानकारी अपने निगम की वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। देखिए ना, कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं और पे बैक कर रहे हैं सोसाइटी को। तो क्या ये जज्बा हम में भी नहीं रह सकता? और क्या हम अपने देश को विकसित भारत बनाने की यात्रा में प्रकाश की तरह आगे नहीं बढ़ सकते हैं? प्रकाश पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पर अपने जज्बे के साथ, अपने जज्बातों के साथ देश की जमीन को उर्वरा बना रहे हैं। प्रकाश, हम ऐसे ही आपसे जुड़े रहेंगे, लेकिन एक गीत हो जाए ना, और इस मोमेंट पे मुझे लगता है कि ब्लूज कैसा रहेगा?
1: बिल्कुल सर, ब्लूज अब ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है ये स्पेनिश जॉइंट है, इसमें आपको जैज और ब्लूज दोनों का फ्लेवर आएगा, और इसमें आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटल फ्लेवर आएगा, जिसमें सूदिंग साउंड होता है ना, जैसे हम सूदिंग साउंड जिसे हम कहते हैं, वो साउंड आपको इसमें मिलेगा सर।

0: निश्चित रूप से इस गीत के बाद तो पूरा माहौल ही खुशनुमा हो चुका है, इस बातचीत का अंदाज ही बदल गया है, और मुझे तो लगता है कि आपसे बातें करता रहूं और ऐसे ही एक
1: सेम
0: संगीत
1: ये सर।
0: रहे, और जिंदगी का जो संगीत है वो ऐसे ही बजता रहे। संगीत देखिए ना कितना शानदार माध्यम है कि कितनी भी बड़ी समस्या हमारी जिंदगी में आ जाए, हम संगीत के माध्यम से एक शक्ति पाते हैं, और संगीत ही वो माध्यम है जो शायद हमें ईश्वर से सीधे जोड़ने की ताकत रखता है, और वो फन आपको ईश्वर ने दिया है। प्रकाश, हम
1: सर
0: और भी कुछ चीजें जानना चाहेंगे कि जब कैसा कभी ऐसा कभी होता है कि आपको लो फील होता हो, या कुछ लोगों के व्यवहार से, या लोगों के स्मार्ट प्ले की हरकतों की वजह से कभी ऐसा आपको लगता हो कि ये क्या दुनिया है, हम कहाँ आ गए, हम कौन सी गाड़ी में चढ़ गए।
1: सर, वो तो होता है सर, ह्यूमन बीइंग है, हार्ट ब्रेक होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि हमारा दिल है हर इमोशन से भरा होता है। मेरे साथ भी होता है सर, बहुत बार होता है। और बट मेरा हार्ट ब्रेक हमेशा तभी होता है जब कोई चीज अटकती है ना, और फिर वो फील होता है कि हाँ थोड़ा ये काम अटका है, तो फील होता है। बट सर हर चीज की खूबसूरत चीज होती है कि हम जिस चीज में अटके हैं, यानी हम उस चीज के लिए कैपेबल नहीं हो रहे हैं। जैसे मोबाइल होता है ना सर, मोबाइल क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है? क्योंकि हर टाइम एक नया फर्मवेयर आता है, अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो कोई वायरस आ जाएगा। तो हमें, मैं मानता हूं कि हमें उस चीज में ही दर्द होता है असलियत में, क्योंकि हम उस चीज से लड़ने के लिए कैपेबल नहीं हो पाए हैं अभी, हमें उसको अपग्रेड करना है। तो जब भी फील होता है तो यही एहसास होता है कि मैं उस चीज के लिए अपग्रेड नहीं हुआ, मुझे अपग्रेड होना है और उस चीज को डील करना है। यही तो लाइफ है सर, सबके साथ होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा नहीं है, कईयों को, जो बहुत से लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ ज्यादा पेन है, ऐसा नहीं है सर। सबकी लाइफ में वही धूप छांव है, वही पेन है, पेन का पैरामीटर अलग है। मैं ये नहीं कह रहा, अब जैसे कोई और सक्सेसफुल है, कोई भी एक्साइटेड है, जॉब कर रहा है, उसकी लाइफ में भी सर पेन है, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में पेन नहीं है। सबकी लाइफ में पेन है, बट बॉटम लाइन ये होती है कि मैं अपने, अगर मुझे अपने आप को सुकून पाना है तो मुझे अपने पेन पे ध्यान देना है, एज कंपेयर टू किसी और से मुझे कंपेयर करना। तो ये सर जो मेरे पाती में पेन आया है उसको कैसे डील करना है, उस पर ध्यान दे तो सॉल्यूशन निकलता है सर। बाकी तो सर फील होता ही है।
0: प्रकाश, हम कार्यक्रम के लास्ट में आपके पेन को कम करने के लिए क्यों नहीं एक जैज पंख गीत ले आए आपके गिटार से, आपकी उंगलियों के माध्यम से। अच्छा,
1: सर ये सॉन्ग है स्पेनिश जॉइंट सर, इसमें आपको वो रिदम फील होगी, फील पम्प्ड अप सर।
0: श्रोताओं, हमें इसका आभास है कि समय भी गुजर रहा है और बातचीत भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और बातचीत के इस पड़ाव पर हम प्रकाश के शौक और प्रकाश के जीवन में रहे कुछ हॉबीज के बारे में बात करना चाहेंगे कि वो अपने इस व्यस्त समय में से, अपने शेड्यूल में से क्या वो खास चीजें हैं जो करना पसंद करते हैं, और अपनी दोस्ती यारी और अपने उस समय के बारे में बताएं जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं।
1: बिफोर या अभी का सर?
0: हाँ, हम एक कंपैरिजन तो चाहेंगे ही आपकी जिंदगी में कि पहले कैसा था और अब कैसा है,
1: हाँ,
0: दोस्तों में क्या बदलाव है यार।
1: पहले तो सर इतना रश ऑफ ब्लड होता था कॉलेज टाइम में। हम दोस्त होते थे कि चलो दिल्ली चलते हैं, हम बाइक से दिल्ली चले जाते हैं। मतलब मेरे को ड्राइव करना, बाइक राइड करना, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। तो हम जैसे बैठे हैं कॉलेज में, होता है यार दिल्ली चलते हैं, दिल्ली के दोस्त से मिलना है, तो बस बाइक में बैठे और चले जाते थे। हम रोड ट्रिप करना मुझे बहुत पसंद था, जैसे हम लद्दाख गए बाइक से, आई लव रॉयल इनफील्ड जो बाइक थी, तो वो पहले हम बहुत ट्रैवल करते थे। बट अब इसके बाद भी चेंज नहीं आया सर, आई लव, जैसे अभी आप कहेंगे तो आई लव ट्रैवलिंग, पहले मैं खुद चलाता था, अब किसी और को कहता हूँ। जैसे मुझे अभी ट्रैवल करना सर बहुत पसंद है, अभी भी जैसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गुवाहाटी हुई थी, तो मेरा लाइफ में नॉर्थ ईस्ट मुझे कभी जाने का मौका नहीं मिला था, बट थैंक्स टू माय जॉब मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई, तो मैं शिलोंग ये सब अभी ट्रैवल कर पाया। तो आई लव ट्रैवलिंग, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, और सर आई लव शॉपिंग। एक्सप्लोरिंग न्यू फूड, मुझे आई एम अ फूडी पर्सन, तो मुझे फूड एक्सप्लोर करना, और मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है सर।
0: आपके सबसे फेवरेट टेस्ट कौन सा है? आप क्या पसंद करते हैं? थाई, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज?
1: सर मुझे तो प्रॉपर इंडियन फूड, भले वो साउथ इंडियन हो, होम मेड होना चाहिए। जैसे साउथ का अगर इडली डोसा अगर किसी ने घर में बनाया तो ऑसम है सर। मैं तो पूरे इंडिया का फूड मुझे बहुत पसंद है सर। जैसे साउथ का अगर घर में होम मेड है इडली डोसा, भले ही साउथ का राइस हो, बिरयानी हो, आई लव। नॉर्थ जोन का पराठा हो, आई लव। बस वो होम मेड हो, बस मुझे वो अच्छा लगता है सर।
0: जी
1: होम मेड होना चाहिए।
0: जी जी जी बिल्कुल। तो कहें कि केरल से लेकर कश्मीर तक के सभी टेस्ट आपके करीब हैं।
1: बिल्कुल सर, मुझे कुकिंग करना ही बहुत पसंद है, तो कभी टाइम मिलता तो आई ऑल्सो कुक सर।
0: ग्रेट। तो ये तो बातें हैं। अब आप एनफील्ड पे तो अभी भी जा सकते हैं, बस
1: बिल्कुल
0: बात
1: सर,
0: ये
1: बिल्कुल वो ही है, बस पैरामीटर
0: आपको।
1: चेंज हुआ। अभी भी जाता हूँ सर, बाइक राइड पे जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो अभी भी सर वो मैं जाता हूँ।
0: क्या बात है। तो आपने अपने रोड्स के प्यार को रॉक पे आप ले आए हैं। तो दिस इज द जर्नी ऑफ रोड टू द रॉक, राइट?
1: सर
0: और हमने एक रॉक में एक कहें कि हमने पॉप में भी कुछ नया करने का प्रयास किया है। और डेफिनेटली मुझे लगता है आज आपके इंस्टीट्यूट को भी आप पे गर्व है कि जिस तरीके से आपने अपने आप को संभाला है और एक जिंदगी में कमबैक किया है। और जो बिजली चैलेंज, बचपन से बिजली चैलेंज होते हैं उनको शायद वो समस्या नहीं रहती है, लेकिन आपके साथ एक चैलेंज रहा है और हम तो यही चाहेंगे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।
1: थैंक यू
0: लेकिन
1: सर।
0: इस पूरी जर्नी में आप क्या ऐसे मकाम हैं या ऐसे कहें कि टारगेट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं?
1: टारगेट तो सर वो ही है सर, एक हम वो मॉरली देखें तो सर एक्चुअली खाली आता है, खाली आ जाएंगे, बट मेरा तो हमेशा सर यही रहा है कि कोई भी सिचुएशन हो उसको मैं कितना काम और कंपोज तरीके से टैकल करूं सर, और एक वैल्यूएबल इंसान बनूं सर, मेरी तो यही चाहते हैं।
0: जी, बेहतरीन। और इस पूरी बातचीत की जर्नी में आपके कुछ कॉलेज डेज भी रहे, वो भी हमने आपने बीच बीच में बताए हैं।
1: हाँ सर, रोड
0: परंतु
1: ट्रिप हम
0: आपकी
1: बहुत
0: कॉलेज
1: करते थे
0: की कोई
1: कॉलेज
0: ऐसी
1: टाइम में सर।
0: बात जो हमारे यूथ लिसनर्स को आप शेयर करना चाहें?
1: सर कॉलेज ट्रिप का तो सबसे एक ऑसम होता है सर, जैसे हम स्कूल में होते हैं तो कॉलेज में एकदम से फ्रीडम फील सा होता है, क्योंकि हम इतना एक्सप्लोर नहीं करते। तो ही सर कॉलेज में तो सर वो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, मैं बताऊँ हमारे 25 जनों का ग्रुप था, तो आप इमेजिन करें कि 25 जने अजमेर हाईवे से अजमेर जा रहे हैं, तो कितना ऑसम फील होगा। 25 जने 25 बाइक सर, हम ऐसे इतने एक साथ जाते, तो बहुत मतलब हमने इतना ट्रैवल किया है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि कॉलेज में सर वही सर रोड ट्रिप्स बहुत पसंद थी मुझे, तो हमारा ग्रुप पहले भी वो था और अभी भी मेरा है सर, ऐसा नहीं है कि दे हैव चेंज्ड, अभी भी मेरे वो सारे फ्रेंड्स हैं। जब रोड ट्रिप होती है, हाँ अब हम थोड़े वो जॉब वॉब ये सब कर रहे हैं, तो बाइक इट्स बिजनेस शूटर्स, तो वही सर हम अपना व्हीकल करके वैसे जाते हैं सर।
0: क्या बात है। तो आप तो रोड्स पे भी रॉक कर चुके हैं और अब तो गिटार पे कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप ऐसे ही कुछ नए मकाम भी करें। आप ये अभी क्या विशेष हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे कुछ नए टारगेट्स जो आप सोचते हैं कि मुझे करना बाकी है?
1: अभी सर जैसे अभी जैसे म्यूजिक है, गिटार है, क्योंकि म्यूजिक सर इज जस्ट लाइक अ सर सागर। मैंने देखी सर, मैंने अभी ये कर लिया, इट डजेंट मीन कि आई एम द लेजेंड, तो मेरे को अपने म्यूजिक में और इम्प्रूव करना है, कि जितना मतलब लाइफ ने मुझे टाइम दिया है जीने का, उसमें मैं कितना म्यूजिक ग्रहण कर सकूँ, क्योंकि म्यूजिक इज नेवर एंडिंग ना सर, कोई नहीं कह सकता कि यू आर द परफेक्ट। तो अभी एक ये जर्नी है कि म्यूजिक को मैं कितना समझ सकता हूँ। अभी मैंने बस एक समुद्र का एक बूंद को महसूस किया है, मतलब मैं कैपेबल हो पाया कि इस बूंद को समझ पाऊँ, तो अभी सर म्यूजिक में मैं कितना समझ सकता हूँ। आई लाइक वर्कआउट, तो बॉडी को हम आई डू मेडिटेशन, तो उसको मैं कितना समझ सकता हूँ, तो यही टारगेट है सर। और अभी जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है टेक्स्ट टू स्पीच में, इट डजेंट मीन दिख सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि स्क्रीन रीडर अच्छा है, बट अभी भी बहुत से वेबसाइट हैं उसमें फिर अपग्रेड नहीं हुए, तो उस चीज पे काम करना है हमें, कि हम चीजों को और कितना एक्सेसिबल बना पाए, क्योंकि एज अ वीआई बंदा इज कैपेबल इनफ सर, कमी उसमें नहीं है, बंदा अटकता तब है जब स्क्रीन रीडर अटक गया है, अटक जाता है। इट मीन्स कि जो जो प्रेजेंट हो रही है वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो उसके लिए प्रोग्रामिंग नहीं हुई है स्क्रीन रीडर के लिए। तो बस, तो सर अब मेरी तो बस यही चाहत है कि जितनी भी हमारे एप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे सब में प्रोग्रामिंग हो स्क्रीन रीडर के लिए, ताकि हमारा काम अटके ना सर। बस यही चाहत है कि इसमें मैं और काम कर सकूं सर, और बस यही
0: जी
1: ख्वाहिश है कि जितने भी अभी फ्यूचर में और जितने भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं सर, ये तो आपको भी बहुत पहले से अभी भी पता होगा कि बहुत कम है अभी भी एप्लीकेशन जो एक्सेसिबल हैं। बहुत सी चीजें हैं, वेबसाइट हैं, जो अभी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है और हो नहीं रही है। बस सर, मैं ये तो यही चाहते हैं कि जितने भी अभी फ्यूचर में सॉफ्टवेयर आए, वेबसाइट हो, वो सारी एक्सेसिबल हो, और उसमें मैं कितना कर सकता हूँ सर। बस यही चाहते हैं सर कि ये काम हो जाए, जो भी आए एक्सेसिबल हो गया है।
0: एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है और हमारे देश का कानून भी इस बारे में बात करता है कि एक्सेसिबिलिटी 100% होनी चाहिए जहां पर भी संभव हो। फिजिकल, वर्चुअल, टोटल एक्सेसिबिलिटी की बात करता है और आप जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उस एक्सेसिबिलिटी के को आसान बनाते हैं। तो शायद हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को भी सलाम करते हैं कि वे हमारी जिंदगी को आसान बनाने में लगे हुए हैं और
1: बिल्कुल
0: इस
1: सर,
0: पूरे पूरे हालात को बेहतर बनाने की, या क्या कहें, एक बेहतर दुनिया हमारे लिए बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं। इस प्रोग्राम में श्रोताओं, हमने प्रकाश के जीवन पर प्रकाश डाला और आशा है कि आपको इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से, इस पूरे आज मन की आंखों के शो ने अपने मन के में जाने का मौका दिया होगा। और मन के अंदर जब जब हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप भी, चाहे जैसा भी चुनौती आपकी जिंदगी में हो, आप लगे रहें, आगे बढ़ते रहें, जीत आपकी ही होगी। प्रकाश, आप हमारे शो में आए और आपने हमें समय दिया, हम
1: अरे
0: उसके।
1: सर थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और आपसे बात करने का मौका मिला, थैंक यू सो मच सर। और कुछ नया आपसे सीखने को मिला सर, और आपसे तो सीखने का मौका मिलता ही रहता है सर, तो थैंक यू सो मच सर।
0: जी, थैंक यू प्रकाश, हम आपके आभारी हैं और ऐसे ही श्रोताओं हम लाते रहेंगे किसी न किसी नई शख्सियत को आपके बीच। और आज की शख्सियत ने बताया कि रुके नहीं, लड़ते रहें, और इस जद्दोजहद के बीच ही ना हमारा शो आपके लिए लेकर आता है ऐसे ही किसी सितारे को। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 107.8 FM आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन। हियर इज योर आरजे शरद साइनिंग आउट। थैंक यू कृष्णा बहन, मुझे लगता है कि अभी एडिटिंग के बाद अच्छा हो जाएगा।
1: हाँ, कुछ अपन पुराने वाले से भी ले सकते हैं। वो बस आपने जो आखिरी वाला बोला था ना ब्लूज का, वो शायद हटा देना, क्योंकि अपन 5 पहले डिस्कस कर चुके हैं।
0: ठीक है,
1: बाकी मैं वो 5 के लिंक आपको भेज दूंगा, जो जिन जिन के, एक तो मैंने आपको भेज दिया लीड शीट का, बाकी वो पहला मीडा किया, स्पेनिश जॉइंट, डार्क मैटर और क्राइमिया रिवर, ये 4 के हैं। मैं आपको यूट्यूब के लिंक भेज दूंगा, आप वो MP3 में कर लीजिए कन्वर्ट।
0: जी कृष्णा
1: बाकी और भी आपको करना हो तो मेरे YouTube में और भी वीडियोस हैं, अगर आपको लगे।
0: बहन,
1: हाँ

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: ओम शांति। As I sit here

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

शांति। आज 3 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। तो आज की बाबा की मुरली है, पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया में कितना अंतर है। पाप की दुनिया, बाबा कहते ये अक्षर भी कितना बुरा है।

लेकिन आज सभी मनुष्य आत्माएं पाप की दुनिया में है और ये पाप के कारण ही नरकवासी बन गए हैं। पाप से आत्मा कितनी भारी हो गई है, तभी तो मनुष्य कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, क्योंकि वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो नरक से गया तो अच्छी बात है, इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में गया ना। तो बाबा कहते हैं वास्तव में इस समय बाप की श्रीमत पर चलने से जितना हम पावन बनते जाएंगे तो उस पुण्य की दुनिया में चलेंगे, बाकी तो इस दुनिया में पाप आत्माओं की दुनिया में कोई गति सदगति देने वाला नहीं है। जब तक परमात्मा बाप न आए, सतगुरु परमात्मा न आए, तब तक किसकी सदगति हो ही नहीं सकती। तो बाप आकर के इस समय हम सब की सदगति करने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापक को नहीं दे सकते? उत्तर है, बाबा है सतगुरु। ये सतगुरु का टाइटल किसी को नहीं मिल सकता। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि गुरु वह होता है जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती है, वह किसी को ले नहीं जाते हैं। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वह सभी के सतगुरु है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, यह है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी है ये पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य ये समझ नहीं सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसके अगेंस्ट में कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नर्क। भारत में ही स्वर्ग और नर्क की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है नरकवासी थे। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं। क्या तसल्ली देते हैं? कि अब थोड़ा धीरज धरो, पुण्य आत्मा या पावन दुनिया में जाने का समय आ रहा है, तो थोड़ा धीरज धरो। तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। इतना पापों का बोझ हो गया जो बाबा कहे बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां न कोई पाप होगा, न कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है। आज यहाँ है, कल अपने शांति धाम, फिर सुखधाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। हाँ, डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। अब यह तो है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते हैं, तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो,
अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। अब उसको कौन जानते हैं, रचयिता को कौन जानते हैं, कब और किस द्वारा जान सकते हैं, ये किसको भी पता नहीं। जब ऋषि मुनियों को मालूम नहीं था तो सत्य कह दिया, अब बाबा कहे किसके द्वारा मालूम पड़ेगा, कब और किसके द्वारा सुना जान सकेंगे, ये किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा के आदि मध्यंत को कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते मैं संगम युग पर आकर ब्रह्मा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूं, फिर तुमको रचना के आदि मध्यंत का राज सुनाता हूं, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूं। तुमको रोशनी मिल गई है, आंखों की रोशनी चली जाती है तो क्या कहते हैं, मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्य को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते तो उनको क्या कहेंगे, बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सज्जे। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। गीता में कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात मैं आकर के अधर्म का नाश और सनातन धर्म की पुनः स्थापना करता हूं। तो बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था। सत्योगी स्वराज्य देने के लिए राजयोग क्यों सिखाया था, सत्योगी स्वराज्य देने के लिए। आत्मा कहती है मैं राजा हूं, मैं बैरिस्टर हूं। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व के रचयिता बाप द्वारा। वह किसका रचयिता है, नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी है तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या है, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे व ज्योति ज्योत समाएंगे। ऐसा है नहीं, कोई ऐसे समा नहीं सकते। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे, वह शांति धाम घर है। वह कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है, घर को ही भगवान कह देना तो बाबा कहते कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है। जहां हम आत्माएं और परम पिता परमात्मा निवास करते हैं उनको स्वीट होम कहा जाता है, वह है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महतत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। लीन हो जाना माना आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाना, आत्मा अविनाशी है। ये ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम युग जबकि सभी एक्टर्स हाजिर है। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। इस समय ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है। बाबा कहते हद के नाटक और बेहद के नाटक में क्या अंतर है,
उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है। ड्रामा पुराना हो जाता, यह तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं, देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते, न शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल न सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को भी जानते हो, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको ये कहना है, क्या कहना है, कि शिव बाबा आया है, उनको याद करो। ये बात बाबा कहे तुम्हें सबको कहनी है, शिव बाबा आया है उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वो बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे है। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही चार, और जो धर्म वाले हैं वह आते ही है सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने, राजाए आदि की बात नहीं। उनको गुरु भी नहीं कह सकते, वो न राजाए स्थापन करते हैं और उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है। गुरु वह, हाँ, गुरु का कर्तव्य क्या है, गुरु वह जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते, लेकिन कह दिया भक्ति मार्ग में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हम तो बाबा कहते इन तीनों को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है, पुकारते भी एक राम को है। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असल नाम है शिव, उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया, बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं है। तुमको सन्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियां निकलती है। अभी तुम हो संगम पर। इस समय ये सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है मैं तीन धर्मों की स्थापना करता हूं। बाबा आकर के तीन धर्मों की स्थापना करते, कौन से, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में, और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। बाबा आते हैं तो अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव
ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, इसलिए उनको करण करावन हार कहा जाता है। इतना ही नहीं, शिव को त्रिदेव भी कहते हैं, जिसने ये तीन देवों की रचना भी की। तो करण करावन हार भी कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वह विकर्म बन जाता है, और सतयुग में जो कर्म करते हो वह अकर्म हो जाता है। यहां विकर्म ही होता है क्योंकि रावण का राज्य है। सतयुग में पांच विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है, कर्म की गुह्य गति की भी एक एक बात समझने की है, और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते ओम माना अहम आत्मा और यह मेरा शरीर, इतना सहज है। और तुम समझते हो हम सुख धाम में जा रहे हैं, श्री कृष्ण के मंदिर को सुख धाम कहते हैं, है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती है। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है, और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं। फिर पतित कौन बनाते हैं ये कोई बता ना सके। हाँ, कैसे आत्मा पतित बनती है, फिर कौन पावन बनाते हैं ये कोई नहीं बता सकते हैं। सब मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, सीताएं हैं, सबकी सदगति करने वाला बाप है। सब इस समय कहाँ है, रावण की जेल में है। यह है ही दुख धाम। बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। कितने भाग्य की बात है कि ऐसे बाप को जो दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते, ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में यह यानी कृष्ण है, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे, और कोई को ये नॉलेज नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम सब कौन हो, तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, इसलिए अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। यह मृत्यु लोक है। तुम सब पार्वतियां अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है, जहां दुख की बात नहीं होती। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, ये सब मिसाल यहाँ के हैं। ब्रह्मरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो, विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो, मनुष्य की ही बात है। ब्रह्मरी का तो ये एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा क्या कर रहे हैं, अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भूं भूं करते हो, जिससे क्या होगा, वह भी मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। ब्राह्मण ब्रह्मरी है जो औरों को बैठ ज्ञान की भूभू करते, जिससे मनुष्य से देवता या स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मान सरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे, ये सब है झूठ। तुम झूठ ही सुनते आए हो, अब बाप ट्रुथ सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं, हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं।
आत्म अभिमानी बनना है। फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं, आत्म अभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूं। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना ना सके सिवाय बाप के, और कोई कह ना सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु उनकी जयंती कैसे है ये नहीं जानते। बाप ही खुद आकर समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहां से, पति तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूं। ऊंचे से ऊंचा बाप कहते मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर जिसकी स्थापना करते हैं जो यह ज्ञान पाते हैं वह देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंज जाते हैं, कहते हैं ये तो दादा का चित्र है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे, प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, झूठ थोड़ी होगा। इतने हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो झूठ थोड़ी होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं, तुम बच्चों को समझाया है वह अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता तो साकार में चाहिए, ये पतित ही तो पावन बनते हैं। ततत्वम पतित ही पावन बनते हैं, वैसे बाबा कहे ततत्वम जैसे मैं बना वैसे तुम भी बनते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है, सोम रस पीना और पिलाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले तो बुजुर्ग लोग समझते हैं ये निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं। कोई असर नहीं होता, उनका कहा हुआ कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। बाबा कहे तो ये माया के विघ्न बच्चों को खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। आज का स्लोगन है, स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो, स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, ज्वालामुखी स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते अभी ज्वालामुखी बन
आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया, असुर कोई व्यक्ति नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया, ये अभी आपके ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलियुगी संसार जलकर भस्म हो जाए, जिसमें ये कलियुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। अच्छा, ओम शांति।